हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर रंजनी में अभी आप सुन रहे थे राधिका मोहन मोइत्रा का सरोद वादन राग हमीरी बिलावल।

0: आकाशवाणी दिल्ली केंद्र चैनल है। अब समाचार सुनिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। समारोह में स्नातक, स्नातकोत्तर और 587 पीएचडी शोधार्थियों सहित 3000 से अधिक विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी। प्रधानमंत्री मोदी आईआईटी दिल्ली के सोनेपत परिसर में स्थापित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उच्च प्रदर्शन सुपर कंप्यूटिंग सुविधा परम प्रज्ञा का भी उद्घाटन करेंगे। भारतीय भुगतान परिषद ने कहा है कि यूपीआई के माध्यम से किए जाने वाला डिजिटल भुगतान उपभोक्ताओं के लिए मुफ्त बना रहेगा। व्यापारियों से डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए भी कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। परिषद ने बताया कि बैंक, फिनटेक कंपनियां, एनपीसीआई और भारतीय रिजर्व बैंक यूपीआई को सुरक्षित और भरोसेमंद बनाए रखने के लिए तकनीक, साइबर सुरक्षा, धोखाधड़ी रोकने और नई सुविधाओं में लगातार निवेश कर रहे हैं। भारत ने महज 3 वर्षों में 1000 किलोमीटर से अधिक सुरक्षित क्वांटम संचार स्थापित किया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में 3रे भारत अंतर्राष्ट्रीय फिनटेक महोत्सव में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बैंकिंग क्षेत्र वित्तीय संस्थानों, प्रौद्योगिकी कंपनियों और स्टार्टअप्स के बीच नजदीकी सहयोग से भारत का फिनटेक क्षेत्र देश के आर्थिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण चालक बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि देश के फिनटेक क्षेत्र में विकास के अगले चरण में एआई, क्वांटम प्रौद्योगिकियों, साइबर सुरक्षा, ब्लॉकचेन और विश्वसनीय डिजिटल नवाचार की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी छात्र आंदोलन के बीच सरकार और छात्र प्रतिनिधिमंडल के बीच कल पहली औपचारिक वार्ता हुई। करीब 1.5 घंटे तक चली बैठक में छात्रों ने भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच और भर्ती प्रक्रिया में व्यापक सुधार की मांग दोहराई। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: सरकार की ओर से 4 मंत्रियों और विकास आयुक्त ने वार्ता में भाग लिया। मंत्रियों ने छात्रों की मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिलाते हुए कहा कि वार्ता में उठाए गए सभी मुद्दों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया जाएगा। छात्र प्रतिनिधियों ने वार्ता को सकारात्मक बताया, लेकिन स्पष्ट किया कि लिखित निर्णय और मांगों पर ठोस कार्रवाई होने तक धरना और भूख हड़ताल जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि यदि 10 अगस्त तक संतोषजनक निर्णय नहीं लिया गया तो पूर्व निर्धारित विधानसभा घेराव कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार छात्रों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है और संवाद के माध्यम से समाधान निकालना चाहती है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से 2 दिन के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दौरे पर रहेंगे। यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, DRM 810 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, सुबह के 6:10 और पूरे हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक, लीजिए 20 सेकेंड। श्रोताओं, अब कुछ ही पलों में आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। वंदना कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे शनिदेव की महिमा पर आधारित ये भजन। शनिदेव की महिमा अपरंपार है और उनका स्मरण जीवन में न्याय, धैर्य और कर्म का संदेश देता है। इसी पावन भाव के साथ है इस वंदना कार्यक्रम में अब हम सबसे पहले शनिदेव की आराधना करेंगे।

संगीत का कार्यक्रम सुन रहे हैं आप अपने दोस्त पुष्पा के साथ। और आपको बता दें श्रोताओं कि ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल पर। शनिदेव की महिमा ही ऐसी है, अपरंपार है और जितना उन्हें कठोर माना जाता है लेकिन उतने ही बहुत दयालु भी है। बस न्याय के पथ पर चलते रहिए और अपना सारा जो ध्यान है अपने काम पर लगाएं। शनिदेव उसका

आपने देखा होगा कांबड़ लेकर आते हैं, जो कि अब इस साल 11 तारीख को कांबड़ का जो जल लेकर आते हैं वो अर्पित किया जाएगा भगवान शिव जी के शिवलिंग पर 11 तारीख को। तो भोलेनाथ की कृपा हमेशा बनी रहे, और कहा भी जाता है कि जहाँ भोलेनाथ का नाम होता है वहाँ हर पल शुभ और मंगलमय होता है। तो अगला भजन महादेव जी के चरणों में अर्पित है हमारी तरफ से, और यही मंगल कामना कि सबका

काली माँ को हमेशा माना जाता है कि माँ रक्षा करती है अपने बच्चों का, जो भी उनके ऊपर कोई कष्ट लाता है या कोई बुरी दृष्टि रखता है उस दृष्टि से बचाती है, उस अधर्म का नाश करती है और धर्म को जय दिलाती है। तो माँ काली का आशीर्वाद हमेशा बना रहे, इसी भक्ति भावना के साथ अब आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं हनुमान अष्टक। श्रद्धा और विश्वास के साथ यूं ही बजरंग बली जी का ध्यान करें। कहा जाता ना कि जहाँ श्री राम वहीं वीर हनुमान।

0: गए।
1: तो अभी आपको मिलते हैं हनुमान अष्टक, और आपको बता दूं कि आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के इंद्रप्रस्थ चैनल पर। जी हाँ, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल पर भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना ipradio@delhi.gmail.com। जी हाँ, ipradio@delhi.gmail.com। इस मेल पर आप हमारे कार्यक्रमों में जुड़ सकते हैं, आने वाले आगे अगले कार्यक्रमों में भी। और एक मेल अभी तक हमें ये मिला है मानसी मलोड़े का, कोपर गांव से। वर्षा और सुरेश मलोड़े के साथ इन्होंने ये मेल हम तक पहुंचाया है। तो श्रोताओं, आप हमारे इस कार्यक्रम के साथ यूँ ही जुड़े रहें, और अब आप सुनेंगे ये हमारा अगला।
2: Thank you.

0: तो अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, और अब कुछ ही पलों में आप सुनेंगी चिंतन। चिंतन में आज आप सुनेंगे एनी बेसेंट के भारतीय राष्ट्रवाद पर विचार।
1: शुभ प्रभात। आज के चिंतन कार्यक्रम में आप सुनेंगे लघु वार्ता एनी बेसेंट के भारतीय राष्ट्रवाद पर विचार। आलेख है संध्या रानी का और वाचन स्वर नीलम मलकानिया का।
2: एनी बेसेंट एक ब्रिटिश समाजवादी, थियोसॉफिकल होम रूल की कार्यकर्ता, महिलाओं के अधिकारों की समर्थक, लेखक, बेबाक वक्ता और तत्कालीन कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। वे मूल रूप से एक ब्रिटिश और आयरिश महिला थीं, क्योंकि उनके पिताजी आयरिश थे और उनकी माँ एक ब्रिटिश महिला थी। जब वे 20 साल की थी तभी उनकी शादी फ्रैंक बेसेंट से हो गई थी, लेकिन कुछ मतभेद होने के कारण उनका बहुत जल्दी तलाक हो गया था और वहीं से उनके जीवन में एक नया मोड़ आया। वे भारत में पहली बार एक थियोसॉफिकल कार्यकर्ता के रूप में आई थीं और यहाँ आने के बाद यहीं की होकर रह गई। उनकी रुचि भारतीय संस्कृति और आध्यात्म की ओर थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ने के बाद ही बढ़ी थी। थियोसॉफी एक आध्यात्मिक और धार्मिक आंदोलन था जिसका उद्देश्य पूर्वी और पश्चिमी धार्मिक विचारों के बीच तालमेल स्थापित करना था। वे 1907 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनी थी। उन्होंने इस संस्था के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम किया था। उन्होंने 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना बनारस में की थी, क्योंकि वे बनारस की संस्कृति से बेहद प्रभावित थीं। यही कॉलेज आगे चलकर सन 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना। इसके अलावा उन्होंने बाल विवाह उन्मूलन और महिला सशक्तिकरण के लिए सराहनीय काम किया था। एनी बेसेंट ने भारत में फैली हुई कुरीतियों का जमकर विरोध किया। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा और विधवा विवाह का भी समर्थन किया। वे भारतीय दर्शन और धर्म से भी बहुत प्रभावित थीं। भगवद गीता, उपनिषद और वेदों का अध्ययन उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुए। भारत की आध्यात्मिकता और विविधता ने उनको विशेष रूप से आकर्षित किया। यही वजह है कि वो भारतीय साधु, संतों, योगियों और आचार्यों से मिली। उन्होंने भारत में राष्ट्रवादी भावना को बढ़ावा देने और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को समर्थन देने में एक प्रमुख भूमिका निभाई थी। एनी बेसेंट ने 1916 में बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर होम रूल लीग की स्थापना की थी। इस आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार से भारत के लिए स्वशासन यानी कि होम रूल की मांग करना था। वे मानती थीं कि भारत को स्वशासन का अधिकार मिलना चाहिए और भारतीयों को अपने देश का शासन खुद चलाना चाहिए। ये आंदोलन भारतीय राष्ट्रवाद को एक नई ऊर्जा और दिशा देने वाला साबित हुआ। सन 1917 में एनी बेसेंट तत्कालीन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। वे इस पद

0: पर आसीन होने वाली देश की पहली महिला थी। एनी बेसेंट लोकतंत्र की बातें करती थी। इस पद से उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ भारतीयों के अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए आवाज उठाई थी। उन्होंने अपने लेखों, भाषणों और पत्रिकाओं के माध्यम से भारतीय राष्ट्रवाद का प्रचार किया। इतना ही नहीं, उन्होंने न्यू इंडिया नामक पत्रिका का संपादन किया, जिसमें वे ब्रिटिश शासन की आलोचना और भारतीयों के अधिकारों की पैरवी करती थीं। उनका मानना था कि भारतीय समाज को स्वतंत्रता के लिए तैयार करने के लिए समाज में शिक्षा सुधार करना बेहद जरूरी है। उन्होंने भारतीयों को शिक्षित करने और उनमें राष्ट्रीयता की भावना जगाने के लिए प्रयास किए। उनका राष्ट्रवाद का दृष्टिकोण भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को आगे बढ़ाने में बहुत सहायक साबित हुआ।
1: चिंतन में एनी बेसेंट के भारतीय राष्ट्रवाद पर विचार, और अब समय हुआ है श्री राम चरितमानस पाठ का। ये इस संगीत में राम चरितमानस पाठ में आज आप सुनेंगे अयोध्या कांड का भाग 11।

श्री राम के युवराज पद पाने की पूर्व संध्या। अयोध्या में बधावे बज रहे हैं और अंतःपुर में रानी कैकेयी को भवन में बैठी राजा दशरथ की गुहार सुन रही हैं। हे सुनैनी, मैं कल प्रातःकाल ही राम को युवराज पद दे रहा हूं, तुम मंगल साज सजो। कपटयुक्त प्रेम दिखाते हुए मुंह मोड़कर हंसती रानी कैकेयी बोली, कभी आपने दो वरदान देने को कहा था, किंतु अब तो उनके मिलने में भी संदेह है। निष्कलुष हृदय राजा ने अपनी तरह से रानी का मर्म समझा, हंसकर बोले, वे दोनों वर तो थाती की तरह तुमने संजो रखे हैं, कभी मांगा ही नहीं। रघुकुल में तो सदा से यही रीत चली आई है कि प्राण भले ही चले जाए पर वचन नहीं जाता। कैकेयी ने वर मांगे, मेरे मन को भाने वाला एक वर तो दीजिए भरत को राज तिलक का, दूसरा वर भी हे नाथ मैं हाथ जोड़कर मांगती हूं। तपस्वियों के वेश में विशेष उदासीन भाव से राम 14 वर्षों तक वन में निवास कर

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनक लता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। समारोह में स्नातक, स्नातकोत्तर और 587 PhD शोधार्थियों सहित 3000 से अधिक विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी। प्रधानमंत्री मोदी IIT दिल्ली के सोनीपत परिसर में स्थापित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उच्च प्रदर्शन सुपर कंप्यूटिंग सुविधा परम प्रज्ञा का भी उद्घाटन करेंगे। भारतीय भुगतान परिषद ने कहा है कि UPI के माध्यम से किए जाने वाला डिजिटल भुगतान उपभोक्ताओं के लिए मुफ्त बना रहेगा। व्यापारियों से डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। परिषद ने बताया कि बैंक, फिनटेक कंपनियां, NPCI और भारतीय रिजर्व बैंक UPI को सुरक्षित और भरोसेमंद बनाए रखने के लिए तकनीक, साइबर सुरक्षा, धोखाधड़ी रोकने और नई सुविधाओं में लगातार निवेश कर रहे हैं। भारत ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर अमेरिका के सांसदों की आपत्तियों को खारिज कर दिया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ये देश का आंतरिक विधायी मामला है और इस पर निर्णय संसद करती है। उन्होंने कहा कि अमेरिका सहित कई देशों में भी विदेशी धन के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए कानून लागू हैं। झारखंड में JPSC और JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी छात्र आंदोलन के बीच सरकार और छात्र प्रतिनिधि मंडल के बीच कल पहली औपचारिक वार्ता हुई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: सरकार की ओर से 4 मंत्रियों और विकास आयुक्त ने वार्ता में भाग लिया। मंत्रियों ने छात्रों की मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिलाते हुए कहा कि वार्ता में उठाए गए सभी मुद्दों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया जाएगा। छात्र प्रतिनिधियों ने वार्ता को सकारात्मक बताया, लेकिन स्पष्ट किया कि लिखित निर्णय और मांगों पर ठोस कार्रवाई होने तक धरना और भूख हड़ताल जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि यदि 10 अगस्त तक संतोषजनक निर्णय नहीं लिया गया तो पूर्व निर्धारित विधानसभा घेराव कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार छात्रों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है और संवाद के माध्यम से समाधान निकालना चाहती है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों की मौत के मामलों की निष्पक्ष जांच की मांग का समर्थन किया है। संयुक्त राष्ट्र के उप प्रवक्ता फरहान हक ने कहा कि अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को नुकसान पहुंचा है तो इसके लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर ट्रुक ने अशांति के दौरान हुई सभी मौतों की जल्द, निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की थी। खबरों के मुताबिक ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में हुए हाल के प्रदर्शनों में करीब 50 लोगों की मौत हुई है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने आपसी साझेदारी के विभिन्न पहलुओं में प्रगति की समीक्षा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। श्री नेतन्याहू ने कल श्री मोदी की सोशल मीडिया पोस्ट के जवाब में ये बात कही। बृहस्पतिवार को टेलीफोन पर बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने भारत इसराइल विशेष रणनीतिक साझेदारी के क्षेत्र में प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने पश्चिम एशिया में मौजूदा स्थिति पर भी चर्चा की। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज से

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति श्री विजयपुरम स्थित सेलुलर जेल राष्ट्र स्मारक का दौरा करेंगे। वे शहीद स्तंभ पर स्वतंत्रता ज्योति पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उपराष्ट्रपति कल श्री विजयपुरम के फ्लैग पॉइंट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर हर घर तिरंगा अभियान में भाग लेंगे। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज मुंबई में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम लिमिटेड के नए कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर अमित शाह महाराष्ट्र के राज्य शहरी सहकारी बैंक महासंघों और जिला संघों के प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। मौसम विभाग ने आज ओडिशा और राजस्थान में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, केरलम, माहे और कर्नाटक सहित पूर्वोत्तर भारत में भी तेज बारिश, गरज और बिजली गिरने की संभावना है। इधर दिल्ली में कल से ही लगातार बारिश हो रही है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संगीतिका। संगीतिका में आज आपने सुने प्रभाकर नारायण पाठक के गाए भजन। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है और अब आप सुनेंगे कुछ ही पलों में फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग।

0: आ गए आज हम दोनों फिर से एक बार अपने दोस्तों से बात करने।
1: बिल्कुल सही। और देखिए, हमने थोड़ा सा इंतजार भी करवाया क्योंकि देखिए इतनी खुशनुमा सुबह है
0: हाँ
1: तो
0: बिल्कुल। और कहते हैं ना, इंतजार का जो मजा होता है बहुत ही मीठा होता है।
1: जी, बिल्कुल सही। और ऐसे दिल्ली में तो सच में मौसम इतना सुहावना हो रहा है और मुझे लग रहा है कि देश के बाकी हिस्सों में भी यही हाल होगा।
0: हाँ, यानी कि आपको कहीं पहाड़ों में अब जाने की जरूरत नहीं, दिल्ली का मौसम भी बहुत अच्छा हो गया। दिल्ली वालों तो उठ जाइए, गीतों भरी गुड मॉर्निंग का समय हो चुका है। कुसुम और सुषमा आ चुके हैं आपसे बातें करने के लिए और दिल्ली का हाल जानने के लिए। और आप सभी जहाँ भी रहते हैं, जिस भी शहर में रहते हैं, बताइए कैसा है वहाँ का हाल। कुछ समस्याएं भी होंगी, कुछ उलझने भी होंगी, सभी पर बात करेंगे और साझा करेंगे। और साझा जब कर लेते हैं ना हम अपनी उलझने और मुश्किलें, तो वो आसान लगने लगती हैं।
1: बिल्कुल। और दोस्तों, हम भी चाहते हैं कि आप हमारे इस कार्यक्रम के साथ जुड़े, तो आप हमें मेल भेज सकते हैं ipradiodelhi@gmail.com
0: जी
1: पर।
0: हाँ, ipradiodelhi@gmail.com
1: जी
0: पर अपनी बातें लिख भेजिए हमें।
1: बिल्कुल सही। और इस बातों का सिलसिला और सुबह की चाय की चुस्कियों के साथ साथ जो हमारे अच्छे अच्छे खूबसूरत गीत होंगे
0: वो और उस मजे को
1: वो
0: बढ़ा देंगे
1: इलायची
0: भाई।
1: और अदरक का काम करेंगे
0: हाँ,
1: इसमें
0: मतलब चाय मसाला का।
1: बिल्कुल सही। तो एक बहुत ही खूबसूरत गीत लता मंगेशकर जी की आवाज में।

0: मस्त पवन के इस गीत के साथ में हमारे सारे श्रोता भी मस्त हो गए हैं अपना संदेश लिखने में।
1: बिल्कुल सही। और इतना खूबसूरत गीत, हम कोशिश करते हैं कि अपने गीतों भरी गुड मॉर्निंग कार्यक्रम में अच्छे अच्छे नगमे चुनकर लाएं, ताकि हमारे श्रोता जो सुबह सुने ना, उनका मूड एकदम से अच्छा सा बना रहे।
0: और भाई हम अपने बहुत ही अच्छे मूड से गीत चुनते हैं आपके लिए, ताकि आपका मूड भी अच्छा हो। ये जो गीत आपने सुना ये था फिल्म बावर्ची से, और आवाज़ थी लता मंगेशकर की। तो ये जो आवाज़ और साज का कमाल था ये तो हमने आपको सुना दिया, लेकिन आप भी अपना कमाल दिखाइए, बताइए आपके शहर में इन बारिश के दिनों में क्या क्या चल रहा है। कहीं तो बहुत सारी पानी भर गया होगा, मानते हैं आपने छुट्टी
1: बिल्कुल
0: कर ली होगी, वर्क फ्रॉम होम कर लिया होगा, और उम्मीद करते हैं कि उससे आपको थोड़ी सी समस्या भी आ रही होगी, क्यों सुषमा?
1: सही। और देखिए, हम दिल्ली की ही बात कर रहे थे, तो दिल्ली और दिल्ली के आसपास के जितने इलाके हैं, वहां पर भी बारिश के बाद बहुत सारी समस्याएं होती हैं। और मुझे लगता है कुसुम कि इसके लिए काफी हद तक हम भी जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि देखिए अक्सर लोगों की ये आदत है कि कुछ भी प्लास्टिक लेंगे वो यूं ही फेंक देंगे, जिससे नालियां बंद हो जाती हैं।
0: हाँ,
1: तो
0: मतलब
1: ये
0: ड्रेनेज सिस्टम में रुकावट आ जाती है कहीं ना कहीं, जो ड्रेनेज सिस्टम होता है वो रुक जाता है और पानी फिर भर जाता है, जिससे वाटर लॉगिंग होती है और हम लोगों को, आपको, हमें सभी को समस्या होती है। तो कृपया इस मुहिम में साथ दें, कहीं भी कचरा ना फेंके खुले में, और जहाँ डस्टबिन बने हों वहीं फेंके। अपने घर में जो कूड़ा इकट्ठा होता है, तो आजकल एमसीडी या जगह जगह ये सुविधा दी गई है कि घर के पास ही कूड़े की गाड़ी आती है, उसमें ही कचरा फेंके।
1: हाँ जी, और बिल्कुल कई बार हमने, आपने देखा होगा कि हम सरकारी तंत्र को कोसते रहते हैं कि वो काम नहीं करता, लेकिन कई बार आपने देखा होगा, आप भी सड़क पे चलते हैं, कि कूड़ा अगर फंस गया है सड़क में, जहाँ पानी निकासी है पानी की, तो लोग निकल जाते हैं, पानी भरता रहता है, लेकिन थोड़ा सा रुक कर उस नाली का कूड़ा हटाते नहीं है।
0: हाँ, और वहां पर रुक एक बार ये

0: कहते देखिए, देखो ना क्या पड़ा है।
1: बिल्कुल। तो थोड़ा सा आप चाहे आप शहर में रहते हो, गांव में, जहां पे आपको लगा कि बरसात के मौसम में वाटर लॉगिंग हो रही है, पानी जमा हो चुका है, तो उसकी निकासी का पूरा प्रबंध करें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो बहुत सारी घटनाएं हो जाती हैं, जो कि हम दिल्ली जैसे शहरों में, आज भी हम एक जगह का देख रहे थे, नाम लेना हम उचित नहीं समझेंगे, लेकिन ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई जहाँ सड़कें धंस गई वाटर लॉगिंग की वजह से, और ये सब होता है जब पानी जमा हो जाता है।
0: हाँ, और कहते हैं ना कि जल ही जीवन है, तो इस ये जो जल ईश्वर आपको दे रहा है, वाटर हार्वेस्टिंग कीजिए भाई, इकट्ठा कीजिए, और इसके जरिए क्या है कि जब पानी की कमी होगी तो यही हमारे पौधों में और कहीं ना कहीं हम सभी के काम आएगा।
1: जी, और इस पर हम एक खास प्रोग्राम कर चुके हैं।
0: हाँ बिल्कुल।
1: और फिलहाल एक बहुत ही खूबसूरत गीत, इस गीत के बाद और बातें होंगी, तो आप सुन रहे गीतों भरी गुड मॉर्निंग प्रोग्राम, और हम यही उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं और चाय की चुस्कियों के साथ इस प्रोग्राम का मजा ले रहे हैं।
0: और ये गीतों भरी गुड मॉर्निंग है कुसुम और सुषमा के साथ।

0: कहूंगी, बोलो सुषमा, बोलो, कुछ तो बोलो, क्योंकि भाई देखिए ना, जीवन जो है ना हमारा बहुत ही, क्या कहे, लंबा है या छोटा है, पर ये कहेंगे जितना हो उतना अच्छा होना चाहिए।
1: नहीं देखिए, पता है कई तो कहते हैं कि जिंदगी बड़ी छोटी है, कई कहते हैं
0: हाँ
1: बड़ी लंबी है, कटी नहीं रही है।
0: हाँ
1: मुझे लगता है जिंदगी बहुत खूबसूरत है और इसे
0: बहुत ही
1: काटना
0: ज्यादा,
1: नहीं बल्कि अच्छे से जीना चाहिए।
0: बिल्कुल जीना चाहिए। और मैं कहती हूँ जितनी भी है ना उतनी खूबसूरती से जिए, अपने जितने मन के काम है वो करें, क्योंकि देखिए चिंता तो हम कल की करते हैं लेकिन पता हमें पल का नहीं होता।
1: बिल्कुल सही है, ये तो आपने बिल्कुल सही बोला।
0: भाई हम तो बोलते ही सही हैं, और जैसे कि एक बार फिर से बता दें, ipradiodelhi@gmail.com पर आपके संदेशों के इंतजार में कुसुम और सुषमा हैं आपके साथ गीतों भरी गुड मॉर्निंग में, और इसमें चला रहे हैं आपके पसंदीदा गीत और बातें कर रहे हैं आपकी पसंदीदा, और वो हमारी भी पसंदीदा है,
1: हाँ, आज सिर्फ फर्क कितना सा है कि आज हम रविवार की जगह मिल गए हैं शनिवार
0: शनिवार
1: को।
0: को। जी बिल्कुल,
1: जी, तो हम यही कहेंगे कि जिंदगी के एक एक पल को जिए, उसे ढोए नहीं, क्योंकि
0: हाँ
1: अक्सर हम अपने दोस्तों से ये सुन लेते हैं जिंदगी को ढो रहे हैं, और सच
0: हाँ
1: में मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जो ऐसे बोलता है कि ढो रहे
0: बिल्कुल
1: हैं।
0: भाई, जिंदगी एक पहेली की तरह है, और कहते हैं कि इसको उलझाए ना सुलझाए, जितना हो अच्छे से जिए, और औरों को भी शामिल करें अपने इस जीवन में, ताकि वो भी अपने जो चीजें हैं आपको बता पाए और सुलझ पाए।
1: जी हाँ, क्योंकि कहते हैं ना कि अकेले रहेंगे तो बिल्कुल अकेले ही पड़ जाएंगे, तो समाज में रहते हैं, साथियों को भी
0: बिल्कुल
1: साथ में लेके चलना
0: बिल्कुल
1: बहुत जरूरी है।
0: जी,
1: आप अपने
0: बिल्कुल
1: आसपास लोगों के साथ मिलजुल कर रहें, खुशियां बांटें और खुशियां पाएं भी।
0: बिल्कुल। तो सुषमा, जो अगला गीत क्यों किया हुआ है हमने,
1: सोनू निगम की आवाज में।
0: हाँ तो सुनवा दे।
1: जी बिल्कुल, मैंने देखी दोस्त सुन रहे हैं, हमारा म्यूजिक शुरू हो
0: क्या
1: चुका
0: बात
1: है।
0: है,

0: ओ, कैसा लगा हमारा ये गीत भाई? कुछ तो बोलिए, कुछ कह दीजिए वो बात जो आपके मन में आपको उथल पुथल मचा रही है आपके मन में, या फिर अपने किसी दोस्त को कह दीजिए, या फिर अपने फैमिली मेंबर में किसी को बता दीजिए, लेकिन मन में कोई बात मत रखिए। क्योंकि मैं और सुषमा तो भाई सारी बातें कह देते हैं। जैसे कि अभी ये हमने थोड़ी देर पहले जैसे कि बात की जिंदगी के लिए कि इसको धोए नहीं इसको जिए, वैसे ही मन की जो बातें हैं उनको मन में रखकर बोझ ना डालें, कह दीजिए किसी से भी।
1: बिल्कुल सही। और दोस्ती का देखिए, ये जो दोस्ती है ना, ये इतना खूबसूरत रिश्ता है कि इस रिश्ते में कोई बंधन नहीं होता है
0: बिल्कुल
1: जी। और खुल के दोस्ती तो होते हैं जिनसे हम खुलकर बात कर पाते हैं, वरना तो हम हिचकते ही रहते हैं ना।
0: हाँ, और दोस्त ही वो जगह है बात कहने की। किसी भी दोस्त के कान में आप हल्के से कह दीजिए, यार बात करनी है, एक छोटी सी टेंशन में हूँ, तो बस उसके बाद वो दोस्त आपके लिए इतना पैनिक हो जाता है, आपके लिए इतना सोचता है कि ये जो रिश्ता है ना, इससे अच्छा रिश्ता मैं कहती हूँ कोई हो ही नहीं सकता। क्योंकि वहां पर आप अपनी बातें खुलकर कह पाते हो, बगैर सोचे समझे कह पाते हो। मतलब आपको सोचना समझना नहीं, क्या अच्छा कहा, क्या बुरा कहा, कम कहा, ज्यादा कहा, बस आप कह देते हो, और जो कहना शुरू करते हो तो कहते ही जाते हो, और सामने वाला आपकी बात सुनता जाता है। तो सुषमा,
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और अगला जो गीत है, उम्मीद करती हूँ कि दोस्तों को जरूर पसंद आएगा, लेकिन उससे पहले हमारे पास एक उनके लिए संदेश है, क्योंकि ये सावधानी जो है ये हमें जरूर बरतनी है। और रिजर्व बैंक जो है वो हमेशा कोशिश करता है कि ग्राहकों को जागरूक किया जाए, और जो आजकल बहुत सारे फ्रॉड
0: हाँ
1: केसेस हो रहे
0: जी
1: हैं या कोई
0: बिल्कुल।
1: भी चेंज बदलाव आता है, तो उसके प्रति लोग जागरूक रहें, सावधान रहें और
0: सतर्क
1: सुरक्षित रहें,
0: रहें।
1: सतर्क रहें। तो ये लीजिए, ये खूबसूरत, ये जो बहुत बेशकीमती जानकारी है, ये सभी साथियों के लिए।
0: बिल्कुल।
2: बदलो बदलो आदत बदलो।
3: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
2: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

ये जो घर आंगन है ये बहुत ही खूबसूरत गीत, और हम सब का घर आंगन यूं ही फलता रहे, फूलता रहे, और ऐसे ही हम सब सुरक्षित रहें और सच्चे दिल से रहें, स्वस्थ रहें। तो हमारे एक साथी हैं जिन्होंने सुबह सुबह हमें एक संदेश भेजा है, जिला खरगोन सनावत मध्य प्रदेश से, मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना अनुज वर्मा, और साथ ही इन्होंने अपने साथी शेख मूसा भाईजान, राजकुमार बोडाना और सुदामा नगर खंडवा से इन्होंने लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, ऋतु और मुकेश को भी अपने संदेश में शामिल किया है। इन सब की तरफ से ये भेजा है हमें संदेश आर्यन वर्मा ने।

0: बिल्कुल सही। और सुबह की जब शुरुआत करते हैं ना, तो अपने घर आंगन को ही हम साफ सुथरा करके निकलते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारा घर हमेशा सुरक्षित रहे और शांतिपूर्ण बना रहे। बहुत बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। हाँ जी,
1: तो ये घर आंगन तो वो चीज है जो कोई नहीं छोड़ सकता। हर समय आप जब ऑफिस में थक गए, कहीं और थक गए हैं या काम से थक गए, तो एक ही चीज याद
0: जी। और अभी तो फिलहाल हमारा घर आंगन जो है, जो ठिकाना है, वो है आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल। और उसकी मेल आईडी जो है ठिकाना है, जिस पर अपने संदेश भेज सकते हैं आप, ipradiodelhi@gmail.com।
1: ये है हमारा वो ब्रॉडकास्टिंग हाउस जहाँ से हम आपसे कनेक्ट होते
0: जी। और आप हमारे घर में मेहमान भी हैं, सदस्य भी हैं, और यूं ही आप बने रहें और अगले जो प्रोग्राम आएगा हमारा अगला 10:10 पर, उस कार्यक्रम के साथ जरूर जुड़ें। तो तब तक के लिए मुझे और कुसुम जी को दीजिए नमस्कार।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग, और अब सुबह के 8 बजने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आईआईटी दिल्ली के दीक्षांत समारोह में मेधावी छात्रों को संस्थान का सर्वोच्च सम्मान प्रदान करेंगे। भारतीय भुगतान परिषद ने स्पष्ट किया, उपभोक्ताओं और छोटे व्यापारियों के लिए यूपीआई लेन देन निःशुल्क रहेगा। भारत ने प्रस्तावित एफसीआरए विधेयक पर एक अमरीकी सांसद की आपत्तियों को खारिज किया, विधेयक को देश का आंतरिक मामला बताया। झारखंड सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों से पहले औपचारिक बातचीत की। रूस से तेल खरीदने वाले 5 देशों पर 100% शुल्क लगाने का विधेयक अमेरिका के सेनेट में पारित, और पूर्वी राजस्थान तथा ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। वे 3000 से अधिक विद्यार्थियों को संबोधित करेंगे, जिनमें स्नातक और स्नातकोत्तर छात्र छात्राओं के साथ 587 पीएचडी शोधार्थी शामिल हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समारोह के दौरान संस्थान के सबसे प्रतिष्ठित सम्मान जैसे प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल, डायरेक्टर्स गोल्ड मेडल, शंकर दयाल शर्मा गोल्ड मेडल और परफेक्ट 10 गोल्ड मेडल मेधावी छात्रों को प्रदान करेंगे। इसके अलावा श्री मोदी परम प्रज्ञा का भी उद्घाटन करेंगे, जो आईआईटी दिल्ली के सोनीपत कैंपस में स्थापित एआई संचालित हाई परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटिंग सुविधा है। यह आधुनिक सुविधा एआई, डेटा साइंस, एडवांस कंप्यूटिंग और अंतर विषयक शोध के क्षेत्रों में संस्थान की क्षमताओं को मजबूत करेगी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि आईआईटी दिल्ली ने हमेशा अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। श्री मोदी ने कहा कि वह इस अग्रणी संस्थान के छात्रों और शिक्षकों के बीच जानने के लिए उत्सुक है। श्री वांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
4: कल नई दिल्ली में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में आईआईटी दिल्ली के निदेशक रंजन बैनर्जी ने बताया कि प्रधानमंत्री संस्थान का सर्वोच्च सम्मान प्रदान करेंगे। श्री रंजन बैनर्जी ने नई सुपर कंप्यूटर परम प्रज्ञा के बारे में भी जानकारी दी।
6: इस कॉन्वोकेशन में 3000 से अधिक ग्रेजुएट्स डिग्रीज ले लेंगे। कॉन्वोकेशन में हमारी एक नई सुपर कंप्यूटर परम प्रज्ञा एआई बेस्ड सुपर कंप्यूटर 250 पेटाफ्लॉप्स, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स इन एन एकेडमिक एनवायरनमेंट लॉन्च बाय आवर प्राइम मिनिस्टर।
4: भारतीय भुगतान परिषद ने कहा है कि यूपीआई के माध्यम से किया जाने वाला डिजिटल भुगतान उपभोक्ताओं के लिए निःशुल्क बना रहेगा। व्यापारियों से डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। परिषद ने स्पष्ट किया है कि व्यापारियों और भुगतान सेवा प्रदाताओं के बीच होने वाले व्यावसायिक शुल्क का भुगतान उपभोक्ताओं को नहीं करना होगा। एक रिपोर्ट।
7: यूपीआई के जरिए लेनदेन पर चार्ज लगने की खबरों ने आम उपभोक्ताओं और छोटे दुकानदारों के बीच चिंता पैदा कर दी थी। इस भ्रम को पूरी तरह दूर करते हुए पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया पीसीआई ने साफ किया है कि ग्राहकों के लिए यूपीआई सेवाएं पूरी तरह मुफ्त बनी रहेंगी। डिजिटल इंडिया की रफ्तार को बनाए रखने और वित्तीय समावेशन को सुरक्षित रखने के लिहाज से ये स्पष्टीकरण एक बड़ा राहत देने वाला कदम है। पीसीआई ने कहा है कि यूपीआई देश की महत्वपूर्ण डिजिटल व्यवस्था बन चुका है, जिसका इस्तेमाल करोड़ों लोग रोजाना करते हैं। बढ़ते लेनदेन को देखते हुए सुरक्षा तकनीक

0: तकनीक और ढांचे को मजबूत बनाए रखना जरूरी है ताकि भविष्य में भी यूपीआई उपभोक्ताओं और कारोबारियों के लिए सुचारू रूप से काम करता रहे। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: भारत ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक FCRA पर एक अमरीकी सांसद की आपत्तियों को खारिज कर दिया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ये देश का आंतरिक विधायी मामला है और इस पर निर्णय संसद करती है। उन्होंने कहा कि अमरीका सहित कई देशों में भी विदेशी धन के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए कानून लागू हैं।
2: We have seen the comments.
3: हमने टिप्पणियां देखी हैं। ये देश का आंतरिक विधायी मामला है और इस पर निर्णय संसद करती है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि अमेरिका सहित कई देशों में विदेशी धन के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए कानून लागू हैं।
2: रेगुलेट द फ्लो ऑफ फॉरेन फंड्स।
1: भारतीय जहाजों और नाविकों की सुरक्षा के संबंध में श्री जायसवाल ने कहा कि भारत इस मुद्दे को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। उन्होंने बताया कि खाड़ी क्षेत्र में स्थित भारतीय मिशन संबंधित देशों के नौवहन मंत्रालयों और समुद्री प्राधिकरणों के साथ लगातार संपर्क में है। उन्होंने कहा कि सहायता की आवश्यकता वाले लोगों के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन संचालित की जा रही हैं।
3: पश्चिम एशिया और खाड़ी क्षेत्र में हम स्थानीय नौवहन मंत्रालय और अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों पर सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के आवाजाही और व्यापार के निर्बाध संचालन की मांग दोहराते रहे हैं। हम सभी पक्षों से अपील करते हैं कि वे लोगों के बुनियादी ढांचे और नागरिकों, खासकर वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों को निशाना बनाने से बचें।
1: पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के बीच हुए रक्षा समझौते पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत इस घटनाक्रम पर भी नजर बनाए हुए है। झारखंड में JPSC और JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी छात्र आंदोलन के बीच सरकार और छात्र प्रतिनिधिमंडल के बीच कल पहली औपचारिक वार्ता हुई। करीब डेढ़ घंटे तक चली बैठक में छात्रों ने भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच और भर्ती प्रक्रिया में व्यापक सुधार की मांग दोहराई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: सरकार की ओर से चार मंत्रियों और विकास आयुक्त ने वार्ता में भाग लिया। मंत्रियों ने छात्रों की मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिलाते हुए कहा कि वार्ता में उठाए गए सभी मुद्दों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया जाएगा। छात्र प्रतिनिधियों ने वार्ता को सकारात्मक बताया, लेकिन स्पष्ट किया कि लिखित निर्णय और मांगों पर ठोस कार्रवाई होने तक धरना और भूख हड़ताल जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि यदि 10 अगस्त तक संतोषजनक निर्णय नहीं लिया गया तो पूर्व निर्धारित विधानसभा घेराव कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार छात्रों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है और संवाद के माध्यम से समाधान निकालना चाहती है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिकी सेनेट ने रूस से तेल खरीदने वाले चीन और अन्य देशों को दंडित करने संबंधी विधेयक को पारित कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि चीन और अन्य देश रूस से पेट्रोलियम उत्पाद खरीद रहे हैं, जिससे रूस को यूक्रेन युद्ध में मदद मिल रही है। लिंडसे ग्राहम के नाम पर रखे गए इस विधेयक को समर्थन में 86 और विरोध में 11 वोट पड़े। ये विधेयक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रूस से तेल और गैस खरीदने वाले 5 बड़े देशों पर 100% शुल्क लगाने की अनुमति देगा। विधेयक में ईरान पर प्रतिबंध संबंधी 1996 के अधिनियम को बढ़ाकर 2031 तक करने का भी प्रावधान किया गया है। 1996 के इस अधिनियम में ईरान के ऊर्जा क्षेत्र में निवेश करने वाली कंपनियों पर जुर्माना लगाने का प्रावधान है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों की मौत के मामलों की निष्पक्ष जांच की मांग का समर्थन किया है। संयुक्त राष्ट्र के उप प्रवक्ता फरहान हक ने कहा कि अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को नुकसान पहुंचा है तो इसके लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। एक रिपोर्ट।
5: संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर टुर्क ने अशांति के दौरान हुई सभी मौतों की जल्द, निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की थी। इनमें प्रदर्शनकारी और सुरक्षा बल दोनों शामिल हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में चुनाव में कथित गड़बड़ियां और स्थानीय विधानसभा चुनाव में बाहरी लोगों के लिए सीटें आरक्षित किए जाने के विरोध में प्रदर्शन जारी है। खबरों के मुताबिक ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में हुए हाल के प्रदर्शन में करीब 50 लोगों की मौत हुई है। समाचार कक्ष से अमीशा।
1: ये समाचार हमारे न्यूज़ ऑन

0: AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि बंगाल की खाड़ी में आज हवा के निम्न दबाव का क्षेत्र बनने के कारण ओडिशा में तेज बारिश की आशंका है। इसके चलते राज्य में व्यापक वर्षा होगी।
1: मौसम विज्ञान विभाग ने 6 जिलों के लिए ऑरेंज चेतावनी और 24 जिलों के लिए येलो चेतावनी जारी की है, जिसमें कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है। ऑरेंज चेतावनी वाले जिले सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़, संबलपुर, केंदुझर और मयूरभंज है। भारी बारिश के अनुमान के देखते हुए एहतियात के तौर पर मयूरभंज में आज सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। इस बीच बालेश्वर के बस्ता में जड़का नदी का जलस्तर बढ़ने से जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रखे हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: केरलम से हमारे संवाददाता ने बताया है कि सभी जिलों में आज भी बारिश की चेतावनी दी गई है। राज्य के 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है।
2: केरलम में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। राज्य के सभी जिलों में बीते सप्ताह से ही बारिश संबंधी अलर्ट जारी किए गए हैं। कासरगोड, कुन्नूर, वायनाड, कोझिकोड, कोट्टायम, अलापुजा और पथनामथिट्टा जिले आज ऑरेंज अलर्ट पर, जबकि बाकी जिले येलो अलर्ट पर हैं। केरलम और लक्षद्वीप में आज तेज हवाएं चलने का भी अनुमान है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथी एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की स्कैन एंड रजिस्टर सेवा ने 25 करोड़ ओपीडी पंजीकरण की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि इस उपलब्धि से पता चलता है कि मिशन के तहत नागरिकों पर केंद्रित डिजिटल सेवाओं का तेजी से विस्तार हो रहा है। एक रिपोर्ट।
3: अक्टूबर 2022 में शुरू होने के बाद से स्कैन एंड रजिस्टर सेवा ने मरीजों के लिए आसान क्यूआर कोड स्कैन के जरिए अस्पताल में डिजिटल रूप से पंजीकरण कराने की सुविधा देकर ओपीडी रजिस्ट्रेशन के अनुभव का कायाकल्प कर दिया है। यह सेवा अभी देश भर के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तथा 756 जिलों में 30,800 स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार स्कैन एंड रजिस्टर ट्रांजेक्शन के साथ देश में सबसे आगे है। इसके बाद उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर है। सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में एम्स नई दिल्ली में सबसे ज्यादा मरीजों ने इस सेवा से पंजीकरण कराए हैं। इस उपलब्धि के बारे में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर सुनील कुमार बरनवाल ने कहा कि स्कैन एंड रजिस्टर के जरिए 25 करोड़ लोगों के ओपीडी में पंजीकरण की उपलब्धि भारत के डिजिटल स्वास्थ्य पारितंत्र में नागरिकों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के बढ़ते भरोसे को दर्शाती है। आनंद के रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चिराग झा।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: धन्यवाद कनक। आज अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी हेडलाइन बनाया है। नीट पेपर लीक को लेकर सीबीआई द्वारा दाखिल आरोप पत्र के हवाले से दैनिक जागरण ने लिखा है, एनटीए के ही 3 विषय विशेषज्ञों ने किया नीट का पेपर लीक। अमर उजाला ने लिखा है, सीबीआई का दावा, पेपर बनाते समय ही सवाल याद करते, टेलीग्राम व्हाट्सएप से बिचौलियों तक पहुंचाते, एनटीए के 3 विशेषज्ञ मास्टरमाइंड, कई महीने पहले रची साजिश। लोकसत्य लिखता है, सीबीआई ने दाखिल की चार्जशीट, एनटीए के एक्सपर्ट निकले विभीषण। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय में लिखा है, जिस तेजी से सीबीआई ने इस जांच को अंजाम दिया है उसी तेजी से आगे भी कार्रवाई करने की जरूरत है। देश में जो भी पेपर लीक के मामले हाल के महीनों में सामने आए हैं उनकी भी सीबीआई जांच करनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। दिल्ली एनसीआर में कल हुई घनघोर बारिश को जनसत्ता ने आफत की बरसात कहा है। अखबार लिखता है, राजधानी में अगस्त के पहले सप्ताह में 2011 के बाद सबसे अधिक बारिश दर्ज, सड़कों पर भारी जलभराव। राजस्थान पत्रिका ने बदल रहा मानसून का पैटर्न शीर्षक से लिखा है, देश भर में अभी तक 11% कम बरसे बादल, 14 राज्यों में कम बारिश, 10 दिन में नहीं मिली राहत तो सूखे जैसे हालात। विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियमन संशोधन विधेयक पर पंजाब केसरी के शब्द हैं, संसद में अब आर पार की तैयारी, एफसीआरए पर शाह संभालेंगे मोर्चा, कांग्रेस ने जारी की व्हिप। मोदी और सुखबीर की मुलाकात से पंजाब में चुनावी हलचल तेज, जनसत्ता के पहले पन्ने पर है। दैनिक ट्रिब्यून लिखता है, पंजाब में शिरोमणि अकाली दल भाजपा गठबंधन की अटकलें तेज। स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान इस बार लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रगान के साथ गूंजेगा वंदे मातरम, राजस्थान पत्रिका में है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आईआईटी दिल्ली के दीक्षांत समारोह में मेधावी छात्रों को संस्थान का सर्वोच्च सम्मान प्रदान करेंगे। यूपीआई लेन देन उपभोक्ताओं और छोटे व्यापारियों के लिए निःशुल्क बना रहेगा। भारतीय

0: आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज असनाद की सालाना तकसीम की तकरीब में होनहार तलबा को आईआईटी दिल्ली के आला तरीन एजाजात से नवाजेंगे। डिजिटल पेमेंट्स के आला तरीन इदारे पीसीआई ने वजाहत की है कि यूपीआई लेन देन सारिफीन और छोटे कारोबारियों के लिए मुफ्त रहेगा। भारत ने एक अमरीकी कानून साज की तरफ से मुजवजा FCRA बिल पर जाहिर किए गए एतराजात को मुस्तरद कर दिया है। भारत ने कहा है कि कानून साजी मुल्क का अंदरूनी मामला है। झारखंड सरकार ने भर्ती इम्तहानात में मुबैना बदउनवानियों पर मुजाहरे करने वाले तलबा के साथ पहली मरतबा बाकायदा बातचीत की। अमरीकी सेनेट ने रूसी बंदिशों से मुतालिक उस बिल को मंजूरी दे दी है जिसमें 5 मुल्कों पर 100% महसूल आयात करने के लिए कहा गया है। और मशरकी राजस्थान और ओडिशा में आज शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की गई है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म जनाब नरेंद्र मोदी आज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT दिल्ली के 57वें तकसीम असनाद तकरीब से खिताब करेंगे। वो 587 PhD स्कॉलर समेत 3000 से ज्यादा ग्रेजुएशन करने वाले तलबा से भी खिताब करेंगे जिन्हें तकरीब के दौरान डिग्रियों से सरफराज किया जाएगा। पेश एक रिपोर्ट।
1: वजीर आजम के नाम नरेंद्र मोदी तकरीब के दौरान IIT दिल्ली के आला तरीन एजाजात जिनमें सदर का गोल्ड मेडल, डायरेक्टर का गोल्ड मेडल, शंकर दयाल शर्मा गोल्ड मेडल और इम्तियाजी नंबरों से कामयाब होने वाले तलबा को परफेक्ट 10 गोल्ड मेडल्स अता करेंगे। इसके अलावा जनाब मोदी IIT दिल्ली के सोनीपत कैंपस में कायम AI से आरास्ता आला कारकर्दगी वाली सुपर कंप्यूटिंग सहूलत प्राम प्रज्ञा का भी इफ्तिताह करेंगे। इस जदीद तरीन सहूलत से इदारे की AI डेटा साइंस एडवांस कंप्यूटिंग और मुख्तलिफ मजामीन पर मबनी तहकीकी सलाहियत में इजाफा होगा। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वज़ीर आज़म ने कहा कि IIT दिल्ली में हमेशा ही तहकीक और इख्तिरा के शोबों में आला ताउन दिया है। न्यू डेस्क से शिवांग मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर।
0: भारत की रकूम के लेन देन से मुतालिक कौंसिल PCI ने ऐलान किया है कि UPI सारिफीन के लिए मुफ्त ही रहेगा। कौंसिल ने एक बयान में तस्दीक की है कि हर भारतीय लेन देन पर बगैर कोई चार्जेस दिए डिजिटल वसीले से रकूम का फौरी लेन देन कर सकता है। कौंसिल ने यह भी कहा है कि अगर कोई कारोबारी डिजिटल वसीले से कोई रकम हासिल करता है तो उससे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। PCI ने यह भी कहा कि बैंक, फिनटेक कंपनियां, NPCI और RBI टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, घोटालों की रोकथाम और इख्तिरा के मैदानों में UPI की मोतबरियत को बरकरार रखने के लिए सरमाया लगा रहे हैं। PCI ने वजाहत की है कि कारोबारी खिदमात पर आयद ऐसे कोई भी चार्जेस जो कारोबारियों और रकूम फराहम करने वाली कंपनियों के दरमियान महज कारोबारी इल्तिजामात हों, उनका मतलब ये नहीं है कि ये चार्जेस सारिफीन डिजिटल पेमेंट्स को इस्तेमाल करने के लिए अदा कर रहे हैं। उसने खास तौर पर कहा है कि UPI एक ऐसा अहम कौमी डिजिटल बुनियादी ढांचा बन गया है जिसे बहुत से शहरी रोजमर्रा इस्तेमाल करते हैं। भारत ने एक अमरीकी कानून साज की तरफ से बैरूनी अतियात के जाब्तों में तरमीम से मुतालिक भारत के मुजवजा बिल पर एतराज जाहिर किया है। भारत ने कहा है कि कानून साजी से मुतालिक उसके मामलात उसके अंदरूनी मामलात हैं जिनके बारे में पार्लियामेंट फैसले करती है। वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने यह बात नई दिल्ली में नामा निगारों को जानकारी देते हुए एक सवाल के जवाब में कही। भारतीय जहाजों और जहाजियों की हिफाजत और सलामती के बारे में जनाब जायसवाल ने कहा कि भारत इस मामले को आला तरीन तरजीह देता है। उन्होंने कहा कि पूरे खित्ते खलीज खित्ते में भारतीय मिशन जहाजरानी की वजारत और समुद्र से मुतालिक हुकाम के लगातार राबते में है। उन्होंने कहा कि भारत बैन अलाक़वामी आबी गुजरगाहों के रास्ते महफूज और बिला रोक टोक जहाजरानी व तिजारत के लिए कहता रहेगा। पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरब के माबैन दिफा के समझौते के बारे में तर्जुमान ने कहा कि इस सिलसिले में पेशरफ्त पर करीबी नज़र रखी जा रही है। पाकिस्तान और सोमालिया के दरमियान हालिया दिफाई समझौते के बारे में जनाब जायसवाल ने कहा कि भारत इस सिलसिले में पेशरफ्त पर करीबी नज़र रखे हुए है। भारत और भूटान ने बिजली के शोबे में दो तरफा तआवुन को मजीद मुस्तहकम करने के अपने अहद को दोहराया है। बिजली, हाउसिंग और शहरी उमूर के मरकजी वजीर मनोहर लाल ने कल नई दिल्ली में भूटान के तवानाई और कुदरती वसाइल के वजीर लियोन पोगेम शेरिंग के साथ एक दो तरफा मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी तआवुन का जायजा लिया और पनबिजली

0: कल से मुतालिक तंबीह पिछले 7 दिनों से जारी है। ऑरेंज अलर्ट जारी किया जाना इस बात का इशारा है कि इक्का दुक्का मकामात पर बहुत शदीद बारिश का इम्कान है। कासरगोड, कन्नूर, वायनाड, कोझीकोड, कोट्टायम, अलापोजा और पत्तनम तिट्टा जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि बकिया अजला में येलो अलर्ट नाफिज है। केरलम और लक्षद्वीप में 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का भी इम्कान है। रियासत के सभी अजला में आधी रात से औसत दर्जे की बारिश जारी है। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर।
1: उड़ीसा में खलीज बंगाल में कम दबाव का हल्का बनने का इम्कान है, जिसके बायस रियासत भर में वसी पैमाने पर बारिश हो सकती है। कई दरियाओं में पानी की सतह में इजाफा होने के बायस बारिश से मुतासर इलाकों में सैलाब के अंदेशे में इजाफा हो गया है, जिसके पेश नज़र मयूरभंज जिले में एहतियात के तौर पर स्कूलों को बंद कर दिया गया है। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से।
2: आज खलीज बंगाल पर कम दबाव का हल्का बनने के इम्कान के साथ ही उड़ीसा में शदीद बारिश जारी रहने का अंदेशा है। महकमा मौसमियात ने 6 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 24 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान बालासोर के बस्ता इलाके में जलाका दरिया में पानी की सतह में इजाफा हो रहा है, जिसके सबब ज़िले में सैलाब का ख़तरा बढ़ गया है। हुक्काम सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं, जबकि नशेबी इलाकों में रहने वाले लोगों को अलर्ट रहने की सलाह दी गई है। भुवनेश्वर से प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
1: बैडमिंटन में कोरिया मास्टर्स सुपर 300 टूर्नामेंट के खवातीन के सिंगल्स के सेमीफाइनल्स में आज सुबह आसन में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी अश्मिता चालिहा का मुकाबला अपनी हमवतन खिलाड़ी रक्षिता रामराज से होगा। अश्मिता चालिहा और रक्षिता रामराज अपने मुतालिका क्वार्टर फाइनल मैच जीतकर सेमीफाइनल्स में पहुंची हैं। अश्मिता ने जापान की आला दर्जे के आलमी नंबर 22 खिलाड़ी हिना अकेची को 20-22, 21-15, 21-19 से हराया, जबकि रक्षिता ने तीसरे सीट की अपनी हमवतन खिलाड़ी तन्वी शर्मा को 18-21, 21-19, 21-18 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई है। ताशकंद में जारी एशियन यूथ एंड जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत की तितली माझी ने मुल्क के लिए शानदार कारकर्दगी का आगाज करते हुए खवातीन के 45 किलोग्राम के जुमरे में चांदी का तमगा हासिल किया है। उन्होंने स्नैच में 65 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 80 किलोग्राम के साथ कुल 145 किलोग्राम वजन उठाकर यह तमगा जीता है। इसी जुमरे में परश्मिता गोगोई ने चौथा मकाम हासिल किया है। और अब अखबारात के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर।
0: शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के अखबारात ने अलग अलग खबरों को शाशुखी बनाया है। वज़ीर आज़म आज IIT दिल्ली की 97वीं तकसीम इस्नात तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करेंगे। इस खबर को रोजनामा प्रताप ने पहले सफ़े पर जगह दी है। जनाब मोदी डिग्रियां अता करने के साथ होनहार तलबा को इदारे के सबसे बावकार इजाज़ात से नवाजेंगे और खिताब भी करेंगे। रोजनामा इनकलाब ने नीट UG 2026 पेपर लीक मामले में राउस एवेन्यू कोर्ट में CBI की तरफ से 94 सफहात पर मुश्तमिल चार्जशीट दाखिल की जाने की खबर को खसूसी तौर पर शाया किया है, जिसमें CBI ने दावा किया है कि पेपर लीक की साजिश कई माह कबल रखी गई थी और माहरीन ने पेपर तैयार करने के दौरान ही सवालात याद कर लिए थे। सऊदी अरब, तुर्किया और पाकिस्तान ने मक्का मुकरमा में एक तारीखी दिफाई माहदे पर दस्तखत किए हैं। इस खबर को रोजनामा इनकलाब ने पहली खबर के तौर पर शाया किया है, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि किसी एक पर हमला तीनों मुल्कों पर हमला तस्वर किया जाएगा। रोजनामा इनकलाब ने अमरीकी सर डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से खबर दी है कि ईरान से बातचीत जारी है और जंग जल्द खत्म हो जाएगी।
1: आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियाँ एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज असनाद की सालाना तकसीम की तकरीब में होनहार तलबा को IIT दिल्ली के आला तरीन एजाजात से नवाजेंगे। डिजिटल पेमेंट्स के आला तरीन इदारे PCI ने वजाहत की है कि UPI लेन देन सारिफीन और छोटे कारोबारियों के लिए मुफ्त रहेगा। भारत ने एक अमरीकी कानून साज की तरफ से मुजवजा FCRA बिल पर जाहिर किए गए एतराजात को मुस्तरद कर दिया है। भारत ने कहा है कि कानून साजी मुल्क का अंदरूनी मामला है। झारखंड सरकार ने भर्ती इम्तिहानात में मुबैना बदउनवानियों पर मुजाहरे करने वाले तलबा के साथ पहली मरतबा बाकायदा बातचीत की। अमरीकी सेनेट ने रूसी बंदिशों से मुतालिक उस बिल को मंजूरी दे दी है, जिसमें 5 मुल्कों पर 100% महसूल आयद करने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।
3: मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात

0: hertz, DRM also 10 kHz are.
1: आकाशवाणी दिल्ली से प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत का एक और अंक ढेर सारी जानकारी के साथ, खासतौर पर हमारे प्यारे बच्चों पर केंद्रित है आज की स्वास्थ्य पत्रिका। स्वीकार करिए शालिनी मित्तल का नमस्कार। श्रोताओं, हार्मोन्स एक तरह के केमिकल्स होते हैं जो ये तय करते हैं कि हमारा शरीर काम कैसे करेगा। बच्चों के शरीर में हार्मोन्स का काम होता है ये तय करना कि उनकी ग्रोथ कैसी होगी। अगर हार्मोन असंतुलित होते हैं तो बच्चों को कई बीमारियां होने का खतरा भी बढ़ जाता है। बच्चों में असंतुलित हार्मोन से होने वाली समस्याओं के बारे में विस्तृत रूप से हमें बताने के लिए हमारे आज के विशेषज्ञ हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के डिपार्टमेंट ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी के प्रोफेसर डॉक्टर राजेश खड़गावत। आपसे बात कर रही हैं शालिनी मित्तल। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी के स्टूडियो में। तो जैसा मैंने कहा, बच्चों में हार्मोन संबंधी समस्याएं, इस विषय पर आज हम जानकारी चाहेंगे हमारे सुनने वालों के लिए कि आम तौर पर जब बच्चे छोटे होते हैं या यूं माने कि नवजात शिशु होता है तो क्या क्या हार्मोन संबंधी समस्याएं देखने में आती हैं आमतौर पर।
2: हाँ जी, जब बच्चा बिल्कुल नवजात होता है यानी कि पहले महीने में या कुछ महीनों में, तो सबसे कॉमन जो हार्मोन की प्रॉब्लम उस वक्त हो सकती है वो है कि थायराइड की प्रॉब्लम, जो कि जन्मजात मानी जाती है कि बच्चे के शुरू से थायराइड की ग्लैंड विकास नहीं हुआ है। सो इसका सबसे अच्छा समाधान है, हालांकि वेस्टर्न कंट्रीज में सब में जन्म पे ही थायराइड के हार्मोन की जांच हो जाती है कॉर्ड ब्लड से लेके, हमारे यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये प्रोग्राम शुरू कर रही है और बहुत अच्छा प्रोग्राम है, इसमें सब बच्चों में जन्म पे थायराइड की जांच होगी, क्योंकि ये पाया गया है कि जन्म पे अगर थायराइड की प्रॉब्लम होती है किसी भी बच्चे को तो उसका दिमाग बहुत जल्दी अफेक्ट हो जाता है, वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाता है यानी जिसे मेंटली रिटार्डेड कहते हैं वो हो जाता है। तो इसके लिए हम थायराइड की जांच कर सकते हैं और बिल्कुल आसान है, ब्लड सैंपल से लेके उसका ट्रीट करके हम बचा सकते हैं कि बच्चे का दिमाग एकदम नॉर्मल रहे। उसके अलावा जो बाकी जन्म पे हार्मोन की प्रॉब्लम है वो बहुत कॉमन नहीं है, जैसे कुछ हार्मोन की प्रॉब्लम होती है कि ये उसमें ये पता लगाना मुश्किल होता है कि लड़का है या लड़की है, इस तरह की हार्मोन की प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो बहुत रेयर है, कॉमन नहीं है।
1: जी जी, तो जैसा आपने डॉक्टर साहब कहा कि थायराइड पाया जाता है नवजात शिशु में भी, तो कहीं ना कहीं हम ये माने कि थायराइड जन्मजात अगर बच्चे में है तो ये जेनेटिक्स से रिलेटेड है।
2: हाँ जी, थायराइड जेनेटिक्स से रिलेटेड है, ये ऑटो इम्यून डिजीज है, क्योंकि इसमें थायराइड के अगेंस्ट ग्लैंड के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बन जाती हैं जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड में नुकसान होता है, और थायराइड किसी भी बच्चे को या किसी भी इंडिविजुअल को कभी भी हो सकता है, जन्म पे भी हो सकता है, उसको 6 महीने पे भी हो सकता है, साल पे भी हो सकता है, आगे चल के 10-11 साल या उसको 50 साल या 80 साल किसी भी उम्र में थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है। और बच्चों में अगर होती है कि नवजात में जैसे हमने बात की कि इस तरह के लक्षण होते हैं, और अगर बच्चा 2-3 साल का है तो उसमें होता है कि उसकी लंबाई नहीं बढ़ती है, वजन बढ़ जाता है, कब्जी रहती है, खाना पूरा नहीं खाता है, अधिकतर टाइम सोया रहता है, एक्टिव नहीं रहता है, इस तरह के लक्षण होते हैं, और जैसे बच्चा स्कूल में जाना शुरू हो जाता है तो उसमें होता है कि अगर थायराइड हार्मोन कम बन रहा है तो उसकी स्कूल में परफॉर्मेंस कम हो जाती है, वो एग्जाम जल्दी से पास नहीं कर पाता, उसकी मेमोरी अफेक्ट हो जाती है क्योंकि इसका असर दिमाग के विकास पे पड़ता है, उसकी लंबाई नहीं बढ़ती है, वजन ज्यादा होता है, बच्चा अधिकतर टाइम लेटा रहता है, खेलता नहीं है, उसकी आवाज भारी हो जाती है, स्किन ड्राई रहती है, कब्जी रहती है, इस तरह के लक्षण अगर होते हैं तो हमें थायराइड के बारे में एक बार जांच कर लेना चाहिए।
1: जी जी, तो एक बहुत अच्छी बात आपने डॉक्टर साहब बताई कि जन्म के बाद थायराइड टेस्ट होना चाहिए, अगर हम नहीं करा रहे हैं तो ये एक चांस होता है कि बच्चे को थायराइड हो और आपको पता ही ना चले, और जैसा हम कहते हैं कि जितना जल्दी हमें समस्या का पता चलता है उतना ही जल्दी उसका समाधान हम कर सकते हैं। तो आपने सिम्टम्स बताए, तो अगर ये सिम्टम्स के साथ माता पिता आपके पास आते हैं बच्चे के साथ तो क्या आप कंफर्मेटरी टेस्ट करते हैं और फिर कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है ये भी बताइए।
2: हाँ जी, ये बिल्कुल जैसा मैंने कहा बिल्कुल आसान है, हम एक ब्लड टेस्ट करते हैं, एक ब्लड सैंपल लेते हैं, 2 ml ब्लड लिया और उसमें थायराइड का टेस्ट कर लेते हैं जिससे हमें क्लियरली पता चल जाता है बिना किसी कंफ्यूजन के कि थायराइड की प्रॉब्लम है या नहीं है, और ये ब्लड टेस्ट खाली पेट भी नहीं लेना है, कभी भी ले सकते हैं, दिन में रात में किसी भी वक्त लेके कर सकते हैं, और अगर उसमें थायराइड की

0: मात्रा हमें पता चलता है कि हाइपोथायरॉयडिज्म है और हार्मोन कम है, तो हम तुरंत ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। ट्रीटमेंट बहुत आसान है, एक टैबलेट आती है जो कि बहुत ही सस्ती टैबलेट है, जिसका रोज का खर्चा 50 पैसे या 75 पैसे ऐसा है। वो टैबलेट खाली पेट सवेरे उठते ही बच्चे को देनी होती है और उसके बाद बच्चा एकदम नॉर्मल लाइफ लीड कर सकता है। और एक बार हमने टैबलेट शुरू कर दिए तो शुरू के 3-4 महीनों में हमें बार बार चेक करना होता है, और एक बार अगर थायराइड हार्मोन नॉर्मल आ जाता है तो फिर हम 3 महीने में एक बार चेक कर सकते हैं, जब तक बच्चा ग्रो कर रहा है, और उसके बाद साल में एक बार चेक कर सकते हैं। तो थायराइड का इलाज बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है और बिल्कुल भी महंगा नहीं है, आसानी से दिया जा सकता है। लेकिन एक बार हमने शुरू कर दिया तो हमें ये जानना होगा कि ये लाइफ लॉन्ग इलाज है। बच्चा जब तक रहेगा, इंडिविजुअल रहेगा, जब तक सांस चलेगी तब तक हमें इलाज बराबर देना पड़ेगा, हम बीच में बंद नहीं कर
1: जो
0: सकते
1: ठीक नहीं हो
0: हैं।
1: सकता है ये
0: हाँ, ठीक
1: मैनेज किया
0: नहीं हो
1: जाएगा
0: सकता
1: इसको।
0: है, क्योर नहीं होता है, इसको हम मैनेज कर लेते हैं, और इससे जो हार्मोन नहीं बन रहा है हम बाहर से दे देते हैं, तो उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं रहती है और एकदम नॉर्मल लाइफ लीड करता है।
1: पर रेगुलर चेकअप्स कराने पड़ते हैं।
0: शुरू के टाइम में जब तक बच्चा ग्रो कर रहा है हमें बार बार चेक करवाना है, लेकिन एक बार बच्चे की जैसे ग्रोथ पूरी हो गई है, 15-20 साल का हो गया, तो साल में एक बार थायराइड हार्मोन की जांच करवाना जरूरी है, और उससे हमें पता चलता रहे कि दवाई की मात्रा जो दे रहे हैं वो सही दे रहे हैं या नहीं दे रहे
1: जी
0: हैं।
1: जी एक और बहुत जरूरी होता है डॉक्टर साहब, जब हम बच्चों की बात करते हैं ग्रोथ,
0: हाँ
1: तो
0: जी,
1: अगर किसी बच्चे की ग्रोथ सही नहीं है, चाहे मेंटल हो चाहे फिजिकल हो, तो थोड़ा सा अलार्मिंग हो जाता है पेरेंट्स के लिए। तो एक तो कारण आपने बताया है कि थायराइड भी इसका एक कारण हो सकता है, क्या और भी कोई ऐसा हार्मोन होता है जैसे एंडोक्राइन सिस्टम में, जैसा
0: हाँ
1: आप
0: जी,
1: लोग जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और
0: हाँ जी,
1: जिसके लिए
0: बिल्कुल,
1: सचेत होना चाहिए।
0: हाँ जी, बिल्कुल।
1: जी जी
0: दूसरा, जैसे बच्चे की ग्रोथ होती है, ग्रोथ का मतलब हम फिजिकल ग्रोथ से बात कर रहे हैं, कि जैसे जैसे एज बढ़ती है बच्चा लंबा होता है, उसकी लंबाई बढ़ती है, तो ये लंबाई के लिए जरूरी है कि थायराइड हार्मोन ठीक होना चाहिए। तो इसके लिए केवल थायराइड हार्मोन ही जिम्मेदार नहीं, दूसरा बड़ा जो हार्मोन है वो ग्रोथ हार्मोन है, जो कि हमारे दिमाग में पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, वहां से सिक्रेट होता है, और ये ग्रोथ हार्मोन है जो बच्चे की लंबाई बढ़ाता है। अगर ग्रोथ हार्मोन के सिक्रीशन में किसी भी तरह की कोई कमी रहती है, पूरा सिक्रीट नहीं हो पाता है, तो बच्चे की लंबाई बढ़नी बंद हो जाती है, बच्चा छोटा रह जाता है, जैसे हम कहते हैं कि बच्चा बोना हो गया है। तो इसको भी हम आसानी से डायग्नोस करके इसका इलाज शुरू कर सकते हैं और बच्चा एकदम से वापस ग्रो होना शुरू हो जाता है, और ऐसे लंबाई बढ़ती है बच्चे की जैसे लगता है कि खींच के लंबा कर दिया है। यहाँ यह भी जानना जरूरी है कि ग्रोथ हार्मोन की कमी के अलावा और भी कारण हो सकते हैं कि जिनसे बच्चे की ग्रोथ नहीं बढ़ रही है। अगर बच्चे को किसी भी तरह की कोई बीमारी है, जैसे बच्चे में खून की कमी है, या पेट में कीड़े हैं, या किसी भी तरह का इन्फेक्शन है, छाती का इन्फेक्शन है, पेशाब का इन्फेक्शन है, और या किसी भी ऑर्गन की, किसी भी लीवर, किडनी की, हार्ट की, किसी भी तरह की बीमारी है, तो बच्चे की ग्रोथ पे फर्क पड़ जाता है, क्योंकि जो शरीर में एनर्जी होती है वो लिमिटेड होती है, तो वो एनर्जी यूज हो जाती है उस बीमारी से लड़ने में, सो ग्रोथ के लिए बचती नहीं है, इसलिए ग्रोथ डिले हो जाती है। सो इसमें सबसे जरूरी है कि अगर बच्चे की लंबाई नहीं बढ़ रही है तो हमें ये पता करें। आमतौर पे हम माता पिता को ये बताते हैं कि 4 साल के बाद आप हर बर्थडे के दिन बच्चे को नाप लीजिए कि उसकी लंबाई कितनी है, और हर बच्चा कम से कम 5 सेंटीमीटर एक साल में बढ़ना चाहिए। अगर वो 5 सेंटीमीटर नहीं बढ़ता है तो थोड़ा सा ये चिंता का विषय है, और इसमें नजदीकी डॉक्टर से एक बार या बच्चों के जो डॉक्टर, उनसे कंसल्ट करना पड़ेगा। उनके लिए आसान है, वो ग्रोथ चार्ट्स आते हैं, उन पे लंबाई लगा के देख लेते हैं कि ये बच्चा ग्रो कर रहा है नहीं कर रहा। तो उन माता पिता के लिए जरूरी है कि जिनके बच्चे अभी ग्रो कर रहे हैं 4 साल के बाद, हर साल आप नाप लीजिए, 5 सेंटीमीटर से ज्यादा बढ़ता है तो बहुत अच्छी बात है, आपको तुरंत कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर 5 सेंटीमीटर आपका बच्चा एक साल में नहीं बढ़ा है तो थोड़ा सा चिंता का विषय, आप अपने चिकित्सक से सलाह ले लें।
1: जी तो ये तो आपने लंबाई की बात की डॉक्टर साहब, आपने ये भी कहा कि उनको जब हम सही दवाई दे देते हैं तो लंबाई बढ़ जाती है, तो किस उम्र तक बढ़ सकती है, ये भी एक प्रश्न है
0: हाँ जी,
1: कि वो कभी भी आपके पास आए तो ये समस्या का समाधान पा सकते हैं या कुछ उम्र तक ही हो सकता है।
0: हाँ जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है कि किस उम्र तक बच्चों की लंबाई हम बढ़ सकती है, कि हम उसमें जांच करें, इलाज करें, लंबाई बढ़
1: जी
0: जाएगी। ये डिसाइड होता है उसकी उम्र से, नहीं डिसाइड होता है, ये डिसाइड होता है कि उसके शरीर का डेवलपमेंट किस स्टेज में, डेवलपमेंट से मतलब उसका सेक्सुअल डेवलपमेंट है, कि एक लड़का है वो आदमी बन रहा है या एक लड़की है वो औरत में कन्वर्ट हो रही है, और जैसे ही उनका ये डेवलपमेंट पूरा हो जाता है उनकी लंबाई बढ़नी बंद हो जाती है। सो आमतौर पे कहते हैं कि एक लड़की की जो लंबाई बढ़ती है वो 14-15 साल के बाद बढ़नी बंद हो जाती है, और लड़के की 16 से 17 साल के बाद बढ़नी बंद हो जाती है। ये एक आम

0: तौर पे एक एज है, लेकिन अगर डेवलपमेंट जल्दी शुरू हुआ है तो जल्दी भी बंद हो सकती है, और डेवलपमेंट लेट शुरू हुआ है तो लेट भी बंद हो सकती है। सो ये एक रफ कट ऑफ है जिसके बाद लंबाई यूजुअली नहीं बढ़ती है।
1: जी, तो आपने थायराइड बताया, ग्रोथ हार्मोन्स के बारे में
0: हाँ
1: बताया,
0: जी
1: क्या बच्चों को जन्म से डायबिटीज भी हो सकते हैं?
0: बिल्कुल, बच्चों को डायबिटीज भी हो सकती है, हालांकि ये केसेस बहुत कॉमन नहीं है। जो हम आम पब्लिक में देखते हैं वो ये कहते हैं कि ये टाइप 2 डायबिटीज है। बच्चों में टाइप 2 डायबिटीज बहुत कम होती है, टाइप 1 डायबिटीज अधिकतर होती है। इसका मतलब है कि ये आपके जन्म से ही इंसुलिन नहीं बन रहा है। तो कुछ केसेस में हमने देखा है कि जन्म पे भी डायबिटीज हो जाती है, जिनको इंसुलिन इंजेक्शन देना होता है, 2 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 3 साल, कभी भी डायबिटीज हो सकती है। हालांकि टाइप 1 डायबिटीज है, बहुत कॉमन नहीं है, लेकिन हो सकती है। सबसे जरूरी चीज जो मैं बताना चाहूंगा, आजकल हमने ये देखा है कि बच्चों में मोटापा बढ़ रहा है, उस मोटापे बढ़ने की वजह से बच्चों में टाइप 2 डायबिटीज भी होनी शुरू हो गई है। सो ये वो चीज है जिसको हम आसानी से बचा सकते हैं। बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, खाने में घी, तेल, फैट हम कम करके उनका अगर मोटापा कम करेंगे तो वो डायबिटीज जो बच्चों में टाइप 2 डायबिटीज हो भी गई है तो वापस भी ठीक हो सकती है, एकदम नॉर्मल भी शुगर रह सकती है। इसके लिए जरूरी है कि हमें उनका लाइफस्टाइल सुधारना पड़ेगा।
1: मोटापे से इसका संबंध है
0: हाँ जी
1: जी। तो और भी कोई ऐसी समस्या है, जैसे हमने 3 समस्याओं पर आज बात की, तो डॉक्टर साहब कोई और ऐसी समस्या हो तो जरूर हमारे श्रोताओं को बताएं उसके बारे में।
0: हाँ जी दूसरा होता है कि बच्चों की एक निर्धारित एज में उनका सेक्सुअल डेवलपमेंट शुरू होता है, जहां लड़का है वो आदमी में कन्वर्ट होना शुरू होता है, लड़की है वो औरत में कन्वर्ट होना शुरू होती है। ये सारे चेंजेस हैं जो हार्मोन से कंट्रोल्ड होते हैं, जिनके लिए अलग अलग हार्मोन्स है, वो ही ये चेंजेस शुरू करते हैं और वो ही ये कन्वर्जन कंप्लीट करते हैं। सो इन हार्मोन में किसी में भी सिक्रेशन में अगर प्रॉब्लम होती है तो उससे इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है कि किसी में मान लीजिए 12-13 साल हो गई और डेवलपमेंट शुरू ही नहीं हुआ है। कुछ बच्चों में ऐसा होता है कि डेवलपमेंट 9 साल पे शुरू होना है, वो 7 साल पे शुरू हो गया है। अगर लड़की है तो 7 साल पे उसके छाती का विकास शुरू हो गया है, महावारी शुरू हो गई है जो कि एबनॉर्मल है, और हमें उसका ट्रीटमेंट करना जरूरी है। सो इसको हम प्यूबर्टी बोलते हैं कि प्यूबर्टी अगर एक टाइम से पहले होती है तो भी एबनॉर्मल है, और प्यूबर्टी एक टाइम तक नहीं शुरू होती है तो भी एबनॉर्मल है। सो इन दोनों के लिए हमें हार्मोन के टेस्ट करके पता करना होता है, और अगर जल्दी शुरू हुई है तो भी हम इलाज करके उसको रोक सकते हैं, और अगर लेट तक नहीं शुरू हुई है, 13-14 साल तक नहीं शुरू हुई है तो भी हम उसकी जांच करके उसका इलाज करते हैं और प्यूबर्टी शुरू हो जाती है। सो प्यूबर्टी रिलेटेड प्रॉब्लम है वो भी काफी कॉमन है इस एज ग्रुप में, और जैसे मोटापा बढ़ रहा है बच्चों में तो उसका नतीजा यह है कि बच्चों के प्यूबर्टी डेवलपमेंट पे भी फर्क पड़ रहा है। लड़कियों में देखा गया कि अगर लड़कियों का वजन ज्यादा है प्यूबर्टी शुरू होने के टाइम पे तो उनको प्यूबर्टी जल्दी शुरू हो जाती है, 6 महीने जल्दी शुरू हो जाती है, कि 9 साल पे शुरू होने तो 60-8.5 साल पे ही शुरू हो जाती है। इसके विपरीत लड़कों में देखा गया कि अगर वो मोटे हैं तो प्यूबर्टी उनमें लेट शुरू होती है। तो इस तरह की प्रॉब्लम है जो कि हार्मोन से गवर्न होती है, इसका हम आसानी से पता करके इलाज कर सकते हैं।
1: जी, बहुत इम्पोर्टेंट बात डॉक्टर साहब आपने बताई। और प्यूबर्टी एक ऐसी उम्र होती है किशोर अवस्था, जब बहुत हार्मोन्स का बदलाव होता है, और ये भी कहें कि एक वेव, एक फ्लड होता है शरीर में हार्मोन्स का, तो उस समय बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। एक तो बचपन में जो हमने बात की, और एक प्यूबर्टी में, तो जरूर एक ऐसी समस्या है जिस पर हमें विस्तार से बात करनी होगी। तो जरूर हम अगले कार्यक्रम में आपके साथ इस विषय पर बातचीत करेंगे, हमारे श्रोताओं को इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। आज हम अपने कार्यक्रम में इतना ही ले रहे हैं कि हार्मोन की जो समस्या है बच्चों में, जो छोटे बच्चों में टिल प्यूबर्टी क्या क्या होती है। एक चलते चलते और सवाल दिमाग
0: हाँ
1: में आ
0: जी
1: रहा है डॉक्टर साहब कि आपने बोला कई समस्याएं इसमें जो हमने बात की वो जन्म से भी हो सकती हैं, तो क्या कुछ ऐसी प्रिकॉशंस, ऐसी सावधानी गर्भवती महिला ले सकती है, चाहे खान पान की हो, चाहे एक्सरसाइज हो, या कुछ भी और हो, जिससे कि इस तरह के चांसेस को कम किया जा सके?
0: सबसे पहले तो गर्भवती महिला को ये जानना जरूरी है कि जब वो प्रेग्नेंट है तो उन्हें ऐसी दवाइयां बिल्कुल नहीं लेनी है, ऐसा कोई इलाज जिसकी सेफ्टी प्रूव नहीं है। हो सकता है कि इसमें से कुछ, जैसे मान लीजिए कुछ चूर्ण या पुड़िया लें जिनका कुछ पता नहीं है, उनमें हार्मोन की दवाइयां मिली हुई है तो वो बच्चे के लिंग पे असर कर सकती है, बच्चे का ऐसी स्थिति पैदा कर सकती है कि जिसमें हमें पता नहीं हो लड़का है या लड़की है। सो अवांछित दवाइयां हैं वो बिल्कुल नहीं ले, साधारण खाना खाएं और रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करें ताकि प्रेगनेंसी में हम डायबिटीज होने का खतरा कम कर सकें। और बाकी जो हार्मोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत ज़्यादा

0: बदलाव इससे खाने पीने से या फिजिकल एक्टिविटी से नहीं होता है। अगर डायबिटीज मदर को नहीं है तो एकदम बच्चे पर एकदम नॉर्मल रहेगा।
1: जी, तो आज हमने बात की हार्मोनल इश्यूज इन चिल्ड्रन, यानी बच्चों में हार्मोन संबंधी समस्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं, कैसे इनको पहचान कर इनका इलाज कराया जा सकता है। हमारे साथ स्टूडियो में रहे डॉक्टर राजेश खड़गावत, आप प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप स्टूडियो में आए और इतनी
0: धन्यवाद,
1: महत्वपूर्ण जानकारी आपने हम तक और हमारे श्रोताओं तक पहुंचाई। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: बच्चों में हार्मोन संबंधी समस्याओं पर अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के डिपार्टमेंट ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी के प्रोफेसर डॉक्टर राजेश खड़गावट से। आपसे बात कर रही थी शालिनी मित्तल। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। अच्छा मानसिक स्वास्थ्य समग्र स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। मानसिक तनाव के लंबे समय तक संपर्क में रहने से कई तरह की बीमारियों की संभावना बढ़ जाती है। बच्चों में होने वाली मानसिक समस्याएं, उनके लक्षण, निदान और होम्योपैथी से उपचार की विधि के बारे में आइए जानकारी प्राप्त करते हैं। विशेषज्ञ हैं होम्योपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर BL मीना। भेंट करता है श्वेता शर्मा।
2: बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, बच्चों में समस्याएं और मानसिक बीमारी में क्या अंतर है और इसका क्या इलाज होता है, यही जानने के लिए आज हम बात करेंगे डॉक्टर BL मीना जो होम्योपैथी स्पेशलिस्ट हैं। बच्चों में मानसिक बीमारी का पता लगाना मुश्किल हो सकता है लेकिन नामुमकिन नहीं। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर सबसे पहला हमारा सवाल है कि आखिर बच्चों में मानसिक बीमारी कितने तरह की होती है।
3: मैडम मैं ये बताना चाहूंगा कि WHO की रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में 10-20% बच्चे और बड़े लोग मानसिक बीमारी से ग्रस्त हैं। आप इंडिया में देखेंगे तो लगभग 20 करोड़ और मोर देन 20 करोड़ से अधिक मानसिक बीमारी से लोग ग्रस्त हैं। अब आपने पूछा कि कितने प्रकार की बीमारियां होती है, तो इसमें आप देखेंगे कि एंजाइटी, डिप्रेशन, ADHD, OSD, OCD, पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर, फोबिया जिसमें बच्चों में वो शक करने लगते हैं, उनमें कई तरह के डर पैदा हो जाते हैं, इस तरह की बहुत सारी बीमारियां हैं
2: जिसकी वजह से वो हकलाने भी लगते हैं।
3: बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, हकलाने भी लगते हैं, स्कूल जाने से भी डरने लगते हैं, कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं।
2: क्योंकि बच्चे अक्सर शोर मचाते हैं या पेट का दर्द, सिर दर्द ये रहता है, स्कूल नहीं जाना, इस तरह की शिकायत करते हैं, क्या ये सारी चीजें?
3: ये सारे मैं आपको इसमें जो सिम्टम्स बताएंगे उसमें आप जानोगे कि हम कैसे पहचाने बच्चों में मानसिक बीमारी को कैसे पहचाने। आप देखेंगे कि बच्चों में व्यवहारिक परिवर्तन आने लगता है, वो अब उनका जो व्यवहार है वो बात बात में गुस्सा करने लगते हैं, अपने आप को वो अलग दूर कोने में बैठने को मजबूर करते हैं, या अलग जब भी गेस्ट लोग आते हैं तो वो अलग रहते हैं, बच्चों में खेल नहीं रहे होते हैं, तो ये उनका व्यवहारिक परिवर्तन आने लगते हैं। दूसरा उनका भूख या नींद के पैटर्न में बदलाव आने लगते हैं। आप देखेंगे वो या तो उदास हैं या चिंता हो रही है उनमें, या उनमें एक अलग तरह का डर है, तनाव है, उनके आत्मविश्वास की कमी है। पेरेंट्स के सामने कुछ भी बोलेंगे, पोएम भी बोलेंगे, सब कुछ बताएंगे, लेकिन जैसे ही कोई बाहर का कोई बंदा आ गया तो उसके सामने वो नहीं बोल पा रहे, तो उनके आत्मविश्वास की कमी है।
2: जी, तो सर ये समस्याएं जो होती हैं डॉक्टर साहब, ये बच्चों में मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं किस कारण की वजह से होती है?
3: इसमें बहुत सारे कारण है, इसमें आप पाएंगे कि अनुवांशिक बीमारी भी है ये।
2: अच्छा।
3: हाँ, कुछ हद तक ये अनुवांशिक ट्रांसफर भी होती है। इसके अलावा मस्तिष्क का जो डेवलपमेंट अगर ठीक से नहीं होता है, नींद अगर प्रॉपर नहीं ले रहे हैं, खान पान उनका ये है। दूसरा एक ट्रोमा, ट्रोमा एक बहुत बड़ा कारण है। ट्रोमा में हमें मालूम ही नहीं चलता कि बच्चे को कब ट्रोमा, ट्रोमा इन इंजरी, इंजरी वो भावनात्मक इंजरी भी हो सकती है, आपकी शारीरिक इंजरी भी हो सकती है, जिसके कारण से बच्चों में ये मानसिक बीमारी हो सकती है। परिवार में कई ऐसी गतिविधियां होती हैं, पेरेंट्स के बीच में अच्छे रिश्ते नहीं चल रहे, रिलेशन नहीं चल रहा, उनके बीच में झगड़े हो रहे हैं। बच्चों में देखो अब स्कूल गोइंग जो बच्चे हैं उनमें साइबर बुलिंग हो जाती है, उनमें झगड़े हो जाते हैं। दूसरा आप सोशल मीडिया, सोशल मीडिया का इसमें बहुत बड़ा रोल है। सोशल मीडिया हम पाएंगे कि बच्चे सोशल मीडिया के साथ में बहुत ज्यादा जुड़े होते हैं, पेरेंट्स भी क्या करते हैं कि उनको बच्चों को अपना मोबाइल दे दिया और माएं जो हैं वो अपना काम में लग गई, पेरेंट्स भी फादर भी उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। आप देखेंगे कि जो ट्रोमा कब होता है, हमें मालूम ही नहीं चलेगा कि बच्चे को ट्रोमा कब हो गया।
2: जी।
3: आप जब जो स्क्रीन देख रहा है, स्क्रीन में कौन सी मूवी देख रहा है, कौन सा सीरियल देख रहा है, कौन सी रील देख रहा है, उस रील में ऐसा कौन सा सीन आ गया जिसकी वजह से उस बच्चे को मानसिक ट्रोमा हो गया। जो मानसिक ट्रोमा आज हुआ है उसका लॉन्ग टाइम तक उसका अफेक्ट पड़ेगा, तो इसकी वजह से वो धीरे धीरे करके मानसिक रोग का शिकार हो जाएगा
2: जी। क्या हम ये कोरोना के टाइम पर भी जो बच्चे रहे हैं

0: छोटे बच्चे रहे हैं जिन्हें बाहर जाने का मौका नहीं मिला उस वक्त, उनमें ये सारे ट्रॉमा के जो लक्षण है वो देखने के लिए ज्यादा मिलते हैं?
1: बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं कि उन्हीं में ज्यादा मिलता है, एक्चुअली वो भी एक तरह का ट्रॉमा था। उस ट्रॉमा से क्या हुआ कि पेरेंट्स पे अफेक्ट आया, पेरेंट्स ने बच्चों को बाहर जाने से रोका, उनको एक टेरर उस घर के अंदर पैदा हो गया कि नहीं कोरोना आ गया है, तो वो ठीक असर बच्चों पे पड़ा। उस बच्चों पे पड़ने की वजह से ये हुआ कि बच्चों का जो डेवलपमेंट है वो रुक गया, बाहर जो सोशलाइजेशन जो होना था वो रुक गया, तो धीरे धीरे बच्चों ने एक अपनी सेल में चले गए। इससे मानसिक बीमारी में बच्चों में और बड़ों में दोनों में ही इसने अपने पैर फंसाया।
0: तो होम्योपैथी में इस बीमारी का क्या इलाज है?
1: होम्योपैथी में देखो, किसी भी बीमारी का होम्योपैथी में पर्टिकुलर डिजीज के नाम से हमारे यहाँ कोई इलाज नहीं है, लेकिन लक्षणों के आधार पे होम्योपैथी में दवाइयां सिलेक्ट की जाती है।
0: जी,
1: एक होम्योपैथ ओवरऑल पूरी जो पेशेंट जो आया है उसको ओवरऑल स्टडी करता है, ओवरऑल सारे सिम्टम्स लेता है, लेने के बाद में हम किसी फाइनल मेडिसिन का सिलेक्शन होता है, और जब वो फाइनल मेडिसिन का सिलेक्शन होता है वो ओवरऑल आइदर ब्लेम उसमें मानसिक बीमारी हो, किसी को फिजिकल डिजीज हो, कोई भी जो भी डिजीज हो, सारी चीजों को वो मेडिसिन कवर करती है।
0: डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है कि छोटे बच्चे होते हैं उनमें लक्षण तो इतने आराम से देखने के लिए मिल जाएंगे, लेकिन आपने जैसे बताया है कि आपको पूरा ओवरऑल उसकी स्टडी करनी पड़ती है, तो एक छोटे से बच्चे की आप किस तरह से स्टडी करते हैं ताकि आप उसे एक दवाई दे सके होम्योपैथी की?
1: छोटे बच्चों में हमें एक फाइन ऑब्जर्वर बनना पड़ेगा। वो फाइन ऑब्जर्वर सबसे पहले ऑब्जर्वर पेरेंट्स को बनना पड़ेगा, उसके बाद में हम स्कूल के टीचर्स को बनना पड़ेगा, उसके बाद में हमारे फिजिशियंस का रोल आता है। तो पेरेंट्स को ये चाहिए कि बच्चे का व्यवहार पैटर्न में क्या बदलाव आ रहा है, वो क्या सोशलाइज हो रहा है, क्या बच्चे जो उसके जो घर में और अदर बच्चे उनके साथ खेल रहा है, क्या वो अपने टॉयज को चीजों को शेयर कर रहा है, क्या वो आप जो कुछ कह रहे हो उस पर अटेंशन दे रहा है, क्या उसका रिएक्शन आ रहा है। अगर ये सब चीजें अगर नहीं हो रही है तो हम सोच सकते हैं कि हाँ बच्चे में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है, फिर हमें उसको कॉज रूट तक जाना पड़ेगा कि उसकी वजह क्या है, उसकी वजह क्या पेरेंट्स हैं, क्या उसकी वजह सोशल मीडिया है, क्या उसकी वजह उसके दोस्त लोग हैं, क्या उसके जो भाई बहन हैं, तब जाके हमें उसको जाना पड़ेगा।
0: और ये कहा जाता है कि होम्योपैथी जो दवाइयां हैं वो असर करने में टाइम लगाती हैं, तो ये बात कहाँ तक सच है या क्या मिथ है?
1: नहीं, ये बिल्कुल मिथ है, होम्योपैथी दवाई कहीं देर से असर नहीं करती है, लेकिन इसका जो सिलेक्शन है वो सिलेक्शन करना थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है कि सोचो अगर हम बच्चे को अगर पेशेंट एज ए पेशेंट अगर हमारे पास आया है तो उसका जो उन्होंने ऑब्जर्व किया है पेरेंट्स ने, या तो वो पूरे सिम्टम्स बताएं या डॉक्टर या जो फिजिशियन है वो उसको ठीक से ऑब्जर्व करें। अगर ठीक से ऑब्जर्व कर लेगा, अगर ठीक से डॉक्टर के पास सारे सिम्टम्स आ जाएंगे, तो होम्योपैथी की मेडिसिन का सिलेक्शन बिल्कुल सटीक होगा, और सटीक होगा तो आप मेरा विश्वास करिए इतनी फास्ट काम करती है कि आप बिलीव भी नहीं करेंगे क्या हो सकता। कई ऐसे पेशेंट रहेंगे जो सोचे यार क्या मेडिकल हो गया। अभी मैं रिसेंटली बात करूं तो एक पेशेंट आया था, उसका ये था कि कहीं अफेयर चल रहा था, वो उसका ब्रेकडाउन हुआ, उसका सारा बिजनेस उसने ठप कर लिया और एक सेल में चला गया और वो सारी चीजें बंद कर दी उसने। उसकी सिस्टर मेरे पास लेके आई, पूरी हिस्ट्री बताई, हमने सिंगल मेडिसिन दी और आप बिलीव नहीं करेंगे विद इन 10 डेज उसने कहा डॉक्टर साहब मैं मेरे बिजनेस गाड़ियां ट्रांसपोर्ट का काम था क्या मैं उस साथ चले जाऊं। तो इतना फास्ट।
0: कभी कभी बच्चे दवाइयां नहीं लेना चाहते या दवाइयां लेने से इनकार कर देते हैं, तो ऐसे में बच्चों को किस तरह से आप दवाइयां देते हैं और किस तरह से अगर बच्चे बीच में ही दवाइयां छोड़ दें तो उसका क्या नेगेटिव असर होता है?
1: नहीं, होम्योपैथिक की ब्यूटी यही है कि होम्योपैथी में जब बच्चा आ गया और एक बार दवाई लेना शुरू कर दिया तो वो मीठी गोलियों के लिए पेरेंट्स और उसके बच्चे दोनों कहेंगे नहीं नहीं मीठी गोली के लिए चलो
0: जी।
1: अच्छा, और अच्छे से अगर हमने अगर उसको सिम्टम्स लिए हैं और अच्छे से अगर दवाई दी है तो नो डाउट बहुत अच्छे रिजल्ट।
0: बिल्कुल। क्या इस बीमारी को रोका जा सकता है, इसके रोकथाम के लिए क्या किया जा सकता है?
1: रोकथाम के लिए बहुत सारी चीजें हैं कि हम उसको कैसे रोक सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें जो सोशल स्टिग्मा जो ट्रॉमा है हमें उसको रोकना पड़ेगा। सबसे पहले हमें रोकने के लिए कि सोशल स्टिग्मा और जो ये जो डर है कि लोगों में एक तरह का डर है कि यार ये मैं बीमारी बताऊं या नहीं बताऊं, ये सबसे बड़ी वजह है। लोग बच्चे को या अपने को खुद को भी ये नहीं साबित करना चाहते कि मैं मानसिक बीमारी का रोगी हूं, मैं मानसिक बीमारी की दवाएं ले रहा हूं, यही वजह है कि बीमारी बढ़ती जा रही है। तो हमें इस स्टिग्मा को, इस डर को हमें निकालना पड़ेगा
0: जी।
1: अगर हम निकालने के बाद में दवाई और साइकोथेरेपी अगर दोनों को साथ साथ लिया जाए तो ये बीमारी को हम जड़ से मिटा सकते हैं
0: जी। डॉक्टर साहब, क्योंकि समाज में काफी मतलब नेगेटिव नजरिया है मानसिक बीमारी को लेके, तो इस नजरिए को आपके नजरिए से कैसे हम दूर कर सकते?
1: इस नजरिए को दूर करने के लिए हमें प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे इजीली साइकोथेरेपिस्ट मिल जाए, इजीली जो मानसिक रोगी हैं उसको अटेंड करने के लिए डॉक्टर्स मिल जाए। अगर ऐसा होता है तो हम अर्ली इंटरवेंशन कर पाएंगे, जल्दी पहचान कर पाएंगे कि हाँ ये मानसिक रोगी है। अगर मानसिक रोगी है तो फिर उसको हमको

0: साइकोथेरेपी और मेडिसिन दोनों का अगर कॉम्बिनेशन दिया जाए तो ये बीमारी जड़ से जा सकती है।
1: तो डॉक्टर साहब, आप हमारे जो सुनने वाले हैं उनको ऐसे क्या टिप्स देना चाहेंगे जिसकी वजह से जो बच्चों में मानसिक विकार हो रहे हैं वो दूर हो सके या फिर वो विकार आ ही ना?
0: इसके लिए मैं दो टेक्निक बताना चाहूंगा। दो टेक्निक में क्या, एक है एबीसीडी टेक्निक और दूसरी टेक्निक है परमा टेक्निक। आप एबीसीडी टेक्निक में आप जानेंगे कि ए बी सी डी, आप चार उनको याद रखिए। ए मीन्स है एक्टिविटी। आप देखेंगे कि कोई भी इंसिडेंट हुआ है वो एक्टिविटी में आता है, कि कोई भी इंसिडेंट हो जिसकी वजह से उसको वो विकार स्टार्ट हुआ, ये हुआ एक्टिविटी। बी फॉर बिलीव। बिलीव क्या कि जैसे ही कोई एक्टिविटी हुई उसका एक बिलीव सिस्टम है, उसने नोट किया कि अरे उसने मेरी मेरी तरफ ऐसा देख लिया, उसने मेरे को ये कह दिया, उसने मेरे को धक्का मार दिया, तो जैसे उसका बिलीव क्या आएगा कि वो मुझे ऐसा करना चाहता होगा, वो मुझे जानबूझ के मुझे हर्ट करना चाहता होगा
1: जी।
0: ये उसका बिलीव सिस्टम है। ये बिलीव सिस्टम क्या है कि किसी पुराने पूर्वाग्रह होता है कि कोई किसी इंसिडेंट हुआ होगा जिसकी वजह से उसको एक फिक्स बिलीव बनता है उसका। बिलीव आ गया। सी में क्या होता है कि उसका नतीजा क्या निकला। जैसे नतीजा ये निकला कि जिस उसकी वजह से उसके अंदर गुस्सा आएगा, उसको एंगर होगा, उसका खुशी या दुख होगा, ये उसका नतीजा हुआ सी। डी में क्या होगा कि हमें इन तीनों चीजों के बाद में हमें अपने आप को, जो पेशेंट है या डॉक्टर है वो उसको सलाह देगा कि आप उन तीनों चीजों पे एक क्वेश्चन मार्क लगाइए कि जो मेरा जो बिलीव सिस्टम था उससे अलग एक दूसरा पार्ट भी तो हो सकता है
1: जी।
0: हो सकता है आपने उसको स्माइल दी, उसने आपको देखा ही नहीं होगा, इसलिए उसने इग्नोर किया होगा
1: जी।
0: तो हमें जो डी पार्ट है, डी पार्ट पे काम करना पड़ेगा। अगर डी पार्ट में काम करेंगे तो हमारा ये जो जो मानसिक विकार है वो कम होंगे। दूसरी टेक्निक में परमा की बात कर रहा था। परमा इन द सेंस, पी इन द सेंस पॉजिटिव इमोशंस। हमें पॉजिटिव इमोशंस पे काम करना पड़ेगा कि जो हमारी खुशी के पल थे उन पे हमें काम करना है, उन्हीं के बारे में हम सोचेंगे, अच्छी भावना को सोचेंगे तो हमें एक पॉजिटिव भावना आएगी, हमें खुशी का इजहार होगा। दूसरा ई का मतलब एंगेजमेंट। एंगेजमेंट मतलब कोई भी पल हो जो आपका वर्तमान है उसके अंदर आप एंगेज रहिए। खेल रहे हो तो जी भर के खेलिए, फ्लो में खेलिए,
1: इसी पल में रहिए,
0: इसी पल में रहे जी भर के खेलिए आप। दूसरा कोई काम कर रहे तो जी भर के अच्छे से काम करिए। आर रिलेशन, रिलेशन न सिर्फ जो भी रिलेशन आपके हैं उन रिलेशन को आप अच्छे से पालिए, उनको जो भी रिलेशन है उसको आप प्रमोट करिए, उसकी प्रशंसा कीजिए, तो उसको वो एक आपका जो रिलेशन है अच्छा बना रहेगा। एम मीन्स है मीनिंग। आपकी जो लाइफ है उसको मीनिंगफुल बनाइए, आपको अपने टारगेट्स बड़े बनाइए। जब टारगेट बड़े बनाएंगे तो आपकी लाइफ का एक वो रहेगा, तो आपने कभी भी आत्महत्या जैसा तो विचार आएगा ही नहीं, क्योंकि आप उसके पीछे लगेंगे। तीसरा है अचीवमेंट। अचीवमेंट इन द सेंस कि आपकी जो भी छोटी छोटी खुशियां हो रही है उनको आप सेलिब्रेट करिए। बच्चों का कोई भी अगर उसने एक अच्छा काम किया तो बच्चों को आप उसको सेलिब्रेट करिए। जैसे ही सेलिब्रेट करेंगे तो पता लगेगा कि उसकी खुशी के पल का अंदाजा नहीं रहेगा। तो ये दो टेक्निक अगर हम दवा के साथ साथ अगर यूज करेंगे तो ये जो मानसिक बीमारी है वो काफी हद तक डाउन हो जाएगी।
1: बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब कि आपने इतनी अच्छी अच्छी टेक्निक्स बताई और जो बच्चों में मानसिक विकार है उसके बारे में इतने विस्तार से बताया और हमारे स्टूडियो में आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू, धन्यवाद।
1: बच्चों में मानसिक विकार और होम्योपैथी से इसका उपचार, अभी आप इस विषय पर जानकारी प्राप्त कर रहे थे होम्योपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर बीएल मीना से। आपसे बात कर रही थी श्वेता शर्मा। इसी के साथ हमारी आज की स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत यहीं संपन्न होती है। फिर मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए स्वीकार करें हमारा नमस्कार। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल। और श्रोताओ, आप समय हुआ है कार्यक्रम धरती आकाश का। आज आप सुनेंगे वार्ता हाइड्रोजन ऊर्जा का बढ़ता महत्व और E20 एथेनॉल से जुड़ी भ्रांतियां। वार्ताकार हैं श्री इंदु शेखर शुक्ल, जो कि एक अध्यापक हैं। नमस्कार, धरती आकाश के इस अंक में आप सबका स्वागत है।
2: मैं इंदु शेखर शुक्ल आज हरित ऊर्जा का महत्व के बारे में आप सभी को जानकारी दूंगा। हरित ऊर्जा में आज विशेष रूप से हम चर्चा करेंगे हाइड्रोजन ऊर्जा की और इथेनॉल ऊर्जा की। आधुनिक परिवेश में इन दोनों ही ऊर्जाओं का बहुत ज्यादा उपयोग हो रहा है, इसको लेकर के कई भ्रांतियां भी हैं। आज इन सारी चीजों के ऊपर हम आपसे चर्चा करेंगे। हरित ऊर्जा का महत्व कार्बन उत्सर्जन और प्रदूषण को कम करने, जलवायु परिवर्तन से निपटने और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता घटाने की क्षमता में निहित है। सरल शब्दों में

हरित ऊर्जा का अर्थ है पृथ्वी को प्रदूषित किए बिना बिजली या ताप उत्पन्न करने के लिए प्रकृति के संसाधनों का उपयोग करना। हरित ऊर्जा के प्राथमिक स्रोतों में शामिल है हाइड्रोजन ऊर्जा, इथेनॉल ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, पनबिजली ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और बायोमास ऊर्जा। आज हम विश्लेषण करेंगे हाइड्रोजन एवं इथेनॉल ऊर्जा का। सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोजन ऊर्जा की। हाइड्रोजन को जीवाश्म ईंधन से, पानी से या दोनों के मिश्रण से निकाला जा सकता है। प्राकृतिक गैस वर्तमान में हाइड्रोजन उत्पादन का प्राथमिक स्रोत है, जो लगभग 70 मिलियन टन के वार्षिक वैश्विक हाइड्रोजन उत्पादन का लगभग 3/4 हिस्सा है। ये वैश्विक प्राकृतिक गैस उपयोग का लगभग 6% है। आज हाइड्रोजन का उपयोग मुख्य रूप से उद्योगों द्वारा किया जाता है, विशेष रूप से तेल शोधन, अमोनिया उत्पादन, मिथेनॉल उत्पादन और इस्पात उत्पादन में। इस हाइड्रोजन की लगभग पूरी आपूर्ति जीवाश्म ईंधनों से होती है। हाइड्रोजन को मौजूदा प्राकृतिक गैस नेटवर्क में मिलाया जा सकता है, जिसकी सबसे अधिक संभावना बहुमंजिला और वाणिज्यिक भवनों में है, विशेष रूप से घनी आबादी वाले शहरों में, जबकि दीर्घकालिक संभावनाओं में हाइड्रोजन बॉयलर या ईंधन सेल में हाइड्रोजन का प्रत्यक्ष उपयोग शामिल हो सकता है। नवीकरणीय ऊर्जा के भंडारण के लिए हाइड्रोजन एक प्रमुख विकल्प है और विद्युत प्रणाली की लचीलता बढ़ाने के लिए गैस टरबाइनों में हाइड्रोजन और अमोनिया का उपयोग किया जा सकता है। अमोनिया का उपयोग कोयले से चलने वाले विद्युत संयंत्रों में उत्सर्जन को कम करने के लिए भी किया जा सकता है। हाइड्रोजन का उपयोग कुछ उद्योगों में पहले से ही व्यापक रूप से किया जा रहा है, लेकिन स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन में इसकी पूरी क्षमता का अभी तक उपयोग नहीं हो पाया है। स्वच्छ, सुरक्षित और किफायती ऊर्जा की महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की क्षमता का लाभ उठाने का ये सही समय है। G20 की अध्यक्षता कर रही जापान सरकार के अनुरोध पर अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEEA ने हाइड्रोजन की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करने और इसके भविष्य के विकास पर मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट में पाया गया है कि स्वच्छ हाइड्रोजन को वर्तमान में अभूतपूर्व राजनीतिक और व्यावसायिक गति मिल रही है और दुनिया भर में नीतियों और परियोजनाओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है। रिपोर्ट का निष्कर्ष है कि अब समय आ गया है कि प्रौद्योगिकियों को बढ़ाया जाए और लागत कम की जाए, ताकि हाइड्रोजन का व्यापक उपयोग हो सके। हाइड्रोजन बहुमुखी ऊर्जा है। आज उपलब्ध प्रौद्योगिकियां हाइड्रोजन को ऊर्जा उत्पादन, भंडारण, परिवहन और विभिन्न तरीकों से उपयोग करने में सक्षम बनाती हैं। नवीकरणीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, प्राकृतिक गैस, कोयला और तेल सहित कई प्रकार के ईंधन हाइड्रोजन का उत्पादन कर सकते हैं। इसे पाइपलाइनों द्वारा गैस के रूप में या द्रवीकृत प्राकृतिक गैस LNG की तरह जहाजों द्वारा तरल रूप में परिवहन किया जा सकता है। इसे घरों को बिजली देने और उद्योगों को ऊर्जा प्रदान करने के लिए बिजली और मीथेन में परिवर्तित किया जा सकता है। साथ ही कारों, ट्रकों, जहाजों और विमानों के लिए ईंधन के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है। ग्रीन हाइड्रोजन से संबंधित कुछ प्रमुख चुनौतियां निम्नवत हैं। वर्तमान में जीवाश्म ईंधन से उत्पादित हाइड्रोजन की तुलना में हरित हाइड्रोजन का उत्पादन अधिक महंगा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि विद्युत अपघटन की प्रक्रिया, जिसका उपयोग हरित हाइड्रोजन उत्पादन करने के लिए किया जाता है, बड़ी मात्रा में बिजली की आवश्यकता होती है और भारत में नवीकरणीय बिजली की लागत अभी भी अपेक्षाकृत अधिक है। वर्तमान में भारत में हरित हाइड्रोजन के उत्पादन, भंडारण और वितरण के लिए अवसंरचना की कमी है। इसमें हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशनों और हाइड्रोजन के परिवहन के लिए पाइपलाइनों की कमी भी शामिल है। हरित हाइड्रोजन के संभावित लाभों के बावजूद वर्तमान में भारत में इस प्रौद्योगिकी की सीमित रूप से ही अपनाया जा रहा है। आम लोगों के बीच हरित हाइड्रोजन के बारे में जागरूकता एवं समझ की कमी के साथ साथ इस प्रौद्योगिकी को अपनाने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए व्यवसायों के लिए प्रोत्साहन की कमी के कारण ये स्थिति बनी हुई है। व्यावसायिक रूप से हाइड्रोजन का उपयोग करने के लिए हरित हाइड्रोजन का निष्कर्षण उद्योग के समक्ष विद्यमान सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। हरित हाइड्रोजन उत्पादन की लागत को कम करने के लिए भारत में नवीकरणीय बिजली सृजन की क्षमता को बढ़ाना आवश्यक है। ऐसा सौर और पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के विस्तार के माध्यम से किया जा सकता है। सरकार इस प्रौद्योगिकी के उत्पादन एवं उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए टैक्स क्रेडिट एवं सब्सिडी जैसे विनियामक प्रोत्साहनों को लागू करके हरित हाइड्रोजन के अधिग्रहण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। आम लोगों को ग्रीन हाइड्रोजन के लाभों और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में इसकी भूमिका के बारे में शिक्षित करना महत्वपूर्ण है।
जन जागरूकता अभियानों और शैक्षिक पहलों के माध्यम से इस उद्देश्य को आगे बढ़ाया जा सकता है। भारत में हाइड्रोजन रेल का आगमन हरित

साथ उन्नत प्रणोदन प्रौद्योगिकी से युक्त है। ये भारत में स्वच्छ रेल परिवहन की व्यवहार्यता को प्रदर्शित कर रहा है। एक प्रायोगिक पहल के रूप में विकसित ये ट्रेन नवाचार के लिए भारतीय रेल की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ये ऊर्जा दक्षता और पर्यावरण की दृष्टि से जिम्मेदार परिवहन को भी बढ़ावा देती है। इस ट्रेन के उद्घाटन के साथ भारत हाइड्रोजन से चलने वाले रेल परिवहन की खोज करने वाले देशों के एक चुनिंदा समूह में शामिल हो गया है। इनमें पूर्व में जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका शामिल हैं। देश की सबसे बड़ी रेलवे हाइड्रोजन भंडारण और ईंधन भरने की सुविधा हरियाणा के जींद में स्थापित की गई है। इस स्वदेशी संयंत्र में एक बार में लगभग 3000 किलोग्राम हाइड्रोजन का भंडारण होता है। ये हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन संचालन में मदद करेगा। ये राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन और शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करता है। भारतीय रेल के निरंतर आधुनिकीकरण के साथ ये पहल व्यापक रूप से अपनाने की नींव है। ये ट्रेन अधिक सुदृढ़ परिवहन प्रणाली के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करती है। 17 फरवरी 2004 को स्टेन थॉम्सन और जिम बोमन द्वारा इंटरनेशनल जर्नल ऑफ हाइड्रोजन एनर्जी में हाइड्रोजन रेल के क्षेत्र में काम करने वालों के लिए एक खोज इंजन लक्ष्य शब्द के रूप में इसे शामिल करने के बाद हाइड्रेल शब्द प्रचलन में आया।

आइए अब समझते हैं E20 पेट्रोल के बारे में। E20 पेट्रोल ऐसा ईंधन है जिसमें 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल मिलाया जाता है। सरकार ने एथेनॉल उत्पादन बढ़ाया और E10 से E20 तक का सफर केवल 3 वर्षों में पूरा कर लिया। ये परिवर्तन मूल योजना से कहीं अधिक तेज रहा। हाल ही में भारत ने E20 पेट्रोल का लक्ष्य निर्धारित समय से 5 वर्ष पहले हासिल कर लिया। इसके बाद सरकार ने जून 2026 में E85 ईंधन लॉन्च किया और अब E25 तथा फ्लेक्स फ्यूल वाहनों को बढ़ावा देने की तैयारी कर रही है। इस तेज बदलाव के कारण लाखों ऐसे वाहन भी E20 पेट्रोल का उपयोग कर रहे हैं जिन्हें मूल रूप से E10 ईंधन के लिए डिजाइन किया गया था। यही कारण है कि माइलेज और इंजन पर प्रभाव को लेकर बहस तेज हो गई है। एथेनॉल की कैलोरीफिक वैल्यू पेट्रोल से कम होती है, अर्थात समान मात्रा में एथेनॉल जलाने पर पेट्रोल की तुलना में कम ऊर्जा प्राप्त होती है। जब इंजन को समान शक्ति उत्पन्न करनी होती है तो उसे अधिक मात्रा में ईंधन जलाना पड़ता है। यही कारण है कि E20 पेट्रोल के उपयोग से कई वाहनों में माइलेज कम दिखाई देती है। एथेनॉल का रासायनिक सूत्र C2H5OH है, जबकि पेट्रोल में अधिक कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं। सरकार अब E20 के बाद E25 और E85 की दिशा में आगे बढ़ रही है। E25 में 25% एथेनॉल और 75% पेट्रोल होता है। E85 में 85% एथेनॉल और 15% पेट्रोल होता है। इन ईंधनों का उपयोग मुख्य फ्लेक्स फ्यूल वाहनों में किया जाता है। फ्लेक्स फ्यूल वाहन ऐसे वाहन हैं जो विभिन्न अनुपातों में एथेनॉल और पेट्रोल के मिश्रण पर आसानी से चल सकते हैं। इनमें विशेष प्रकार के इंजन, फ्यूल इंजेक्टर, पाइप, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम और जंगरोधी सामग्री का उपयोग किया जाता है। भारत के लिए सबसे बड़ी सीख ये है कि उच्च एथेनॉल मिश्रण तभी सफल होगा जब उपभोक्ताओं को विकल्प, उचित कीमत और तकनीकी रूप से सक्षम वाहन उपलब्ध हों। E20 पेट्रोल के फायदे क्या हैं, आइए जानते हैं। कच्चे तेल के आयात में कमी, विदेशी मुद्रा की बचत, किसानों की आय में वृद्धि, जैव ईंधन उद्योग को बढ़ावा, कार्बन उत्सर्जन में कमी, ऊर्जा सुरक्षा में मजबूती प्रदान करता है। E20 पेट्रोल भारत की ऊर्जा सुरक्षा और हरित ईंधन नीति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे पेट्रोल आयात पर निर्भरता कम होगी, किसानों को लाभ मिलेगा और पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी। हालांकि सरकार को E25 और E85 जैसे उच्च एथेनॉल मिश्रण लागू करने से पहले वाहन उद्योग, उपभोक्ताओं और ईंधन वितरण प्रणाली को पूरी तरह तैयार करना होगा। ब्राजील की तरह उपभोक्ताओं को विकल्प और मूल्य प्रोत्साहन उपलब्ध कराना भी आवश्यक होगा। एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल EBP कार्यक्रम भारत की ऊर्जा रणनीति का एक प्रमुख स्तंभ माना गया है। इसकी प्रगति, वैज्ञानिक मूल्यांकन, चरणबद्ध कार्यान्वयन और सरकार उद्योग और अनुसंधान संस्थानों के बीच सहयोग को दर्शाती है। इस कार्यक्रम ने ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत किया है, उत्सर्जन को कम किया है और

किसानों के लिए आय के नए अवसर पैदा किए हैं। इसने कच्चे तेल के आयात को भी कम किया है और घरेलू स्तर पर उत्पादित नवीकरणीय ईंधन के उपयोग को बढ़ावा दिया है। EBP कार्यक्रम स्वच्छ, अधिक लचीले और आत्मनिर्भर परिवहन ईंधन पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान देना जारी रखेगा। भारत इथेनॉल मिश्रण को अपनाने वाला अकेला देश नहीं है, ये अब विश्व स्तर पर स्वीकृत प्रथा है। कई प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं ने इथेनॉल को अपनी ईंधन रणनीति में मजबूती से शामिल कर लिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में E10 पूरे देश में मानक इथेनॉल मिश्रित ईंधन है। अमेरिकी सरकार के समर्थन से E15 का प्रचलन तेजी से बढ़ रहा है। लाखों वाहन पहले से ही फ्लेक्सिबल ईंधन के अनुकूल हैं। ये वाहन E85 तक के मिश्रण पर भी चल सकते हैं। इथेनॉल के उपयोग में ब्राजील वैश्विक स्तर पर अग्रणी बना हुआ है। वर्तमान में यहाँ E27 को मानक पेट्रोल मिश्रण के रूप में अनिवार्य किया गया है। इसे बढ़ाकर लगभग 35% किया जा रहा है। बिकने वाली नई कारों में से 80% से अधिक फ्लेक्स फ्यूल वाहन हैं। ये वाहन E27, E30 या शुद्ध जलयुक्त इथेनॉल पर भी चलते हैं। जापान ने भी अपने ईंधन मिश्रण में इथेनॉल को शामिल कर लिया है। ये चरणबद्ध तरीके से E10 को लागू करके किया गया। कनाडा, थाईलैंड और कई यूरोपीय देशों सहित अपनी स्वच्छ ईंधन रणनीतियों के हिस्से के रूप में इथेनॉल मिश्रण को अपनाया है। इस तरह हरित ऊर्जा का महत्व कार्बन उत्सर्जन और प्रदूषण को कम करने, जलवायु परिवर्तन से निपटने और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता घटाने की क्षमता में भारत आगे निकलकर विकसित देशों की श्रेणी में शीघ्र शामिल हो सकता है।

इसी के साथ धरती आकाश का ये अंक यहीं संपन्न होता है। प्रस्तुत करता थे दिलीप झा। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे धरती आकाश। आपने वार्ता सुनी हाइड्रोजन ऊर्जा का परथा महत्व और E20 एथेनॉल से जुड़ी भ्रांतियाँ। वार्ताकार थे श्री इंदु शेखर शुक्ल, एक शिक्षक। और अब समय हुआ है पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक का। कुछ ही पलों में सुनेंगे आप ये कार्यक्रम।

ਮੈਨੂੰ ਸਬਰ ਨਾ ਆਵੇ ਇਤਨੀਆਂ ਡਿੱਠੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਸਬਰ ਨਾ

0: अभी आप सुन रहे थे पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी की लहर, और अब कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। वे 3000 से अधिक विद्यार्थियों को संबोधित करेंगे, जिनमें स्नातक और स्नातकोत्तर छात्र छात्राओं के साथ 587 पीएचडी शोधार्थी शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आईआईटी दिल्ली ने अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि वे इस अग्रणी संस्थान के विद्यार्थियों और शिक्षकों से मुलाकात को लेकर उत्साहित हैं। नई दिल्ली में कल संवाददाता सम्मेलन

0: में आईआईटी दिल्ली के निदेशक रंजन बनर्जी ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी मेधावी विद्यार्थियों को संस्थान के प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान करेंगे। इनमें प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल, डायरेक्टर्स गोल्ड मेडल, शंकर दयाल शर्मा गोल्ड मेडल और मेधावी विद्यार्थियों को दिए जाने वाले परफेक्ट 10 गोल्ड मेडल शामिल हैं।
1: इस कॉन्वोकेशन में 3,000 से अधिक ग्रेजुएट्स डिग्रीज ले लेंगे। कॉन्वोकेशन में हमारी एक नई सुपर कंप्यूटर परम प्रज्ञा AI बेस्ड सुपर कंप्यूटर 250 पेटाफ्लॉप्स, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर इन एन एकेडमिक एनवायरनमेंट लॉन्च बाय आवर प्राइम मिनिस्टर।
0: भारतीय भुगतान परिषद ने कहा है कि UPI के माध्यम से किए जाने वाले डिजिटल भुगतान उपभोक्ताओं के लिए निःशुल्क रहेंगे। व्यापारियों से डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। परिषद ने बताया कि बैंक, फिनटेक कंपनियां, NPCI और भारतीय रिजर्व बैंक UPI को सुरक्षित और भरोसेमंद बनाए रखने के लिए तकनीक, साइबर सुरक्षा, धोखाधड़ी रोकने और नई सुविधाओं में लगातार निवेश कर रहे हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज मुंबई में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम द्वारा आयोजित सम्मेलन को संबोधित करेंगे। श्री शाह निगम के नवनिर्मित कार्यालय का भी उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन का आयोजन BSE इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में किया जाएगा। इसमें शहरी सहकारी बैंकों, राज्य सहकारी महासंघों के प्रतिनिधि, नीति निर्माता और अन्य संबंधित पक्ष शामिल होंगे। सम्मेलन में सहकारी बैंकिंग व्यवस्था को मजबूत करने और देश में आत्मनिर्भर सहकारी क्षेत्र को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि सरकार भारतीय शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के कार्यक्रमों को समयबद्ध और प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कल रात शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने कहा कि बैठक में मंत्रालय के वर्तमान कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। उन्होंने इन कार्यक्रमों को समय से और प्रभावी ढंग से पूरा करने की प्राथमिकताओं पर चर्चा की। झारखंड में JPSC और JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी छात्र आंदोलन के बीच सरकार और विद्यार्थियों के प्रतिनिधिमंडल के बीच कल पहली औपचारिक वार्ता हुई। करीब 1.5 घंटे चली बैठक में विद्यार्थियों ने भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच और भर्ती प्रक्रिया में व्यापक सुधार की अपनी मांग दोहराई। भारत ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर अमेरिका के सांसद की आपत्तियों को खारिज कर दिया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ये देश का आंतरिक विधायी मामला है और इस पर निर्णय संसद करती है। उन्होंने कहा कि अमेरिका सहित कई देशों में भी विदेशी धन के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए कानून लागू हैं। अमरीकी सीनेट ने रूस से तेल खरीदने वाले चीन और अन्य देशों को दंडित करने संबंधी विधेयक पारित कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि चीन और अन्य देश रूस से पेट्रोलियम उत्पाद खरीद रहे हैं, जिससे रूस को यूक्रेन युद्ध में मदद मिल सकती है। लिंडसे ओ ग्राहम के नाम पर रखे गए इस विधेयक के समर्थन में 86 और विरोध में 11 वोट पड़े। राष्ट्र आज नोबेल पुरस्कार विजेता और राष्ट्रगान के रचयिता रविंद्रनाथ ठाकुर की 85वीं पुण्यतिथि पर उन्हें स्मरण कर रहा है। उनका निधन 7 अगस्त 1941 को हुआ था। पश्चिम बंगाल और देश के अन्य हिस्सों में लोग कवि, दार्शनिक, संगीतकार और एशिया के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi will address the 57th convocation ceremony of the Indian Institute of Technology, IIT Delhi today. He will address over 3,000 graduating students, including 587 PhD scholars who will be conferred their degrees during the ceremony. We have more from our correspondent.
3: Prime Minister Narendra Modi will present the institute's most prestigious honours, including the President's Gold Medal, Director's Gold Medal, Shankar Dayal Sharma Gold Medal and Perfect 10 Gold Medal to the meritorious students during the ceremony. further, Mr. Modi will also inaugurate Param Pragya.

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, सुबह के 10:10 और पूरे हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक पूरे 20 सेकंड और कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत कार्यक्रम में आप जुड़ सकते हैं IP Radio Delhi @gmail के जरिए।

0: 17 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: ये एक महत्वपूर्ण जानकारी श्रोताओं, जो कि बहुत काम की है, और इसको ध्यान में रखते हुए अपना जो फॉर्म है वो जरूर समय पर जमा करें। और दोस्तों, अब समय हो चुका है आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम फिल्म संगीत का। तो आपकी दोस्त, आपकी होस्ट सुषमा आ चुकी है आपके पास बहुत सारी बातें करने के लिए। और एक खूबसूरत सा गीत जो बहुत ही अच्छा है, इस मौसम पर भी बहुत ही अच्छा सटीक बैठता है, यूं ये कहूँगी मैं। क्योंकि देखिए, मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा ही खूबसूरत सुहाना है, क्योंकि दिल्ली में तो झमाझम बारिश हुई है। और आपके शहर का क्या हाल है, क्या मौसम वहाँ का कैसा है, ये आप हमें ज़रूर बताएं। क्योंकि दिल्ली में तो आज है हल्की हल्की सी ठंडक, क्योंकि कल हुई है जमकर झमाझम बारिश, तो जिसके कारण कई जगह पर थोड़ी परेशानी भी हुई, जल भराव भी हुआ और भी बहुत सारी दिक्कतें हुई। लेकिन मौसम जो खूबसूरत हो जाता है तो चिपचिपी गर्मी से राहत मिलती है, और इस खूबसूरत मौसम में दिल जो है वो बहुत ही अच्छा सा महसूस करता है। और जब अच्छा महसूस करता है तो किसी की याद भी आती है, क्योंकि अच्छे पलों में हम उन अच्छे लोगों को भी याद करते हैं जो हमारे दिल के करीब रहते हैं, या वो कोई खास हो, कोई भी हो सकता है। तो कहते हैं ना कि मौसम और मोहब्बत का रिश्ता बड़ा ही पुराना होता है। खासकर कहते हैं कि मौसम को डेडिकेट किया गया है मोहब्बत के नाम पर ही। अगर मौसम सुहाना हो जाता है, हवाएं चलती हैं, बरसात होती है, फूल खिलते हैं, या कुछ भी होता है, तो हम मोहब्बत के दीवाने उसे मोहब्बत के साथ ज़रूर कनेक्ट करते हैं। बादल हो तो यादें कहते हैं बरसती हैं, बारिश हो जाती है तो कहते हैं प्यार जाग रहा है, भैया उस साथी को मिस कर रहे हैं। अगर धूप निकल जाए तो हम कहते हैं कि भाई धूप में चलने का मन मचल रहा है अपने साथी के साथ, क्योंकि ऐसा हसीन खूबसूरत जो मौसम होता है, उसकी जो प्यारी सी फीलिंग होती है, ये सबकी अपनी अपनी है, लेकिन एहसास सबका एक ऐसा ही होता है। तो दोस्तों, एक अच्छी सी फीलिंग, एक अच्छे से एहसास के साथ इस अपने कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आज आप हमारे साथ रहेंगे पूरे 11 बजे तक। और मोहब्बत के मौसम के साथ साथ दिलों के बंधन की भी हम जरूर बात करेंगे। फिलहाल आप इंजॉय करें इस बहुत ही खूबसूरत प्यारे से गीत को, और आज आप किस विषय पर बात रखें वो हम आपको बताएंगे इस गीत के बाद। तो दोस्तों, एक बार फिर से आपको बता रही हूँ, मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त सुषमा, और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आपकी पसंद। आप इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं IPRadioDelhi@gmail.com के जरिए।

दरवाजे तो चोरों से बंद करें लेकिन अपने दिल के दरवाजे सबके लिए खोलें, क्योंकि देखिए अब जो हमारे आसपास का कहते हैं ना कि लोगों का रहने का तरीका या आसपास का समाज जो बदला है उससे बस अगर अपने दिल के दरवाजे बंद करके रखेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा जीना, क्योंकि परिवार सिकुड़ गए, छोटे हो गए, एकल हो गए, और एकल में भी कभी कभी ऐसी फीलिंग आता है कि कोई भी अपने आसपास नहीं है, तो ऐसे में अगर अपने दिल के दरवाजे बंद रखेंगे तो फिर जीना हो जाएगा मुश्किल। और हम तो चाहते हैं कि हमारे साथी हमेशा सबके साथ घुलते मिलते रहें, सबके साथ

साथ रहें तो खुशी के साथ रहें, हंसी के साथ रहें, तभी रिश्ता अच्छा होता है और एक दूसरे को भी समझ बनती है। अब इतना सारा जो मैं बातें रिश्तों की कर रही हूँ उसके पीछे एक कारण दोस्तों ये है कि अभी हाल ही में मैं एक कहीं पर मैंने पढ़ा कि 6 दोस्तों ने कम्युनिटी लिविंग का कॉन्सेप्ट शुरू किया, और वो इसलिए क्योंकि देखिए अब सबके परिवार भी थोड़ा दूर दूर हो गए हैं। पीछे अगर देखा जाए मुड़के तो आप देखेंगे, अगर गाँवों की बात करूँ, अब ना सिर्फ पहाड़ों के गाँव बल्कि देश के हर जगह पर जहाँ से पलायन होता है, लोग कमाने के लिए बाहर निकलते हैं, बच्चे पढ़ने के लिए निकलते हैं, तो पीछे बच जाते हैं बूढ़े माँ बाप या फिर और घर के लोग। और शहरों की बात करें तो यहाँ पर भी बस ऑफिस की भाग दौड़ और अपने कॉलेज जाना पढ़ना, तो कहीं किसी से जुड़ाव ही नहीं हो पाता, कोई किसी से बात नहीं करेगा, कोई गैदरिंग नहीं होती, कुछ नहीं होता, तो ऐसे में इंसान जो है वो अकेला अकेला फील करता है। तो ये जो कम्युनिटी लिविंग का कॉन्सेप्ट 6 दोस्तों ने शुरू किया था, जिसके जरिए उन्होंने सोचा कि हम एक साथ ही एक ऐसा कैंपस लेंगे जहाँ पर सारे 6 दोस्त एक साथ रहेंगे, 6 लोगों के लिए घर बने अलग अलग, लेकिन कम्युनिटी किचन बनाया जिसमें 6 लोगों का परिवार एक साथ खाना खाता है और एक साथ रहते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में काम आते हैं, और जो भी समस्या आती है किसी का, अगर आपस में कुछ कहते हैं ना कि कुछ ऊपर नीचे बात भी हो जाती है, तो उसे भी मिल बैठ कर ही सुलझा लेते हैं। अगर किसी के बेटे या बेटी की शादी है, किसी का जन्मदिन है, तो उन खुशियों को भी एक दूसरे के साथ मिलकर बांटते हैं, जिससे एक दूसरे का बोझ जो है वो कम हो जाए और खुशियां भी मिले। तो इससे इन दोस्तों ने जो एक्सपेरिमेंट 6 साल पहले शुरू किया, आज की समय में ये खुश हैं, इनके परिवार भी खुश हैं कि हम सब एक साथ रहते हैं, एक दूसरे की भावना का सम्मान करते हैं, और सोशल लिविंग कहा जाए इसके तो सोशल लिविंग है, एक दूसरे के साथ रहना भी है, समझना भी है, और परिवार को भी साथ जोड़ के रखना है। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट अगर आपके आसपास भी है, वैसे ये बहुत कम है, लेकिन इसी से जुड़ी मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या आप सामूहिक परिवारों यानी ज्वाइंट परिवार में रहते हैं या आप एकल परिवार में हैं? क्योंकि संयुक्त परिवार या ज्वाइंट परिवार में रहने के बहुत सारे फायदे भी होते हैं, तो एकल परिवार के भी हैं, लेकिन दोनों ही जगह पे नुकसान भी हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात, आप ज्वाइंट परिवारों में रहेंगे तो उससे बहुत सारी समस्याएं हल हो जाती हैं। इस पर आप क्या सोचते हैं आप हमें ज़रूर बताएं। हमारी मेल आईडी है ipradiodelhi@gmail.com। और दोस्तों ये गीत बहुत ही खूबसूरत है, इसे जरूर सुने। और मैं आपको बता दूं उन दोस्तों के लिए कि कौन है, तो भी मैं हूं आपके साथ, आपके साथ ही सुषमा, और उम्मीद करती हूं कि आपके इस विषय से संबंधित जो संदेश आएंगे वो मैं ज़रूर हाथों हाथ लूंगी, और जिनके मैसेजेस मैं शामिल नहीं कर पाई जो इस विषय से संबंधित ना हो, तो वो नाराज़ ना हो साथी।

हाँ, दिलों का बंधन, रिश्तों का बंधन, ये तो बहुत ही खूबसूरत है। मौसम बदलते हैं तो उसी तरह से कहते हैं ना, रिश्तों में भी थोड़ा थोड़ा बदलाव आता है। पर समय परिवर्तित हुआ तो उसके साथ साथ, समय परिवर्तन के साथ साथ रिश्ते भी बदले और रिश्तों के नाम भी बदले, और वो गर्माहट भी रिश्तों की बदली है। तो दोस्तों, हम यही जानना चाहते हैं कि ये जो, जैसे मैंने एक स्टोरी पढ़ी तो वो मैं, मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो लोग बिल्कुल अकेले रहते हैं, जो कई बार होता है कि कोई पास नहीं होता, तो इस तरह का अगर कॉन्सेप्ट अपनाते हैं तो अच्छा है ना, कि कभी बीमार पड़ गए, कुछ भी हुआ, आप अकेला फील कर रहे हैं, तो कम से कम इस कम्युनिटी लिविंग में इतना फायदा तो होगा कि आपका कोई ध्यान रख पाएगा, आपको समय पर खाना मिल जाएगा, आप उदास हैं तो आपकी खुशी का भी ध्यान रखें, क्योंकि एक बंधन बन जाता है ना, फिर एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, जुड़ते हैं, एक दूसरे के परिवार के साथ भी घुलते मिलते हैं, तो खाली समय नहीं बचता। जो हम बहुत ज्यादा सोचते हैं ना, हाइपर थिंकिंग जिसे बोलते हैं, वो हम करते हैं, तो वो उससे हम शायद बच जाते हैं। अब देखते हैं कि हमारे दोस्तों के इस पर क्या क्या जवाब आए हैं। देख तो रही हूँ मैं, बहुत सारे जवाब आ चुके हैं। तो सबसे पहला संदेश जो मैंने लिया वो है कौशल्या देवांगन जी का। तो ये लिखते हैं कि एकल परिवार के नुकसान भी हैं, कि बुजुर्गों की कमी महसूस होती है, क्योंकि दादा दादी या बड़े बुजुर्ग ना हो तो बच्चों को संस्कार और उनके जो अनुभव हैं उनसे वो वंचित रह जाते हैं। भिलाई छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या जी ने और हेमलता देवा और डिंपल देवांगन ने ये संदेश भेजा। साथ ही ये लिखते हैं कि अगर स्वतंत्रता, मतलब आप ज्वाइंट परिवार में नहीं रहते तो उसके फायदे भी हैं, जैसे कि पति पत्नी अपने निर्णय अपनी परिस्थितियों के अनुसार ले लेते हैं, मतभेद परिवार के सदस्य कम होते हैं तो कम होते हैं, रोज के छोटे छोटे कामों में मतभेद हो जाते हैं, बच्चों पर वो अधिक ध्यान दे पाते हैं, जैसे कि उनकी पढ़ाई हो गई, उनके संस्कार या उनकी जरूरतों को ज्यादा अच्छे से वो देख पाते हैं, और आर्थिक योजना में भी अगर एकल

परिवार हैं तो उस पर वो अपनी आय का अधिक खर्च कर पाते हैं, और जैसे जो कि संयुक्त परिवार में नहीं कर पाते हैं। और दूसरी बात कि निजता, पति और पत्नी और बच्चों को अपनी निजी जिंदगी के लिए ज़्यादा स्वतंत्रता यानी फ्रीडम मिल जाती है। तो ये तो इन्होंने नुकसान और फायदे बताए। हमने आपसे कहा था कि जो ज्वाइंट लिविंग है, क्या इस तरह की भी आप उसको प्रेफर करेंगे, या आपके आसपास इस तरह के जो ज्वाइंट परिवार हैं, सामूहिक संयुक्त परिवार हैं, वो कैसे रहते हैं, या क्या सोचते हैं आप कि ऐसा होना चाहिए, तो आप ज़रूर बताएं। और एक हमारे साथी हैं किशनगंज बिहार से, रविंद्र मोहन दास दास और आशा देवी। इन्होंने लिखा है कि संयुक्त परिवार सबसे अच्छा होता है। तो ये तो आपकी बात सही है, उसके भी अपने फायदे हैं। देखिए, एकल परिवार के फायदे और नुकसान भी हमारे साथी ने बताए। और अगला संदेश मैं ले रही हूँ गांव फरांसी जिला हिसार से, राजकुमार ढूडी और प्रमोद कुमार ढूडी का। ये लिखते हैं कि जब हम सब मिलकर एक साथ एक परिवार में रहते हैं तो वो खुशी ही अलग होती है। अगर किसी को कोई समस्या है या कोई घर में बीमार हो जाता है तो सब मिलकर उसे सुलझा ले सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, ये फायदा है। और आजकल जो अकेलापन, डिप्रेशन और अलग अलग चीजें जो दिमाग में आती हैं, उन सबसे भी बच जाते हैं, सही ना। और अगला संदेश है चंडीगढ़ सिटी से भेजा है ये सतीश अनेजा और बिमला अनेजा ने। ये लिखते हैं कि संयुक्त परिवार में अगर आपसी तालमेल सार्थक है तो समझ लो आप जन्नत में जी रहे हैं, क्योंकि जब परिवार में हर किसी की सलाह मशविरा के लेकर किसी भी काम को अंजाम देते हैं तो उसमें कामयाबी मिलना स्वाभाविक है। हम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे ही परिवार में जिंदगी बसर कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात, आप अपने इस सामूहिक परिवार को यानी संयुक्त परिवार को बनाए रखें और इसी तरह से आप खुश रहें और स्वस्थ रहें। और अगले हमारे साथी हैं जिन्होंने उत्तराखंड हरिद्वार से संदेश भेजा, लेकिन जो हम अक्सर सवाल पूछते हैं उसका ये संदेश नहीं भेजते हैं, और इनका नाम हम अभी नहीं ले रहे हैं, शायद हमारे साथी समझ चुके हैं। और अगला संदेश है हरजिंदर सिंह जी का, और ये लिखते हैं हम यहाँ हस्बैंड वाइफ रहते हैं, बेटा मुंबई में नौकरी करता है और बच्चों के साथ रहते हैं, लेकिन हम लोग बहुत खुश हैं। ये लिखते हैं कि हम भी खुश हैं, लेकिन हमने आपसे पूछा था कि कई बार होता ना कि जिंदगी में अकेले रहते हैं तो आसपास आस पड़ोस में भी लोग घुल मिल जाते हैं, उसे भी अपना परिवार मान लेते हैं, क्योंकि लगता है कि अपना ही परिवार है। नहीं तो अकेला रहकर अकेलेपन की भावना आती है, लगता है कि कोई नहीं है, परिवार होने के बावजूद भी हमारे पास परिवार नहीं है। और इन्होंने ये संदेश भेजा है जमशेदपुर से, स्टेशन रोड से, एंजल सोनू और तमन्ना भाटिया के साथ। और दोस्तों, अगला बहुत ही खूबसूरत गीत है जो अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। और भी मैसेजेस लेंगे हम, संदेश पढ़ेंगे अपने इस कार्यक्रम में, लेकिन एक और खूबसूरत गीत। तो जब तक म्यूजिक चल रहा है तब तक हम ले लेते हैं एक और संदेश। ये संदेश है लेवाई छत्तीसगढ़ से, गुलाब दास माणिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी और रानी मानिकपुरी का। ये लिखते हैं कि दीदी जी, नमस्कार दीदी जी, हम तो संयुक्त परिवार में रहते हैं, लड़ते झगड़ते भी हैं पर एक साथ हैं। एकल परिवार में अकेलापन इंसान को जीने नहीं देता, इसलिए मेरे हिसाब से संयुक्त परिवार सबसे बढ़िया। साथ में हंस लो, साथ में रो लो, कोई भी चीज़ की कमी नहीं होती, हालांकि कुछ समस्या हो सकती है। बिल्कुल।

हाँ, आज हम बात कर रहे हैं कम्युनिटी लिविंग और कम्युनिटी डाइनिंग की, कम्युनिटी इंजॉय फेस्टिवल की, कम्युनिटी फेस्टिवल, कम्युनिटी हर चीज़ की। तो भाई, मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि अभी एक लेटेस्ट कॉन्सेप्ट एक तरह से सोसाइटी में पनप रहा है और लोग इस पर एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं कि कम्युनिटी लिविंग हो, कम्युनिटी किचन हो, जिसमें 5-6 परिवार एक साथ रहें और एक साथ खाना खाएँ, एक साथ घुलना मिलना सीखें, उनके बच्चे भी आपस में रहें, हर एक दूसरे के त्यौहार, उसमें जाति धर्म का कोई भेद नहीं, सब मिलकर रहें और एक दूसरे के त्योहारों को भी अच्छे से सेलिब्रेट करें। तो मुझे तो लगता है कि अगर इस तरह से कुछ होता है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि शहरों में खासतौर पर जब लोग अकेले पड़ते जा रहे हैं या गांवों में भी, तो वहां पर भी 5-6 परिवार एक साथ रह सकते हैं। और आपको बताऊं, मैं हमारे इंडिया में ऑलरेडी एक कम्युनिटी किचन होती है जिसका कॉन्सेप्ट ऑलरेडी उसका एग्जिस्टेंस है, वो अभी चल रहा है और वो है उत्तराखंड के माणा गांव में। आपने शायद सुना होगा, आप वहां घूमने भी गए होंगे बद्रीनाथ से आगे। तो माणा गांव में कम्युनिटी किचन का ही कॉन्सेप्ट है। वहां पर चाहे किसी के घर पे रिश्तेदार भी आ जाए, तो जब किसी के घर पे भी आएगा तो हर एक घर हर दिन पूरे गांव के लिए खाना बनाता है, चाहे उसके घर में कोई रहने के लिए आया है, कोई रिश्तेदार है। तो इस तरह से सारे गांव के लोग एक पूरा दिन एक ही घर में जाकर वहां पर खाना भी बनाते हैं, वहां पर मिलकर काम भी करते हैं और एक साथ मिलकर खाते भी हैं और एक ही साथ मिलकर पूरे काम भी करते हैं। तो इस तरह का अस्तित्व ऑलरेडी है कम्युनिटी किचन, कम्युनिटी कामों का। लेकिन अगर आप, हम जानना चाहते हैं कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, और सामूहिक परिवार हो गए, एकल परिवार हो गया, आपको कभी इस तरह का मौका मिला कि आप अपने आसपास के लोगों, 4-5

आपके दोस्त हैं अच्छे, आप उनके साथ रहिए, या ऐसे अकेले कहीं दूर हैं तो वहीं पे 10-12 परिवार एक साथ ही एक ही जगह पर खाएं बनाएं और एक साथ रहें, तो क्या आप इस तरह से कुछ कर पाएंगे? एक और हमारे साथी हैं भोपालगढ़ राजस्थान से, धर्मेंद्र छीपा, कपिल ईशान छीपा और पूजा परिहार। इन्होंने लिखा है कि इन्हें कार्यक्रम पसंद आ रहा है और इन्होंने गुड मॉर्निंग लिखा है, तो नमस्कार आपको भी। ये लिखते हैं कि वैसे इंसान के पास समय की बहुत कमी रहती है, हम तो अभी सामूहिक परिवार में आनंद उठा रहे हैं और एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हैं, क्योंकि एकता में ही ताकत है। हम अगर परिवार में एक साथ रहते हैं तो सुख दुख की पहचान होती है और एक दूसरे के दुख सुख में उसकी सहायता के लिए हम तत्पर रहते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, और उसका अपना ही एक महत्व है उसका। देख रही हूँ बहुत सारे साथी जुड़ चुके हैं, अच्छा लग रहा है कि इस विषय के साथ साथी जुड़े हैं। जैसे अगला संदेश, ये तो हमारे साथी हैं जिनका मैसेज ही मैंने अभी लिया, राघव हैं, इन्होंने तो इसके बारे में कुछ नहीं लिखा, इन्होंने अपने साथियों के साथ अपनी फरमाइशी गीत सुनना चाहा है। कमल मरावी हैं, इन्होंने भी अपनी पसंद का गीत सुनना चाहा है। छत्तीसगढ़ लोरमी से इन्होंने ये संदेश भेजा था। फारूक अली जी हैं, इन्होंने भी लिखा है, और इन्होंने विषय के बारे में तो कुछ नहीं लिखा लेकिन ये चाहते हैं कि इनकी पसंद का गीत हम सुनवाएं। कस्बा गुन्नौर यूपी से इन्होंने संदेश लिखा है और ये लिखते हैं कि कल तो हमारे यहाँ मौसम बहुत ही खूबसूरत था और आज थोड़ी धूप निकल रही है। तो देखिए, हमने तो फारूक जी आपसे जो अभी संदेश पूछा है, जानना चाहा है कि एक साथ सामूहिक रूप से रहना आप पसंद करेंगे या करते हैं, या आसपास इस तरह के परिवार हैं आपका, एकल परिवार है या संयुक्त परिवार है, आप क्या सोचते हैं कि ऐसे ही एक साथ 5-6 परिवार अलग अलग रहें तो अच्छा होगा, या आप उसके बारे में क्या सोचते हैं, तो ज़रूर बताएं और हम कोशिश करेंगे उन्हीं साथियों के संदेशों को हम पूरा पढ़ें जो इस विषय पर अपना संदेश हम तक पहुंचाएंगे। अगले साथी हैं संदीप मक्कर, इन्होंने भी क्या लिखा है भाई, ये लिखते हैं कि जितनी ज़्यादा सुविधाएं हो गई उतना परिवार छोटा हो गया है। आजकल तो हस्बैंड वाइफ ही है, हस्बैंड वाइफ में ही नहीं बनती है, ज़्यादातर बड़े परिवार तो दूर की बात है। ये लिखते हैं अपने साथी, अपने घर के ही सदस्यों के नाम इन्होंने लिखे हैं, संदीप, ज्योति, मन्नत, भरत और कमल। इन्होंने भेजा है पिंगा वाला चौक गौराया जलंधर से। आप सही कह रहे हैं कि छोटे परिवार हो गए और आपस में ही नहीं बनते रिश्ते, लेकिन लोग अब उन चीज़ों से ऊपर उठकर ऐसे रिश्तों को बनाने लगे हैं, अपने ही रिश्तों को सुधारने लगे हैं। उन्हें समझ में आ गया कि जुड़ना एक अच्छी चीज़ है, ना कि अलग होना। वो चाहते हैं कि छोटी छोटी समस्याओं को लेकर बड़े मतभेद ना हों, इन मतभेदों को कम करके हम एक साथ रहेंगे तो बच्चों के लिए भी अच्छा होगा और उनके लिए भी अच्छा होगा। ऐसे हमारे साथी हैं, एक उन्होंने लिखा कि भाई उन्हें प्रोग्राम पसंद आ रहा है और ये लिखते हैं कि हमें तो सावन के महीने में प्रभु आराधना करना और सावन के झूले झूलना, उसके साथ दाल पकड़ पकवान उसके साथ दाल पकवान खाना बहुत ही अच्छा लगता है। इन्हें प्रोग्राम पसंद आ रहा है तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस तरह से हमारी हौसला अफजाई करते हैं तो अच्छा लगता है हमें भी। उम्मीद है आपको अगले गीत भी पसंद आएंगे और जो विषय हमने आप आज आपके सामने रखा है उसे भी आप ज़रूर सुन रहे हैं और अपनी राय उस पर आपने दी भी है और देना चाहेंगे। तो अगला जो हमारे साथी हैं ये भी अपनी पसंद का गीत सुनना चाहते हैं, ये हैं एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, इन्होंने अपने साथियों के साथ संदेश भेजा है। और साथी हैं हमारे एक जिन्होंने अपनी पसंद का ही गीत सुना चाहा है, अनिल कोहले हैं ये। तो देखिए, हमने आपको पहले ही कहा था आज प्रोग्राम के कि जो विषय होगा उस पर जो संदेश भेजेगा उसका संदेश हम सबसे पहले लेंगे। और देखिए, ये एक और संदेश है हमारे पास, इनको प्रोग्राम पसंद आ रहा है, ये है किशन वन जानी। और साथ ही एक और है हमारे साथी बिट्टू गगनेजा जी, इन्होंने जलालाबाद वेस्ट से ये संदेश भेजा अपने साथियों के साथ। किशन जी का संदेश हम ले चुके हैं, दिलावर खान हैं, इन्होंने भी अपनी पसंद का ही गीत सुनना चाहा है। ऐसे ही और भी साथी हैं जिन्होंने संदेश भेजे हैं लेकिन उन्होंने विषय को लेकर कुछ नहीं भेजा है, तो अगले एक साथी हैं उनका हम मैसेज लेंगे और उसके बाद सुनवाएंगे आपको गीत। प्रकाश वर्मा है, ये लिखते हैं कि संयुक्त परिवार के कई लाभ हैं, ये परिवार के सदस्यों के बीच आर्थिक बोझ के समान बंटवारे को बढ़ावा देते हैं और सभी की बुनियादी जरूरतों की पूर्ति सुनिश्चित करते हैं। परिवार के बुजुर्ग सदस्यों का सम्मान भी किया जाता है और उनकी देखभाल भी

0: की जाती है। संयुक्त परिवार के बच्चे एक साथ पढ़ाई, खेलकूद और अनुशासन का पालन करते हुए आपस में घनिष्ठ संबंध बनाते हैं। छत्तीसगढ़ पलारी से ये संदेश भेजा है हमारे साथी ने प्रकाश वर्मा, जैसे हमने बताया था आपको, और इनके साथी प्रिंस निखिल और यशस्वी, और इन्होंने बिल्कुल सही बात कही है, क्योंकि जब बच्चे संयुक्त परिवार में एक साथ खेलते हैं, उनकी आपस में ही जो उन्हें बातें शेयर करनी होती हैं वो खेलते हैं, आपस में छोटी मोटी तकरारें भी होती हैं, लेकिन वो डिप्रेशन में जाना, वो बहुत बड़ी बड़ी कदम उठा लेना बच्चों के द्वारा, वो सब नहीं होता, क्योंकि बच्चे अपनी दिल की बात एक दूसरे के साथ, अपने भाई बहनों के साथ नहीं तो अपने जो चचेरे भाई बहन हैं उनके साथ कर लेते हैं, अपनी ताई चाची जी के साथ घुल मिल लेते हैं, इससे बहुत फायदा होता है। तो और भी संदेश आए हैं जिन्हें हम शामिल करेंगे अपने प्रोग्राम में, लेकिन उससे पहले आप सबके लिए एक और बहुत ही खूबसूरत गीत। वजीर फिल्म से ये गीत है अमिताभ बच्चन की आवाज में। ये आप देखें, इसमें बहुत ही खूबसूरत गीत और बहुत अच्छा मैसेज है।
1: तेरी यारी चल माना इस बारी,
0: क्योंकि जब हम कम्युनिटी के रूप में रहते हैं तो सभी एक दूसरे के दोस्त होते हैं, एक दूसरे को समझते हैं।

बहुत ही खूबसूरत गीत और रिश्तों की गूढ़ता जो दिखाता है, क्योंकि देखिए पता क्या होता है, दोस्ती और ये जरूरी नहीं है कि दोस्त बाहर का ही हो। जैसे हम हर बार चर्चा करते हैं, हमारे घर में ही जब हम सामूहिक परिवारों में रहते हैं ना, तो हमारे भाई बहन, हमारे जो कजिन ब्रदर सिस्टर होते हैं, जो हमारे ताऊ चाचू मामू इनके बच्चे होते हैं, बुआ जी के मामे बच्चे होते हैं, उन सब के साथ अच्छा बॉन्ड होता है। पर मैं

देखती हूँ कि हमारे अपने ही परिवारों में, जब हाँ चाहे वो हमारे ताऊ चाचू जी हों, बुआ हों, सबके बच्चे अपने अपनी ज़िंदगी में बिजी हैं और एक मैसेज तक नहीं महीनों आते हैं। तो ऐसे लगता है कि परिवारों में ना कनेक्शन नहीं है, वो दोस्ती धीरे धीरे खत्म होती जाती है। तो दोस्तों, हमने कोशिश की कि इस तरह का कॉन्सेप्ट जो दोबारा से अब लोगों को महसूस होने लगा है कि भाई अकेला रहना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि एक समय था कि सबको लगता था अरे कौन इन झंझटों में पड़ेगा, इतने बड़े बड़े परिवार हैं, कौन इतनी मेहनत करेगा, कौन काम करेगा। लेकिन लोगों को उन परिवारों की अब अहमियत समझ आने लगी है, जहाँ पर एक दूसरे का सम्मान भी हो और एक दूसरे का प्यार भी मिले। तो दोस्तों देखिए, एक और साथी हैं उत्तम नगर दिल्ली से, बोधराज खोरवाल, कमला रानी, भानु प्रकाश जी। इन्होंने संदेश भेजा कि लिखते हैं, जिम्मेदारी का एहसास बच्चे अकेले महसूस नहीं करते, अच्छे बुरे वक्त में परिवार का साथ, बुजुर्गों का अनुभव प्राप्त होता है, आदर सम्मान भी उन्हें सीखने को मिलता है, संयुक्त परिवार अच्छा होता है। बिल्कुल सही, मुझे भी ये लगता है कि संयुक्त परिवार अच्छा होता है। नरेश मल्होत्रा हैं, इन्होंने भी भेजा है संदेश खैल बाजार पानीपत से, और अपने साथियों के साथ ये लिखते हैं कि साथ रहना ही सबसे बड़ा परिवार माना जाता है। तो ये आपने बिल्कुल सही की, और अपनी पसंद का गीत सुनना चाहा है, अपने साथियों के नाम भी भेजे हैं इन्होंने, और ये कहते हैं कि भाई हमने भी मैसेज बड़ी देर से भेजा, क्या शामिल नहीं करेंगे? देखिए, शामिल तो कर लिया आपका संदेश, आप देखिए ऊपर नीचे हो ही जाता है। हमारे साथी हैं दंतरेगी से भागवत वर्मा, इन्होंने भी अपने साथियों के साथ संदेश भेजा है और इन्हें कार्यक्रम पसंद आ रहा है। ये कहते हैं कि आप हमारा संदेश पढ़ें या ना पढ़ें, लेकिन हम प्रोग्राम सुन रहे हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह के साथी हमारे साथ जुड़े रहें और खुश रहें, हमें सुनते रहें और अपने दिल की बात भी हम तक पहुंचाते रहें, तो हमें भी अच्छा लगता है। जिला मुरादाबाद, ग्राम दुल्हापुर, उत्तर प्रदेश से भी मोहम्मद फरहान और उनके साथियों का संदेश हम तक आया है। अनिल मोहन जी ने भी हम तक संदेश पहुंचाया, और सीताराम कांगड़ा ने भी संदेश भेजा है, इन्होंने भी अपनी पसंद का गीत सुनना चाहा है। बब्बल है, इन्होंने लिखा है, ज्वाइंट परिवार में जो एकता होती है, परिवार में अगर कोई परेशानी में है तो सब मिलकर उस परेशानी को हल करते हैं। कई बार हमारे दोस्त भी हमारी परेशानी के लिए राय लेते हैं और हम उसकी परेशानी के हल करते हैं। मतलब ये कहना चाहते हैं कि इनकी दोस्त इनसे पूछते हैं तो उनकी परेशानी को हल करते हैं। मोहाली पंजाब से ओम प्रकाश मल्होत्रा के साथ इन्होंने संदेश भेजा, तो बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी तरह से अपने दोस्तों के साथ जुड़े रहें, उनकी परेशानियों को भी दूर करते रहें, उनकी समस्याओं को सुलझाएंगे, तभी आप उनके दिल के करीब हो पाएंगे। और तुलसी मस्किन जी हैं, इन्होंने भी संदेश भेजा है, ये लिखते हैं कि 55 साल से मैं रेडियो को सेवा दे रहा हूँ। शुक्रिया शुक्रिया, क्योंकि आप हमारे एक ईमानदार लिसनर हैं, जो 55 साल बहुत होते हैं, अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा आपने रेडियो को दिया है, तो हमारे लिए तो आप एक धरोहर हैं, तो क्यों हम आपको नाराज़ तो नहीं करते। आपको बहुत बहुत बधाई, आपने कहा कि बधाई तो बनती है आपको जी, जो तो आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि ऐसे कहते ना कि इतनी कंटिन्यूटी मेंटेन करना, आजकल तो कहते ना क्विक का ज़माना है, यूज़ एंड थ्रो, अच्छा ये अच्छा नहीं लगा चैनल चेंज करो, ये अच्छा नहीं लगा ये कर लो, ऐसे फेंक दो। तो आपने जो अपना रिश्ता हमारे साथ बरकरार रखा है, आप हर परिस्थिति में हमें सुनते हैं, हमारे साथ जुड़े रहते हैं, उसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और ये कहते हैं कि आज मेरी शादी की सालगिरह है, और इन्होंने कोई विश नहीं, कोई शिकवा नहीं। तो भाई आपको शादी की सालगिरह भी बहुत बहुत बधाई, मुबारक। और अपनी साथी संगी बीना मस्किन के साथ इन्होंने ये संदेश भेजा है, और ये चाहते हैं कि रोमांटिक गीत। अब अगला गीत जो है वो गाना तो बहुत अच्छा है और रोमांटिक है, आपको कैसा लगेगा ये तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन गीत बहुत अच्छा है और आप सबके लिए, आपके लिए स्पेशली डेडिकेट है वो गीत। लेकिन एक दो संदेश और लूंगी, उसके बाद ही वो गीत आपको सुनने को मिलेगा। गोवर्धन बिहारी, कॉलोनी शाहदरा, दिल्ली से इन्होंने ये संदेश हम तक पहुँचाया है। और अगले साथी हैं हमारे सुरेश खुराना जी, और देख लेते हैं और कौन कौन से साथी हैं। ये है हमारे साथी वड़िंग खेड़ा पंजाब से, इन्होंने भी कहा कि कोई गीत सुना दें। पिंकी थॉमस और इनके साथी प्रकाश वर्मा जी का संदेश हम शामिल कर चुके हैं अपने इस प्रोग्राम में। नाना लमसे हैं, इन्होंने मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा वेरड़ी नाना से भेजा है ये संदेश, इन्होंने भी लिखा कि किसी भी गीत में हमें शामिल करें। डोल राना है और ये लिखते हैं कि पहले संयुक्त परिवार में रहने की परंपरा थी, पर वर्तमान में परिवार टूट रहे हैं, कारण है परिवर्तन। जो संयुक्त परिवार में रहने के फायदे हैं, एकल परिवार में नहीं। ये है नेहरू विहार दिल्ली।

आप सही कहते हैं, क्योंकि ज़्यादा मेहनत अब लोग नहीं कर, क्योंकि संयुक्त परिवार में कुछ लोग बहुत पिस जाते हैं, कुछ लोगों को अपनी पर्सनल, जब कहते हैं ना कि अपनी एक प्राइवेसी, वो नहीं मिल पाती, तो ये भी एक कारण है कि लोगों को लगता है कि हम ज्वाइंट परिवारों में ना रहें। और ये जो बहुत ही खूबसूरत गीत आप बैकग्राउंड में सुनेंगे, हाईवे फिल्म से है, बहुत ही खूबसूरत गीत है, आपको ज़रूर पसंद आएगा। साथ साथ कुछ एक संदेश भी शामिल कर रही हूँ। राघव बघेल ने भी लिखा है कि हम लोग तीन भाई और तीन बहू, माता पिता एक साथ रहते हैं, एक साथ खेती का काम करते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है, तो बहुत अच्छी बात, आप ऐसे ही रहें एक साथ मिलकर। इन्होंने भेजा है ये संदेश लगान पंढरिया छत्तीसगढ़ से। भारूकली खान जी का संदेश है, ये तो लिखते हैं कि हम तो बचपन से ही फैमिली के साथ रहे, एक साथ रहने का जो मज़ा है उसका कोई सानी नहीं, तो बिल्कुल सही। और इसके अलावा एक और संदेश है मस्कीन दादाजी का, ये लिखते हैं कि अपने परिवार के साथ हम बहुत खुश हैं, इनके दो बेटे हैं चैतन्या आशीष, और एक चंडीगढ़ में रहता है, और बहुत खुश हैं सभी। इसके अलावा क्या चाहिए, सभी परिवार मज़े में हैं। और ये लिखते हैं कि आज मेरी 34वीं मैरिज एनिवर्सरी है। तो लीजिए मस्कीन जी, तो आप ही का मैसेज है, आपने बिल्कुल अलग तरीके से हमें भेजा, तो आपको एक बार फिर से आपकी 34वीं शादी की सालगिरह की बहुत बहुत बधाई। रमेश चौहान जी ने भी संदेश भेजा है, साथ में राधे श्याम शर्मा है, गांव हांडी खेड़ा सिरसा से इन्होंने संदेश भेजा है। ये भी बहुत ही इन्होंने लिखा है क्रिस्प सा संदेश, अपने पसंद का गीत सुनना चाहा है। राजी शर्मा है, इन्होंने भी लिखा है कि प्रोग्राम अच्छा चल रहा है, मलौट पंजाब से इन्होंने ये संदेश भेजा है अपने साथियों के साथ। तो एक बहुत ही खूबसूरत गीत है, इसको आप इंजॉय करें, समय कम है। परवीन है, इन्होंने लिखा कि ये अपनी पसंद का गीत सुनना चाहते थे, खरगोन मध्य प्रदेश से। एक और मसरूर हसन, चलते चलते ये संदेश भी ले लेते हैं। तो साथियों, बहुत अच्छा लगा आपने हमें अपने संदेश भेजे और प्रोग्राम के विषय के साथ जुड़े आप, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस गीत को इंजॉय करें, और यही कहूँगी कि परिवारों को बना के रखें, रिश्तों को बरकरार रखें, चाहे दोस्ती का हो, परिवारों का हो, या कोई ऐसा रिश्ता जिसे आप दिल से चाहते हैं, मिलते जुलते रहें एक दूसरे के साथ, सुख दुख में जरूर काम आए। तो फिलहाल इस प्रोग्राम से दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुषमा शर्मा के साथ, और अब समाचार सुनेंगे कुछ ही पलों में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। 3000 से अधिक विद्यार्थियों में स्नातक और स्नातकोत्तर विद्यार्थियों सहित 587 पीएचडी शोधार्थी शामिल हैं।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समारोह के दौरान संस्थान के सबसे प्रतिष्ठित सम्मान जैसे प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल, डायरेक्टर्स गोल्ड मेडल, शंकर दयाल शर्मा गोल्ड मेडल और परफेक्ट 10 गोल्ड मेडल मेधावी छात्रों को प्रदान करेंगे। इसके अलावा श्री मोदी परम प्रज्ञा का भी उद्घाटन करेंगे, जो आईआईटी दिल्ली के सोनीपत कैंपस में स्थापित एआई संचालित हाई परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटिंग सुविधा है। यह आधुनिक सुविधा एआई, डेटा साइंस, एडवांस कंप्यूटिंग और अंतर विषयक शोध के क्षेत्रों में संस्थान की क्षमताओं को मजबूत करेगी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि आईआईटी दिल्ली ने हमेशा अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। श्री मोदी ने कहा कि वह इस अग्रणी संस्थान के छात्रों और शिक्षकों के बीच जाने के लिए उत्सुक है। श्री वांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज मुंबई में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास

0: विकास निगम द्वारा आयोजित सम्मेलन को संबोधित करेंगे। श्री शाह निगम के नवनिर्मित कार्यालय का उद्घाटन भी करेंगे। सम्मेलन का आयोजन BSE इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में किया जाएगा। इसमें शहरी सहकारी बैंकों, राज्य सहकारी महासंघों के प्रतिनिधि, नीति निर्माता और अन्य संबंधित पक्ष शामिल होंगे। सम्मेलन में सहकारी बैंकिंग व्यवस्था को मजबूत करने और देश में आत्मनिर्भर सहकारी क्षेत्र को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि सरकार भारतीय शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के कार्यक्रमों को समयबद्ध और प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कल रात शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में ये बात कही। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने कहा कि बैठक में मंत्रालय के वर्तमान कार्यक्रमों की समीक्षा भी की गई। भारत ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर अमेरिका के सांसद की आपत्तियों को खारिज कर दिया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ये देश का आंतरिक विधायी मामला है और इस पर निर्णय संसद करती है। उन्होंने कहा कि अमेरिका सहित कई देशों में भी विदेशी धन के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए कानून लागू हैं। भारतीय भुगतान परिषद ने कहा है कि UPI के माध्यम से किए जाने वाले डिजिटल भुगतान उपभोक्ताओं के लिए निःशुल्क रहेंगे। व्यापारियों से डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए भी कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। परिषद ने बताया कि बैंक, फिनटेक कंपनियां, NPCI और भारतीय रिजर्व बैंक UPI को सुरक्षित और भरोसेमंद बनाए रखने के लिए तकनीक, साइबर सुरक्षा, धोखाधड़ी रोकने और नई सुविधाओं में लगातार निवेश कर रहे हैं। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने सीमा पार आतंक की साजिश रचने में दो आरोपियों के विरुद्ध अभियोग पत्र दाखिल किया है। दोनों आरोपी पंजाब और नई दिल्ली में सुनियोजित हमले के लिए भारत पाकिस्तान सीमा पार IED विस्फोटक और हेरोइन की कथित तस्करी में संलिप्त हैं। एजेंसी की मोहाली विशेष अदालत में कल शुभम कुमार और फरार जसवीर चौधरी के विरुद्ध अभियोग पत्र दायर किया गया। अमरीकी सीनेट ने रूस से तेल खरीदने वाले चीन और अन्य देशों को दंडित करने संबंधी विधेयक पारित कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि चीन और अन्य देश रूस से पेट्रोलियम उत्पाद खरीद रहे हैं, जिससे रूस को यूक्रेन युद्ध में मदद मिल रही है। लिंडसे ओ ग्राहम के नाम पर रखे गए इस विधेयक के समर्थन में 86 और विरोध में 11 वोट पड़े। ये विधेयक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रूस से तेल और गैस खरीदने वाले 5 बड़े देशों पर 100% शुल्क लगाने की अनुमति देगा। रेलवे ने ओणम के अवसर पर केरलम के लिए विशेष ट्रेन सेवाओं की संख्या बढ़ाकर 112 कर दी है। इन विशेष रेलगाड़ियों का मुख्य रूप से तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से आवागमन होगा। पूर्वी क्षेत्रीय ट्रेनों के लिए भी ओणम विशेष सेवाएं उपलब्ध हैं। राष्ट्र आज नोबेल पुरस्कार विजेता और राष्ट्रगान के रचयिता रविन्द्रनाथ ठाकुर की 85वीं पुण्यतिथि पर उन्हें स्मरण कर रहा है। उनका निधन 7 अगस्त 1941 को हुआ था। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi will address the 57th convocation ceremony of the Indian Institute of Technology Delhi today. He will address over 3,000 graduating students, including 587 PhD scholars, who will be conferred their degrees during the ceremony. We have more from our correspondent.
2: Prime Minister Narendra Modi will present the institute's most prestigious honours, including the President's Gold Medal, Director's Gold Medal, Shankar Dayal Sharma Gold Medal and Perfect 10 Gold Medal to the meritorious students during the ceremony. Further, Mr. Modi will also inaugurate Param Pragya, an AI-powered high-performance supercomputing facility established at the Sonipat campus of IIT Delhi. The state-of-the-art facility is expected to significantly enhance the institute's capabilities in AI, data science, advanced computing and interdisciplinary research. In a social media post, the Prime Minister has said that IIT Delhi has always made a rich contribution in the fields of research and innovation. Mr. Modi said that he looks forward to being among the students and teachers of this pioneering institute. Shivang Mishra, Akashwani News, Delhi.
1: Payments Council of India has announced that UPI will continue to be free for consumers. In a statement,

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, सुबह के 11:10 और पूरे हो चुके हैं स्टोरी के घड़ी के मुताबिक 20 सेकंड, और अब समय हुआ है हमारे एक विशेष कार्यक्रम का। तो कुछ ही पलों में सुनेंगे आप हमारा अगला कार्यक्रम।
1: गवर्नमेंट ए मार्केटप्लेस जिम 9 अगस्त को अपना स्थापना दिवस मनाने जा रहा है। ये भारत में पारदर्शी डिजिटल पब्लिक प्रोक्योरमेंट सरकारी खरीद के एक दशक पूरे होने का प्रतीक है। अगस्त 2016 में इसकी शुरुआत हुई थी। इस संस्था के बारे में और अधिक जानकारी के लिए सुनिए ये भेंट वार्ता संस्था के मुख्य कार्यकारी अधिकारी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मेहर कुमार से भेंट कर रहे हैं दिलीप झा।
2: हम में से कई ने और आम लोगों ने भी हमारे विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत जिम यानी कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, सरकारी ई मार्केट प्लेस का नाम जरूर सुना है। हम उसके बारे में जानकारियां देते रहे हैं। ये न केवल एक ऑनलाइन खरीद पोर्टल है, बल्कि ये सरकारी खरीद को पारदर्शी, कुशल, किफायती, समावेशी और तकनीकी संचालित बनाने वाला राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म है। आगामी रविवार को यानी कि 9

0: अगस्त को ये संस्था अपनी स्थापना के 10वें वर्ष पूरी कर रही है। इस संस्था के कार्य प्रणाली, इसके महत्व, इसकी उपयोगिता और इसकी भविष्य की योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ आकाशवाणी के स्टूडियो में उपस्थित हैं इस संस्था के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर श्री मिहिर कुमार। श्री मिहिर कुमार जी, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: हम शुरुआत करते हैं इस संस्था से, चूंकि इसके स्थापना के वर्ष पूरे हो रहे हैं, इसकी सफलताएं भी हैं अपनी, और हम लोगों ने अपने कार्यकाल के दौरान अपने कार्यालय ने भी इसके महत्व को देखा है। तो एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जब आप इस संस्था में आए हैं, तो आपकी प्रमुख प्राथमिकताएं क्या हैं और आने वाले वर्षों में किस तरह से इसको और एक वैश्विक परिदृश्य में ई प्रोक्योरमेंट के लिए स्थापित करने की योजना बना रहे हैं?
1: धन्यवाद आपका मुझे ये मौका देने के लिए। हमारी प्राथमिकताएं हैं, हम चाहते हैं इस कार्यक्रम में जो मुहिम है, जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट सिस्टम की जो मुहिम है इलेक्ट्रॉनिक बनाने की, इससे सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़े। अभी हमारे पास करीब 25 लाख व्यापारी और उद्यमी जुड़े हुए हैं। हम चाहते हैं कि ये संख्या बढ़ती जाए, और जहाँ की आप जानते हैं ये एक ऐसी सुविधाजनक प्रणाली है जिसमें कि किसी को जुड़ने के लिए, व्यापारी बनने के लिए, उद्यमी बनने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी दफ्तर में किसी से मिलने की आवश्यकता नहीं है। वो ऑनलाइन सिस्टम है जिसमें वो खुद को रजिस्टर कर सकते हैं और अपनी भागीदारी जो है बना सकते हैं। तो जो कहा जाता है डेमोक्रेटाइजेशन, जो एक्सेस देना, लोगों को व्यापार का मौका देना सुगम तरीके से, सुविधाजनक सरल तरीके से, वही हमारी प्राथमिकता है और उस प्राथमिकता को हम बनाए रखना चाहते हैं।
0: डिजिटल इंडिया भारत के परिदृश्य को पूरी तरह से बदल दिया है और इसमें अभी और एक क्रांति आ रही है। इसको देखते हुए अगर हम जेम की स्थिति देखें, तो आपको क्या लगता है कि जो साइबर सुरक्षा है, डाटा की गोपनीयता है या डिजिटल एक फेथ होता है संस्थाओं के प्रति, इस सब में भी चैलेंजेज हैं, तो ऐसी चैलेंज को निपटने के लिए आपकी स्ट्रेटजी किस तरह की है?
1: क्योंकि इसका अवतार ही डिजिटल रूप में हुआ है, तो जब इसकी संरचना की गई तभी तमाम तरह की इस जानकारी को ध्यान में रखा गया कि भाई इसको सुरक्षित कैसे रखना है, इसकी सुरक्षा के क्या नियम होंगे, जिससे कि किसी तरह की जो है साइबर अटैक हो तो कैसे बचाया जा सकता है डाटा को, ऑडिट ट्रेल की इंटीग्रिटी को कैसे बनाए रख सकते हैं। तो जब पोर्टल का सृजन ही किया गया तो ये तमाम चीज़ें इसके साथ इनबिल्ट हमने बनाई हुई, और यदा कदा जब इस तरह की कोई चीज़ें नज़र आती हैं तो हम उसको तुरंत उस पर अपनी कार्रवाई शुरू कर देते हैं। तो और इसको अभी हम लोग फिर से रीप्लेटफॉर्म कर रहे हैं, नया पोर्टल बनाने की हमारी मुहिम चल रही है, उसमें और भी इसको सुदृढ़ करने की चेष्टा की जा रही है।
0: MSMEs हैं, जो छोटे लघु उद्योग सब हैं, स्टार्टअप हैं, इंटरप्रेन्योरशिप है, खास करके महिला उद्यमी हैं, ग्रामीण उद्यमी हैं, ये सब भी अपने उत्पाद बनाते हैं और एक अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर लाना चाहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने वोकल फॉर लोकल की भी बात की है, साथ ही साथ बात होती है मेक इन इंडिया की, कि हमारे यहाँ मौलिक रूप से जो उत्पाद बने वो क्वालिटी वाले बने। इस सब को देखते हुए आपने किस तरह अपने कार्यकाल के दौरान, आपका अनुभव क्या है कि जेम में ऐसे क्षेत्रों से ऐसे लोगों की भागीदारी बढ़ी है, और ऐसे लोगों को और किस तरह से अधिक सक्षम रूप से आप जेम की ओर जोड़ना चाहेंगे?
1: जहाँ तक हमारे पोर्टल का संबंध है, और हम लगातार देख रहे हैं कि जो सूक्ष्म और लघु व्यापारी हैं और उद्यमी हैं, उनका अगर देखेंगे, भारत सरकार में कहा गया है कि भाई सरकारी खरीदारी में उनके कम से कम 25% की भागीदारी होनी चाहिए, उस संख्या की जगह हमारे पोर्टल पे उनका करीब 45% से ज़्यादा का भागीदारी। और हमारे इसके अलावा एक तो ये है कि हमने अपने पोर्टल में कुछ फिल्टर्स बना रखे हैं, जिससे ये पता लगता है कि ये प्रोडक्ट मेक इन इंडिया है, ये छोटे व्यापारी का है, उद्यमी का है। एक तो फिर हमने करीब 8 से 10 वोकल फॉर लोकल स्टोर फ्रंट भी बना के रखा है, जो डिजिटल स्टोर है, जिसमें वुमेनिया है तो वुमेन एंटरप्रेन्योर ने क्या बनाया है, स्टार्टअप्स हैं, उनकी क्या टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं, उनको हम शोकेस करते हैं, दिखाते हैं, जिससे कि बायर जो खरीदारी करते हैं, जो हमारे पोर्टल पे आते हैं, वो उसको देखें और समझें। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, ODOP की प्रोडक्ट है, आर्टिसंस हैं, वीवर्स हैं, हैंडीक्राफ्ट के आइटम हैं, इम्पोरियम्स हैं, इन तमाम लोगों को हमने एक शोकेस भी दे रखा है। तो एक तो सुविधा है कि आपके प्रोडक्ट को हम दिखाते हैं, दूसरा है कि आपकी भागीदारी हम सुनिश्चित कराते हैं फिल्टर्स बना के, जिससे कि लोग आपसे जुड़ना चाहें तो उस फिल्टर के माध्यम से वो खरीदारी कर सकते हैं।
0: ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, क्योंकि एक बात होती है कि जो सार्वजनिक खरीद है तो उसको अधिक पारदर्शी होना चाहिए, अच्छा भी क्विक होना चाहिए, और खास करके एक रिस्पॉन्सिबल होना, जवाबदेह भी होना चाहिए और भ्रष्टाचार से मुक्त भी होना चाहिए। तो इस सब के में किस तरह से आप तकनीकी का यूज करते हैं, सुधार किस तरह से करते हैं, खास करके जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डाटा एनालिटिक्स है या डिजिटल तक

0: किस तरह से आप लोग उपयोग करते हैं, कितना महत्वपूर्ण मानते हैं इन तकनीकों को?
1: बड़ा अहम सवाल है और बहुत ही प्रासंगिक भी है। इसमें सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि जो जैसा मैंने पहले भी कहा कि सभी लोग इस पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, तो हम कोई अलग से व्यवस्था हम नहीं रखते हैं। जब आप ऑनलाइन रजिस्टर करते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि आपको हर एक सेलर को हमने एक डैशबोर्ड दिया। ये हमारा सशक्तिकरण की मुहिम है। उस डैशबोर्ड पे जितने भी टेंडर्स आते हैं, जितने भी खरीदारी आती है भारत सरकार में विभिन्न विभागों द्वारा या राज्य सरकार के विभिन्न, उनको हम नोटिफिकेशन देते हैं। तो हर एक व्यापारी, हर एक उद्यमी को ये पता लगता है कि कहाँ किस विभाग में कौन सी खरीदारी आई है, वो सारे पब्लिकेशन वहाँ आते हैं। दूसरा चीज हम क्या करते हैं कि हमारे यहाँ जो भी निविदा पब्लिश होती है, टेंडर जो पब्लिश होता है, उसके बाद हम मौका देते हैं किसी भी उद्यमी को, व्यापारी को देख के बताने के लिए क्या इसकी कंडीशंस ठीक हैं, नहीं ठीक हैं, क्या उसके बारे में वो कोई रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, कुछ वो उनकी शिकायत है वो रहती है। किसी को अगर हम रिजेक्ट करते हैं उसको भी ये मौका दिया जाता है कि वो अपने रिजेक्शन को चैलेंज कर सकता है, उसको चुनौती दे सकता है। इसके अलावा जो पोर्टल पे हमने देखा है, क्योंकि पोर्टल पे हम लोगों ने अपनी एक मिशन स्टेटमेंट जारी करी है कि वी वुड लाइक टू डिमॉन्स्ट्रेट राइट प्राइस एंड राइट क्वालिटी, सही मूल्य और सही गुणवत्ता, वो हमारा एक तरह से मूल मंत्र भी है। उसके लिए हम क्या करते हैं कि हमने AI ML के यूज केसेस कहते हैं उसको, AI ML के फील्ड में उसको कहते हैं यूज केसेस। तो हमने एक प्राइस गैप एनालिसिस टूल बनाया है, PGA टूल। उससे करीब हमने 1,000,000 कैटलॉग्स जिसकी की प्राइस, जिसका मूल्य हमारे हिसाब से उचित नहीं था, उसको हमने पोर्टल पे आने नहीं दिया। इस तरह से और भी कई हमारी 22 से ज्यादा AI ML की यूज केसेस हैं, जिससे हम पोर्टल पे कोई किसी तरह की कार्टलाइजर करने की कोशिश कर रहा हो, कोई किसी तरह की डेविएंट बिहेवियर जिसको कहते हैं, विसंगति करने की कोशिश चेष्टा कर रहा हो, उसको हम रोक पाते हैं। और जब नहीं रोक पाते हैं, अगर हो जाता है, तो हम फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए बायर संस्था को बताते हैं, इसको देखने का आवश्यकता है। और अगर डाटा से हम उसको रोक सकते हैं तो हम खुद ही रोक लेते हैं, सेलर को हम सस्पेंड भी करते हैं।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप तकनीक के द्वारा जो है इसको कंट्रोल करते हैं, लेकिन एक बात होती है, एक तो होता है गुणवत्ता, अधिक होता है मूल्य, इस दोनों में भी चुनौतियां होती हैं। तो जो अन्य ई प्लेटफॉर्म है वो क्या करते हैं कि अगर वो डिलीवरी के बाद ग्राहकों को चीज पसंद नहीं आती है तो वापसी का भी प्रावधान रहता है। तो कुछ खरीदार ऐसे होते हैं या विक्रेता ऐसे होते हैं जो गुणवत्ता के साथ ज्यादा फोकस करते हैं या उसके साथ ज्यादा कम्प्रोमाइज कर जाते हैं मूल्य निर्धारण के लिए, और ये जो वापसी की प्रक्रिया होती है खरीदने के बाद, इसके लिए आपकी संस्था द्वारा कोई नियंत्रण या निगरानी किया जाता है?
1: बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। और चूंकि आजकल सभी लोग खरीदारी करते हैं बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेसेस से जहाँ की उनकी वापसी की पॉलिसी है, सरकारी खरीद में क्या है कि सबसे पहले जो मूल रूप से जो परिवर्तन है वो ये है कि बाहर दूसरे प्लेटफॉर्म पे खरीदारी में कई बार, ज्यादातर समयों पे अक्सर पैसा पहले ले लिया जाता है, सामान बाद में आता है। सरकार में पहले सामान आता है उसके बाद पेमेंट होता है, मतलब पहली तो एक ये सिस्टम की अलग तरह की प्रक्रिया है। दूसरा है क्या कि सरकार में सामान आने के बाद उसको एक, उसको कहते हैं हम लोग कंसाइनी रिसीट एंड एक्सेप्टेंस सर्टिफिकेट, क्रैक जनरेशन। तो आप जो भी कंसाइनी है जिसके पास वो सामान आया है वो उसको खोलता है, देखता है, और जब उससे संतुष्ट होता है तब वो क्रैक जनरेट करता है हमारे पोर्टल। तो ये जो है मूलभूत परिवर्तन है दोनों में। इसके बाद भी हो सकता है कि पैकेट खोलने के बाद और जो सामान आया है वो सही मूल्य का, उसका गुणवत्ता सही नहीं हो, ऐसे केस में वो उसको रिटर्न कर सकता है और उसके बाद वो हमारे पोर्टल पे इसकी शिकायत भी उस सेलर के अगेंस्ट कर सकता है। तो गुणवत्ता को उस तरह से हम लोग एड्रेस करते हैं, क्योंकि सरकारी नियमों के हिसाब से हमारे यहाँ खरीदारी होती है, जिसमें कि मूलभूत ये है कि भाई पहले सामान आएगा उसके बाद पेमेंट किया जाएगा।
0: निश्चित रूप से इसी से भरोसा भी बढ़ता है और विश्वसनीयता के साथ साथ जो है प्रक्रिया भी सरल बन जाती है, क्योंकि उनको प्रोडक्ट देखने के बाद वो पेमेंट करते हैं, जनरेट करते हैं।
1: बल्कि क्रैक जनरेट करने के बाद सरकार ने कहा है 10 दिन के अंदर पेमेंट करना है, तो फास्टर पेमेंट हमारा भी है। हम भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनको अगर सामान संतुष्ट तरीके से उसने दिया है, क्योंकि व्यापारी आपसे जुड़ रहा है तो उसको चाहिए तुरंत पैसा मिलना, तो उसकी भी हम पहल करते हैं,
0: ताकि जो सेलर है जो प्रोडक्ट बना रहा है उसको समय पे पैसा मिले, तभी उसका भी फायदा होगा, बिजनेस आगे चलेगा। बहुत अच्छा। आप एक प्रशासनिक अधिकारी हैं, आप इससे पहले गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय में भी रहे हैं और अब आप बहुत ही डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में आ गए हैं जहाँ खरीद बिक्री की बात की जाती है, तो आपका जो पूर्व अनुभव है वो किस तरह से इस संस्था में आपको नेतृत्व के लिए सक्षम कर रहा है और आपको अपने जो लंबे प्रशासनिक जीवन से जो आपको नेतृत्व संबंधी जो जिम्मेवारी आई है वो कैसे उपयोगी मानते हैं इस संस्था के लिए?
1: देखिए, जब आप सिविल सर्विसेज ज्वाइन करते हैं तो एक उद्देश्य ये रहता है कि आप देश

0: तो हम चाहते हैं कि जो उस चुनौती में जो उनका लक्ष्य होता है, जिसके लिए सारी चीज़ों की सामग्री की आवश्यकता होती है, वो हम अपने पोर्टल के माध्यम से उनको सही समय पे, सही वक्त पे, सही जगह पे मुहैया करा सकते हैं।
1: अभी ये गवर्नमेंट का ई मार्केट प्लेस है, तो ये गवर्नमेंट संस्थाएं मंगा रही हैं, क्या ऐसी कोई योजना है या आपको लगता है कि ऐसा कोई स्कोप है इस संस्था को आम लोगों के लिए बेहतर सुविधा देने का, खास करके हमारे यहाँ जो ई मार्केट में आजकल जितनी भी कंपनियां आ रही है, चाहे विदेश की हो या देश की हो, वो काफी सफल रही है।
0: इसके लिए सरकार की एक दूसरी संस्था है ONDC, ओपन डिजिटल नेटवर्क फॉर कॉमर्स, ONDC, जो ई कॉमर्स को प्राइवेट सेक्टर के लिए वो उससे हम ड्राइव करते हैं। तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जो जेम है, ये सरकारी खरीदारी की प्रगति को देखता है, और ONDC प्लेटफॉर्म जो है वो भी सभी लोगों के लिए है, और उसकी पकड़ है प्राइवेट प्रोक्योरमेंट के लिए। तो ये दोनों वाणिज्य मंत्रालय के अंदर है और दोनों ही संस्था जो है एक साथ आगे बढ़ने की चेष्टा कर रही है।
1: बहुत अच्छा। निश्चित रूप से चूंकि जो सरकार द्वारा नियंत्रित और संचालित होती है, तो विश्वसनीयता अपनी बनाए रखती है, और हमको लगता है कि दूसरी संस्था जो आपने ONDC कहा है, इसका शायद बहुत प्रचार प्रसार नहीं हुआ है, इसीलिए आम लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। निश्चित रूप से अगर ऐसा कुछ होगा लोगों को, तो सरकार के जो प्रयास है वो काफी सफल हो जाएंगे। 9 तारीख को होने वाले जो फाउंडेशन डे समारोह के लिए और अपनी सफलता के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। श्री मिहिर कुमार जी, आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आए और आपने जेम के बारे में विस्तृत जानकारियां दी कि किस तरह से ये सुविधाएं दे रहा है, प्रोडक्ट क्वालिटी को मेंटेन करता है, कंट्रोल करता है, किस तरह से वो स्थानीय स्तर पर महिलाओं द्वारा भी और किसानों द्वारा भी बने हुए उत्पादों को किस तरह से वो एक तरजीह देता है, किस तरह से आपने फिल्टर लगा रखे हैं उन सब के लिए, खरीद बिक्री को किस तरह से पारदर्शी बनाते हैं विश्वसनीय रूप से, इन सब बातों पर जानकारियां दी। इन सब जानकारियों के लिए और आकाशवाणी आने के लिए समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद आपका भी, और मैं चाहूंगा कि जेम के ये जो 10वां जो हमारा वर्ष है, इससे आकाशवाणी भी जुड़े, और हमारी कोशिश रहेगी कि देश में ये बहुत बड़ी पहल है, देश की प्रगति के लिए बहुत बड़ी पहल है माननीय प्रधानमंत्री जी की, इसमें आप सभी की भागीदारी बनी रहे। धन्यवाद।
2: अभी आप गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मेहर कुमार से ये भेंट वार्ता सुन रहे थे। भेंट करता थे दिलीप झा, वाचन स्वर कमल किशोर बड़ाई का, और कार्यक्रम के प्रस्तुत करता थे दिलीप झा। ये प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से किया गया।
3: और अब सब रस ने आप सुनेंगे पंजाबी की गुरदास मान की स्वर में।

आपने सुना पंजाबी गीत गुरदास मान के स्वर में, और अब आप सुनेंगे सुरमंजरी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में सालीम कुमार से राग गुजरी तोड़ी में सितार वादन।

0: सुरमंजरी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में अभी आपने सुना सालेम कुमार का राग गुजरी तोड़ी में सितार वादन। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। कुछ ही पलों में समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पढ़ाई के बाद छात्र जीवन की नई शुरुआत होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
2: प्रतिपल बदल रहा है और इसके पीछे सबसे बड़ी फोर्स है टेक्नोलॉजी की स्पीड। आज कोई भी निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि अगले 20-30 वर्षों की दुनिया कैसी होगी, लेकिन साथियों, जब जब बदलाव का दौर आता है तब तब चुनौतियां भी आती है और नए अवसर भी पैदा होते हैं। दुनिया बदलेगी, टेक्नोलॉजी भी बदलेगी, इंडस्ट्रीज बदलेगी, प्रोफेशंस भी बदलेंगे, लेकिन इन सब के बीच मेरी बात याद रखिएगा, जो सीखेगा वो जीतेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आईआईटी दिल्ली कैंपस में आना उनके लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि आप केवल डिग्री नहीं अपने सपने लेकर यहां से निकल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने 587 पीएचडी शोधार्थियों को सम्मानित किया। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी छात्र आंदोलन के बीच सरकार और विद्यार्थी प्रतिनिधिमंडल के बीच कल पहली औपचारिक वार्ता हुई। करीब 1.5 घंटे तक चली बैठक में विद्यार्थियों ने भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच

0: और भर्ती प्रक्रिया में व्यापक सुधार की मांग दोहराई। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में आज सुबह एक बस दुर्घटना में 7 लोगों की मौत हो गई और 11 अन्य घायल हो गए। राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र के अनुसार दुर्घटना सुबह करीब 7:15 बजे हुई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बस बैरागढ़ से चंबा की ओर जा रही थी। इसी दौरान चलवांज मोड़ के पास चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा और बस सड़क से उतरकर नीचे दूसरी सड़क पर गिर गई। चंबा के पुलिस अधीक्षक विजय सकलानी ने बताया कि दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस दल ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू किया। दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट पर श्री मोदी ने इस घटना में परिजनों को खोने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। भारतीय भुगतान परिषद ने कहा है कि यूपीआई के माध्यम से किए जाने वाले डिजिटल भुगतान उपभोक्ताओं के लिए निःशुल्क रहेंगे। व्यापारियों से डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए भी कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। परिषद ने बताया कि बैंक, फिनटेक कंपनियां, एनपीसीआई, रिजर्व बैंक यूपीआई को सुरक्षित और भरोसेमंद बनाए रखने के लिए तकनीक, साइबर सुरक्षा, धोखाधड़ी रोकने और नई सुविधाओं में लगातार निवेश कर रहे हैं। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने सीमा पार आतंक की साजिश रचने में 2 आरोपियों के विरुद्ध अभियोग पत्र दाखिल किया है। दोनों आरोपी पंजाब और नई दिल्ली में सुनियोजित हमले के लिए आईईडी, विस्फोटक और हेरोइन की कथित तस्करी में संलिप्त हैं। एजेंसी की मोहाली विशेष अदालत में कल शुभम कुमार और फरार जसवीर चौधरी के विरुद्ध अभियोग पत्र दायर किया गया। रेलवे ने ओणम के अवसर पर केरलम के लिए विशेष ट्रेनों की संख्या बढ़ाकर 112 कर दी है। इन विशेष रेलगाड़ियों का मुख्य रूप से तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से आवागमन होगा। यूक्रेन की राजधानी कीव के निकट रूस द्वारा रात में किए गए मिसाइल हमलों में एक बच्चे सहित 3 लोगों की मौत हो गई। आज तड़के कीव के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में ये हमले हुए। अमेरिका में विश्व एथलेटिक्स अंडर-20 चैंपियनशिप के 3रे दिन भारत को पहला पदक मिला। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में आशीष यादव ने रजत पदक अपने नाम किया। 19 वर्षीय आशीष ने 74.09 मीटर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 2रा स्थान हासिल किया। दक्षिण अफ्रीका के जॉन हैंड्रिक हेबेंस ने स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi is addressing the 57th convocation ceremony of the Indian Institute of Technology, IIT Delhi. Earlier, Prime Minister Modi conferred degrees on 587 PhD scholars during the ceremony. We now go live to the Prime Minister's address.
2: वो अकेले नहीं आती है, मुश्किल जब आती है ना, तो साथ साथ मौके भी लेकर आती है। सबको बस अलर्ट रहना है, सतर्क रहना है। इस संस्थान ने जो सिखाया है बार बार याद रखना है। साथियों, मैं लाइफ की कुछ प्रैक्टिकल बातें भी आपसे शेयर करना चाहता हूं। कैंपस का जीवन और कैंपस के बाहर का जीवन, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। आईआईटी की परीक्षा में सिलेबस होता है, लेकिन जिंदगी की परीक्षा में सब कुछ आउट ऑफ सिलेबस होता है।
1: द झारखंड गवर्नमेंट टुडे हेल्ड टॉक्स विद प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स एंड जॉब एस्पिरेंट्स ओवर अलेज्ड इररेगुलरिटीज इन एग्जामिनेशंस कंडक्टेड बाय द जेपीएससी एंड जेएसएससी। द मीटिंग बिगन एट द स्टेट गेस्ट हाउस इन रांची। An 8-member delegation representing the students and job aspirants is holding discussions with government officials. The talks come after protests in the state capital over the past 2 weeks against the alleged irregularities in the exams. The first formal meeting between the government and the

0: और आंगन।
1: घर आंगन कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त मंजुला
2: और मैं हूँ श्रुतिपुरी। स्वीकारिए हमारा प्यार भरा नमस्कार। अभी आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। साथ ही साथ आप हमें सुन सकते हैं इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 KHz, DRM 810 KHz पर।
1: और श्रुति, सावन की हरियाली, रिम झिम फुहारों की ताजगी, तिरंगे की शान से सजा

0: सुजाता फिल्म में अभी आप आशा भोसले को सुन रहे थे।
1: और दोस्तों आज 8 अगस्त है, भारतीय इतिहास का वो दिन जिसने आजादी की लड़ाई को एक नई दिशा, नई ऊर्जा और नया संकल्प दिया। यह है अगस्त क्रांति दिवस यानी भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत का दिन और देशवासियों को एक मंत्र मिला, करो या मरो।
0: मंजुला, साल था 1942। पूरी दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध की आग में जल रही थी। भारत से अंग्रेज हर तरह का सहयोग चाहते थे, लेकिन आजादी देने का उनका कोई इरादा नहीं था। देश का धैर्य अब जवाब दे चुका था।
1: और फिर आया 8 अगस्त 1942 का ऐतिहासिक दिन। मुंबई के गोवालिया टैंक मैदान में हजारों लोग एकत्र हुए। हर चेहरा उम्मीद से भरा था, हर दिल में आजादी की लौ जल रही थी। स्कूलों और कॉलेजों के विद्यार्थी सड़कों पर उतर आए। किसानों ने विरोध का बिगुल फूंका, मजदूरों ने हड़ताल की, गांव गांव और शहर शहर में आजादी की आवाज गूंजने लगी।
0: और इस क्रांति में हमारी वीरांगनाएं भी किसी से पीछे नहीं रही।
1: बिल्कुल,
0: महिला स्वतंत्रता सेनानियों ने अगस्त क्रांति मैदान में तिरंगा फहराकर साहस का नया इतिहास रचा। उषा मेहता ने गुप्त रेडियो के माध्यम से अंग्रेजों की पाबंदियों को चुनौती देते हुए पूरे देश तक क्रांति की आवाज पहुंचाई। यही तो भारत की ताकत थी। जब एक एक नागरिक ने ये ठान लिया कि अब आजादी से कम कुछ
1: कुछ
0: भी
1: भी
0: स्वीकार
1: स्वीकार नहीं,
0: नहीं।
1: और भारत छोड़ो आंदोलन भले ही तुरंत स्वतंत्रता ना दिला

0: सका दोस्तों, लेकिन उसने अंग्रेजों को ये एहसास करा दिया कि अब भारत पर राज करना संभव नहीं है। यही वो चिंगारी थी जिसने 5 वर्ष बाद स्वतंत्रता की मशाल को प्रज्वलित कर
1: और
0: दिया।
1: आज अगस्त क्रांति दिवस पर आइए उन अनगिनत ज्ञात अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करें जिनके त्याग की वजह से हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। आज़ादी केवल एक अधिकार नहीं है, ये उन लाखों बलिदानों की अमूल्य विरासत है जिसे हम अपने कर्म, अपने चरित्र और अपने राष्ट्र प्रेम में सहज कर रखते हैं।
0: बिल्कुल, और जिनकी सांसों में वतन बसता था, जिनकी धड़कनों में हिंदुस्तान था, वे चले गए इतिहास बनकर, तभी तो आज हमारा भारत महान था।
1: चलो ऐसे जीवन जिए कि देश को हम पर भी नाज हो, तिरंगे की हर लहराती शान में हमारे कर्मों का भी छोटा सा अंदाज हो।

शहीद फिल्में अभी आप मुकेश, महेंद्र कपूर, लता मंगेशकर और राजेंद्र मेहता को सुन रहे थे। और आज का सवाल एक बार फिर से कि आप अपने देश के प्रगति के लिए, प्रोग्रेस के लिए क्या कर सकते हैं, ये आपको मेल भेजना है हमारे ईमेल आईडी fmgoldga@gmail.com। और श्रुति सावन की मधुर फुहारों और आजादी के जश्न से भरे इस विशेष

0: मेरा बचपन का नाम मणिकर्णिका था, जिन्हें प्यार से मनु कहा जाता था। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, केवल एक वाक्य नहीं बल्कि ये पूरे देश के आत्मसम्मान की आवाज बन गया था। रानी लक्ष्मीबाई के साथ एक और वीरांगना थी, झलकारी बाई। वे रानी की महिला सेना दुर्गा दल का नेतृत्व करती थी। युद्ध के दौरान उन्होंने स्वयं रानी का रूप धारण कर अंग्रेजों को भ्रमित किया ताकि लक्ष्मीबाई सुरक्षित निकल सके। उनके इस साहस ने इतिहास की दिशा ही बदल दी।
1: बिल्कुल सही। और इसी तरह रामगढ़ की रानी अवंती बाई लोधी, उन्होंने अंग्रेजों के सामने कभी घुटने नहीं टेके। जब हार निश्चित दिखाई देने लगी तब भी आत्मसमर्पण करने की बजाय वीर गति को चुना। उनके सम्मान में डाक टिकट भी जारी किया जा चुका है। अवंती बाई की विश्वसनीय अंगरक्षिका गिरधारी बाई ने भी विद्रोह में सक्रिय भूमिका निभाई। इतिहास के पन्नों में उनका नाम भले ही कम लिखा गया हो लेकिन उनका साहस किसी से कम नहीं था।
0: और मध्य प्रदेश के धार की रानी द्रौपदी बाई ने 1857 के विरोध का नेतृत्व किया और अंग्रेजों का डट कर सामना किया। और मंजुला, अब तुम्हें दक्षिण भारत की यात्रा कराते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि तमिलनाडु की रानी वेलु नाचियार अंग्रेजों के विरुद्ध संगठित युद्ध छेड़ने वाली भारत की पहली रानी मानी जाती हैं। उन्होंने अपनी सेना तैयार की और अद्भुत रणनीति से अंग्रेजों को चुनौती दी।
1: और श्रुति कर्नाटक की रानी अबक्का चौटा ने पुर्तगालियों के विरुद्ध कई बार विजय प्राप्त की। समुद्री सुरक्षा और मातृभूमि की रक्षा के लिए उनका संघर्ष आज भी प्रेरणा देता है। गोंडवाना की रानी दुर्गावती ने मुगल सेना के सामने अद्भुत वीरता दिखाई। उन्होंने कभी पराजय स्वीकार नहीं की और स्वाभिमान की रक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान किया।
0: और देखो, मालवा की महारानी अहिल्याबाई होलकर को कौन नहीं जानता। अक्सर उनके उत्कृष्ट शासन और जन कल्याण के लिए उन्हें याद किया जाता है, लेकिन वे एक निर्भीक शासक भी थी जिन्होंने अपने राज्य को मजबूत बनाया और महिलाओं के नेतृत्व का एक आदर्श स्थापित किया। और जब बात होलकर वंश की हो रही हो तो भीमा भाई होलकर का नाम भी गर्व से लिया जाता है।
1: तो दोस्तों, इतिहास केवल कुछ प्रसिद्ध नामों तक सीमित नहीं है। अनगिनत ऐसी वीरांगनाएं थी जिनके बलिदान की बदौलत आज हम खुली हवा में आजादी की सांस ले रहे हैं। तो आज जब हम स्वतंत्रता दिवस सप्ताह का उत्सव मनाने की तैयारी कर रहे हैं तो आइए अपने बच्चों को इन वीरांगनाओं की कहानियां सुनाएं।

0: परदेश फिल्म में अभी आप हरिहरन, कविता कृष्णमूर्ति, आदित्य नारायण और शंकर महादेवन को सुन रहे थे। और मंजुला, अब हमें आगे श्रोताओं की मेल लेनी होगी,
1: तो चलिए तो
0: सबसे पहले
1: करिए।
0: हाँ बिल्कुल, सबसे पहले ये मेल मैं उठा रही हूँ, ये मेल है नवीन भाटिया जी की, और ये लिखते हैं कि आप अपने टैक्स टाइम पे भर के देश की सेवा कर सकते हैं, और बिल्कुल ठीक लिखा है। और जानती हूँ एक ऐसी ही मेल एक और आई है, और ये लिखने वाले हैं अनिल मेहता। ये लिख रहे हैं, हम ईमानदार नागरिक बनकर टैक्स समय पर भरकर और सार्वजनिक संपत्ति का सम्मान करके देश का विकास कर सकते हैं। बहुत सुंदर लिखा है। और इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण के लिए स्वच्छता बनाए रखें, पेड़ लगाएं और समाज के कमजोर वर्गों को शिक्षित और सशक्त बनाने में मदद करें।
1: बिल्कुल सही कहा इन्होंने। और अफरोज शेख लिखते हैं कि जो भी काम करते अपने तरफ से देशभक्ति के लिए करते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, सिखाते हैं देश के बारे में, वो भी एक देशभक्ति है। ऐना लिखती है कि देश की प्रगति सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, हम सभी की साझा जिम्मेदारी है। ईमानदारी से अपना काम करना, शिक्षा को बढ़ावा देना, स्वच्छता बनाए रखना, ये सब मैं करती हूँ अपने देश की प्रोग्रेस के लिए।
0: और तुम जानती हो कृष्ण कुमार क्या लिख रहे हैं भटीपुरा महोबा से, ये लिखते हैं कि हम अनुशासन में रहते हुए देश के संसाधनों का अपनी जरूरत के अनुसार उपयोग करके, पानी बिजली का उपयोग आवश्यकता अनुसार करके, कूड़े को कूड़ेदान में डालकर और अपने सभी बिलों का भुगतान समय पे करके, अपने देश के पर्यटन स्थलों की सैर करके, अर्थव्यवस्था में सुधार करके देश की प्रगति में अपना योगदान दे सकते हैं। कितना बढ़िया लिखा
1: है, बहुत बढ़िया। और साधना गोयल जी भी लिखती हैं कि देश की प्रगति में योगदान और अपने कर्तव्यों और नियमों का पालन कर सकते हैं, देश के संविधान और नियमों का पालन करें और अपने काम के प्रति ईमानदार रहें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, पानी बिजली सबकी बचत करें।
0: और देखो सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी, सिमरन मुखी जी, ये शांति नगर सोनीपत से लिख रही हैं, और ये लिखती हैं कि जो भी काम करें ईमानदारी से करें, बिजली पानी पेट्रोलियम प्रोडक्ट का उपयोग सोच समझ कर करें, साफ सफाई का और वातावरण को स्वच्छ रखने का ध्यान रखें, और आप सभी का दिवस शुभ हो।
1: और संदीप राय जी लिखते हैं कि एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपने काम व्यवहार और समाज के प्रति जिम्मेदारी को बेहतर तरीके से निभाना राष्ट्र निर्माण का हिस्सा है, अपने प्रोफेशनल या बिजनेस में गुणवत्ता और ईमानदारी बनाए रखना। ये मेल काफी लंबा है लेकिन मैंने इसका सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट दे दिया।
0: और देखिए जो हमें डॉक्टर राजेश्वर राय लिख रहे हैं कि हमें बहुत सोच समझ कर वोट करना चाहिए, अपनी डिग्निटी अपने राइट्स के लिए हमें हमेशा खड़े रहना चाहिए, क्राइम को करप्शन को और अनसेफ कंडीशंस का ध्यान रखना चाहिए, और हमें लॉफुल चैनल के साथ ही चलना चाहिए।
1: और सुगंधा राव भी लिखती हैं कि प्रमोट कम्युनल हार्मनी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, जेंडर इक्वालिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर इंडिया डाइवर्सिटी। बहुत ही खूबसूरत मेल इनका भी है। तो आप सबका तहे दिल से धन्यवाद इतने अच्छे अच्छे मेल भेजने के लिए।
0: और देखो आप गाना भी तो सुनवाना है ना, तो आइए सुनते हैं येसुदास की आवाज़ में ये गीत, फिल्म है सावन को आने दो।

दोस्तों कहते हैं बेटी जब विदा होती है तो उसके साथ सिर्फ एक डोली नहीं जाती, एक पूरे परिवार की परवरिश, सोच और संस्कार भी उसके साथ चलते हैं। हम अक्सर अपनी बेटियों के लिए सोना चांदी, जमीन जायदाद, बैंक बैलेंस जोड़ने में लगे रहते हैं, लेकिन जरा सोचिए, अगर सबसे बड़ी विरासत का नाम पूछा जाए तो क्या गहने होंगे या फिर वे संस्कार जो हर मोड़ पर उसका साथ देंगे। क्योंकि मंजुला, सोने के गहने तो कभी भी चोरी हो सकते हैं, टूट सकते हैं या समय के साथ पुराने पड़ सकते हैं, लेकिन अच्छे संस्कार जीवन भर साथ चलते हैं और पीढ़ियों तक आगे बढ़ते हैं। बेटी का विरासत में केवल आभूषण नहीं, उसको आत्मसम्मान दीजिए, उसे ये सिखाइए कि किसी भी रिश्ते में अपनी गरिमा के साथ कभी समझौता ना करे, उसे शिक्षा दीजिए ताकि वो अपने फैसले स्वयं ले सके, उसे आर्थिक रूप से सक्षम बनने की प्रेरणा दीजिए क्योंकि आत्मनिर्भरता सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है, उसे ये भी सिखाइए कि दूसरों का सम्मान करे लेकिन अपनी आवाज दबाकर नहीं, ना कहना भी एक संस्कार है और अन्याय के सामने खड़ा होना भी। बेटी को करुणा दीजिए लेकिन इतनी भी नहीं कि उसकी अच्छाई का लोग लाभ उठाने लगें, उसे विनम्र बनाइए लेकिन इतना भी नहीं कि वो अपना आत्मसम्मान खो बैठे, अपना आत्मविश्वास खो बैठे, उसे अपनी संस्कृति, अपनी भाषा और अपने परिवार की जड़ों से जोड़िए क्योंकि जिसकी जड़ें मजबूत होती हैं वही जीवन में सबसे बड़े तूफान में भी अड़े खड़ा रहता है। याद रखिए, माँ बाप की सबसे बड़ी पहचान बेटियों के गहनों से नहीं, उसके व्यवहार

0: संस्कार से होती है। जब लोग कहते हैं बेटी को बहुत अच्छे संस्कार मिले हैं, तो समझ लीजिए यही सबसे अनमोल विरासत है ना।
1: बिल्कुल सही। और आज समय बदल रहा है, बेटियां आसमान छू रही हैं, इतिहास रच रही हैं, देश का नेतृत्व कर रही हैं। ऐसे में उन्हें सुरक्षित भविष्य नहीं, सशक्त व्यक्तित्व भी दीजिए। क्योंकि विरासत केवल वो नहीं होता जो तिजोरी में रखा जाए, विरासत वो भी होता है जो चरित्र में दिखाई दे, व्यवहार में झलके और पूरी दुनिया में आपकी परवरिश की पहचान बन जाए। सोने चांदी के गहने समय के साथ फीके पड़ जाते हैं, संस्कारों के गहने पीढ़ियों तक परिवार का नाम रोशन करते हैं।

0: लता मंगेशकर को अभी आप सुन रहे थे, फिल्म थी रिवाज।
1: और श्रुति, जब एक स्त्री, एक महिला आगे बढ़ती है तो केवल उसका जीवन नहीं बदलता बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों का भविष्य भी बदल जाता है। और यही सोच आज के भारत को विकसित भारत बनने की दिशा में सबसे बड़ी शक्ति दे रही है।
0: देखो मंजुला, एक समय था जब महिलाओं की पहचान केवल घर की चार दीवारी तक ही सीमित समझी जाती थी, लेकिन आज वही महिलाएं अंतरिक्ष की ऊंचाइयां छू रही हैं, देश की रक्षा कर रही हैं, सीमा पार विज्ञान में नए कीर्तिमान बना रही हैं, व्यवसाय चला रही हैं,
1: बिल्कुल
0: गांवों में परिवर्तन ला रही हैं और देश की अर्थव्यवस्था को नई गति दे रही हैं। सोचिए, क्या कोई ऐसा क्षेत्र बचा है जहां
1: बिल्कुल
0: भारतीय
1: नहीं,
0: महिलाओं ने अपनी प्रतिभा का परिचय न दिया हो?
1: बिल्कुल। चाहे कृषि हो या AI, शिक्षा हो या उद्यमिता, खेल हो या राजनीति, हर क्षेत्र में नारी शक्ति भारत के विकास की नई इबा

0: भारत लिख रही है। आज लाखों महिलाएं स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आत्मनिर्भर बन रही है। छोटे छोटे गांव की बेटियां अपने हुनर से परिवार ही नहीं पूरे समाज की तस्वीर बदल रही हैं। महिला उद्यमी स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान दिला रही हैं। महिला किसान आधुनिक खेती अपना रही हैं।
1: हाँ देखो, महिला वैज्ञानिक नई खोजों से देश का भविष्य सुरक्षित बना रही हैं और हमारी बेटियां सेना, न्यायपालिका, प्रशासन और तकनीक जैसे क्षेत्रों में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करा रही हैं। लेकिन केवल उपलब्धियां ही पर्याप्त नहीं है मंजुला, विकसित भारत का सपना तभी पूरा होगा जब हर बेटी को समान अवसर मिलेगा।
0: बिल्कुल, जब शिक्षा हर लड़की का अधिकार बनेगी, जब सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन केवल शब्द नहीं बल्कि हर महिला की वास्तविक पहचान होंगे।
1: देखो, एक शिक्षित महिला केवल स्वयं शिक्षित नहीं होती बल्कि पूरे परिवार को शिक्षित करती है। एक आत्मनिर्भर महिला केवल अपनी आय नहीं बढ़ाती बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाती है। और एक आत्मविश्वासी महिला केवल अपने सपने पूरे नहीं करती बल्कि समाज की सोच भी बदल के रख देती
0: क्या
1: है।
0: क्या बात है। तो आज आवश्यकता केवल महिलाओं को अवसर देने की नहीं बल्कि उनकी क्षमता पर विश्वास करने की है। बेटियों को ये मत कहिए कि तुम ये नहीं कर सकती, बल्कि उनसे कहिए तुम्हारे सपनों की कोई सीमा नहीं, क्योंकि विकसित भारत की सबसे मजबूत नींव वही होगी जहाँ बेटा और बेटी दोनों को समान अवसर, समान सम्मान और समान विश्वास मिले।

0: अभी हम सुन रहे थे कविता सेठ को, फिल्म थी नीरजा।
1: और मंजुला कुछ मेल हमारे पास आई हैं जिन्हें हमने लेना है। ये मेल हमारे पास आई है गौरी शंकर जी की, नांगलोई से लिखते हैं कि आप दोनों बेटियों को राम राम। और ये लिख रहे हैं, जिंदगी में कोई गलत काम ना करें, हमारे देश में बड़े बड़े योद्धा हुए हैं जिन्होंने अपने कामों के साथ लोगों में प्रेरणा दी है।

0: और उनको देखकर शिक्षा भी मिलती है, तो हम उनकी शिक्षा पर अमल करें, किसी को दुख ना दें और हो सके तो अच्छा काम करें।
1: और पीहू पुंडीर जी लिखती हैं देहरादून से कि मेरा मानना है कि देश का विकास केवल बड़े बड़े पदों पर बैठे लोगों की जिम्मेदारी भर नहीं है, बल्कि हम सभी अपने अपने क्षेत्र में ईमानदारी और निष्ठा से काम करके उसमें योगदान दे सकते हैं।
0: और एक मेल आया है योगी दीक्षित जी का पीतमपुरा से, लिखते हैं कि देश के सभी नागरिक अपने दायित्व का पालन पूर्ण प्रामाणिकता के साथ और ईमानदारी से करें, यही देश की सबसे बड़ी सेवा है, यही देशभक्ति है।
1: बहुत बढ़िया, तो चलिए फिर से रुख करते हैं सावन की तरफ। श्रुति, सावन का महीना, हरियाली झूले गीत और हाथों पर रची गहरी मेहंदी, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि मेहंदी केवल सुंदरता बढ़ाने का साधन नहीं है, बल्कि आयुर्वेद की एक अनमोल देन भी है। तो आइए जानते हैं कि क्यों सदियों से भारतीय परंपरा में मेहंदी को इतना महत्वपूर्ण माना गया
0: है। बिल्कुल, देखो सावन आते ही हर घर में महिलाओं के हाथों में मेहंदी रच जाती है। तुमने मेरी हरी चूड़ियां देखी है और मेहंदी देखी है,
1: बहुत सुंदर, बहुत
0: सुंदर। ये मान्यता है कि जितनी गहरी मेहंदी रचती है ना, उतना ही प्रेम और सौभाग्य मिलता है। लेकिन इसके पीछे केवल मान्यता नहीं, विज्ञान भी छिपा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, तो आयुर्वेद के अनुसार मेहंदी की तासीर शीतल होती है बरसात के मौसम में, जब उमस और गर्मी के कारण शरीर में पित्त बढ़ जाता है, तब मेहंदी शरीर को प्राकृतिक रूप से ठंडक पहुंचाती है। हथेलियों और पैरों के तलवों पर इसे लगाने से शरीर का तापमान संतुलित रहता है और मन को भी बड़ी शांति मिलती है।
0: और यही कारण है कि प्राचीन भारत में विवाह, तीज, करवा चौथ और सावन जैसे अवसरों पर मेहंदी लगाने की परंपरा विकसित हुई। ये केवल श्रृंगार नहीं है, बल्कि शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रखने का एक प्राकृतिक उपाय भी है।
1: इतना ही नहीं, मेहंदी में एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण भी पाए जाते हैं। बालों में मेहंदी लगाने से सिर को ठंडक मिलती है, रूसी कम होता है और बालों को प्राकृतिक चमक भी बनी रहती है।
0: लेकिन एक बात का विशेष ख्याल रखें, आजकल बाजार में मिलने वाली इंस्टेंट या जो ब्लैक मेहंदी होती है ना, इनमें कई रासायनिक पदार्थ मिलाए जाते हैं जो त्वचा पर एलर्जी, जलन और दाने पैदा कर देते हैं। इसलिए हमेशा प्राकृतिक मेहंदी का ही चुनाव करना चाहिए।
1: बिल्कुल, और भारतीय परंपराओं की सबसे बड़ी खूबी यही है कि जहाँ हर रीति रिवाज के पीछे जीवन को बेहतर बनाने का कोई न कोई वैज्ञानिक और स्वास्थ्य वर्धक कारण छिपा होता है, मेहंदी भी उसी ज्ञान की एक सुंदर मिसाल है, जो हाथों की शोभा बढ़ाने के साथ साथ शरीर और मन को भी सुकून देती है।
0: तो इस सावन जब आप अपने हाथ पर मेहंदी रचाएं, तो याद रखिए ये केवल रंग नहीं, बल्कि ये हमारी आयुर्वेदिक विरासत का स्पर्श है।

0: मेहंदी रंग लाएगी। इस फिल्म में अभी आप लता मंगेशकर को सुन रहे हैं।
1: और इसी गीत के साथ आज की इस खूबसूरत सफर को यहीं विराम देते हैं। सावन का आनंद लीजिए, लेकिन अपना ख्याल भी रखिए। फिर मिलेंगे ढेर सारी जानकारी और मनोरंजन के साथ। तो दीजिए मंजुला और
0: श्रुति पुरी को इजाजत।
1: नमस्कार।

आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा। आपका घर आंगन। घर आंगन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्रों के विकास से युवाओं के लिए नए अवसर सृजित हो रहे हैं।
1: आज भारत इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस, इंडस्ट्रियल सेल्फ रिलायंस, ऐसे हर सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने के लिए काम कर रहा है। यही विकसित भारत की मजबूत नींव का सबूत है। इस मजबूत नींव पर आपको एक भव्य सुंदर विकसित भारत का निर्माण करना है।
0: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने आईआईटी दिल्ली में परम प्रज्ञा नामक उच्च दक्षता की कंप्यूटिंग सुविधा का उद्घाटन भी किया। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना और उन्हें कानूनी मान्यता देने से जुड़े मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य दिल्ली में विश्व स्तरीय निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए आधुनिक, पारदर्शी और प्रभावशाली कानूनी ढांचा तैयार करना है। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद इस विधेयक को मॉनसून सत्र के दौरान विचार और पारित करने के लिए दिल्ली विधानसभा में पेश किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग ने भारत में ऑस्ट्रेलियाई शिक्षा प्रतिनिधियों के संघ AAERI के साथ साझेदारी में एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म AAERI सत्यापन का शुभारंभ किया। मंत्रालय ने बताया कि डिजी लॉकर से जुड़े इस प्लेटफॉर्म के जरिए ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों में आवेदन करने वाले भारतीय विद्यार्थियों को अपने शैक्षणिक पहचान और वित्तीय दस्तावेजों का सुरक्षित और डिजिटल तरीके से सत्यापन कर सकेंगे। झारखंड सरकार आज जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों से बातचीत की। ये बैठक रांची के गेस्ट हाउस में हुई। परीक्षा में कथित अनियमितताओं के खिलाफ पिछले 2 सप्ताह से रांची में जारी विरोध प्रदर्शन के बाद ये बातचीत हुई है। सरकार और विद्यार्थियों के प्रतिनिधिमंडल के बीच कल शाम पहली

0: औपचारिक बैठक हुई थी। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने सीमा पार आतंक की साजिश रचने में दो आरोपियों के विरुद्ध अभियोग पत्र दाखिल किया है। दोनों आरोपी पंजाब और नई दिल्ली में सुनियोजित हमले के लिए आईईडी, विस्फोटक और हेरोइन की कथित तस्करी में संलिप्त हैं। एजेंसी के मोहाली विशेष अदालत में कल शुभम कुमार और फरार जसवीर चौधरी के खिलाफ विरुद्ध अभियोग पत्र दायर किया गया। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में आज सुबह एक बस दुर्घटना में 7 लोगों की मौत हो गई और 11 घायल हो गए। ये दुर्घटना सुबह करीब 7:15 बजे हुई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बस बैरागढ़ से चंबा जा रही थी। चलुवांज मोड़ के पास चालक ने बस पर नियंत्रण खो दिया और बस सड़क से उतरकर नीचे दूसरी सड़क पर गिर गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम और जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की खराब स्थिति को देखते हुए आज जम्मू से बालतल की ओर श्री अमरनाथ जी यात्रा रोक दी गई है। हालांकि बालतल से पवित्र गुफा की ओर यात्रा सामान्य रूप से जारी है। रेलवे ने ओणम के अवसर पर केरलम के लिए विशेष ट्रेनों की संख्या बढ़ाकर 112 कर दी है। इन विशेष रेलगाड़ियों का मुख्य रूप से तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से आवागमन होगा। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी अश्मिता चारिहा दक्षिण कोरिया के आसन में कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। अश्मिता ने आज सेमीफाइनल में हमवतन रक्षिता रामराज को हराया। अमेरिका में विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप के तीसरे दिन भारत को अपना पहला पदक मिला। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में आशीष यादव ने रजत पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। Prime Minister Narendra Modi has said that students graduating today are not merely completing their education but are beginning a new chapter in their lives. He was addressing the 57th convocation ceremony of IIT Delhi today. Mr. Modi urged the graduating students to live the moment to the fullest as they would cherish and miss the memories of their campus life in the years to come. The Prime Minister congratulated the graduating students and wished them success as they embark on a new journey.
2: आज आपके परिवार के लोग प्राउड फील कर रहे हैं, वैसे ही मुझे भी आप सब पर गर्व है, क्योंकि ये आप सब केवल एक डिग्री नहीं ले रहे हैं, आप देश के लिए बहुत कुछ करने का सपने लेकर के यहाँ से निकल रहे हैं।
1: The Jharkhand government today held talks with protesting students and job aspirants over alleged irregularities in examinations conducted by the JPSC and GSSC. The meeting began at the state guest house in Ranchi. An 8-member delegation representing students and job aspirants is holding discussions with government officials. The talks come after protests in the state capital over the past 2 weeks against the alleged irregularities in the exams. The first formal meeting between the government and the students' delegation was held last evening. Payments Council of India, PCI, has announced that UPI will continue to be free for consumers. In a statement, the PCI affirmed that every Indian can continue to make instant digital payments without any transaction charges. It also noted that small merchants will not be charged for accepting digital payments. PCI added that banks, fintech companies, NPCI and the RBI have been investing in technology, cyber security, fraud prevention and innovation to maintain UPI's reliability. 7 people were killed and 11 were injured in a private bus accident in Chamba district of Himachal Pradesh this morning. The accident occurred near Chalwanj Mor at Bairagarh under Tisa police station in the Churaha assembly constituency. The identities of the 7 people who lost their lives in the accident are yet to be ascertained. According to the State Emergency Operations Centre, the accident took place at around 7:15 a.m. today. Preliminary information suggests that the private bus was travelling from Bairagarh towards Chamba when it went off the road near Chalwanj Mor and fell onto another road below. Prime Minister Modi expressed grief over the loss of lives due to the mishap.

1962 के भारतीय भारत और चीन युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनी इस फिल्म का निर्देशन किया था दूरदर्शी फिल्मकार चेतन आनंद ने। संगीत दिया था गजलों और दर्द भरी धुनों के बादशाह मदन मोहन ने, और गीत लिखे थे उर्दू के प्रख्यात शायर कैफी आजमी ने। फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभाई बलराज साहनी, धर्मेंद्र, विजय आनंद, प्रिय राजवंश, जयंत, सुधीर, संजय खान और अन्य कई कलाकारों ने। कहा जाता है कि 1962 के युद्ध के बाद देश का मनोबल टूट सा गया था। ऐसे में तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने भारतीय सैनिकों के साहस को बड़े पर्दे पर उतारने की बहुत ज़रूरत महसूस की। चेतन आनंद को सेना का पूरा सहयोग मिला और जो वास्तविक लोकेशन पर जाकर उन्होंने फिल्मांकन किया, जिससे फिल्म का हर दृश्य बेहद वास्तविक प्रतीत होता है। यही कारण है कि आज भी हकीकत मूवी को भारतीय सिनेमा की सर्वश्रेष्ठ युद्ध फिल्मों में गिना जाता है। तो बात करते रहेंगे फिल्म हकीकत की, चलिए सुन लेते हैं इस फिल्म का ये गीत।

0: श्रोताओं, आपने अभी सुना अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में। श्रोताओं, ये केवल एक गीत नहीं है बल्कि उन अमर वीरों को हमारी विनम्र श्रद्धांजलि है जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। दोस्तों, हकीकत भारतीय सिनेमा की उन विरल फिल्मों में से एक है जिसने युद्ध को केवल गोलियों और बारूद के शोर के रूप में नहीं बल्कि सैनिकों की भावनाओं, उनके सपनों, उनके परिवारों, उनके प्रेम और उनके अदम्य साहस के साथ प्रस्तुत किया। यही कारण है कि 6 दशक से अधिक समय बीत जाने के बाद भी ये फिल्म उतनी ही प्रभावशाली और प्रासंगिक महसूस होती है। निर्देशक चेतन आनंद ने जिस संवेदनशीलता के साथ 1962 के भारत चीन युद्ध की पृष्ठभूमि को पर्दे पर उकेरा, वो भारतीय फिल्म इतिहास में एक मिसाल बन गई। मदन मोहन का कालजयी संगीत और कैफी आजमी के भावपूर्ण गीतों ने इस फिल्म को अमरता प्रदान की। बलराज साहनी, धर्मेंद्र, प्रिय राजवंश, विजय आनंद और सभी कलाकारों के सशक्त अभिनय ने इस कथा को जीवंत बना दिया। इस फिल्म का एक महत्वपूर्ण संदेश ये भी है कि सीमा पर खड़ा सैनिक केवल एक वर्दीधारी जवान नहीं होता, बल्कि वो किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का पति और किसी का मित्र भी होता है। वह अपने व्यक्तिगत सुख दुख से ऊपर उठकर राष्ट्र की रक्षा का दायित्व निभाता है। शायद इसी भावना को हकीकत ने अत्यंत मार्मिक ढंग से अभिव्यक्त किया। तो दोस्तों, हम बात करते रहेंगे फिल्म हकीकत की। आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त सुनिधि।
1: बदलो बदलो, आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

दोस्तों, अभी आपने सुना हकीकत फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत। लता जी की आवाज़ में ज़रा सी आहट होती है। ये गीत फिल्म का एक अत्यंत मधुर और रोमांटिक गीत है। युद्ध की कठोर परिस्थितियों के बीच भी प्रेम की कोमल भावनाएं कैसे जीवित रहती हैं, इसका सुंदर चित्रण इस गीत में देखने को मिलता है। मदन मोहन की आवाज़ और लता जी की मदन मोहन जी की मधुर धुन और लता जी की आवाज़ इस गीत को अविस्मरणीय बना देते हैं। जिस तरह ये फिल्म भूलने लायक नहीं है, वैसे ही इसका गीत भी उतना ही और संगीत भी उतना ही अमर है। तो इसके साथ चलिए आपको एक और गीत सुनवाते हैं, मदन मोहन जी की ही धुन और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। मस्ती में छेड़ के तराना कोई दिल का।

दोस्तों आप सुन रहे हैं एक ही फिल्म से और आज की फिल्म है हकीकत। तो श्रोताओं, फिल्म की शुरुआत होती है लद्दाख की बर्फीली पहाड़ियों से, जहां भारतीय सेना की एक टुकड़ी अपनी सीमाओं की रक्षा में तैनात है। मेजर रंजीत सिंह के नेतृत्व में सैनिक कठिन मौसम और सीमित संसाधनों के बावजूद पूरे उत्साह से अपनी जिम्मेदारियां निभा रही हैं। इसी दौरान दर्शकों की मुलाकात होती है कैप्टन बहादुर सिंह से, जिनकी भूमिका निभाई है धर्मेंद्र ने। बहादुर सिंह एक निर्भीक सैनिक हैं, लेकिन उनके भीतर एक संवेदनशील इंसान भी बसता है। लद्दाख के एक गांव में उनकी मुलाकात होती है एक सरल और निश्चल युवती अंगमू से। दोनों के बीच धीरे धीरे स्नेह पनपता है, लेकिन सीमाओं पर बढ़ता तनाव इस प्रेम कहानी पर भी अपनी छाया डालने लगता है। तो दोस्तों अब सुनिए एक ऐसा गीत जो प्रेम की मासूम प्रतीक्षा और मन की हलचल को बेहद खूबसूरती से व्यक्त करता है। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये गीत आज भी उतना ही ताज़ा लगता है जितना 6 दशक पहले था।

दोस्तों आपको इस फिल्म का एक इंटरेस्टिंग फैक्ट अगर बताएं तो फिल्म के संगीतकार मदन मोहन स्वयं भारतीय सेना में रह चुके थे। शायद यही कारण था कि सैनिकों के मन की भावनाओं को उन्होंने अपनी धुनों में इतनी गहराई से उतारा। और वहीं कैफी आजमी ने भी गीत लिखते समय केवल प्रेम नहीं बल्कि कर्तव्य विरह और राष्ट्र प्रेम को शब्द दिए। यही वजह है कि हकीकत का संगीत समय की कसौटी पर आज भी उतना ही प्रभावशाली है। यहाँ सीमा पर हालात बिगड़ते जा रहे थे, सैनिकों को यह एहसास होने लगता है कि दुश्मन किसी भी समय हमला कर सकता है। हर सैनिक अपने परिवार, अपने सपनों और अपने भविष्य को पीछे छोड़कर केवल एक ही उद्देश्य के साथ डटा है, वो है देश की रक्षा। ऐसे ही भावों को शब्द देता है अगला गीत। ये गीत साहिराना अंदाज नहीं बल्कि एक सैनिक के टूटते हुए दिल की सच्ची आवाज़ है। मोहम्मद रफ़ी की दर्द भरी गायकी और कैफी आजमी के मार्मिक शब्द

दोस्तों, इन गीतों के माध्यम से और फिल्म की कहानी के माध्यम से हमने केवल एक फिल्म के संगीत का आनंद ही नहीं लिया, बल्कि उस दौर की उस संवेदनाओं, संघर्षों और राष्ट्रप्रेम को भी महसूस किया। इसी के साथ आज के कार्यक्रम एक ही फिल्म से को हम यहीं विराम देंगे और आपको छोड़ जाएंगे इस गीत के साथ। तब तक के लिए अपनी दोस्त सुनिधि को दीजिए इजाजत। नमस्कार और सुनते रहिए इसका।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरों के इस बुलेटिन नाल मैं अमन देव। पहला खास खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज IIT दिल्ली के 57वें कन्वोकेशन समारोह में संबोधन किया। उन्होंने विद्यार्थियों अपने फैसलों में राष्ट्रीय हित को तरजीह देने की अपील की। झारखंड सरकार ने अज भर्ती प्रीख्यावां विच कथित बेनियमियां खिलाफ प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों नाल गलबात की है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में अज सवेरे एक बस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई तो 11 होर जख्मी हो गए हैं। भारत के आशीष यादव ने अमरीका के यूजीन विश्व अथलैटिक्स Under-20 चैंपियनशिप में मर्दों के जैवलिन थ्रो मुकाबले में चांदी का तमगा जीता है। भारत की अश्मिता चाली कोरिया मास्टर सुपर 300 बैडमिंटन टूरनामेंट के फाइनल च पहुंच गई है। हुण खबरां विस्थार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टैक्नोलॉजी IIT दिल्ली के विद्यार्थियों को अपील की है कि वह अपने फैसलों में राष्ट्रीय हित को तरजीह देन और अपने आप तो पुछन कि उन्होंने काम देश को किवें लाभ पहुंचा सकते हैं। श्री मोदी ने यह टिप्पणियां IIT दिल्ली की 57वीं कॉन्वोकेशन को संबोधन करदिया की। प्रधानमंत्री ने कहा कि हर पीढ़ी अपने समय दीआं विलखण चुनौतियां का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेवारी निभाउंदी है। उन्होंने कहा कि डिग्रियां हासिल कर रहे विद्यार्थियों वालों किए जाने वाले काम विकसित भारत के राह च महत्वपूर्ण प्रभाव पाउणगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नवे उभर रहे खेतर ने जो नौजवानों लिए नवे मौके प्रदान कर रहे हैं। सैमी कंडक्टर पुलाड़ और ड्रोन वर्गे खेतर की मिसाल देंदे उन्होंने कहा कि भारत सारे खेतर में आत्म निर्भर बनन वल काम कर रहा है।
1: सैमी कंडक्टर सेक्टर का उदाहरण भी हमारे सामने है। जब हमने इस दिशा में कदम बढ़ाया तो कुछ लोगों ने सवाल उठाए, कहा गया भारत ये नहीं कर पाएगा, लेकिन आज पहली सेमीकंडक्टर यूनिट्स में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और मैं साफ मानता हूं चिप से लेकर के शिप तक सब कुछ यहीं पर आप ही के हाथों से बनेगा। और कहीं कोई युवा पूरे आत्मविश्वास से कह रहा है फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन टू मेक अ चिप इन इंडिया।
0: श्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भरता दी ਇਹ ਪਹਿਲ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।
1: ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸੈਲਫ ਰਿਲਾਇੰਸ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਸੈਲਫ ਰਿਲਾਇੰਸ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸੈਲਫ ਰਿਲਾਇੰਸ, ਐਸੇ ਹਰ ਸੈਕਟਰ ਮੈਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਨੇ ਕੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹਾ ਹੈ। ਯਹੀ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਕਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਇਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਪਰ आपको एक भव्य सुंदर विकसित भारत का निर्माण करना है।
0: केंद्रीय सिक्ख्या मंत्री प्रहलाद जोशी, IIT दिल्ली बोर्ड आफ गवर्नरस के चेयरमैन हरीश सालवे ते IIT दिल्ली के डायरेक्टर प्रोफेसर रंगन बैनर्जी भी समारोह में मौजूद सन। इस मौके ते प्रधानमंत्री ने IIT दिल्ली विखे परम प्रज्ञा नामक एक उच्च कुशलता वाली कंप्यूटिंग सहूलत का भी उद्घाटन किया। केंद्रीय सिक्ख्या मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सरकार भारतीय सिक्ख्या

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं हबीबुर रहमान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेमीकंडक्टर, खला और ड्रोन जैसे खुद कफालत वाले शोबे सामने आ रहे हैं जो विकसित भारत की एक मजबूत बुनियाद बनेंगे। उन्होंने IIT के तलबा पर जोर दिया कि वो अपने फैसलों में कौमी मफाद को मरकजी हैसियत दें। झारखंड सरकार ने JPSC और JSSC इम्तिहानात में मुबैना बेकायदगियों पर एहतजाज करने वाले तलबा के साथ दूसरे दौर की गुफ्तगू की है। आज सुबह हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में एक प्राइवेट बस के हादसे में 7 अफराद हलाक और 11 जख्मी हो गए। भारत के मौसमियात के महकमे ने आज राजस्थान और उड़ीसा में तेज से बहुत तेज बारिश होने की पेशगोई की है। खराब मौसम की वजह से जम्मू से बालतल के लिए अमरनाथ जी की यात्रा मुअत्तल कर दी गई है और अमेरिका में 20 साल तक की उम्र की आलमी एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मर्दों के भाला फेंकने के मुकाबले में आशीष यादव ने चांदी का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT के तलबा पर जोर दिया है कि वो अपने फैसलों में मुल्क के मफाद को मरकजी हैसियत दें। उन्होंने तलबा से कहा है कि वो खुद से ये पूछें कि उनकी सरगर्मियों से मुल्क को किस तरह फायदा पहुंच सकता है और किस तरह जरूरियात पूरी की जा सकती हैं। जनाब मोदी ने IIT दिल्ली के 97वें जलसे तकसीम असनाद से खिताब करते हुए ये बात कही। वजीर आजम ने कहा है कि हर नस्ल को अपने ज़माने में मखसूस चैलेंजों का सामना करना पड़ता है और वो अपनी कौमी जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं।
1: आज आपके परिवार के लोग प्राउड फील कर रहे हैं, वैसे ही मुझे भी आप सब पर गर्व है, क्योंकि ये आप सब केवल एक डिग्री नहीं ले रहे हैं, आप देश के लिए बहुत कुछ करने का सपने लेकर के यहाँ से निकल रहे हैं।
0: जनाब मोदी ने कहा है कि इस इदारे से ग्रेजुएट करने वाले तलबा ने जो काम किए हैं 30-35 बरसों में उनके असरात विकसित भारत के सफर पर नुमाया तौर पर असरअंदाज होंगे। वजीर आजम ने कहा है कि मुल्क में नए शोबे उभर कर सामने आ रहे हैं जहां नौजवानों को नित नए मौके मयसर होंगे। उन्होंने इस सिलसिले में सेमीकंडक्टर, खला और ड्रोन्स का जिक्र किया और ये भी कहा कि भारत इन सभी शोबों में खुद कफालत के हुसूल के लिए काम कर रहा है।
1: आज भारत इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस, इंडस्ट्रियल सेल्फ रिलायंस, ऐसे हर सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने के लिए काम कर रहा है। यही विकसित भारत की मजबूत नींव का सबूत है। इस मजबूत नींव पर आपको एक भव्य सुंदर विकसित भारत का निर्माण करना है।
0: जनाब मोदी ने तलबा से कहा है कि उन्हें तनख्वाह, मुलाजमत या शोबे की बुनियाद पर जहां वो काम करते हैं दूसरों से मुआवजना करने से गुरेज करना चाहिए। वजीर आजम ने कहा है कि जिंदगी दर्जाबंदी का नाम नहीं है और न ही

इसका मकसद दूसरों से मुकाबला करना है बल्कि ये मुकाबला खुद ही से करना है। जनाब मोदी ने तलबा को मशवरा दिया कि वो उन्हें हर दिन गुज़िश्ता कल से ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए काम करना चाहिए। झारखंड हुकूमत ने JPSC और JSSC की जानिब से मुनाकिद कराए गए इम्तिहानात में मुबैना बेजाब्तगियों पर एहतजाज कर रहे तलबा और नौकरियों के ख्वाहिशमंद अफराद से आज बातचीत की। यह मुलाकात रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में शुरू हुई। तलबा और नौकरियों के ख्वाहिशमंद अफराद की नुमाइंदगी करने वाला 8 रुकनी वफद सरकारी अफसरान से बातचीत कर रहा है। इम्तिहानात में मुबैना बेजाब्तगियों के मामले पर रियासती राजधानी में गुज़िश्ता हफ्तों से जारी मुजाहरों के बाद ये बातचीत हो रही है। तलबा के वक्त और हुकूमत के दरमियान पहली बाज़ाब्ता मुलाकात कल शाम मुनाकिद हुई थी। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में एक प्राइवेट बस के साथ हुए सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई और 11 दीगर जख्मी हो गए। यह हादसा चुराह असेंबली हलके में तीसा पुलिस स्टेशन हदूद में चालुंज मोड़ के करीब बीरागढ़ में हुआ। हलाक होने वाले 7 अफराद की शनाख्त अभी नहीं हो पाई है। इमरजेंसी कार्रवाइयों से मुतालिक रियासती सेंटर के मुताबिक यह हादसा आज सुबह 7:15 बजे के करीब पेश आया। इब्तदाई इतलात के मुताबिक ये प्राइवेट बस बीरागढ़ से चंबा जा रही थी जब ये चालुंज मोड़ के करीब सड़क से नीचे उतर गई और नीचे दूसरी सड़क पर जा गिरी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के चंबा में हादसे में हुए जानी नुकसान पर गहरे रंजोगम का इजहार किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने गमजदा कुंबों के साथ ताजियत का इजहार किया। वजीर आजम ने जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की ख्वाहिश का भी इजहार किया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। कौमी जांच एजेंसी NIA ने सरहद पार की दहशतगर्दी से मुतालिक साजिश में मुलविस 2 मुलजमान के खिलाफ फर्द जुर्म दाखिल की है। ये दोनों मुलजिम भारत पाकिस्तान सरहद से IED आतिशी हथियार और हेरोइन मुबैना तौर पर स्मगलिंग करने में मुलविस थे। हथियारों वगैरह का पंजाब और नई दिल्ली में मंसूबा बंद हमलों में इस्तेमाल किया जाना था। ये फर्द जुर्म कल मोहाली में कौमी जांच एजेंसी NIA की खसूसी अदालत में दायर की गई। मुल्जमान के नाम शुभम कुमार और जसवीर चौधरी बताए गए हैं। शुभम कुमार गिरफ्तार किया जा चुका है जबकि जसवीर फरार बताया जाता है। भारतीय महकमे मौसमियात ने राजस्थान और उड़ीसा में आज शदीद बारिश से मुतालिक ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक लक्षद्वीप, शिमाली अंदरूनी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में आज तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। भारतीय महकमे मौसमियात ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश और गरज चमक का इम्कान जाहिर किया है। जम्मू कश्मीर में जम्मू से बालतल के लिए श्री अमरनाथ जी यात्रा आज के दिन मुअत्तल कर दी गई है। खराब मौसम और जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर कई मकामात पर सड़कों की हालत की वजह से यात्रा मुअत्तल की गई है। ताहम बालतल से पवित्र गुफा की जानिब यात्रा जारी रहेगी। सुबह से 1200 से ज्यादा अकीदतमंद दर्शन कर चुके हैं। दर्शन कर चुके यात्रियों को बालतल से जम्मू जाने की इजाजत दी गई है। कॉमर्स और सनतों के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने बताया कि GI टैग वाले मिथिला मखाना की 18 मैट्रिक टन खेप पहली मरतबा बिहार से ऑस्ट्रेलिया बरामद की गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब गोयल ने कहा कि यह खेप सीधे दरभंगा के किसानों से खरीदी गई जिससे उन किसानों को बाजार की कीमत के मुकाबले 18% ज्यादा मुनाफा हासिल हुआ। भारतीय रेलवेज की जानिब से केरलम के ओनम त्योहार के लिए ऐलान करदा खसूसी ट्रेन खिदमात की तादाद बढ़कर 112 हो गई है। खसूसी खिदमात ज्यादातर तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए चलाई जा रही हैं। भारत ने अमेरिका के यूजेन में जारी एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप के तीसरे रोज आशीष यादव के मर्दों के जेवेलियन थ्रो में चांदी का तमगा जीतने के साथ अपने तमगों का खाता खोला। 19 साल खिलाड़ी ने अपनी तीसरी कोशिश में 74.09 मीटर की अपनी बेहतरीन थ्रो की और दूसरे मकाम पर रहे। आशीष वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में चांदी का तमगा जीतने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पहले नीरज चोपड़ा ने 2016 में पोलैंड में मुनाकिदा चैंपियनशिप में सोने का तमगा जीता था जहां उन्होंने 86.48 मीटर के थ्रो के साथ अब तक कायम आलमी जूनियर रिकॉर्ड बनाया था। जनूबी अफ्रीका के जॉन हेनरिक हेमेंस ने 80.50 मीटर के थ्रो के साथ सोने का तमगा जीता। जनूबी कोरिया के आसान

0: जारी कोरिया मास्टर सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी अश्मिता चहलिहर खवातीन के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। अश्मिता ने आज सेमीफाइनल में हमवतन भारतीय खिलाड़ी रक्षिता रामराज को 21-13, 16-21 और 21-13 से शिकस्त दी। अश्मिता ने क्वार्टर फाइनल में बड़ा उलटफेर करते हुए आला दर्जाबंदी की हामिल आलमी नंबर 22 जापान की हीना अकेची को 3 गेम्स के सनसनीखेज मुकाबले में हरा दिया था। खवातीन के सिंगल्स के फाइनल में कल अश्मिता का मुकाबला चीन की क्यूहान से होगा। आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेमीकंडक्टर, खला और ड्रोन जैसे खुद कफालत वाले शोबे सामने आ रहे हैं जो विकसित भारत की एक मजबूत बुनियाद बनेंगे। उन्होंने IIT के तलबा पर जोर दिया कि वो अपने फैसलों में कौमी मफाद को मरकजी हैसियत दें। झारखंड सरकार ने JPSC और JSSC इम्तिहानात में मुबैना बेकायदगियों पर एहतजाज करने वाले तलबा के साथ दूसरे दौर की गुफ्तगू की है। आज सुबह हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में एक प्राइवेट बस के हादसे में 7 अफराद हलाक और 11 जख्मी हो गए। भारत के मौसमियात के महकमे ने आज राजस्थान और उड़ीसा में तेज से बहुत तेज बारिश की पेशगोई की है। खराब मौसम की वजह से जम्मू से बालतल के लिए अमरनाथ जी की यात्रा मुअत्तल कर दी गई है। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम सायरा मुज्तबा विद द मिड डे न्यूज। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi says self-reliance in emerging sectors like semiconductors, space and drones will serve as a strong foundation for Viksit Bharat. Urges IIT students to keep national interest at the center of their decisions. Jharkhand government holds a second round of talks with student protesters over alleged irregularities in JPSC and JSSC examinations. 7 people killed and 11 injured in a private bus accident in Chamba district of Himachal Pradesh this morning. IMD issues orange alert for heavy to very heavy rainfall over Rajasthan and Orissa today. Amarnath Yatra from Jammu towards Baltal suspended due to bad weather conditions. And in men's javelin throw, Ashish Yadav wins silver at World Athletics Under 20 Championships in United States. Now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today urged the students of the Indian Institute of Technology, IIT Delhi, to keep national interest at the center of their decisions and ask themselves how their actions can benefit the country and address its needs. Mr. Modi made these remarks while addressing the 57th convocation of IIT Delhi. The Prime Minister said that new sectors are emerging in the country, offering fresh opportunities for the youth. He cited sectors such as semiconductors, space and drones, and said India is working towards becoming self-reliant across all sectors. Mr. Modi said this drive towards self-reliance will serve as a strong foundation for building a Viksit Bharat.
2: Aaj Bharat, economic self-reliance, technological self-reliance, industrial self-reliance, aise har sector mein aatmanirbhar banne ke liye kaam kar raha hai. यही विकसित भारत की मजबूत नींव का सबूत है। इस मजबूत नींव पर आपको एक भव्य सुंदर विकसित भारत का निर्माण करना है।
1: Further elaborating on India's efforts in the semiconductor sector, Prime Minister Modi said that production has begun at India's first semiconductor unit.
2: सेमीकंडक्टर सेक्टर का उदाहरण भी हमारे सामने है। जब हमने इस दिशा में कदम बढ़ाया तो कुछ लोगों ने सवाल उठाए, कहा गया भारत ये नहीं कर पाएगा, लेकिन आज पहली सेमीकंडक्टर यूनिट्स में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। और मैं साफ मानता हूं, चिप से लेकर के शिप तक सब कुछ यहीं पर आप ही के हाथों से बनेगा। और कहीं कोई युवा पूरे आत्मविश्वास से कह रहा है, फर्स्ट इन माई ब्लड लाइन to make a chip in India.
1: Mr. Modi also spoke about distractions in the age of social media. He said students should avoid comparing themselves with others on the basis of salary packages, jobs or sectors in which they are working.

0: South Africa's Jan Hendrik Hemans won the gold with a throw of 80.5 meters. Indian shuttler Ashmita Shaliha has reached the women's singles final of the Korea Masters Super 300 badminton tournament in Asan, South Korea. Ashmita defeated fellow Indian Rakshita Ramraj in the semi-final today. Ashmita will face China's Qiu Han in the women's singles final tomorrow. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says self-reliance in emerging sectors like semiconductors, space and drones will serve as a strong foundation for Viksit Bharat. Urges IIT students to keep national interests at the center of their decisions. Jharkhand government holds a second round of talks with student protesters over alleged irregularities in JPSC and GSSC examinations. 7 people killed and 11 injured in a private bus accident in Chamba district of Himachal Pradesh this morning. IMD issues orange alert for heavy to very heavy rainfall over Rajasthan and Odisha today. Amarnath Yatra from Jammu towards Baltal suspended due to bad weather conditions. And in men's javelin throw, Ashish Yadav wins silver at World Athletics Under 20 Championships in United States. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे उभरते क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता विकसित भारत की मजबूत नींव रखेगी। उन्होंने आईआईटी के विद्यार्थियों से अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने का आग्रह किया। झारखंड सरकार ने जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ दूसरे दौर की वार्ता की। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में आज सुबह एक निजी बस दुर्घटना में 7 लोगों की मौत और 11 घायल। राजस्थान और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। जम्मू से बालतल की ओर अमरनाथ यात्रा खराब मौसम के कारण स्थगित। और पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में आशीष यादव ने विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी निभाती है।
2: आप सब जानते हैं हर पीढ़ी के सामने उस टाइम पीरियड की अपनी चुनौतियां होती है और हर पीढ़ी का अपना एक राष्ट्रीय दायित्व भी होता है। साथियों, आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्रों के विकास से युवाओं के लिए नए अवसर सृजित हो रहे हैं। उन्होंने सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे क्षेत्रों का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कार्य कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भरता की ये पहल विकसित भारत के निर्माण के लिए एक मजबूत आधार का काम करेगी।
2: सेमीकंडक्टर सेक्टर का उदाहरण भी हमारे सामने है। जब हमने इस दिशा में कदम बढ़ाया तो कुछ लोगों ने सवाल उठाए, कहा गया भारत ये नहीं कर पाएगा, लेकिन आज पहली सेमीकंडक्टर यूनिट्स में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और मैं साफ मानता हूं चिप से लेकर के शिप तक सब कुछ यहीं पर आप ही के हाथों से बनेगा। और कहीं कोई युवा पूरे आत्मविश्वास से कह रहा है फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन टू मेक अ चिप इन इंडिया।
1: श्री मोदी ने सोशल मीडिया के युग में उत्पन्न होने वाले विकर्षणों के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को वेतन, नौकरी या कार्यक्षेत्र के आधार पर दूसरों से अपनी तुलना करने से बचना चाहिए।
2: जब हम बड़े गोल्स को अचीव करने के लिए प्रारंभ करते हैं तो एक बड़ा डिस्ट्रक्शन भी हमारे साथ

0: ये डिस्ट्रैक्शन होता है एक दूसरे से कंपैरिजन का, लेकिन याद रखिए जिंदगी कोई लीडर बोर्ड नहीं है, आपकी असली दौड़ किसी और से नहीं खुद अपने आप से है। हर दिन कल से बेहतर बनने की कोशिश करते रहिएगा।
1: इस अवसर पर शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण ने भारत के शिक्षा तंत्र को शिक्षार्थी केंद्रित, अनुसंधान आधारित और भविष्योन्मुखी बनाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश के संस्थानों में नया आत्मविश्वास जगाया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने आईआईटी दिल्ली में परम प्रज्ञा नामक एक उच्च दक्षता की कम्प्यूटिंग सुविधा का उद्घाटन भी किया। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना और उन्हें कानूनी मान्यता देने से जुड़े मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य दिल्ली में विश्व स्तरीय निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए आधुनिक, पारदर्शी और प्रभावशाली कानूनी ढांचा तैयार करना है। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद इस विधेयक को मॉनसून सत्र के दौरान विचार और पारित करने के लिए दिल्ली विधानसभा में पेश किया जाएगा। झारखंड में आज जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध समाधान की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। राज्य सरकार और विरोध प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों के बीच विभिन्न समूहों के बीच उच्च स्तरीय वार्ता का दूसरा दौर आज आयोजित किया गया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: आज रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में सरकार द्वारा गठित मंत्रियों की विशेष कमेटी और छात्र संगठनों के बीच दूसरे दौर की वार्ता सकारात्मक माहौल में संपन्न हुई। सरकार की ओर से मंत्रियों ने स्पष्ट किया कि वे व्यापक परीक्षा सुधारों के लिए प्रतिबद्ध हैं। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एक आधिकारिक फीडबैक ईमेल आईडी भी जारी की है, जिस पर छात्र और सभी हितधारक अपने सुझाव भेज सकते हैं। सरकार इन सभी सुझावों के आधार पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में अंतिम निर्णय लेगी। हालांकि छात्र प्रतिनिधियों ने वार्ता पर संतोष जताया है, लेकिन कहा है कि मांगों पर ठोस और लिखित आदेश आने तक उनका शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रहेगा। इस बीच परीक्षा गड़बड़ी मामले की जांच कर रही सीआईडी ने भी अपनी कार्रवाई तेज कर दी है और आयोग के 3 वर्तमान सदस्यों को पूछताछ के लिए समन भेजा है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: मध्य प्रदेश के भोपाल में ब्रिक्स देशों के संस्कृति मंत्रियों की बैठक आज से शुरू हुई। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में इस बैठक में सदस्य देशों की सांस्कृतिक विरासत, संग्रहालय, रचनात्मक अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक आदान प्रदान सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हो रही है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: भोपाल में 5 अगस्त से चल रहे ब्रिक्स कल्चरल ट्रैक 2026 के तहत आज ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक हो रही है। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में हो रही इस बैठक में दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया के संस्कृति मंत्री भी शामिल हैं। बैठक में ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की घोषणा, जिसे भोपाल डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाएगा, साथ ही सांची कल्चर कनेक्ट पर भी चर्चा होगी। बैठक के बाद मंत्री और प्रतिनिधि सांची के विश्व धरोहर स्थल का भ्रमण करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए भोपाल से विपिन मिश्रा।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने विश्वास व्यक्त किया है कि अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन शहरी बैंकिंग क्षेत्र को आधुनिक, पारदर्शी और भरोसेमंद सेवाएं प्रदान करके उसमें क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा। सहकारी समितियों में अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन एक केंद्रीय शासी या सहायक निकाय होता है, जिसका गठन कई स्वतंत्र सहकारी संस्थाओं द्वारा किया जाता है। मुंबई के फोर्ट क्षेत्र में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम के नए कार्यालय परिसर का उद्घाटन करते हुए श्री शाह ने ये बात कही। सहकारी क्षेत्र की शक्तियों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि छोटे छोटे निवेश को जोड़कर बड़े कारोबार के लिए बड़ी पूंजी जुटाई जा सकती है।
4: मेरा जो कोऑपरेटिव का समझ है, बड़ा व्यापार करने के लिए छोटे छोटे लोगों की कोऑपरेटिव बनाकर छोटी पूंजी से बहुत बड़ी पूंजी निर्मित कर बड़ा व्यापार किया जा सकता है। अमूल आज 1,25,000 करोड़ का व्यापार करता है। इप्को, क्रिप्को, एक जमाने में लिज्जत पापड़, ये किसी में भी पूंजी का निवेश 50 रुपया से ज्यादा नहीं है। और आज अमूल विश्व का खाद्य पदार्थों का सबसे ज्यादा लोकप्रिय ब्रांड बन

0: कम निर्भरता और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना और मेडिकल डिवाइस पार्क जैसी पहलों से आगे बढ़ रहा है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में आज सुबह एक बस दुर्घटना में 7 लोगों की मौत हो गई और 11 घायल हो गए। ये दुर्घटना सुबह करीब 7:15 बजे हुई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बस बैरागढ़ से चंबा जा रही थी। चलवांज मोड़ के पास चालक ने बस पर नियंत्रण खो दिया और बस सड़क से उतरकर नीचे दूसरी सड़क पर गिर गई। दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। मृतकों की पहचान अभी नहीं हो पाई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री मोदी ने मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम और जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की खराब स्थिति को देखते हुए आज जम्मू से बालतल की ओर श्री अमरनाथ जी यात्रा रोक दी गई है। हालांकि बालतल से पवित्र गुफा की ओर यात्रा सामान्य रूप से जारी है। सुबह से 2500 से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। दर्शन के बाद श्रद्धालुओं को जम्मू की ओर जाने की अनुमति दी जा रही है। मौसम विभाग ने केरलम में मूसलाधार बारिश की आशंका को देखते हुए आज 7 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और शेष 7 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। कल के लिए 4 उत्तरी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज राजस्थान और ओडिशा में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार आज लक्षद्वीप, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्कल में बिजली और तेज हवाओं के साथ तूफान आने की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान में गरज चमक के साथ तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इस बीच हिमाचल प्रदेश, झारखंड और उत्तर प्रदेश में इस महीने की 10 तारीख तक तेज से बहुत तेज बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में अगले 3 दिनों के दौरान तेज सतही हवाएं चलने की संभावना है। दिल्ली NCR में मौसम विभाग ने आज दिन भर बादल छाए रहने के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान जताया है। भानु प्रताप के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रेलवे ने ओणम के अवसर पर केरलम के लिए विशेष ट्रेनों की संख्या बढ़ाकर 112 कर दी है। इन विशेष रेलगाड़ियों का मुख्य रूप से तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से आवागमन होगा। एक रिपोर्ट।
2: रेलवे ने ओणम के दौरान यात्रियों की सुविधा और अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए 14 अगस्त से 6 सितंबर के बीच अब तक 112 विशेष ट्रेन सेवाओं की घोषणा की है। इनमें से 38 विशेष ट्रेन दक्षिण रेलवे के अंतर्गत चलाई जाएंगी। दक्षिण रेलवे ने अन्य रेलवे जोन के लिए भी 16 अतिरिक्त विशेष ट्रेन की घोषणा की है। इसके अलावा अन्य रेलवे जोन भी इस दौरान 58 विशेष ट्रेन चलाएंगे। तिरुवनंतपुरम से स्मिति एम पलरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: जम्मू कश्मीर में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां जोरों पर हैं। उधमपुर में महिलाओं का एक समूह हर घर तिरंगा अभियान के तहत हाथ से राष्ट्रीय ध्वज और तिरंगे से जुड़ी सजावटी वस्तुएं तैयार कर रहा है। हरियाणा में हर घर तिरंगा अभियान और वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कल से 17 अगस्त तक विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये आकाशवाणी है। यूक्रेन की राजधानी कीव के पास रात में रूस द्वारा किए गए मिसाइल हमले में एक बच्चे सहित 3 लोगों की मौत हो गई। क्षेत्रीय सैन्य प्रशासन प्रमुख तिमूर तकाचेंको ने कहा कि बैलिस्टिक मिसाइल के हमलों में 3 लोग घायल भी हुए हैं। अमेरिका में विश्व एथलेटिक्स अंडर-20 चैंपियनशिप के तीसरे दिन भारत को पहला पदक मिला। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में आशीष यादव ने रजत पदक अपने नाम किया। 19 वर्षीय आशीष ने 74.09 मीटर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए दूसरा स्थान हासिल किया। दक्षिण अफ्रीका के जॉन हैंड्रिक हैंसमैन ने स्वर्ण पदक जीता। अश्मिता चालिहा दक्षिण कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने आज सेमीफाइनल में हमवतन रक्षिता रामराज को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे उभरते क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता विकसित भारत की मजबूत नींव रखेगी। उन्होंने आईआईटी के विद्यार्थियों से अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने का

आग्रह किया। झारखंड सरकार ने जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ दूसरे दौर की वार्ता की। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में आज सुबह एक निजी बस दुर्घटना में 7 लोगों की मौत और 11 घायल। राजस्थान और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। जम्मू से बालतल की ओर अमरनाथ यात्रा खराब मौसम के कारण स्थगित। और पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में आशीष यादव ने विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल पर आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट फिल्मी कार्यक्रम एक ही कलाकार, और मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो साथी सुनिधि गुप्ता। और आज हम याद करेंगे हिंदी सिनेमा के एक ऐसे कलाकार को जिसकी मौजूदगी पर्दे पर आते ही दर्शकों के चेहरे पर मुस्कान बिखेर देती है। उनकी भारी आवाज, धीमी गति से संवाद बोलने का अपना अलग अंदाज, सहज हास्य और बेहतरीन अभिनय, इन सब ने उन्हें हिंदी फिल्मों के सबसे प्रिय चरित्र अभिनेताओं में शामिल कर दिया। आज का यह विशेष अंक समर्पित है अभिनेता असित सेन को। असित सेन ने लगभग 3 दशकों तक हिंदी सिनेमा में अपनी अलग पहचान बनाई। उन्होंने कभी बड़ा नायक बनने की कोशिश नहीं की, लेकिन जिस भी भूमिका में नजर आए उसे यादगार बना दिया। वे ऐसे कलाकार थे जिन्होंने बिना किसी बनावटी अभिनय के केवल अपनी सहजता से दर्शकों का दिल जीत लिया। आज के कार्यक्रम में हम जानेंगे उनके जीवन की रोचक बातें, उनके अभिनय सफर के कुछ अनसुने किस्से, और सुनेंगे वे सदाबहार गीत जो उन पर फिल्माए गए या जिन दृश्यों में उनकी उल्लेखनीय उपस्थिति रही। तो आइए शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत गीत के साथ।

रंग झांझ जप बाजत तापर नाचत कृष्ण कन्हैया गोपिन के संग राज रचावत नाच जावत ताता तैया थई तैया थई तैया खेलत गेंद गिरी यमुना बिच नित्य कियो तहां नागन थैया गोप के इंद्र चढ़ो बिज ऊपर गोपी करत सब हा हा दैया गाय उठाय लियो गिर नक पर बंस बजावत धेनु चलैया जगके मोहन मन में भाए नित्य करत राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा।

0: Good morning. Good morning. Good morning.
1: Good morning.
2: बेटा।
3: Yes, papa.
2: बरखोरदार।
0: Yes, daddy.
2: अपनी भाषा में बोलो।
0: अरे हाँ हाँ, I'm sorry.
4: नमस्ते नमस्ते ओ पिताजी।
5: नमस्ते।
4: जय हिंद ओ पिताजी।
5: जय हिंद।
4: नमस्ते नमस्ते है सबको।
1: नमस्ते बाबूजी।
4: नमस्ते
0: नमस्ते नमस्ते नमस्ते। The morning rays are coming.

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार, और आज के हमारे कलाकार हैं असित सेन। असित सेन का जन्म तत्कालीन अविभाजित बंगाल में हुआ। रंगमंच से जुड़ाव ने उन्हें अभिनय की बारीकियां सिखाई। बाद में उन्होंने बांग्ला फिल्मों में काम भी किया और धीरे धीरे हिंदी फिल्मों में अपनी विशिष्ट पहचान भी बनाई। अक्सर लोग अभिनेता असित सेन और निर्देशक असित सेन को एक ही व्यक्ति समझ लेते हैं, जबकि दोनों अलग अलग व्यक्तित्व थे। अभिनेता असित सेन अपनी विशिष्ट आवाज़ और हास्य अभिनय के लिए बहुत प्रसिद्ध हुए। उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी कि वे बिना किसी अतिशयोक्ति के दर्शकों को हंसा देते थे। उनके चेहरे के भाव, संवाद, बोलने की लय और ठहराव अपने आप में अभिनय का पाठ थे।

दोस्तों 70 का दशक हिंदी सिनेमा में चरित्र अभिनेताओं का स्वर्णिम दौर माना जाता है। उस समय यदि किसी फिल्म में ओम प्रकाश, डेविड, IS जौहर, केस्टो मुखर्जी, जॉनी वॉकर और असित सेन जैसे कलाकार हों तो मनोरंजन अपने आप सुनिश्चित हो जाता था। जी हाँ, असित सेन की सबसे बड़ी खूबी थी कि वे छोटे से छोटे दृश्य को भी यादगार बना देते थे। उनका संवाद, बोलने का धीमा अंदाज बाद में अनेक हास्य कलाकारों ने अपनाने की कोशिश की, लेकिन उनकी सहजता किसी के लिए दोहराना आसान नहीं था।

दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त सुनिधि। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं आसित सेन की। ऋषिकेश मुखर्जी जैसे निर्देशकों ने आसित सेन की प्रतिभा को बहुत अच्छी तरह पहचाना। बावर्ची, अभिमान, चुपके चुपके, गोलमाल जैसी फिल्मों में उन्होंने छोटे लेकिन प्रभावशाली किरदार निभाए। उनका अभिनय कभी भी कहानी पर हावी नहीं होता था, बल्कि उसे और विश्वसनीय बना देता था। इसी कारण दर्शकों को लगता था कि वे कोई अभिनेता नहीं बल्कि अपने आसपास का ही कोई परिचित व्यक्ति हैं।

दोस्तों, असित सेन के अभिनय का एक और महत्वपूर्ण पहलू था समय की सटीक समझ। कॉमेडी केवल अच्छे संवादों से नहीं बनती, बल्कि सही समय पर सही प्रतिक्रिया देने से बनती है। असित सेन इस कला में पारंगत थे। वे बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के दृश्य को प्रभावशाली बना देते थे। आज भी उनकी फिल्में देखी जाएं तो उनका अभिनय बिल्कुल ताज़ा और स्वाभाविक सा लगता है।

मिथो आसिद सेन उन कलाकारों में से थे जो शूटिंग के दौरान भी अपने सहयोगियों के बीच अत्यंत विनम्र और मिलनसार माने जाते थे। तो आज हमने बात की कलाकार आसिद सेन की, कार्यक्रम एक ही कलाकार में। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए कलाकार के साथ। तब तक के लिए अपनी दोस्त सुनिधि को दीजिए इजाज़त। नमस्कार और सुनते रहिए ये की।

0: नृत्य गोपाल जी,
1: जी चंपा जी,
0: देखो हमारी ब्रजभूमि इतनी मोहिनी है ना, कन्हैया को जो रूप है वो ऐसा है कि काऊ के हृदय में अगर बस जाए ना तो निकारे ना निकरे।
1: जी चंपा जी, देखो पद्माकर कवि ने जब वर्णन करे तो उनने कही कि एरी मेरी बीर जैसे तैसे इन आखिन सो कढ़गो अबीर पे अहीर को कढ़े नहीं। तो ये जो हमारा कन्हैया है ना, एक बार जिन्हें नेत्रन में समा जाए तो
0: जी
1: उनमें तो निकरवे की तो बात ही कहाँ रह जाए फिर।
0: देखो सावन को महीना चल रो है तो हम देखें कि चारों ओर बम बम बोले और हर हर महादेव को जो उद्घोष है उनकी जो गूंज है वो सुनाई पड़ रही है। सावन के महीना में भले ही ब्रज में झूला हिंडोरान की बहार है, आप देखो कि हमारे ब्रज भूमि के काऊ कोने में चले जाओ, शिव वहां पे अनेक रूपन में विराजित हैं। यानी कि आपकी बात पे ही हम आमे कि या कृष्ण के मनमोहन रूप पे ही आकर्षित होके सियात भोले बाबा ब्रज की ओर चले आए होंगे।
1: आप जाकी बात करें, देखो तो सही कि कन्हैया को जन्म भयो और भोले बाबा दर्शन करवे आए, और यशोदा मैया ने दर्शन नाए कराए तो भोले बाबा नंदगाम के पास विराजित है गे, जाकू आज हूँ आशीश्वर के रूप में पूजो जाए।
0: हाँ नृत्य गोपाल जी, जोगी को वेश धर के भोलेनाथ स्वयं यशोदा मैया के द्वार पे आए। ब्रज धरा में शिव चार कोतवालन के रूप में विराजमान हैं और आप देखो ना भारी तादाद में कांवड़िया कांवड़ लेके आ रहे हैं और इन शिवालय इन पे जलाभिषेक कर रहे हैं, जल यात्रा आ रही है। अरे नृत्य गोपाल जी, आप नंदगांव की बात कर रहे हो, आप वृंदावन की ओर चलो। वृंदावन में बंसीवट पे जो गोपेश्वर महादेव हैं ये उनके ब्रजवास को ही तो प्रतीक है। आप देखो के संध्या को हर रोज वहां शिव को श्रृंगार गोपी के रूप में होवे है, कितनी विलक्षण बात है।
1: कि यहाँ को जो श्रृंगार है ना
0: जी
1: वह बड़ो अद्भुत है। हार हमेल साड़ी फरिया अनेक अनेक आभूषण ते गोपेश्वर को गोपी स्वरूप में प्रतिदिन श्रृंगार करो जाए।
0: वृंदावन में तो ऐसी लोक मान्यता है कि बिना गोपेश्वर मिले ब्रज दर्शन पूरो नाए होवे।
1: बिना गोपेश्वर के महाराज ही पूरो नाए हो चंपा जी।
0: हाँ पूरे विश्व की भी बात करें ना तो केवल वृंदावन में गोपेश्वर महादेव गोपी रूप यानी कि स्त्री रूप में ना विराजित हैं।
1: देखो चंपा जी, ब्रज में कह हो जाए कि नरते नार बने तब रास रचे।
0: और हित वृंदावन दास जी ने तो यहाँ कही है कि नाम विदित गोपेश्वर जिनको ते वृंदा कानन कुतवार, यानी कि वो वृंदावन के कोतवाल हैं।
1: कि सूरदास जी ने वर्णन करो कि जब भोले बाबा नंदगांव में आए ना, जहाँ वेश में आए वहां को बड़ो सुंदर वर्णन करो है, नंद द्वारे एक जोगी आयो श्रृंगी नाद बजायो, शीश जटा शशि बदन सुहाए अरुण नयन छवि छायो, रोबत खिजत कृष्ण सामरो रहत नहीं हुलरायो, लियो उठाए गोद नंद रानी द्वारे जाए दिखायो, अलख अलख कर लियो गोद में चरण चूम उड़ लायो, श्रवण लाग कछु मंत्र सुनायो, हसी बालक किलकायो, चिरजीवो सुत मेहर तिहारो हो जोगी सुख पायो, सूरदास रमि बल्यो रावरो शंकर नाम बताए।

0: प्यारे भैया बहनाओं, अभी आप ये शिव भक्ति रचना सुन रहे हते। हाँ प्यारे भैया बहनाओं, आप भी आवाज को जाने और हम भी जाने, आपके भी आसपास कहूँ ना कहूँ आम नीम शीशम के जो पेड़ हैं, अमुआ की जो डार हैं, उन पे झूला पड़ गए होंगे और हमारी जो छोटी छोटी बालिकाएं वे सब झूला झूल रही होंगी और यूं कह रहे हैं कि 8-10 दिन तो सावन के बीत चुके हैं, ना झूला पड़े तो आप झूला डार लो। नृत्य गोपाल जी।
1: जी हाँ चंपा, पर अपने श्रोतांते निवेदन कर दूं, कहूँ अच्छो सो बड़ो सो झूला हो तो चंपा जी को बुला लीजो झूलवे के ताई।
0: हाँ नृत्य गोपाल जी, हमें तो कोई बुला ले, हम तो वहीं चले जाएंगे, खाली झूलवे ते मतलब है। और यह सावन के महीना के काजे तो वैसे भी काहू ने कहो है, चंदा लगे है चकोर को ज्यो, जो सावन मास सुहानो पपैया, देव मोहे सब प्यारे लगे और मध्य बसे पर कृष्ण कन्हैया, कृष्ण को संग होए ब्रज को बास होए, और वामे भी सावन के महीना में झूला झूलवे को मिल जाए तो बाकी तो वानगी ही कछु और है।

0: जी हाँ चंपा जी, प्रकृति को अनुपम श्रृंगार लेके आवे है सावन महीना। और यह सावन की महीना में ब्रिज में लोक कलान को हुए ऐसो स्वरूप और विकास देखवे को मिले कि हम जगह जगह लोक की
1: नाट्य विधाएं,
0: हाँ उनको मंचन हु देखे हैं।
1: तो नृत्य गोपाल जी आप तो देख लियो, पर ऐसो करो ना कि ऐसी कोई नाट्य विधाएं हमारे भैया बहनान को भी तो सुनवाई दो, ऐसे ही कछु कार्यक्रम की ओर बढ़े हम।
0: जी हाँ श्रोताओ, तो आज आपको सुनवा में एक भेंट वार्ता जाको विषय है स्वांग संगीत में पद्मावती झूला। और यह विषय पे आज विशेषज्ञ के रूप में हमारे बीच में है ताराचंद प्रेमी जी, और उनसे बात कर रही है चंपा जी।
1: ब्रज माधुरी कार्यक्रम में ताराचंद प्रेमी जी आपको स्वागत है, अभिनंदन है।
2: सब सुनवे बारे भैया को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, और आपको भी राधे राधे। चंपा जी आपने वो स्टूडियो में बुलायो है
1: जी। ताराचंद जी देखो, आप तो जानो हो कि ब्रज भूमि वैसे तो कृष्ण और प्रिया प्रियतम की लीला भूमि है, पर यहाँ की जो नाट्य विधाएं है ना उनकी भी वानगी ऐसी है, उनने विश्व स्तर पे अपनो परचम फहरायो है। ताराचंद प्रेमी जी,
2: हाँ जी,
1: आज आप स्वांग संगीत विधा पे बात करवे के काजे हमारे स्टूडियो में आए हो
2: जी।
1: तो सबसे पहले तो हम आपसे यही पूछेंगे कि जो आपके स्वांग को मंचन है तो कहा रूप में वाकई आप जो शुरुआत है वाकू करो करें।
2: चंपा जी आपने प्रश्न बहुत बढ़िया कियो है। मैं आपको बताऊं कि जब भगत सांगीत और नौटंकी शुरू हो का है
1: जी,
2: तो वहां में सब कलाकार अपना स्वांग सजके
1: जी,
2: सजके कपड़ा उपड़ा पहन के और जो है तैयार रह के और स्टेज पे आ जाएं, सब
1: मंच पे
2: और फिर एक सामूहिक मतलब जो वंदना करें भगवान की।
1: देखो आपकी जो सामूहिक प्रस्तुति है,
2: हाँ,
1: तो आपने कही है कि हम युगल सरकार की जो स्तुति है बातें या को रंगारंग शुरुआत करें,
2: हाँ,
1: तो हमारे श्रोतान को भी बाकी बानगी ने प्रस्तुत करके बताओ।
2: हाँ अवश्य बताऊंगा मैं। ये ध्रुपद में क्लासिकल में गायो करें सब जो है मिलके,

0: बहुत सुंदर ताराचंद प्रेमी जी, आप एक बात बताओ, ये चाहे भगत नौटंकी है, स्वांग संगीत है, तो आपकी जो ये छंदन की गायकी है ना, वहां में हम देखे हैं दोहा है, चौबोला है, बहर तवील है, लावनी है, इनके अलावा कोई और भी कछु गायकी को मंचन होवे?
1: हाँ,
0: अपने श्रोता भैया बहनान के काजे मन हुओ कि या बात को भी पूछ लई जाए, क्योंकि हमारी ब्रज में तो ये बात कही हुई है कि मन की बात ना मन में ना रखनी चाहिए
1: जी।
0: कि अगर हम यहाँ को क्रमानुसार या देखें तो यहाँ में कोई और स्तुति जो कि अनिवार्य है वो आपको मंचीय शैली में देनी देनी है?
1: हाँ, आपने चंपा जी बहुत सुंदर प्रश्न किया, ये सामूहिक वंदना के बाद में फिर कलाकार एकल जो है भेंट करें।
0: जी
1: हाँ, मैं भेंट आपको सुनाऊं।
0: जैसे सावन को महीना चल रहा है तो भोलेनाथ शिव को ही कोई भेंट आपकी समर्पित होए?
1: हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।

0: दुख सब तुम ही हरोगे, महादेव कैलाश पति दंगल में लाज रखोगे।
1: बहुत सुंदर प्रेमी जी। देखो मंचीय गायन में आप या गायकी को लेके आते होंगे, तो कितनी बढ़िया बात है कि जो भक्ति को समाए ना वो
0: जी
1: अपने आप आरंभ में ही बंध जाता होएगो। और ऐसी
0: हाँ
1: भक्ति के वह भक्ति ये देखवे के काजे तो स्वयं महाराज भोलेनाथ भी ब्रज धरा की ओर चले आए हैं।
0: सच कह रही हो आप चंपा जी।
1: पर हम देखें कि नौटंकी स्वांग संगीत में अनेकानेक विधान को मंचन हो रहे हो, पर सावन की बात चल रही है ना, तो एक बात हमारे मन में आई कि क्यों ना आज अपने श्रोता भैया बहन के कहा जाए पद्मावती के झूला को भी वर्णन कछु सुननी हो
0: वाह
1: जाए।
0: वाह वाह वाह वाह चंपा जी, वाह वाह वाह वाह,
1: है ना,
0: बहुत सुंदर प्रश्न
1: जब
0: कर रही हो
1: भोलेनाथ
0: आप
1: तो
0: तो।
1: स्वयं कैलाशवासी ब्रज आई गए हैं
0: हाँ
1: सावन
0: हाँ
1: में,
0: हाँ हाँ हाँ
1: तो
0: हाँ
1: हम देखे हैं कि जो लोकगीत की शैली है, चाहे वे मल्हार की शैली है या कोई अन्य विधा की शैली है, तो हम अपने बड़े जनन के श्री मुक्ते सुने हैं के पद्मावती के झूला को भी ना बड़ा वाह वियल वर्णन हो
0: हाँ
1: है स्वांग विधा में।
0: स्वांग विधा में,
1: जी
0: तो स्वांग विधा में पद्मावती का झूला में वो मल्हार है
1: मल्हार एक ही है कि या एक दो तरह के
0: ना,
1: हैं,
0: दो तरह की मल्हार है
1: तो
0: वहां
1: बताओ हमारे भैया
0: पे।
1: बहन
0: लो ना
1: को
0: सुनो भैया,
1: कौन कौन सी मल्हार
0: देखो
1: है।
0: एक तो ये है

0: बहुत सुंदर ताराचंद जी। तो मल्हार को कोई अन्य स्वरूप भी है का?
1: हाँ, अन्य स्वरूप है,
0: हाथरसी।
1: हाथरसी है, हाथरसी भी है।
0: सुनाओ
1: देखो
0: बाकी वानगी भी।
1: सब

0: ब्रज। बहुत सुंदर ताराचंद जी, आपने जो ब्रज की दोनों तरह की मल्हारन की शैली है उनकी वानगी हमारे श्रोता भैया बहनान को सुनाई है। ताराचंद जी,
1: जी
0: स्वांग संगीत परंपरा है, आप यहाँ के विश्व विख्यात कलाकार हैं। यही क्रम में एक बात आप बताओ कि जो पद्मावती झूला है, ये तो हमारे ब्रज धरा की ना प्रसिद्ध लोक गाथा है।
1: चंपा जी, मैं आपको बताऊं कि पद्मावती के झूला में बहुत ही भावपूर्ण दृश्य मतलब हमें,
0: जी,
1: और
0: यानी कि जो संवाद और संगीत है ना, वहां को
1: हाँ
0: मेल है।
1: वहां को मेल है।
0: जी
1: आप सही पकड़े। तो पद्मावती को जो झूला है, पद्मावती एक राजा के लड़का पे मोहित है जाए,
0: जी जी
1: तो बाकी संग में जो सहेली है
0: जी
1: मुंजो कह के, देखो ये परदेशी है, या के बारे में भरोसे मत रहो,
0: हाँ
1: आप घर को चलो।
0: जी
1: तो वन की ना ना मोको मतलब पसंद आएगा, ये तो राजकुमार, मैं तो जाते विवाह करना चाहूं। बाकी संग में जो सहेली अतकाई वो बड़ी चतुरी, तो वन की देखो ऐसे मत मिलो, मैं इनको मतलब इशारा बताऊं, भाई इशारे इनको बता दो, अगर
0: जी
1: समझदार होंगे
0: तो
1: कोई
0: समझ जाएंगे।
1: समझ जाएंगे और महलन में आ जाएंगे और तुमसे
0: हाँ
1: मुलाकात कर लेंगे।
0: जी
1: तो उनने मतलब एक कमल को फूल लियो सखी ने, और वह राजकुमारी को पद्मावती को दियो कि कमल को फूल पहले आप अपने कान ते लगाओ, और फिर दांतन ते कुतरो, और फिर पामन ते दबाओ, और फिर जो है या सीने ते लगाओ,
0: जी
1: और राजकुमार दिखा के और धर दो, यहीं
0: जी
1: देख के, और जब सब चल दो, अपने आप समझदार होंगे तो आ जाएंगे।
0: तो ये तो ऐसी चतुर हुई जैसी राधा रानी की चतुर सखी है ललता जी।
1: ललता जी।
0: जी
1: तो जैसे ही राजकुमार के संग में जो वजीर को लड़का होगा,
0: जी
1: वाने के राजकुमार ऐसा है कि या कमल के फूल मत लियो, जादू फादू तो ना है, चक्कर पड़ जाए भैया। तो वन के नाना कोई दारू नाना झट मुन्ने पकड़ लियो कमल को फूल, वन के
0: जी
1: भैया ऐसे ऐसे इशारो मतलब करो है हमें, और हमें दिखा के यहाँ धरदीजा को मतलब का है। तो वो उनके वजीर के लड़का ने बताया है, और मैं आपको बताऊं गाय के लामनी में,
0: जी
1: हाँ बम भगत लामनी है,
0: जी
1: कमल फूल।

0: जो कुतुरा दंत सेन दुख्तर गुलफाम। कमल फूल जो कान पे लगाओ, वाक मतलब ये बतायो कि कर्नाटक शहर के रहने वाली है राजकुमारी,
1: जी
0: और दांतन ते जो कुतरो वाको मतलब ये बतायो कि वो दंत सेन राजा की राजकुमारी है। और फिर

0: जब पैरों तले माने दबाया फूल तो
1: जी
0: माने अपनो पद्मावती नाम बताया राजकुमार,
1: जी
0: और जब सीने से लगाया तो माने कि मैं तुमसे प्रेम करूं।
1: जी यानी कि जो ये पद्मावती झूला है
0: हाँ
1: ये प्रेम प्रसंग की
0: प्रेम प्रसंग
1: लोक गाथा है।
0: लोक गाथा है
1: जी।
0: हाँ तो राजकुमार के दोस्त ने कही, वजीर के लड़का
1: मित्र ने,
0: मित्र ने कि ऐसे ऐसे बातें भैया मैंने तुमको सब बात बता दी है और साफ

0: अरे मत घबरावे, मिले हम दम कर दिल में साब्रो कराल। या इशारे ते साफ साफ कह गई है कि राजकुमार मैं तुमसे प्रेम करूं और तुम मोते मिलवे के ताई आ जाओ।
1: निवेदन हम करें कि आप ना कोई आल्हा को जो प्रसंग है, जो कथानक है या पद्मावती झूला में बाय और हमारे श्रोता भैया बहनान को सुना दें।
0: जाओ
1: तो यही वाली बात है, जब आप जैसे विद्वान हमारे सामने हैं तो पूछना तो लाजमी है
0: जय हो जय हो जय हो जय हो।
1: जी।
0: देखो मैं आपको हूँ पद्मावती से ही संबंधित जो है आला है, तो पद्मावती को श्रृंगार लिखो है उस्ताद ने, हमारे यहाँ के जीवन उस्ताद हैं एक छाता
1: जी
0: के, वो छत्रवन के। मैं आपको बताऊँ, सजी पद्मा

0: अब तक ना आयो मेरो सांवरो।
1: बहुत सुंदर ताराचंद प्रेमी जी। देखो सांवरों मेलन में आवे ना आवे, पर हम आपसे यह बात को अनुरोध करें कि आप हमारे ब्रज माधुरी कार्यक्रम में ऐसे ही आते रहो।
0: जय हो
1: और
0: जय।
1: तो आप हमारे ब्रज माधुरी कार्यक्रम में पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको ऐसे ही बुलाते रहें और आप ऐसे ही आते रहो।
0: चंपा जी
1: नमस्कार।
0: आपको भी धन्यवाद और सब सुनवे वाले भैया बहनन को जय श्री कृष्ण जय श्री राधे।
2: जी हाँ श्रोताओं, अभी आप सुन रहे भेंट वार्ता स्वांग सांगीत में पद्मावती झूला, या मैं ताराचंद प्रेमी जी से बात कर रहे हैं। चंपा जी
1: बात करके ना इतना अच्छा लग रहा है कि हमारे जितने भी भैया बहनान ने हमें आज सुनो होएगो, उनको मन ना थिरक रहे होएगो। झूला झूलवे के काजे आप पौराणिक काल से ही देख लो, ऐसी लोक मान्यता है कि ब्रज और कदम्ब के वृक्ष, इनको तो इतना आपसी तालमेल है कि बिना कदम्ब के वृक्ष के तो ब्रज की कोई कल्पना ही ना है।
2: जी हाँ चंपा, ब्रज की शोभा है हमारो कदम्ब।
1: हमारे 84 कोसीय ब्रज को जो परिकर है, आज वहाँ पे ना जो सघन वृक्षारोपण हो रहे हो है, उनमें भी कदम्ब के वृक्ष को ना प्रधानता दी जा रही है।
2: पर तनिक घड़ी की ओर हूँ देख ले हो, अब आज के ब्रजमाधुरी कार्यक्रम को समय यहीं संपन्न है रहे हो है। कार्यक्रम प्रस्तुत करता वीके तोमर के संग मो नृत्य गोपाल
1: और मोई चंपा बहन यानी चंद्रवती शर्मा को अनुमति दो। नमस्कार।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रज माधुरी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। 3:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं नाटक पार्वती गिरी।
1: आइए सुनते हैं नाटक पार्वती गिरी। लेखिका सुनीता अग्रवाल, निर्देशन व प्रस्तुति काजल सूरी।

0: त्रिशा, लो अभी तक तुम ये पन्ने लेकर बैठी हो। जब से आई हो इन्हीं पन्नों में डूबी हुई हो। किसी बात का होश नहीं है तुम्हें। अरे घर से थोड़ी मोहब्बत भी करो, उसके भी कुछ काम करो।
1: ओहो दीदी, आप आज कर लीजिए ना, बस कुछ पे रह गए हैं।
0: यानी खाना भी मुझे ही बनाना होगा। सोचा था छोटी बहन आ रही है, थोड़ा तो सुख मिलेगा। देखो तो ऐसा क्या पढ़ रही हो कि तुम्हारा कुछ और करने का दिल ही नहीं कर रहा। क्या है ये पन्ने और क्या लिखा हुआ है इन पन्नों में?
1: पन्ने नहीं है दी, पार्वती गिरी जी की बायोग्राफी है। उनके जीवन ने बहुत लोगों की जिंदगी को बदला है। आजादी की लड़ाई के बाद उन्होंने गांव में लोगों की निस्वार्थ सेवा करने का काम चुना, जैसे आप इस गांव में काम कर रही हैं। आपकी भी प्रेरणा वही है ना?
0: हाँ प्रिशा, उनके जैसा एक काम भी कर पाऊँ तो धन्य समझूँ मैं अपने आप को।
1: पर आप भी तो सब कुछ त्याग कर इस गांव के लिए इतना कुछ कर रही हैं।
0: आदरणीय पार्वती गिरी जी से मेरी क्या बराबरी, वो तो उड़ीसा की मदर टेरेसा कहलाती हैं। पर तू इन्हें अचानक क्यों पढ़ने लगी? वैसे देखा जाए तो पार्वती गिरी जी के बारे में कुछ खास जानकारी मिलती नहीं है, वो तो खोया हुआ इतिहास हो गई है।
1: बात तो सही है, पर कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनकी आजादी की लड़ाई के संघर्षों को, उनकी यादों को जिंदा रखा जा सके।
0: अच्छा, जैसे?
1: जैसे आप और कुछ और लोग भी।
0: अब पहेलियां बुझाओगी या कुछ बताओगी भी?
1: अरे वो छोड़ो, पता है दी, मुझे याद है कि आप अपने कॉलेज के आखिरी साल में एक ट्रिप पर ओडिशा गई थी। पर जब आप आई तो एकदम बदल चुकी थी। बस कुछ दिनों बाद अपना बोरिया बिस्तर लेकर यहाँ आ गई। तब से यहीं के लोगों के लिए काम कर रही हैं। माँ पापा आज तक आपको रोक नहीं पाए।
0: पता है प्रिशा, मात्र अपना जीवन जीकर इस दुनिया से चले गए तो क्या जिया? जिए तो कोई पार्वती गिरी जी की तरह जी।

0: जिसने स्वतंत्रता के बाद भी कोई बड़ा पद ना लेकर गांव-गांव जाकर काम करने की सोची। वो 1955 में संबलपुर जिले के लोगों के लिए स्वच्छता सुधार के लिए एक अमरीकी प्रोजेक्ट में शामिल हुई। उन्होंने नृसिंहनाथ में कस्तूरबा गांधी मातृ निकेतन नामक महिलाओं और अनाथों के लिए एक आश्रम शुरू किया और संबलपुर जिले के जूजोमुरा ब्लॉक के अंतर्गत बीर सिंह गढ़ में निराश्रितों के लिए डॉक्टर संतरा बाल निकेतन नामक एक और घर शुरू किया।
1: हाँ दीदी, मैंने भी पढ़ा कि उन्होंने जेल सुधार और कुष्ठ रोग उन्मूलन में काम किया। उनके समाज सेवा के कार्यों को देखते हुए 1984 में भारत समाज कल्याण विभाग ने उन्हें सम्मानित भी किया था।
0: वाह, ये सब जानकारी इन्हीं कागजों में है क्या? दिखा दो, किसने इतनी जानकारी इकट्ठा करके रखी हुई है?
1: ट्रेन में एक महाशय मिले थे जो पार्वती गिरी जी पर रिसर्च कर रहे हैं। मैंने कहा पार्वती जी की अनुयायी से साक्षात मिलवा देती हूँ, मदद ही हो जाएगी बेचारे की। इतना अच्छा काम कर रहे हैं, क्यों, ठीक किया ना दी?
0: हाँ,
1: पार्वती गिरी जी तो आपकी भी प्रेरणा है, तो आप करेंगी ना उनकी मदद?
0: तुम ये ट्रेन में दोस्तियाँ करना बंद करोगी, पता है ना जमाना कितना खराब है।
1: दीदी ये चीटिंग है। आप कहती हो कि ट्रेन में किसी का खाना नहीं खाना चाहिए, ना ही खिलाना चाहिए। देखो कैसे अच्छे से रटी हुई है मैंने ये बात। पर पढ़ने लिखने की बातें नहीं करनी चाहिए, ये आपने कभी नहीं कहा।
0: तुमसे ना बस बहस करा लो, बात की होगी तो नंबर भी एक्सचेंज किए होंगे ना।
1: अरे आप तो बहुत इंटेलिजेंट निकली
0: तुम।
1: देखो अब जाओ, बढ़िया सा खाना बना लो, थोड़ा ज्यादा बना लेना, और अगर कोई आ जाए तो उसको भी पूरा हो जाए। क्यों?
0: क्या मतलब कि कोई आ रहा है और मुझे पता ही नहीं?
1: मुझे भी कहाँ पता है, पर सोच रही हूँ कि जब किसी ने अपने हाथ की लिखी हुई इतनी बड़ी रिसर्च दी है तो वो लेने भी तो आएगा ना। अगर ना भी लेने आए तो पूछने तो आएगा ना कि कैसी लगी।
0: ओफो, तुम जब से आई हो ना बहुत बहकी बातें कर रही हो। कान खोल के सुन लो, इस घर में कोई अजनबी नहीं आना चाहिए, समझी?
1: वो तो वक्त बताएगा।
0: क्या बोला?
1: अरे भाई कुछ नहीं, प्लीज कुछ पन्ने बच्चे हैं दीदी, पढ़ने दो ना चैन से।
0: ठीक है, एक आवाज लगाऊंगी, खाने के लिए आ जाना चुपचाप।
1: ओके, माता श्री जी का बिग रूप, जाए अब आप।

0: विशाल देखो दरवाजे पे कोई है।
1: वो ये लड़की भी ना। अब शिशिर तुम, तुम्हें मेरा पता किसने दिया?
2: वर्षों से ढूंढ रहा हूं शैला तुम्हें, बस एक माफी मांगने के लिए। मैं क्यों ना समझ सका कि तुम कितना बड़ा काम करना चाहती हो। तुमने कभी बचपन में पार्वती गिरी के बारे में पढ़ा था और तय कर लिया कि मैं उनकी तरह ही देश सेवा करूंगी और शहर का अच्छा खासा सुख सुविधा वाला जीवन छोड़कर इधर चली आई। जब इस गांव में आया तो सिर्फ तुम्हारा नाम पूछा और लोगों ने मुझे सम्मान के साथ सीधा यहां लाकर छोड़ा। तुम्हारी बहन प्रिशा से जब मैंने पता मांगा तो उसने भी यही कहा था कि इस गांव में आकर दीदी का नाम पूछ लेना और वो लोग तुम्हें सम्मान सहित उनके घर पहुंचा देंगे।
1: आओ शिशिर।
0: प्रिशा, तुम्हारे मेहमान आए हैं ट्रेन वाले।
3: जी दीदी, आई।
1: शिशिर खाना लगा रही हूँ, खाना खाकर जाना।
2: नहीं, जब तक तुम मुझे माफ नहीं कर देती तब तक मैं पानी भी नहीं पीऊंगा।
1: बच्चों जैसी बातें मत करो, चलो खाना खा लो।
4: अरे शिशिर भाई, आ गए आप? दी, वो तो खाना खा लेंगे, पर ये तो बताओ कि आपको पार्वती गिरी की कौन सी बात इतनी प्रभावित कर गई कि आपने उनके जीवन पर चलने की ठान ली?
1: जानती हो प्रिशा, जिस लड़की को 11 साल की उम्र में ही पता चल गया हो कि उन्हें अपने देश की आजादी के लिए काम करना है, सोच कर देखो उस शख्सियत के बारे में। वैसे उनके चाचा रामचंद्र गिरी एक प्रमुख नेता थे और उनके घर में बैठकर स्वतंत्रता सेनानी देश की आजादी की चर्चा किया करते थे। समलाईपुर गांव राष्ट्रवादियों के लिए

0: महत्वपूर्ण सभा स्थल था।
1: समलाईपुर गांव संबलपुर जिले में है,
2: हाँ,
1: जहां पार्वती गिरी जी का जन्म हुआ है ना, 19 जनवरी 1926 में। हाँ सही याद है ना मुझे शिशिर भाई?
3: आज का दिन यानी 19 जनवरी मैं कैसे भूल सकता हूँ। आज के दिन ही तो हम अलग हुए थे। तुम्हारी दीदी पार्वती गिरी जी की तरह अनाथालय खोलना चाहती थी, देश की जिम्मेदारियां संभालना चाहती थी, और मैं शैला का साथ निभाने में असमर्थ रहा।
1: आप तो कहानी को अपने ऊपर ले गए शिशिर भाई। अभी ये तो बताएं कि पार्वती गिरी जी स्वतंत्रता आंदोलन का हिस्सा कैसे बनी?
3: बताया ना तुम्हारी दीदी ने कि वो अपने घर में हो रही स्वतंत्रता सेनानियों की बैठकों में बहुत दिलचस्पी से भाग लेती थी। उनके बलिदान से प्रेरित होकर वो घर घर जाकर लोगों को पार्टी का सदस्य बनने का अनुरोध करने लगी, और उन्हें ये जिम्मेदारी किसी ने सौंपी नहीं थी, बल्कि उन्होंने ये जिम्मेदारी अपने लिए खुद तय की थी। और एक संगठन के विकास के लिए पहला कदम यही है कि ज्यादा से ज्यादा उसके सदस्य बने।
2: हाँ, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति इस छोटी सी लड़की की पहल पार्टी के नेताओं तक पहुंची। उन्होंने इस बात से प्रभावित होकर पार्वती के पिता से विनती की कि वो उसे समलाईपुर गांव में पार्टी के अधिवेशन में संगठनात्मक कार्य के लिए अनुमति दे दें। उस समय पार्वती मात्र 11 बरस की थी। उनको सौंपे गए कार्यों के प्रति उनका समर्पण इतना प्रभावशाली था कि मालती चौधरी और प्रण कृष्ण पढ़ियारी जैसे प्रतिष्ठित नेताओं ने उनके परिवार से फिर अनुरोध किया कि पार्वती को संगठनात्मक कार्यों में पूर्णकालिक रूप से शामिल होने की अनुमति दे दें।
3: हाँ, और ये वो समय था जब पार्टी में जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं की भारी कमी थी, पर परिवार ने काफी समय तक कोई जवाब नहीं दिया। पार्वती गिरी भी दृढ़ निश्चय करके बैठी थी, उन्होंने तो अपनी शिक्षा भी बीच में ही छोड़ दी थी।
2: हाँ।
3: उनके लिए अभी अपनी शिक्षा से ज्यादा महत्वपूर्ण देश की आजादी के संघर्ष से जुड़ना था।

0: നിന്റെ ഭാര്യ
1: बाबूजी, हम स्वतंत्रता आंदोलन में जरूर भाग लेंगे, चाहे आप हमें इजाजत दें या नहीं।
2: पार्वती, तुम अपने बाबूजी के आगे ज्यादा बोल रही हो। तुम्हारी उम्र की बच्चियां पढ़ती हैं या उनका ब्याह करके विदा कर दिया जाता है। ये आंदोलन वांदोलन में काम करना बच्चों का काम नहीं है।
1: पर हमारा काम देखकर ही तो मालती दीदी और प्रिंट कृष्ण,
2: तुमसे उन लोगों का नाम तो अच्छे से लिया नहीं जा रहा है, और काम करोगे उनके साथ? देखो, जिद मत करो, बाबूजी इसकी इजाजत नहीं देंगे।
3: पार्वती की माँ, वो लोग अच्छे हैं,
2: पर
3: अगर उन्होंने कुछ कहा है तो कुछ तो सोचकर ही कहा होगा। और रामचंद्र तो है ही इसके साथ, करने दो इसे अपनी मर्जी, ना हो पाया तो ब्याह कर देंगे।
1: कितना खुशी का पल रहा होगा ना पार्वती जी के लिए।
4: हाँ, और मुझे देखो, आज के आधुनिक समय में मैं पढ़ी लिखी एक संभ्रांत परिवार की लड़की, जिसको आज तक इजाजत नहीं मिली कि मैं गांव में आकर सेवा करूं।
5: शैला, शैला, क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकती?
4: तुम क्यों माफी मांग रहे हो शिशिर? गलती तुम्हारी नहीं है, हमारे समाज की है कि लड़कियों को कुछ काम करने के लिए भी इजाजत लेनी पड़ती है, पर पुरुष, उनकी डिक्शनरी में तो इजाजत शब्द ही नहीं है।
5: पर मुझे तो अपने घर वालों से इजाजत लेनी पड़ रही थी ना, कि मेरी पत्नी शादी के बाद इस घर में ना रहकर उस गांव में रहेगी जहां वो सेवा करना चाहती है। तो नहीं मिली थी मुझे इजाजत? हम लड़के भी इतने स्वतंत्र नहीं होते कि हमारी हर बात मान ली जाए। शैला,
4: चलो मैं ना सही, पर पार्वती गिरी जी खुशकिस्मत निकली कि उन्हें 12 वर्ष की छोटी सी आयु में जाजपुर में रमा देवी द्वारा संचालित बारी आश्रम में जाने की अनुमति दे दी गई। वो बिना किसी घबराहट के वहाँ गई। तुम्हें पता है प्रशा, उनके साथ बरगढ़ की बाल

0: विधवा प्रभावती भी थीं। प्रभावती के परिवार ने भी उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, पर उनके दृढ़ इरादों के आगे सबको हार माननी पड़ी। ये रीबा राय के घर अरिगांव में कुछ दिन तक रुकी और फिर आश्रम पहुंच गई।
1: क्या बात है दीदी।
2: और तो और, पार्वती गिरी ने आंदोलन चलाने के साथ साथ आश्रम में रहकर हस्तशिल्प और स्वयं सहायता सहित कई चीजें सीखी जो बाद में उनके बहुत काम आई। उन्होंने पार्टी के लिए बरगढ़, संबलपुर, पदमपुर, पनीमारा घेस और अन्य स्थानों की यात्राएं शुरू कर दी और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो चुका था। निडर पार्वती आंदोलन का झंडा उठाए गांधी जी का संदेश जगह जगह दे रही थी। वो आंदोलन में आगे बढ़ती जा रही थी। उनको कई बार गिरफ्तार किया गया लेकिन हर बार अंग्रेज सरकार को उन्हें छोड़ना पड़ा।
1: पर क्यों?
2: चूंकि वो नाबालिग थी, बेचारे अंग्रेज दांत पीसते रह जाते पर पार्वती का बाल भी बाका नहीं कर पाते।
1: पता है दी, शिशिर भाई ने ट्रेन में एक बहुत बढ़िया किस्सा सुनाया था पार्वती गिरी जी का।
0: अच्छा, फिर से एक बार सुनाओ ना।

0: strada nello sbagliato.
1: Ed è male.
2: ओह, तो ये कार्यालय है एसडीओ का और ये उसकी कुर्सी जिस पर बैठकर वो हमारे खिलाफ सारे काम करता है और ब्रिटिश सरकार का हुक्म बजाता है, तो आज हम उसका न्याय करेंगे।
3: पार्वती, तुम एसडीओ की कुर्सी पर बैठकर कानून हाथ में ले रही हो। हा? वैसे ही ब्रिटिश सरकार तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़ी है। अगर ऐसा किया तो वो तुम्हें जरूर जेल में डालकर अपनी मूंछों पर ताव देगी और अपनी पीठ ठोकेगी।
2: ब्रिटिश सरकार इसके अलावा कर ही क्या सकती है, जेल में ही भेज सकती है ना, पर कब तक रख लेगी जेल में? देश की आजादी के बाद तो देश अपना ही होगा ना, तो जल्द से जल्द इस ब्रिटिश सरकार को भगाना होगा। उन्हें लोहे के चने चबाने ही होंगे, वरना तो वो सोचेंगे कि हम में दम ही नहीं है। तो मेरे सामने उस एसडीओ के हाथ पैर बांध कर लाया जाए, हम उसका न्याय करेंगे।
3: तुम्हें डर नहीं लगता पार्वती?
2: डर तो ब्रिटिश सरकार को लगना चाहिए। जहाँ के बच्चे आपकी नाक में दम कर सकते हैं, वहाँ के बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानी आपका क्या हाल करेंगे। तो अच्छा यही है कि हमारे देश से इज्जत से निकल जाओ, वरना तो हम ऐसा नाक में दम करेंगे कि अपने देश में जाकर भी नाक से सांस नहीं ले पाओगे।
4: सांस नहीं ले पाओगे।

0: इस घटना ने तो ब्रिटिश सरकार को हिला दिया था। अब तक तो पार्वती गिरी जी को किसी भी आंदोलन के लिए सजा नहीं दे पाए थे क्योंकि वो नाबालिग थी, पर इस घटना के होते ही पार्वती को उन्हें सजा देने का मौका मिल गया क्योंकि अब वो 16 साल की हो चुकी थी। उन्हें 2 साल का कठोर कारावास देकर ब्रिटिश सरकार के कलेजे को ठंडक मिली। दाद थी पार्वती गिरी जी को कि उन्होंने अपने उस कठोर कारावास की सजा को भी खुशी खुशी काटा।
1: बिल्कुल।
0: और जेल के बाहर आने के बाद वो फिर से अपने कामों में जुट गईं। ब्रिटिश सरकार उनके साहस को टस से मस नहीं कर पाई।
2: क्या बात।
1: वैसे प्रिशा, ये किस्सा मुझे तुम्हारी दीदी ने ही सुनाया था।
2: ओह, और मैं वैसे ही आपसे इतनी इम्प्रेस हुई जा रही थी।
0: वैसे तुम्हें पता है प्रिशा, पार्वती गिरी जी ने बरगढ़ कोर्ट में वकीलों को अंग्रेजों के खिलाफ अदालत का बहिष्कार करने और आंदोलन करने का आह्वान किया, पर वकीलों ने उनका साथ नहीं दिया। तो निडर पार्वती ने उन सभी को चूड़ियां भिजवाई थी। ये मर्दों का सरासर अपमान था, पर कोई भी कुछ नहीं बोला, बस बेइज्जती का घूंट पी कर रह गए।
2: सच में क्या दीदी, क्या बात थी ना पार्वती गिरी जी में। यहाँ तो लोगों की जिंदगी खत्म हो जाती है छोटा सा भी करेज लाने के लिए, नहीं?
1: हाँ, जैसे मुझे ही देख लो, हम जैसे लोग

0: कहाँ आगे आने देते हैं किसी भी महिला को। वो अगर कुछ करना चाहती है तो सबसे बड़ा रोड़ा उसके लिए अपने बनते हैं।
1: सच है।
0: जैसे मैं ही कहता था कि अरे हम शादी करेंगे तो कैसे बनेगी हमारी गृहस्थी, मेरे बूढ़े माँ बाप को कौन देखेगा। छोटी छोटी सोच में फंस के रह जाते हैं, बहुत ही स्वार्थी होते हैं हम।
1: हाँ, तो क्या पार्वती जी के माता पिता ने नहीं सोचा होगा कि पहले अपना घर देख लो फिर बाहर का देखना। अब कहा होगा ना, रोका होगा ना उन्हें।
2: बिल्कुल, जरूर कहा होगा, पर वो रुकी कहाँ। उन्होंने अपने हर कर्तव्य को तन और मन से निभाया, और मुझे देखो तुम, मेरे माता पिता ने मुझे त्याग दिया है। उनके लिए मकसद है शादी, और ये शिशिर बाबूजी का भी मकसद है कि शादी हो और मैं इनके घर से लेकर रिश्तेदारों की जिम्मेदारी निभाऊं।
0: अरे,
2: क्योंकि प्रेम विवाह होगा ना, तो ये साबित करना होगा कि बहू अच्छी आई है। पर मुझे ना किसी को कुछ साबित नहीं करना था, मुझे तो बस पार्वती गिरी जी के नक्शे कदम पर चलना था। और अब जैसा भी मैं काम कर रही हूँ ना, मुझे एक संतुष्टि है कि मैं समाज को अपनी सेवा दे पा रही हूँ, अपने मानव होने का फर्ज निभा पा रही हूँ।
3: दी, मैं आपके साथ हूँ। पार्वती गिरी जी के कामों से ही उन्हें अपने गांव, जिले, राज्य के लोगों के दिलों में जगह मिली। आज उनका सम्मान पूरा देश करता है।
2: हाँ प्रीशा, तुम्हें पता है वो चाहती तो स्वतंत्रता के बाद एक अच्छा पद प्राप्त करके अपने जीवन को सुखी कर सकती थी।
3: बिल्कुल दी, बिल्कुल।

0: कितनी खुशी का दिन है ना आज, सच में स्वतंत्रता की सांस का एहसास ही कुछ अलग होता है। आज लग रहा है जैसे मैंने फिर से जन्म लिया हो।
1: सच में मुझे भी ऐसा ही लग रहा है।
2: हाँ दीदी, सच में आज तो सांस लेने में आनंद आ रहा है। मेरा दिल तो चाह रहा है कि मैं जोर जोर से चिल्लाऊं, हम आजाद हैं, आजाद देश के वासी हैं।
0: किसने रोका है तुम्हें? खुशी से चिल्लाओ, जोश से चिल्लाओ। अब हम गुलाम नहीं है किसी के, जो अपनी बात कहने से डरेंगे। बोलो मेरे साथ, हम आजाद हैं, आजाद देश के वासी हैं।
3: हम आजाद हैं, आजाद देश के वासी हैं।
0: हम आजाद हैं, आजाद देश के वासी हैं।
2: दीदी, चूंकि अब देश आजाद हो गया है तो आपको भी अब दिल्ली चले जाना चाहिए, क्योंकि अब वहीं से तो पूरा देश चलेगा।
0: नहीं, अब तो घर वापसी हुई है, देश आजाद हुआ है, पर जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। देश के ऊपर बहुत सारी चुनौतियां हैं, हमें अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को खुद ही देखना होगा। मुझे एक अनाथालय बनाना है। देश की इस लड़ाई में बहुत से बच्चे अनाथ हो गए हैं, उनको अच्छा जीवन देने के लिए हमें काम करना होगा। दलितों के लिए हमें काम करना होगा, उन्हें समाज में सम्मान दिलाना होगा।
1: पार्वती, तुमने तीसरी कक्षा में अपनी शिक्षा छोड़ दी थी और देश के प्रति अपने को समर्पित कर दिया था, पर अब तुम अपनी शिक्षा पूर्ण करके जो भी तुम्हारा सपना है उसे पूरा करना। प्रयागराज जाकर प्रयाग महिला विद्यापीठ से अपनी शिक्षा पूरी करो, वहाँ तुम्हारे लिए जो भी मदद बन पड़ेगी मैं करूँगी।
0: सच बताऊं तो प्रभा दीदी, मन में कसक थी कि अपनी शिक्षा को पूरा करूं, वरना तीसरी पास लड़की को कौन सुनेगा। आपने मेरा मार्गदर्शन करके मुझे अपना ऋणी बना लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभा दीदी।
1: तुम मेरी बहन जैसी हो पार्वती, तुम्हारा अच्छा सोचकर मुझे सुख मिलता है। वैसे पार्वती, तुमने अपने विवाह के बारे में कुछ सोचा है? शिक्षा के बाद ही करना जो करना है।
0: प्रभा दीदी, विवाह तो हो ही चुका है देश की जिम्मेदारियों से। शिक्षा पूरी करने के बाद मुझे बहुत काम करना है दीदी, उसमें शादी की जिम्मेदारियां उठाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा।
4: वाह, पार्वती जी को शत शत प्रणाम। वो चाहती तो आजादी के बाद आसानी से राजनीति में आ सकती थी, सारी सरकारी सुख सुविधाओं का भोग कर सकती थी, पर

0: उन्होंने दोबारा शिक्षा प्राप्त करने का मार्ग चुना।
1: यही नहीं, उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद एक पैदल कार्यकर्ता के रूप में राष्ट्रीय विकास का कठिन रास्ता चुना। उन्होंने विनोबा भावे के भूदान आंदोलन में भाग लिया। अनाथों के लिए बारगांव के पाड़ कमल गांव में रुक्मणी लाठ बाल निकेतन की स्थापना भी की और अनाथों, महिलाओं और बच्चों के लिए कस्तूरबा गांधी मातृकुंठा नामक संघ की स्थापना की। और त्रिशा, संबलपुर में उन्होंने निराश्रितों के लिए डॉक्टर संतरा बाल निकेतन की स्थापना भी की।
0: जी भैया, इतना ही नहीं त्रिशा, इसके अलावा पार्वती गिरी जी ने जेल सुधार के लिए भी आंदोलन चलाया। वहीं स्वतंत्रता सेनानी रमा देवी चौधरी के साथ कोरापुट में अकाल से पीड़ित लोगों को राहत देने के लिए एक गांव से दूसरे गांव जा जाकर मदद की।
2: उन्हें अपनी जान की कतई चिंता नहीं थी क्या?
0: हाँ हाँ, उन्हें अपने जान की कतई चिंता नहीं थी। ऐसे ही थोड़ी उन्हें उड़ीसा की मदर टेरेसा कहा जाता है।
2: तो आप भी मदर टेरेसा बनना चाहती हैं?
0: अरे नहीं नहीं, मदर टेरेसा जैसा जीवन जीना आसान नहीं है और ना ही पार्वती गिरी जी जैसा। पर उनका 1% भी जीवन जी लिया और एक गांव भी या एक इंसान को भी सही मार्ग दिखा दिया ना, तो समझूंगी कि मैंने अपने देश और अपनी आत्मा के प्रति अपना कर्तव्य निभा दिया।
2: दीदी, आपके त्याग को कोई समझे ना समझे, पर मैं समझ गई हूँ। 17 अगस्त 1995 को पार्वती जी ने आखिरी सांस ली और उनके सम्मान में सरकार ने 2016 में मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना का नाम पार्वती गिरी रखा।
0: हाँ।
2: वहीं 1998 में उड़ीसा राज्यपाल द्वारा संबलपुर विश्वविद्यालय से पार्वती गिरी को डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया।
1: बिल्कुल,
2: थोड़ी देर कर दी थी इस सम्मान के लिए, पर पार्वती गिरी जी को तो जीवन में कोई चाह ही नहीं थी, बस एक चाह के अलावा कि मेरी आखिरी सांस भी लोगों के लिए कुछ काम आ जाए। ऐसी थी पार्वती गिरी जी।
1: बहुत अच्छा समय बीता प्रिशा आप लोगों के साथ।
2: भैया, हम सबको भी बहुत अच्छा लगा आपके साथ।
1: तो अच्छा, अब मैं चलता हूँ। पार्वती गिरी जी पर बहुत सारी जानकारी एकत्रित करके एक किताब लिखने की कोशिश कर रहा हूँ।
2: क्या बात है भैया,
1: और पूरी हो गई तो शैला, तुम्हें कष्ट देने जरूर आऊंगा, क्योंकि वो किताब मैं तुम्हें समर्पित करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आज तुमसे बहुत कुछ सीख कर जा रहा हूँ। नमस्ते।
2: नमस्ते। नमस्ते। मुझे लगता है कि पार्वती गिरी जी ने आज शिशिर भाई के जीवन और उनकी सोच को भी बदल दिया।

0: अभी आप सुन रहे थे नाटक पार्वती गिरी, लेखिका सुनीता अग्रवाल, निर्देशन व प्रस्तुति काजल सूरी। भाग लेने वाले कलाकार थे प्रज्ञा झा, अंशिका अवनी, दिशा सेन, राहुल दक्ष, मनिल मयंक मिश्रा, उर्मिला, निशा भारद्वाज।
1: आप सुन रहे थे नाटक पार्वती गिरी, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है।

17 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।

0: 17 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: मैं हूँ आपका जलदाता ग्रैंड वॉटर। कैसे हैं आप सब? आपकी मशीनें यहाँ धरती में इतने नीचे भी मुझे चैन से नहीं रहने देती। हर साल मेरा ठिकाना धरती में और नीचे हो जाता है। इस वर्ष 2040 में धरती में कितना और नीचे आ गया हूं मैं? क्या लिखूं अपना दर्द? अब तो कलम में बस बूंदे ही बची है। अपनी फोटो भेज रहा हूं, खुद ही देख लीजिए मेरी सेहत। क्या पता अगली चिट्ठी लिख भी पाऊंगा या नहीं। आप कर सकते हैं मेरी सहायता। बस दो शब्द याद रखिए, कंट्रोल और सेव। और हाँ, अपना ख्याल रखिएगा।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। श्रोताओं, 4 बजने को हैं, अब समाचार होंगे।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी निभाती है।
4: आप सब जानते हैं, हर पीढ़ी के सामने उस टाइम पीरियड की अपनी चुनौतियां होती है और हर पीढ़ी का अपना एक राष्ट्रीय दायित्व भी होता है। साथियों, आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
3: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्र उभर रहे हैं जो युवाओं को नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे क्षेत्रों का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कार्य कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भरता की ये पहल विकसित भारत के निर्माण के लिए एक मजबूत आधार का काम करेगी। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण ने भारत के शिक्षा तंत्र को शिक्षार्थी केंद्रित, अनुसंधान आधारित और भविष्योन्मुखी बनाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने भारत के संस्थानों में नया आत्मविश्वास जगाया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने IIT दिल्ली में उच्च दक्षता के कंप्यूटिंग केंद्र परम प्रज्ञा का उद्घाटन भी किया। सरकार ने उद्योग जगत के प्रमुख कारोबारियों और स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने वाली कैश फ्री पेमेंट्स, डार्विन डायनामिक्स, वर्ल्ट इंडिया, क्रॉस 24 और काउंसिल फॉर स्टार्टअप के साथ कई रणनीतिक समझौता ज्ञापनों की घोषणा की है। इन समझौता ज्ञापनों पर वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने हस्ताक्षर किए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि कैश फ्री पेमेंट्स के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का उद्देश्य स्टार्टअप्स के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे के सहयोग को मजबूत करना है। झारखंड में आज JPSC और JSSC भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध समाधान की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। राज्य सरकार और विरोध प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों के विभिन्न समूहों के बीच आज दूसरे दौर की उच्च स्तरीय वार्ता हुई।
5: सरकार की ओर से मंत्रियों ने स्पष्ट किया कि वे व्यापक परीक्षा सुधारों के लिए प्रतिबद्ध हैं। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एक आधिकारिक फीडबैक ईमेल ID भी जारी की।

0: है जिस पर छात्र और सभी हितधारक अपने सुझाव भेज सकते हैं। सरकार इन सभी सुझावों के आधार पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में अंतिम निर्णय लेगी। हालांकि छात्र प्रतिनिधियों ने वार्ता पर संतोष जताया है, लेकिन कहा है कि मांगों पर ठोस और लिखित आदेश आने तक उनका शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रहेगा। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार के शासन में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ गई है। पार्टी सांसद तरुण चुग ने आज नई दिल्ली में कहा कि पंजाब में कानून व्यवस्था वेंटिलेटर पर है। उन्होंने आरोप लगाया कि डॉक्टर, वकील, व्यापारी और अन्य लोग अपनी सुरक्षा के लिए माफियाओं को जबरन वसूली की रकम देने को मजबूर हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में आज सुबह एक बस दुर्घटना में 7 लोगों की मौत हो गई और 11 अन्य घायल हो गए। ये दुर्घटना सुबह करीब 7:15 बजे हुई। चंबा के पुलिस अधीक्षक विजय सकलानी ने बताया कि राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम और जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की खराब स्थिति को देखते हुए आज जम्मू से बालतल की ओर से और श्री अमरनाथ जी की यात्रा रोक दी गई। हालांकि बालतल से पवित्र गुफा की ओर यात्रा सामान्य रूप से जारी है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि न्याय तक पहुंच बातचीत से शुरू होती है और लोगों की खास समस्याओं के हिसाब से समाधान दिए जाने चाहिए। इंदौर में आज न्याय तक पहुंच बढ़ाने पर वेस्ट जोन रीजनल कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अलग अलग समुदायों की शिकायतों और परेशानियों को उनकी अपनी भाषाओं में सुना जाना चाहिए। मौसम विभाग ने आज राजस्थान और ओडिशा में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज लक्षद्वीप, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिककाल में बिजली और तेज हवाओं के साथ गरज चमक के साथ तूफान आने की संभावना है। अगले 2 से 3 दिनों में देश के विभिन्न हिस्सों में मूसलाधार वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणु कटारिया। Prime Minister Narendra Modi today urged the students of the Indian Institute of Technology, IIT Delhi, to keep the national interest at the center of their decisions and ask themselves how their actions can benefit the country and address its needs. Mr. Modi made these remarks while addressing the 57th convocation of IIT Delhi. The Prime Minister said that new sectors are emerging in the country, offering fresh opportunities for the youth. He cited sectors such as semiconductors, space and drones and said, India is working towards becoming self-reliant across all sectors. Mr. Modi said this drive towards self-reliance will serve as a strong foundation for building a Viksit Bharat.
3: Aaj Bharat, economic self-reliance, technological self-reliance, इंडस्ट्रियल सेल्फ रिलायंस, ऐसे हर सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने के लिए काम कर रहा है। यही विकसित भारत की मजबूत नींव का सबूत है। इस मजबूत नींव पर आपको एक भव्य सुंदर विकसित भारत का निर्माण करना है।
2: Further elaborating on India's efforts in the semiconductor sector, Prime Minister Modi said that production has begun at India's first semiconductor unit. Mr. Modi also spoke about distractions in the age of social media. He said students should avoid comparing themselves with others on the basis of salary packages, jobs or the sectors in which they are working. Mr. Modi said life is not a leaderboard and one's journey is not a competition with others but with oneself. Union Education Minister Prahlad Joshi, Chairperson Board of Governors of IIT Delhi Harish Salve and Director IIT Delhi Professor Rangan Banerjee were also present in the ceremony. On the occasion, the Prime Minister also inaugurated a high-performance computing facility, Parampragya, at IIT Delhi. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah has expressed confidence that the umbrella organization will transform the urban banking sector by making its services more modern, transparent and trustworthy. An umbrella organization in cooperatives is a central governing or supporting body formed by multiple independent cooperative institutions. Mr. Shah inaugurating the new office complex of the National Urban Cooperative Finance and Development Corporation in Mumbai's Fort area urged all cooperative banks to join the umbrella organization as well as the security operations center. The Indian Air Force Band will perform at the National War Memorial in New Delhi tomorrow to commemorate Independence Day. The Defense Ministry said that the display of

0: musical patriotism across to aims to foster national pride through public engagement while celebrating 150 years of the national song Vande Mataram. India has achieved a major milestone in its clean energy journey, with the country crossing 300 gigawatts of installed non-fossil fuel-based electricity capacity. In a social media post, New and Renewable Energy Minister Prahlad Joshi highlighted that India's renewable energy capacity has surged by 400% over the last 12 years. In Jammu and Kashmir, the Amarnath Yatra from Jammu towards Baltal has been suspended today in view of the prevailing bad weather and road conditions at several places along the Jammu-Srinagar National Highway. However, the Yatra from Baltal towards the Holy Crave Shrine continues as usual. More than 2,500 pilgrims have performed darshan since morning. The Yatris who had already performed darshan were allowed to leave Baltal and proceed towards Jammu. The Indian Meteorological Department has issued an orange color warning for heavy to very heavy rainfall over Rajasthan and Odisha today. According to IMD, thunderstorms accompanied with lightning and gusty winds are expected to prevail over Lakshadweep, North Interior Karnataka, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal. The IMD has also predicted heavy rainfall with thunderstorms and lightning in various parts of the country over the next 2 to 3 days. Indian shuttler Ashmita Chaliha has reached the women's singles final of the Korea Masters Super 300 badminton tournament in Asan, South Korea. Ashmita defeated fellow Indian Rakshita Ramraj in the semi-final today. Ashmita will face China's Qiu Han in the women's singles final tomorrow. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 4:10 हुए हैं। आइए आपको जानकारी देते हैं गुमशुदा व्यक्तियों के बारे में। खोई हुई महिला का पूरा नाम श्वेता है। ये सोनू राघव की पत्नी है। इन्हें अंतिम बार पूजा एनक्लेव में 30 जून 2026 को देखा गया। इनकी आयु 25 वर्ष है, मजबूत शरीर है एवं कद 5 फीट 2 इंच है। इनके उल्टे हाथ पर कट का निशान है। ये अपने घर से नाराज होकर कहीं चली गई हैं। इनके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप प्रभारी निरीक्षक थाना बिसरक, कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर से संपर्क कर सकते हैं। लापता युवती का पूरा नाम शिवानी है। ये राजवीर की पुत्री हैं। इन्हें अंतिम बार इनके घर पर 3 जुलाई 2026 को दिन शुक्रवार को देखा गया। निवासी कस्बा वथाना जेवर, गौतम बुद्ध नगर। इनकी आयु 20 वर्ष है, निखरा शरीर है एवं कद 5 फीट है। ये अपने घर से बिना बताए कहीं चली गई हैं। इनके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप प्रभारी निरीक्षक कोतवाली जेवर, जनपद गौतम बुद्ध नगर से संपर्क कर सकते हैं। गुमशुदा पुरुष का पूरा नाम कलुआ है। ये चिरमौला के पुत्र हैं। इन्हें अंतिम बार कस्बा जेवर में देखा गया। इनकी आयु 70 वर्ष है, शरीर की बनावट सामान्य है एवं कद 5 फीट है। ये अपने घर से बस पर बैठकर कहीं चले गए हैं, फिर वापस नहीं लौटे। इनके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप प्रभारी निरीक्षक कोतवाली जेवर, जनपद गौतम बुद्ध नगर से संपर्क कर सकते हैं। लापता महिला का पूरा नाम श्रीमती ओमवती है। ये कुमार पाल की पत्नी है। इन्हें अंतिम बार ग्राम चचूरा में दिनांक 1 जुलाई 2026 को बुधवार के दिन देखा गया। ओमवती की आयु करीब 55 वर्ष है, शरीर मध्यम है एवं कद 5 फीट 3 इंच है। दिनांक 1 जुलाई

28 मई 2026 को ये अपने घर से अपनी बकरी के साथ उसको चुगाने ले गई थी, फिर वापस नहीं लौटी। इनके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप थाना प्रभारी थाना रघुपुरा कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर से संपर्क कर सकते हैं। गुमशुदा युवती का पूरा नाम सीमा कुमारी है, ये मनोज की पुत्री हैं। इन्हें अंतिम बार 10 जुलाई 2026 को समय रात्रि 10 बजे देखा गया। इनकी आयु 18 वर्ष है, शरीर की बनावट औसत है एवं कद 5 फीट है। ये अपने घर से बिना बताए कहीं चली गई हैं, फिर वापस नहीं लौटी। इनके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप प्रभारी निरीक्षक थाना सेक्टर 63 कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर से संपर्क कर सकते हैं। खोए हुए पुरुष का पूरा नाम श्री अलीशन है, ये रसीद खान के पुत्र हैं। इन्हें अंतिम बार क्लियो काउंटी सेक्टर 121 गौतम बुद्ध नगर में देखा गया। ये अपने काम से कहीं बाहर गए थे, फिर वापस नहीं लौटे। इनकी आयु 40 वर्ष है, शरीर की बनावट औसत है एवं कद 5 फीट 6 इंच है। इनके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप प्रभारी निरीक्षक थाना फेस 3 नोएडा कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर से संपर्क कर सकते हैं। लापता महिला का पूरा नाम फोजिया उर्फ गुड़िया है, इन्हें अंतिम बार दिनांक 4 जुलाई 2026 को रात्रि 12 बजे इनके घर पर देखा गया। इनकी आयु करीब 45 वर्ष है, इखरा शरीर है, रंग सांवला है, चेहरा लंबा है। ये 4 बच्चों की मां है, इनका रंग सांवला है। ये अपने घर से बिना बताए कहीं चली गई हैं। इनके बारे में अधिक जानकारी देने वाले को 2000 रुपये पुरस्कार स्वरूप दी जाएगी। इनके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप प्रभारी निरीक्षक कोतवाली दनकौर गौतम बुद्ध नगर से संपर्क कर सकते हैं। और अंत में गुमशुदा व्यक्ति का पूरा नाम नरेश है, इनकी आयु 34 वर्ष है, शरीर की बनावट सामान्य है एवं कद 5 फीट 9 इंच है। इनके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप प्रभारी निरीक्षक थाना कासना कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर से संपर्क कर सकते हैं। गुमशुदा व्यक्तियों के बारे में सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है।

0: Eligible candidates may apply as per the prescribed eligibility criteria, terms and conditions, and application procedure is available on the official website. The last date for receipt of applications is 21 days from the date of publication of this advertisement in the Employment News. For details, kindly refer to www.munitionsindia.in. I repeat, it is www.munitionsindia.in. Indian Institute of Science Education and Research, Bhopal, Ministry of Education, Government of India invites applications for the post of a director, IISER Bhopal. The position carries a fixed pay scale of 2,25,000 per month. The director, being the principal academic and administrative head of the institute, should have a strong background in teaching, research administration, research guidance and PhD level, and proven leadership abilities. The appointment will be on contractual tenure of 5 years or until attaining the age of 70, whichever is earlier. Eligible candidates may apply online through the NITSER Council website. The last date for applications is 23/8/2026. Detailed advertisement and further information is available on the website, that is at www.nitcouncil.org.in, or you could also go on to www.dst.gov.in. And now we have the employment news in Hindi.
1: नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक के साथ मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए अब जानकारी लेते हैं रिक्तियों से संबंधित। उत्तर पूर्वीय पुलिस अकादमी आमंत्रित करती है अतिरिक्त निदेशक पद के लिए आवेदन। भर्ती प्रतिनियुक्ति के आधार पर की जानी है। योग्यता, अनुभव, बायोडाटा, प्रोफॉर्मा आदि के बारे में जानकारी के लिए देखिए उत्तर पूर्वी पुलिस अकादमी की वेबसाइट nepa.gov.in। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नागपुर में ये रिक्तियां उपलब्ध हैं। सहायक नर्सिंग अधीक्षक दो पद, बाल मनोचिकित्सक एक पद, चिकित्सा अधिकारी होम्योपैथी और चिकित्सा अधिकारी यूनानी एक एक पद, तथा मेडिकल फिजिसिस्ट न्यूक्लियर मेडिसिन एक पद और मेडिकल फिजिसिस्ट रेडियोथेरेपी तथा ट्यूटर क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर। ट्यूटर क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर के लिए दो पद उपलब्ध हैं, जबकि मेडिकल फिजिसिस्ट रेडियोथेरेपी के लिए एक पद उपलब्ध है। आप विस्तृत जानकारी के लिए देख सकते हैं संस्थान की वेबसाइट aimsnagpur.edu.in। इसके अतिरिक्त यदि आप और विस्तार से जानकारी चाहें तो देख सकते हैं 8 अगस्त से 14 अगस्त 2026 का रोजगार समाचार पत्र। विनिधानकर्ता शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण में महाप्रबंधक, उप महाप्रबंधक, सहायक महाप्रबंधक, जनसंपर्क अधिकारी और सहायक प्रबंधक की रिक्तियां उपलब्ध हैं। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की वेबसाइट www.mca.gov.in। इसके अतिरिक्त आप इस वेबसाइट पर भी देख सकते हैं www.iepf.gov.in। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी हिमाचल प्रदेश आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन। मुख्य चिकित्सा अधिकारी, परियोजना अभियंता और संपदा अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी, तकनीकी अधिकारी, कनिष्ठ अधीक्षक तथा कनिष्ठ लाइब्रेरी सूचना सहायक। ऑनलाइन शुल्क भुगतान, पात्रता शर्तों और ऑनलाइन आवेदन पत्र संबंधी विवरण संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, जिसका पता है iitmandi.ac.in। कोस्ट गार्ड मुख्यालय राष्ट्रीय स्टेडियम परिसर नई दिल्ली में ये रिक्तियां उपलब्ध हैं। सिविलियन स्टाफ अधिकारी, सिविलियन स्टाफ अधिकारी लॉजिस्टिक्स, अनुभाग अधिकारी, मुख्य ड्राफ्ट्समैन, निजी सहायक तथा सहायक। सिविलियन स्टाफ अधिकारी की नियुक्ति गोपालपुर ओडिशा में की जानी है। जबकि सिविलियन स्टाफ

0: छुट्टियां होंगी चेन्नई, विशाखापत्तनम, कराईकल, मुंबई, बेपोर, मिनिकॉय, इंद्रोथ, विझिंजम, दमन, कारवार, श्री विजयपुरम, जखाऊ, पिपावाव और वादीनार में। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए भारतीय कोस्ट गार्ड की वेबसाइट www.indiancoastguard.gov.in। राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च आमंत्रित करता है इन पदों के लिए आवेदन। सह प्रोफेसर औषधीय प्रबंधन, सहायक प्रोफेसर वित्त एवं लेखा, उपपंजीयक वित्त एवं लेखा। निर्धारित प्रारूप में आवेदन भेजे जा सकते हैं इस वेबसाइट पर www.indiancoastguard.gov.in। इसी वेबसाइट पर आपको नियम और शर्तों संबंधी समग्र जानकारी विस्तार से प्राप्त हो जाएगी। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: दिस प्रोग्राम वॉज प्रोड्यूस्ड एंड प्रेजेंटेड बाय द न्यूज सर्विसेज डिवीजन ऑफ आकाशवाणी।
2: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
3: नमस्कार श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन परिक्रमा का। इसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सभी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जगत के समाचार होंगे। चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे क्या कुछ है उनके पास खास। इसके अलावा खेल जगत की गतिविधियों पर भी हमारी नजर रहेगी और उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी हम याद करेंगे जिनकी आज है पुण्यतिथि या जयंती। तो श्रोताओं, परिक्रमा के इस संघ के साथ मैं हूं मुकेश कुमार और मेरे साथ है मेरी सहयोगी रेनू कटारिया। रेनू, आपको भी मेरा नमस्कार।
4: नमस्कार, हेलो एंड गुड डे एवरीबॉडी। यू आर ट्यून्ड टू परिक्रमा ऑन 100.1 FM। आई एम रेनू कटारिया एंड विद मी टुडे इज माय को होस्ट मुकेश। एंड फॉर यू डियर लिसनर्स, वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, आवर डिस्कशन सेगमेंट, डेटलाइन इंडिया, रिपोर्ट्स, कैप्सूल्स, ट्रिब्यूट्स and much more, and all this over the next 30 minutes. But first let's begin with the news headlines. Mukesh
3: ji, bilkul. Pradhanmantri Narendra Modi ne kaha, सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे उभरते क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता विकसित भारत की मजबूत नींव रखेगी। उन्होंने IIT के विद्यार्थियों से अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने का आग्रह किया।
4: Jharkhand government holds second round of talks with student protesters over alleged irregularities in JPSC and JSSC examinations.
3: Himachal Pradesh ke Chamba zile mein aaj savere ek bus durghatna mein 7 logon ki maut aur 11 anya ghayal.
4: IMD issues orange alert for heavy to very heavy rainfall over Rajasthan and Odisha today.
3: जम्मू से बालतल के रास्ते अमरनाथ यात्रा खराब मौसम के कारण स्थगित।
4: एंड इन मेंस जैवलिन थ्रो, आशीष यादव विन सिल्वर एट वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप्स इन यूनाइटेड स्टेट्स। And now, dear listeners, it is time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or global level. And today, we are going to talk about the digital transformation of the Indian Judiciary e-Courts Mission. And for all of you who are not aware, please do listen carefully. Mukesh, ये आज मुझे लगता है बहुत ही अच्छा एक हमने टॉपिक उठाया है जो सबकी जानकारी के लिए बहुत अच्छा है अगर वो सुने हमें तो. So India's judiciary, which serves over 1 billion people, has long relied on paper records and brick and mortar infrastructure. Many citizens incurred excessive travel and other expenses, visiting courts and other establishments for their matters and documents. This archaic system made the delivery of justice slow, cumbersome, and expensive for the people it served. The government launched the e-courts mission mode project in 2007 to address these challenges. This mission aims

0: To systematically speed up proceedings by digitizing various court proceedings and documents. It is also making the judicial process more affordable, accessible, and transparent for uninvolved, including lawyers, judges, and clerks. Now, in its third phase, the mission has transformed the judicial system using technology.
1: बिल्कुल, वर्ष 2011 से 2015 के दौरान पहले चरण में इस मिशन की नींव रखी गई। इसमें 14,000 से अधिक अदालतों को कंप्यूटराइज किया गया और प्रौद्योगिकी आधारित न्यायिक सेवाओं के लिए जरूरी बुनियादी नेटवर्क अवसंरचना तैयार की गई। वर्ष 2015 से 2023 के दौरान दूसरे चरण में नागरिकों के लिए कई सेवाएं जैसे राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड, ई फाइलिंग और ई सेवा केंद्र शुरू किए गए। इस चरण में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अवसंरचना को 5 गुना से अधिक बढ़ाया गया, जिससे न्यायिक कार्यवाही तक पहुंच, वर्चुअल पहुंच जो थी वो उसमें काफी सुधार हुआ। वर्ष 2023 से 2027 के दौरान ये परियोजना अब तीसरे चरण में है। इस चरण का लक्ष्य डिजिटल, कागज मुक्त और अधिक स्मार्ट अदालतों की ओर बढ़ना है। इसके लिए रिकॉर्ड्स का बड़े पैमाने पर डिजिटाइजेशन, वर्चुअल सुनवाई का अधिक उपयोग, न्यायिक संस्थानों के बीच बेहतर तालमेल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एनालिटिक्स और ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन जैसी नई प्रौद्योगिकी को अपनाना शामिल है। वर्चुअल कोर्ट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा, केस ट्रैकर और पेंडिंग व निपटाए गए केस दिखाने वाले डैशबोर्ड जैसे डिजिटल टूल्स ने अदालती कार्यवाही को व्यवस्थित और तेज बनाया है। इन सुधारों से सभी संबंधित लोगों को फायदा होगा।
0: वेरी ट्रू मुकेश, द नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड और द एन JDG, which was launched under phase 2, is an online public dashboard that tracks court orders, judgments, and case details in real time. It plays an important role in digital transformation process. The NJDG comprises 3 dedicated dashboards for the Supreme Court, High Courts, and District Courts. Together, they provide insightful details on the functioning of courts across the country by tracking the number of pending and disposed cases in high courts and subordinate courts across the country. It also gives information about the distribution of cases by category and stage of proceedings, such as admission, hearing, judgment, and disposal. The NJDG aims to improve transparency and accountability in the system by making data on pending court cases public. It has also helped in judicial planning, monitoring, and remote administration by the High Court judges, district judges, and High Court registry.
1: और रेनू, इससे पहले क्या होता था कि नागरिकों को वकीलों को कोर्ट के जो दस्तावेज हैं जैसे शिकायतें, लिखित बयान, जवाब और दूसरी अर्जियां खुद जाकर जमा करने पड़ते थे, लेकिन अब ई फाइलिंग प्रणाली की वजह से इसकी जरूरत नहीं रही है। अब दस्तावेज कहीं से भी ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं। न्याय व्यवस्था को अधिक समावेशी बनाने के लिए ये प्रणाली अंग्रेजी के साथ साथ क्षेत्रीय भाषाओं को भी सपोर्ट करता है और जिला अदालतों, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में काम करता है।
0: वेरी ट्रू मुकेश, यू नो देयर आर दीज क्रोर्स ऑफ पेंडिंग केसेस एंड दीज क्रोर्स ऑफ ओल्डर कोर्ट रिकॉर्ड्स आर बीइंग डिजिटाइज्ड अंडर फेज 3 ऑफ द मिशन एंड दिस हेल्प्स प्रिजर्व वैल्यूएबल रिकॉर्ड्स फ्रॉम फिजिकल डैमेज एंड मेक्स रिट्रीवल एंड रिसर्च फास्टर एंड मोर एफिशिएंट। लिटिगेंट्स, लॉयर्स, विटनेसेस एंड अदर स्टेक होल्डर्स कैन नाउ पार्टिसिपेट participate in hearings remotely through video conferencing. This has eliminated the need for travel, enabling easier access to courts across cities and states and improving access to justice.
1: बिल्कुल, अब वकील जो है मुकदमे से जुड़े लोग, न्यायाधीश और दूसरे लोग ऐप, कई भाषाओं वाले ई कोर्ट्स, सर्विस पोर्टल, ईमेल और एसएमएस जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए मुकदमे का स्टेटस और अपडेट ट्रैक कर सकते हैं। इन सेवाओं से ट्रैकिंग और पारदर्शिता बेहतर हुई है, इससे अदालत जाने की जरूरत कम हुई है और न्यायिक सेवाएं प्राप्त करना आसान हो गया है। रोजाना 4 लाख से अधिक एसएमएस और 6 लाख ईमेल भेजे जाते हैं। कई भाषाओं वाले ई कोर्ट सर्विस पोर्टल पर रोजाना लगभग 35 लाख हिट्स आते हैं।
0: वेरी वेरी ट्रू, द ई सेवा केंद्रज एस्टैब्लिश्ड विद इन कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस सर्व एज सिटीजन फ्रेंडली असिस्टेंस सेंटर्स। इट इज वेयर पीपल कैन गेट गाइडेंस ऑन वेरियस लीगल प्रोसीजर्स एंड प्रोसेसेस एंड दीज कियोस्क्स प्रोवाइड द फैसिलिटीज लाइक आंसरिंग क्वेरीज ऑन केस स्टेटस, नेक्स्ट हियरिंग डेट एंड रिलेटेड केस डिटेल्स, शेयर जजमेंट एंड कोर्ट ऑर्डर्स कॉपीज वाया ईमेल, व्हाट्सएप और अदर डिजिटल चैनल्स। And as on June 30, 2026, there are 49 e-seva kendras functional across all high courts and 2,535 e-seva kendras across district courts.
1: बिल्कुल, मिशन के तीसरे चरण के अंतर्गत वर्ष 2027 तक उच्च न्यायालय में एआई और मशीन लर्निंग को लागू करना अगला कदम है। इस विकास कार्य के लिए कुल 7,210 करोड़ रुपए के बजट में से 53.57 करोड़ रुपए तय किए गए हैं। इन तकनीकों के इस्तेमाल से कानूनी अनुसंधान, मुकदमा प्रबंधन, ट्रांसक्रिप्शन अनुवाद और न्यायिक फैसलों में मदद जैसे कामों को बेहतर बनाया जा सकेगा।
0: The e-courts mission has modernized and digitized India's judicial system. It has replaced tedious processes, in-person court visits and physical paperwork with something far easier, more trackable and more efficient. New AI tools are helping various stakeholders work more effectively. Through these interventions, anyone can access judicial services from anywhere. Justice delivery is now more transparent, faster and more affordable for the public. The e-courts mission mode project has transformed India's paper-based judiciary into a digitally enabled and trackable justice delivery system. Since 2014, both case filings and disposals have nearly tripled, with courts consistently disposing of more cases than are filed each year. Over 753 crore pages of court records have been digitized, while thousands of e-seva kendras are helping bridge the digital divide by expanding access to judicial services. Together, these reforms are making the justice system faster, more transparent and more accessible to everyone. And also, Mukesh, here we would like to say that it is limiting human error, it is improving communication, it is increasing customer satisfaction. So there is a lot that the government is thinking about the public and really working for them.
1: बिल्कुल, और पहले जैसे होता था कि ये फाइल नहीं मिल रही है, वो फाइल नहीं मिल रही है, दबी है, टाइम लगता था, ढूंढने में टाइम लगता था, वो सब शिकायतें जो हैं वो अब समाप्त हो गई हैं। एक क्लिक पर आपकी फाइल सामने आती है।
0: आपको एक कियोस्क पे जाना है, आपको एक क्लिक करनी है और आपके पास सारी जानकारी आपके सामने होती है।
1: और श्रोताओं, परिक्रमा कार्यक्रम में अब वक्त हुआ है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास चलने का और जानने का कि उनके पास क्या विशेष है। तो रेणु, सबसे पहले चलते हैं त्रिपुरा।
0: जी चलिए।
1: और त्रिपुरा की राजधानी अगरतला की अगर हम बात करें तो त्रिपुरा में महिलाओं के सशक्तिकरण, सुरक्षा और आर्थिक समावेशन के लिए चलाए जा रहे विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के जरिए विकास कार्यों में उनकी भागीदारी लगातार बढ़ रही है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजय राहटकर ने महिलाओं के कल्याण को बढ़ावा देने, बाल विवाह रोकने और रोजगार के अवसर पैदा करने की दिशा में राज्य की प्रगति की तारीफ की है। त्रिपुरा की अपनी 3 दिन की यात्रा के दौरान उन्होंने महिला और बाल कल्याण से जुड़ी कई योजनाओं की समीक्षा की और अधिकारियों तथा लाभार्थियों से बातचीत की। तो सुनते हैं रिपोर्ट।
2: नेशनल कमीशन फॉर वुमेन चेयरपर्सन विजया राहतकर बिगन हर 3-day विजिट टू त्रिपुरा ऑन July 28 विद अ विजिट टू गोमती डिस्ट्रिक्ट फायर शी वॉज वेलकम्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन शी इंस्पेक्टेड द वन स्टॉप सेंटर एट तिपानिया एंड रिव्यूड द सपोर्ट सर्विसेज बीइंग प्रोवाइडेड टू वुमेन फेसिंग डिस्ट्रेस एंड वायलेंस लेटर शी अटेंडेड द शी सर्व्स प्रोग्राम फायर शी एनकरेज्ड यंग वुमेन टू एक्सप्लोर कैरियर अपॉर्चुनिटीज इन द आर्म्ड फोर्सेस पैरामिलिटरी फोर्सेस एंड द पुलिस स्ट्रेसिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन and employment, she said economic independence is one of the strongest pillars of women's empowerment.
3: शीशा जी, हमारी जो गोमती की बेटियां हैं उनके लिए हमने किया हुआ एक अच्छा प्रयास है।
2: At Udaipur's Rajorshi Kala Kshetra, the National Commission for Women Chairperson participated in an awareness program on child marriage prevention and the Yashoda AI initiative. Addressing the gathering, she described child marriage as a major social challenge and said that expanding access to education for girls and children is the most effective way to eliminate the practice. She also highlighted the importance being given to women's education under the leadership of Prime Minister Narendra Modi. On the final day of her visit, Vijaya Rahatkar addressed a press conference in Agartala. She said the government of India is working with the goal of eliminating child marriage across the country by 2030. She also highlighted the implementation of POSH Act to prevent sexual harassment at workplaces and spoke about joint initiatives with the border security efforts to curb human and child trafficking. She emphasized that ensuring women's safety and protecting their rights requires collective participation from society, institutions, and the administration. According to her, awareness, education, and equal opportunities will play a vital role in building a stronger and more inclusive India. The National Commission for Women Chairperson's visit highlighted the center's continued focus on strengthening women's safety.

0: और अब हम याद कर रहे हैं भारतीय फिल्म और टीवी कलाकार अनुपम श्याम ओझा को। आज उनकी पुण्यतिथि है। अनुपम श्याम ओझा मुख्य तौर से हिंदी सिनेमा और टीवी जगत में सक्रिय रहे। अनुपम श्याम ने वैसे तो कई फिल्मों और टीवी धारावाहिकों में अभिनय किया है, लेकिन उन्हें असली सफलता 2009 में मिली जब टीवी सीरियल मन की आवाज प्रतिज्ञा से। इस सीरियल में अनुपम श्याम ने ठाकुर सज्जन सिंह का किरदार निभाया था और ये टीवी सीरियल लोगों को खूब पसंद आया और खासकर अनुपम श्याम का किरदार। इसके बाद वो घर घर में पहचाने जाने लगे, तो क्यों ना इस किरदार का डायलॉग सुन लेते हैं।
1: हम कौनो तितली नहीं ना, जब मुट्ठी में दबाए लोगे तो रंग छोड़ देंगे। ठाकुर सज्जन सिंह है सज्जन सिंह, प्रयागराज के ठाकुर सज्जन सिंह।
0: थिएटर की शिक्षा लेने के बाद अनुपम श्याम श्रीराम सेंटर रंगमंडल में काम करने लगे और कुछ दिन वहां काम करने के बाद एक्टर बनने का सपना लिए वो माया नगरी मुंबई पहुंच गए। अनुपम श्याम ने सबसे पहले लिटिल बुद्धा नाम की अंतर्राष्ट्रीय फिल्म से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्हें शेखर कपूर की फिल्म बैंडिट क्वीन में काम करने का अवसर मिला। अनुपम श्याम को फिल्मों में अधिकतर बदमाशों का किरदार ही मिला। उन्होंने अपने करियर में दस्तक, 1084 की मां, दुश्मन, सत्या, दिल से, जख्म, संघर्ष, लगान, नायक, शक्ति, पाप, जिज्ञासा, राज, वेल्डन, अब्बा, वांटेड, कजरारे और मुन्ना माइकल जैसी फिल्मों में काम किया। तो एक और डायलॉग अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं।
2: जवान बेटा मर गया, बिलबिलाए रहा है नरसिम्हा, हिलहिलाए रहा है अपनी हवेली में और इधर उधर जिसको देख रहा है मार दे रहा है। ए नरसिम्हा, अरे रोमा उखाड़ने से मुर्दा हल्का नहीं होता, और किसी आनी बिल्ली अम्बा नहीं नोचेगी तो का डांस करेगी।
3: And today we are going to talk about Bhishma Sahani Mukesh. He was a Hindi writer, playwright and actor, most famous for his novel and television screenplay Tamas, which means darkness, ignorance, a powerful and passionate account of the partition of India. And he was awarded the Padma Bhushan for literature in 1998 and the Sahitya Akademi Fellowship in 2002. And he was also the younger brother of noted Hindi film actor Balraj Sahni.
0: और उन्हें हिंदी फिल्म हिंदी साहित्य में प्रेमचंद की परंपरा का अग्रणी लेखक माना जाता था। वे आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख स्तंभों में से एक थे। भीष्म साहनी मानवीय मूल्यों की सदैव हिमायती रहे। वामपंथी विचारधारा से जुड़े होने के साथ साथ वे मानवीय मूल्यों को कभी आंखों से ओझल नहीं करते थे और आपाधापी और उठापटक के युग में भीष्म साहनी का व्यक्तित्व बिल्कुल अलग था। उन्हें उनके लेखन के लिए तो स्मरण किया ही जाता है, लेकिन अपनी सहृदयता के लिए वे चिर स्मरणीय रहे। भीष्म साहनी ने कई प्रसिद्ध रचनाएं की, जिनमें उनके उपन्यास जैसा कि आपने बताया तमस जो थी 1986 में एक फिल्म का उस उपन्यास के आधार पर निर्माण हुआ था और उन्हें कई पुरस्कार भी मिले थे। और देश के विभाजन से पहले भीष्म साहनी ने व्यापार भी किया और इसके

0: साथ ही वे अध्यापन का भी कार्य करते रहे।
1: जी बिल्कुल। एंड टुडे इज द बर्थडे ऑफ शॉन मेंडेस, हु इज अ कैनेडियन सिंगर, सॉन्ग राइटर एंड मॉडल। अमंग हिज एक्लेड्स, मेंडेस हैज वन 13 सोकान अवार्ड्स, 10 एमटीवी यूरोप म्यूजिक अवार्ड्स, 8 जूनो अवार्ड्स, 8 आई हार्ट रेडियो MMVAs, 2 अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड्स एंड रिसीव्ड 2 ग्रैमी अवार्ड नॉमिनेशंस। सो हियर वी आर गोइंग टू लिसन टू हार्ट ऑफ गोल्ड इन हिज ब्यूटिफुल वॉइस।

0: और भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्रसिद्ध गायिका सिद्धेश्वरी देवी की आज जयंती है। तत्कालीन समय में जब नाचने गाने वालों को अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता था और महिला कलाकारों को वेश्या मान लिया जाता था, ऐसे समय में सिद्धेश्वरी देवी ने अपनी कला के माध्यम से भरपूर मान और सम्मान अर्जित किया था। उन्हें निर्विवाद रूप से ठुमरी गायन की साम्राज्ञी मान लिया गया था। तो श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए मुकेश कुमार और रेणु कटारिया को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की।
1: नमस्कार।
2: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी निभाती है।
3: आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्र उभर रहे हैं जो युवाओं को नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे क्षेत्रों का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कार्य कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भरता की ये पहल विकसित भारत के निर्माण के लिए एक मजबूत आधार का काम करेगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने IIT दिल्ली में उच्च दक्षता के कम्प्यूटिंग केंद्र परम प्रज्ञा का उद्घाटन भी किया। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने देश के सभी सहकारी बैंकों से राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त तथा विकास निगम में शामिल होने का आग्रह किया। ये निगम देश के सहकारी बैंकों का एक छात्र संगठन है। उन्होंने मुंबई के फोर्ट क्षेत्र में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम के नए कार्यालय परिसर का उद्घाटन करने के बाद ये बात कही। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ये संगठन अपनी सेवाओं को अधिक आधुनिक, पारदर्शी और विश्वसनीय बनाकर शहरी बैंकिंग क्षेत्र में परिवर्तन लाएगा। सरकार ने उद्योग जगत के प्रमुख कारोबारियों और स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने वाली कैश फ्री पेमेंट्स, डार्विन डायनेमिक्स, वर्ल्ड इंडिया कास्ट 24 और काउंसलिंग फॉर स्टार्टअप के साथ कई रणनीतिक समझौता ज्ञापनों की घोषणा की है। इन समझौता ज्ञापनों पर वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने हस्ताक्षर किए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि कैश फ्री पेमेंट्स के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का उद्देश्य स्टार्टअप के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे के सहयोग को मजबूत करना है। झारखंड में आज JPSC और JSSC भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध समाधान की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। राज्य सरकार और विरोध प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों के विभिन्न समूहों के बीच आज दूसरे दौर की उच्च स्तरीय वार्ता हुई।
4: सरकार की ओर से मंत्रियों ने स्पष्ट किया कि वे व्यापक परीक्षा सुधारों के लिए प्रतिबद्ध हैं। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एक आधिकारिक फीडबैक ईमेल आईडी भी जारी की है, जिस पर छात्र और सभी हितधारक अपने सुझाव भेज सकते हैं। सरकार इन सभी सुझावों के आधार पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में अंतिम निर्णय लेगी। हालांकि छात्र प्रतिनिधियों ने वार्ता पर संतोष जताया है, लेकिन कहा है कि मांगों पर ठोस और लिखित आदेश आने तक उनका शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रहेगा। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
2: भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि पंजाब में आम आदमी

0: पार्टी की सरकार के शासन में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ गई है। पार्टी सांसद तरुण चुग ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि पंजाब में कानून व्यवस्था वेंटिलेटर पर है। उन्होंने आरोप लगाया कि डॉक्टर, वकील, व्यापारी और अन्य लोग अपनी सुरक्षा के लिए माफियाओं को जबरन वसूली की रकम देने को मजबूर हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में आयोजित इंडिया मेडिकल डिवाइस कॉन्फ्रेंस 2026 में सीईओ गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस सम्मेलन में नवाचार, नियामक उत्कृष्टता, घरेलू विनिर्माण, मूल्य श्रृंखला, बाजार पहुंच और निर्यात को मजबूत करने के दृष्टिकोण पर चर्चा हुई। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज टिंडोग लेहो रम फाट के अवसर पर सिक्किम के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंधिया ने कहा कि ये त्यौहार लेप्चा समुदाय की समृद्ध संस्कृति और विरासत तथा उनकी भूमि के बीच अटूट संबंध का एक सुंदर उत्सव है। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष में वायुसेना बैंड कल नई दिल्ली के राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर प्रस्तुति देगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में देशभक्ति के इस संगीतमय कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi today urged the students of the Indian Institute of Technology, IIT Delhi, to keep national interest at the center of their decisions and ask themselves how their actions can benefit the country and address its needs. Mr. Modi made these remarks while addressing the 57th convocation of IIT Delhi. The Prime Minister said that new sectors are emerging in the country, offering fresh opportunities for the youth. He cited sectors such as semiconductors, space and drones, and said India is working towards becoming self-reliant across all sectors. Mr. Modi said this drive towards self-reliance will serve as a strong foundation for building a Vikasit Bharat.
2: Economic self-reliance, technological self-reliance, industrial self-reliance, ऐसे हर सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने के लिए काम कर रहा है। यही विकसित भारत की मजबूत नींव का सबूत है। इस मजबूत नींव पर आपको एक भव्य सुंदर विकसित भारत का निर्माण करना है।
1: Further elaborating on India's efforts in the semiconductor sector, Prime Minister Modi said that production has begun at India's first semiconductor unit. Mr. Modi also spoke about distractions in the age of social media. He said students should avoid comparing themselves with others on the basis of salary packages, jobs or the sectors in which they are working. Mr. Modi said life is not a leaderboard and one's journey is not a competition with others but with oneself. Union Education Minister Prahlad Joshi, Chairperson Board of Governors of IIT Delhi Harish Salve and Director IIT Delhi Professor Angon Banerjee were also present in the ceremony. On the occasion, the Prime Minister also inaugurated a high-performance computing facility, Parampragya, at IIT Delhi. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah has urged all cooperative banks to join the National Urban Cooperative Finance and Development Corporation, NUCFDC, the umbrella organization for cooperative banks in the country. Mr. Shah said this after inaugurating the new office complex of the NUCFDC in Mumbai's Fort area. He expressed confidence that the umbrella organization will transform the urban banking sector by making its services more modern, transparent and trustworthy. Vice President C.P. Radhakrishnan arrived at Sri Vijayapuram today on a two-day visit to the Andaman and Nicobar Islands. On his arrival at INS Utkrosh, the Vice President was accorded a ceremonial reception and guard of honour. Mr. Radhakrishnan will visit the National Memorial Cellular Jail this evening and pay floral tributes at the Martyrs Column and offer his respects at the Swatantrata Jyoti. He will also visit the cell of Veer Savarkar and other important sections of the historic cellular jail, including the central tower, workshed, gallows and the museum exhibition gallery. Union Minister of Health and Family

0: लोक रंजनी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को राम राम। तो नीलम बहन हमासे ने अपने श्रोताओं का मनपसंद कार्यक्रम लोक रंजनी लेकर के, और जैसा कि हमारे श्रोता जानते हैं अगस्त का ये महीना है, और इस महीने में जो देश प्रेम की भावना है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। देश प्रेम, जिसे देशभक्ति भी कहा जाता है, ये एक ऐसा भाव है जो हमें अपने देश की रक्षा के लिए प्रेरित करता है और साथ ही हमें अपने देश की उन्नति में योगदान देने के लिए भी प्रेरित करता है। इसीलिए देशभक्ति का सही माने में अर्थ है अपने देश से प्यार करना, उसकी सेवा करना और उसकी तरक्की के लिए हर संभव प्रयास करना।
1: बिल्कुल शशि भाई, देश प्रेम हर नागरिक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमें अपने देश के साथ एक मजबूत संबंध स्थापित करने में मदद करता है और हमें एक साथ काम करने के लिए प्रेरित करता है। देशभक्ति से हमें अपने देश की संस्कृति, इतिहास और परंपराओं पर गर्व होता है। ये हमें राष्ट्र की प्रगति और विकास में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित करता है।
0: तो नीलम बहन, बात हो रही है देशभक्ति की, राष्ट्र प्रेम की, तो आइए अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं एक देशभक्ति गीत। कलाकार हैं कर्मपाल शर्मा।

0: खातिर जीना सिखो, देश पे प्राण गवाओ।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे थे कर्मपाल शर्मा से ये देशभक्ति गीत।
2: नीलम बहन, जब लोग अपने देश से प्यार करते हैं तो वो राष्ट्र की प्रगति के लिए काम करने में भी प्रेरित होते हैं। देशभक्ति सामाजिक एकता को मजबूत करती है और लोगों को एक साथ रहने के लिए प्रेरित करती है।
1: बिल्कुल, देशभक्ति से देश का आर्थिक विकास भी बढ़ता है, क्योंकि लोग देश के लिए काम करने में ज़्यादा रुचि रखते हैं। और देशभक्ति से हमें अपने देश पर गर्व होता है और हम अपने देश के विकास के लिए आत्मविश्वास से काम कर सकते हैं।
2: बिल्कुल, तो आइए इसी क्रम में एक और देशभक्ति गीत सुनवाते हैं अपने श्रोताओं को। कलाकार हैं कृष्ण कुमार।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे थे कृष्ण कुमार से ये देशभक्ति गीत।
1: नीलम्बन, ये बरसात का मौसम चल रहा है। बरसात का मौसम जितना सुहाना होता है, कहीं ना कहीं उतना बीमारियों को भी ये आमंत्रित करता है, क्योंकि इस मौसम में बारिश की वजह से कई स्थानों पर पानी जमा हो जाता है। कीचड़ और गंदगी से पैदा होने वाले मच्छर, मक्खी और बाकी कीट पतंगे बीमारियां फैलाते हैं। तो श्रोताओं, ऐसे मौसम में आपको अपना खास ख्याल रखने की आवश्यकता होती है, और खास ही इस मौसम में

0: जहरीले कीड़े हैं वो भी निकल आते हैं, तो उनसे भी आप अपना बचाव करें। जब भी आप सोएं तो फुल बाजू के जो कपड़े हैं उनको पहन के सोएं और बिस्तर को सही तरह से हिला लें ताकि कोई कीड़ा कांटा हो वो निकल जाए। और इसके साथ ही आप पशुपालन करते हैं तो उनका भी आप खास ध्यान रखें, क्योंकि उनको भी बीमारियां हो सकती हैं इस मौसम में, तो उनकी साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें।
1: बिल्कुल, और बारिश होने पर जगह जगह पानी भरने से मच्छरों के पनपने के लिए अनुकूल स्थिति बन जाती है, जिससे मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारियां हो जाती हैं जो मच्छरों के काटने से फैलती है। खासकर हरी घास में मच्छर पैदा होते हैं। गंदगी मच्छरों के पैदा होने का एक मुख्य कारण है। बरसात में बुखार और कई बीमारियाँ फैलाने का कारण मच्छर हो सकते हैं। ऐसे में बचाव के लिए जरूरत है स्वच्छता और अपने स्वास्थ्य के प्रति अधिक सचेत और जागरूक रहने की।
0: बिल्कुल, कहने का मतलब यह है कि मौसम कोई भी हो, स्वच्छता का पूरा ध्यान रखना चाहिए। और नीलम मैन, हम ध्यान रखते हैं अपने श्रोताओं के मनोरंजन का, तो इसी क्रम में उनको सुनवाते हैं कोमल चौधरी से ये मल्हार।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक रंजनी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 5:30 होने को हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम खेल खिलाड़ी।
1: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।
2: खेल की दुनिया की हर हलचल, हर जीत, हर संघर्ष के साथ मैं हूं प्रेरणा शर्मा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी प्रवीण यादव।
3: नमस्कार सभी को।
2: नमस्कार, आप देख रहे हैं खेल खिलाड़ी। आज का दिन भारतीय खेल जगत के लिए कई बड़ी खबरें लेकर आया है। कहीं विश्व मंच पर युवा भारतीय खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का दम दिखाया है, तो कहीं बड़े टूर्नामेंट में अगले मुकाबले की तस्वीर साफ हो रही है। हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, फुटबॉल और क्रिकेट, खेल के हर मैदान से आज हमारे पास है आपके लिए कुछ खास। आज के खेल खिलाड़ी में हॉकी के FIH वर्ल्ड कप 2026 से लेकर कोरिया मास्टर्स, अंडर-20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप, डूरेंट कप, DPL 2026 और आखिर में भारत श्रीलंका अभ्यास मुकाबले तक खेल जगत की हर बड़ी हलचल पर होगी हमारी खास नजर। तो चलिए शुरुआत करते हैं हॉकी के उस बड़े मन से, जहां जल्द ही दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीमें विश्व चैंपियन बनने के लिए होंगी आमने सामने।

0: मंजिल उन्हीं को मिलती है जो सफर से रिश्ता निभाते हैं। पदक तो बस पहचान बनते हैं, इतिहास तो हौसले लिख जाते हैं। वक्त भी बड़ा दिलचस्प होता है, कभी वो एक लम्हे में तकदीर बदल देता है तो कभी एक सपने को मुकम्मल होने में बरसों लग जाते हैं। कुछ सफर मंजिल पर पहुँच कर खत्म हो जाते हैं, लेकिन कुछ इंतजार ऐसे होते हैं जो हर नई पीढ़ी के साथ फिर एक नया ख्वाब बनकर लौट आते हैं। खेल की दुनिया भी कुछ ऐसी ही है, यहाँ जीत सिर्फ एक नतीजा नहीं, हार सिर्फ एक स्कोर लाइन नहीं, और मैदान पर बचती अंतिम सीटी केवल मुकाबले का अंत नहीं बल्कि किसी नए ख्वाब की शुरुआत कराती है। दुनिया के हर बड़े खेल आयोजन की अपनी एक पहचान है, कहीं ओलंपिक का गौरव है, कहीं फुटबॉल विश्व कप का जुनून, और जब बात हॉकी की आती है तो FIH हॉकी विश्व कप वो मंच है जहाँ रफ्तार, रणनीति, हुनर और हौसला चारों एक साथ अपनी सबसे बड़ी परीक्षा देते हैं। हॉकी एक ऐसा खेल जिसकी गूंज भारत ने दशकों तक पूरी दुनिया को सुनाई। कभी इस खेल ने तिरंगे को विश्व खेल मानचित्र पर सबसे ऊंची पहचान दिलाई, तो कभी यही खेल करोड़ों भारतीयों के गर्व की सबसे बड़ी वजह बना। लेकिन हर कहानी में एक ऐसा अध्याय भी आता है जहां वक्त कुछ ठहर सा जाता है। भारत की हॉकी यात्रा में भी ऐसा एक लंबा इंतजार चला आ रहा है, लेकिन अब वही इंतजार एक बार फिर उम्मीदों में बदल रहा है। सिर्फ कुछ ही दिनों बाद 15 अगस्त एक तारीख जो हर भारतीय के दिल में आजादी, स्वाभिमान और राष्ट्र गौरव का एहसास जगाती है, और इस बार ये तारीख एक और वजह से खास होने वाली है। यही वो दिन है जब बेल्जियम और नीदरलैंड्स की संयुक्त मेजबानी में दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित हॉकी टूर्नामेंट FIH हॉकी विश्व कप 2026 का आगाज होगा। एक और पूरा देश स्वतंत्रता दिवस का उत्सव मनाएगा, स्कूलों में तिरंगा लहरा रहा होगा, सीमाओं पर जवान मातृभूमि की रक्षा में तैनात होंगे, और उसी दिन हजारों किलोमीटर दूर यूरोप की धरती पर भारतीय हॉकी टीम भी उसी तिरंगे के सम्मान को विश्व मंच पर ऊंचा उठाने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। खेल और राष्ट्रभक्ति का ऐसा सुंदर संगम शायद ही कहीं देखने को मिले। ठीक 50 वर्ष पहले वर्ष 1975 में भारत ने हॉकी विश्व कप का स्वर्णिम अध्याय लिखा था।
1: और गेंद भारत के डी में, राष्ट्रवादी बाबर दौड़े डी से पहले, लेकिन उससे पहले ही मुनव्वर ने गेंद क्लियर कर दी। गेंद मिली है बाएं फ्लैंक के अंदर लेफ्ट हाफ के स्थान पर इफ्तार को, इफ्तार ने पास दिया अख्तर रसूल को, अख्तर रसूल ने फिर इफ्तार को, इफ्तार ने जाहिद को, जाहिद बहुत खतरनाक खिलाड़ी, उन्होंने लेफ्ट आउट के स्थान पर मंसूर जूनियर को दे दिया जो सेंटर फॉरवर्ड असलम ने इंटरसेप्ट किया। असलम ने गेंद छीन ली मंसूर जूनियर से, लेकिन असलम का फाउल लिया अंपायर ने, और यह फ्री हिट 25 गज की लाइन पर दाएं फ्लैंक में मिला पाकिस्तान के इफ्तार को, जिन्होंने हिट लगाया पास दिया अख्तर रसूल को, अख्तर रसूल ने, और गेंद भारत के डी में बाई तरफ जहां पे चौकर ने वहां पे पहुंच गया अब्बास, अब्बास भारतीय डी में, और उन्होंने सेंटर की, लेकिन उससे पहले सुरजीत

0: खूबसूरती से अजीत पाल ने गेंद अपनी टीम में से बाहर कर दी पांच लेंथ में और यह खेल खत्म। भारत को एक से जीत गया, भारत विश्व हॉकी चैंपियन है। ये समाचार मैं मेलविल डिमेलो के साथ आपको कुआलालंपुर से देता हूँ। 2-1 से
1: कुआलालंपुर में खेले गए उस ऐतिहासिक फाइनल में पाकिस्तान को 2-1 से हराकर भारतीय टीम ने पहली और अब तक की अपनी एकमात्र विश्व कप ट्रॉफी जीती थी। उस ऐतिहासिक जीत की यादें आज भी भारतीय हॉकी प्रेमियों के दिलों में ताजा हैं। सुनते हैं उस स्वर्णिम अभियान के नायक और 1975 विश्व कप फाइनल में निर्णायक गोल करने वाले महान खिलाड़ी अशोक कुमार से।
2: उस दौर को वाकई में एक जो हमको हमारे देश को वो एक जीत मिली थी 1975 की, यदि मैं कहूँ कि वो एक ऐसी ऐतिहासिक जीत थी जिसको अगर हम इस नजरिए से देखें और लोगों ने उसको आंकलन किया भी है, जो 1936 का अगर मैं आपको कई साल कई बरस पहले ले जाऊं तो वो मेजर ध्यानचंद की कप्तानी में उनकी टीम के अगेंस्ट में जो मैच हिटलर की टीम और जर्मनी टीम ने खेला था, जिसमें भारत ने इंटरवल तक एक गोल से बराबर रहने के बाद सेकेंड हाफ में 8-1 से विक्ट्री हासिल की थी, उन दो पैमानों को हमेशा याद करके देखा जाता है भारत की हॉकी को, और वो है 1936 और 1975 वर्ल्ड कप कुआलालंपुर, जिसमें भारत की टीम ने पाकिस्तान के साथ फाइनल मैच में 2-1 से जीत हासिल कर देश सम्मान को उन मेडल्स को और हॉकी को उस खेल को ऊंचा उठाया था। और मुझे भी थोड़ा गर्व होता है इस बात का कि वो जो विक्ट्री था जिसका जीत का गोल था वो गोल मेरी हॉकी से हुआ, तो मुझे उस क्षण और पल का मुझे एहसास है और मैं उसको अपने दिल दिमाग में रखता हूँ कि उस जीत में जो भारत को मिली और भारत ने जीता था वर्ल्ड कप, उसमें थोड़ा सा योगदान मेरा भी था।
1: उस जीत ने केवल एक खिताब नहीं दिलाया, उसने करोड़ों भारतीयों को ये विश्वास दिया कि जब इरादे बुलंद हों तो दुनिया की सबसे कठिन चुनौती भी छोटी पड़ जाती है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों ने एक बार फिर उम्मीद की नई किरण जगाई है। टोक्यो ओलंपिक में ऐतिहासिक कांस्य पदक, पेरिस ओलंपिक में लगातार दूसरा कांस्य, राजगीर में एशिया कप का शानदार खिताब और उसके बाद विश्व की दिग्गज टीमों के विरुद्ध आत्मविश्वास से भरे प्रदर्शन, इन उपलब्धियों ने ये संकेत दिया कि भारतीय हॉकी फिर उसी दिशा में बढ़ रही है जहां कभी उसका स्वर्णिम साम्राज्य हुआ करता था। अब इस नए अभियान की कमान एक ऐसे खिलाड़ी के हाथों में है जो अपनी तेज ट्रैक फ्लिक, आक्रामक नेतृत्व और शांत स्वभाव के लिए दुनिया भर में पहचाना जाता है, हरमनप्रीत सिंह। हरमनप्रीत की कप्तानी में भारतीय टीम अनुभव और युवा ऊर्जा का संतुलन संगम नजर आ रही है। रक्षा पंक्ति में अमित रोहिदास, जुगराज सिंह, संजय और सुमित जैसे भरोसेमंद खिलाड़ी हैं। मिडफील्ड में मनप्रीत सिंह, हार्दिक सिंह और विवेक सागर प्रसाद जैसे अनुभवी नाम खेल की गति को नियंत्रित रखने की क्षमता रखते हैं। वहीं आक्रमण में मनदीप सिंह, सुखजीत सिंह, दिलप्रीत सिंह, अभिषेक और शिलानंद लाकड़ा जैसे खिलाड़ी किसी भी मजबूत रक्षा पंक्ति को भेदने का इरादा रखते हैं। गोलपोस्ट की जिम्मेदारी मोहित एचएस और सूरज करकेरा के कंधों पर होगी, जिनसे टीम को निर्णायक मौकों पर मजबूत प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी। यानी अनुभवी खिलाड़ियों के मार्गदर्शन के साथ युवा प्रतिभाएं भी इस विश्व कप में अपनी छाप छोड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। उनके लिए टूर्नामेंट अपने सपनों को साकार करने और तिरंगे का मान बढ़ाने का एक अच्छा अवसर है। आइए सुनते हैं भारतीय टीम के युवा फॉरवर्ड शिलानंद लाकड़ा का इस विश्व कप को लेकर क्या कहना है।
3: जितना भी हॉकी प्लेयर्स हैं, सभी का हॉकी प्लेयर्स लोग का ड्रीम होता है कि वर्ल्ड कप में इंडिया को रिप्रेजेंट करें, तो वो सपना मेरा भी था। मैं इस अपॉर्चुनिटी को मैं अपना 100% दूंगा वर्ल्ड कप। और जो ट्रेनिंग का जो बात है, जो मेंटेलिटी का जो बात है, वो ये है कि हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी सर के बारे में काम कर रहे हैं, पेनल्टी कॉर्नर के बारे में काम कर रहे हैं। मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा अपने आप की हम क्या बेस्ट कर सकते हैं, तो उसमें मैं अपने आप पे ज्यादा फोकस हूँ कि मैं क्या बेस्ट कर सकता हूँ टीम के लिए, उसके बारे में अपने आप को प्रिपेयर करना।
1: लेकिन केवल मजबूत टीम होना ही पर्याप्त नहीं होता, विश्व कप जीतने के लिए हर मुकाबले में धैर्य, निरंतरता और दबाव में सही फैसले लेने की क्षमता सबसे बड़ी कसौटी बन जाती है। और इस बार चुनौती इसलिए भी बड़ी होगी क्योंकि FIH हॉकी विश्व कप 2026 नए प्रारूप के साथ खेला जाएगा, यानी शुरुआती ग्रुप मुकाबलों से आगे तक का सफर पहले की तुलना में अधिक कठिन, अधिक रणनीतिक और अधिक रोमांचक होने वाला है। वर्षों से भारतीय हॉकी की रीढ़ रहे मिडफील्डर मनप्रीत सिंह इस चुनौती को अच्छी तरह समझते हैं। आइए सुनते हैं इस विश्व कप को लेकर उनके विचार।
4: ग्रुप काफी अच्छा है क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इनके साथ मैचेस खेल चुके हैं, ठीक है। रिसेंटली जो हमारी प्रो लीग के

0: मैचेस थे उसमें हम लोग इंग्लैंड और पाकिस्तान दोनों टीमों के साथ खेले थे, वेल्स के साथ नहीं खेले हैं, बट उन दोनों के साथ काफी अच्छे मैचेस रहे, काफी कुछ सीखने के लिए मिला कि क्या उनके प्लस पॉइंट है, क्या उनकी वीकनेस है, कहाँ पे हम लोग उनको हर्ट कर सकते हैं, कि हम लोग कैसे और गोल मार सकते हैं, तो वो काफी अच्छा रहा हमारे लिए। और वर्ल्ड कप में ऐसा है कि हमारा एक पर्सनल ये रहेगा कि हाँ, कि किसी भी टीम को अंडर एस्टिमेट ना करें, क्योंकि भले जो अभी कैसा भी हो, हम लोग अपना हर मैच में पूरा बेस्ट करें। टीम का माइंडसेट यही है कि हाँ, कि जैसे हम लोगों ने लास्ट ओलंपिक में परफॉर्मेंस दिया था वैसे, और बिलीव भी है, क्योंकि जिस हिसाब से टीम अपना खेलती आ रही है, तो काफी बिलीव है कि हम लोग इस बार कर सकते हैं। और यही रहेगा कि हाँ, कि अपना हर मैच में बेस्ट करें, किसी भी टीम को अंडर एस्टिमेट ना करें, और जिसके साथ भी मैच हो अपना बेस्ट दे के निकले और जीत के निकले बाहर। और वेल्स काफी अच्छी टीम है, तो यही रहेगा कि हाँ, कि जो हमारी अच्छी चीजें हैं, जैसे हम लोग काफी अच्छे प्लेंटी कॉर्नर में अच्छे हैं, तो उसको कंटिन्यू करेंगे, उस दिन जितने भी हमें चांस मिले हम लोग उसको गोल में कन्वर्ट करें। और काफी बड़ा दिन है हमारे लिए उस दिन, क्योंकि 15 अगस्त को हमारा मैच है उनके साथ, तो यही रहेगा कि हाँ, कि हम लोग अपने देशवासियों को वो जीत के साथ दें। अगर ऑनेस्टली बात करें सर, हमारा यही रहेगा कि जो हम लोगों ने अभी लास्ट 2 मैचेस जैसे खेले हैं वैसे ही खेलेंगे, तो हम लोग उनको बीट कर सकते हैं, बट हमें इमोशनल नहीं होना है। जो हमारा गेम स्ट्रक्चर रहेगा, जो गेम प्लानिंग हम लोग उस दिन के लिए करके जाएंगे, तो उसको एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि एक हॉकी टीम के में सभी को अपना 100% देना होगा उस दिन, क्योंकि वर्ल्ड कप है, वो भी अपनी तरफ से पूरा जोर लगाएंगे। और हमारा यही रहेगा कि हम लोग अपना डिफेंस स्ट्रांग रखें, तो उनके साथ जब भी हमें अपॉर्चुनिटी मिले हम लोग उसको गोल में करें।
1: तो आखिर भारत का सफर किस मुकाबले से शुरू होगा? किस दिन होगी चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से टक्कर? किन टीमों से महिला टीम की चुनौती होगी? और नया प्रारूप फाइनल तक पहुंचने का रास्ता कैसे तय करेगा? इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा हॉकी विश्व कप 2026 में, जहां केवल विश्व की सर्वश्रेष्ठ टीमें ही नहीं, बल्कि उनके वर्षों का परिश्रम भी आमने सामने होगा। इस बार विश्व कप और भी विशेष है। पहली बार पुरुष और महिला दोनों विश्व कप का आयोजन एक साथ किया जा रहा है। 15 अगस्त से 30 अगस्त तक चलने वाला यह महाकुंभ बेल्जियम और नीदरलैंड्स की संयुक्त मेजबानी में खेला जाएगा। विश्व हॉकी की 32 सर्वश्रेष्ठ टीमें, 16 पुरुष और 16 महिला विश्व चैंपियन बनने के इरादे से मैदान में उतरेंगी। मुकाबला 2 प्रतिष्ठित स्टेडियमों वैगनर हॉकी स्टेडियम एम्स्टलवीन और बेल्फियस हॉकी एरिना वेवरे में खेले जाएंगे। 15 अगस्त से शुरू होकर आने वाले 15 दिनों तक दुनिया की नजरें इन्हीं दो मैदानों पर टिकी रहेंगी, जहां हर पास, हर टैकल, हर गोल और हर बचाव इतिहास का हिस्सा बनने की कोशिश करेगा। लेकिन इस बार केवल मेजबानी ही नहीं बदली, विश्व कप का प्रारूप भी बदला है। यही नया प्रारूप इस संस्करण को पहले से कई अधिक चुनौतीपूर्ण और रोमांचक बना देता है। पुरुष और महिला दोनों वर्गों में 16-16 टीमों को 4-4 पूलों में बांटा गया है। प्रत्येक टीम अपने ग्रुप की बाकी 3 टीमों से एक एक मुकाबला खेलेगी। इसके बाद प्रत्येक ग्रुप की शीर्ष 2 टीमें अगले चरण में प्रवेश करेंगी। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। पहले की तरह सीधे क्वार्टर फाइनल नहीं होंगे। अब दूसरे चरण में क्वालिफाई करने वाली 8 टीमों को 2 नए समूहों में विभाजित किया जाएगा। पहले चरण में अपने साथ क्वालिफाई करने वाली टीम के विरुद्ध प्राप्त परिणाम लेकर टीमें आगे बढ़ेंगी और शेष 2 नए प्रतिद्वंदियों से मुकाबला करेंगी। यानी खिताब की दौड़ में बने रहने के लिए हर मैच, हर अंक और हर गोल का महत्व पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है। दूसरे चरण के बाद दोनों नए समूहों की शीर्ष 2 टीमें सेमीफाइनल में जगह बनाएंगी। इसके बाद विजेता टीमें विश्व चैंपियन बनने के लिए फाइनल में आमने सामने होंगी, जबकि हारने वाली टीम कांस्य पदक के लिए मुकाबला करेगी। यानी इस बार केवल शानदार शुरुआत करना ही काफी नहीं होगा, पूरे टूर्नामेंट में लगातार अच्छा प्रदर्शन करना ही विश्व कप जीतने की सबसे बड़ी शर्त होगी। भारत के लिए ये चुनौती आसान नहीं है। पुरुष वर्ग में भारतीय टीम को ग्रुप डी में रखा गया है। इस ग्रुप में भारत के साथ इंग्लैंड, पाकिस्तान और वेल्स जैसी टीमें मौजूद हैं। भारत अपने अभियान की शुरुआत 15 अगस्त को वेल्स के विरुद्ध करेगा। इसके बाद 17 अगस्त को विश्व के शीर्ष टीमों में शुमार इंग्लैंड से मुकाबला होगा और फिर 19 अगस्त को, वो तारीख जिसका इंतजार केवल भारत और पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी हॉकी दुनिया करती है, भारत बनाम पाकिस्तान। 2 पड़ोसी देश, 2 समृद्ध हॉकी परंपराएं और विश्व कप का वो मुकाबला जिसकी गूंज हमेशा सीमाओं से कहीं आगे तक सुनाई देती है। हर बार ये मुकाबला केवल अंक तालिका तक सीमित नहीं रहा बल्कि करोड़ों खेल प्रेमियों की भावनाओं से भी जुड़ा रहा है। हालांकि इस बार भारत की नजरें केवल इस एक मुकाबले पर नहीं होंगी, लक्ष्य है ग्रुप चरण में निरंतर प्रदर्शन करते हुए अगले दौर में पहुंचना और फिर 5 दशक पुराने अधूरे सपने को पूरा करने की दिशा में एक और मजबूत कदम बढ़ाना। उधर भारतीय महिला टीम भी एक नए विश्वास के साथ विश्व कप में उतर रही है। महिला टीम को भी ग्रुप डी में जगह मिली है, जहां उसका सामना चीन

इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका से होगा। भारत अपने अभियान की शुरुआत 16 अगस्त को चीन के विरुद्ध करेगी। इसके बाद 18 अगस्त को दक्षिण अफ्रीका और 20 अगस्त को इंग्लैंड से मुकाबला होगा। भारतीय महिला टीम की कमान एक बार फिर सलीमा टेटे के हाथों में होगी। अपनी तेज गति, बेहतरीन बॉल कंट्रोल और नेतृत्व क्षमता के लिए पहचानी जाने वाली सलीमा के साथ मिडफील्ड में निक्की प्रधान, साक्षी राणा, सुनेलिता टोप्पो, नेहा और दीपिका सोरेंग जैसे खिलाड़ी टीम को संतुलन और मजबूती देंगे। गोल पोस्ट की जिम्मेदारी अनुभवी सविता और बिच्चू देवी खरीबाम संभालेंगी। रक्षा पंक्ति में इशिका चौधरी, लाल थान तुलुलांगी ज्योति और शिल्पी डबास विपक्षी टीमों के आक्रमण को रोकने की अहम जिम्मेदारी निभाएंगी। वहीं आक्रमण की कमान लाल रेम सियामी, ऋतुजा दादासो पिसाल, नवनीत कौर, दीपिका, इशिका, बलजीत कौर और ब्यूटी डुंगडुंग के हाथों में होगी। इन खिलाड़ियों से भारतीय टीम को तेज और आक्रामक हॉकी की उम्मीद रहेगी। महिला टीम अब तक विश्व कप में पदक जीतने का सपना पूरा नहीं कर सकी है। वर्ष 1974 में चौथे स्थान तक पहुंचना उसका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। ऐसे में इस बार ये टीम इतिहास बदलने और पहली बार विश्व पदक जीतने के इरादे से मैदान में उतरेगी। लेकिन किसी भी विश्व कप में केवल इतिहास, रैंकिंग या आंकड़े जीत की गारंटी नहीं होते। जीत उसी टीम की होती है जो सही समय पर अपने सर्वश्रेष्ठ खेल का प्रदर्शन करे। तो क्या ये भारतीय हॉकी के स्वर्णिम पुनर्जागरण का विश्व कप साबित होगा? क्या 1975 के बाद पहली बार पुरुष टीम विश्व कप का पदक जीत पाएगी? क्या भारतीय महिला टीम पहली बार विश्व कप के इतिहास में पोडियम तक पहुंचने का सपना साकार कर पाएगी? इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा 15 अगस्त से शुरू होने वाले उन 15 दिनों में, जब बेल्जियम और नीदरलैंड्स की धरती पर दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीमें हॉकी की बादशाहत के लिए आमने सामने होंगी।

0: बात करते हैं कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट 2026 की, जिसमें भारतीय खिलाड़ी अस्मिता चलिया ने हमवतन रक्षिता रामराज को हराकर पहली बार BWF वर्ल्ड टूर फाइनल में जगह बनाई है। खिताबी मुकाबले में अस्मिता का सामना चीन की मौजूदा जर्मन ओपन चैंपियन हान क्यांशी से होगा। अस्मिता चलिया ने सेमीफाइनल में अपनी ही हमवतन रक्षिता रामराज को हराकर कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन 2026 टूर्नामेंट के महिला एकल के फाइनल में जगह बना ली है। ऑल इंडिया सेमीफाइनल में विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में 50वें स्थान पर काबिज अस्मिता चलिया ने 49वीं रैंकिंग वाली रक्षिता रामराज को 48 मिनट तक चले मुकाबले में 21-13, 16-21 और 21-13 से हराया। 26 वर्षीय अस्मिता ने पहले ही गेम की शुरुआत से मुकाबले पर नियंत्रण बनाए रखा। उन्होंने इंटरवल तक 11-6 की बढ़त हासिल की और इसके बाद लगातार बढ़त बनाए रखते हुए पहला गेम अपने नाम किया। हालांकि रक्षिता रामराज ने दूसरे गेम में जोरदार वापसी की। उन्होंने 11-6 की बढ़त बनाई और अस्मिता की वापसी की कोशिशों को रोकते हुए दूसरा गेम जीतकर मुकाबला बराबरी पर ला दिया और निर्णायक गेम की ओर बढ़ी। निर्णायक गेम में अस्मिता चलिया ने फिर से नियंत्रण हासिल कर लिया। लगातार 6 अंक हासिल करने के बाद उन्होंने इंटरवल तक 11-3 की मजबूत बढ़त बना ली। ब्रेक के बाद भी अस्मिता ने अपनी बढ़त बरकरार रखी और शानदार जीत दर्ज करते हुए फाइनल में जगह पक्की कर ली। कोरिया मास्टर्स में अस्मिता चलिया का खिताबी मुकाबला उनके करियर का पहला BWF वर्ल्ड टूर फाइनल होगा। इस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी का इससे पहले जून में मकाऊ ओपन में सफर सेमीफाइनल में समाप्त हुआ था। अब वह BWF सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में चौथी वरीयता प्राप्त और 2026 जर्मन ओपन चैंपियन चीन की हान क्यांशी से भिड़ेंगी। फाइनल तक के अपने सफर में अस्मिता ने जापान की शीर्ष वरीयता प्राप्त हिना अकेची को भी हराया। अगर भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी अस्मिता कोरिया मास्टर्स का फाइनल जीतती हैं तो वो इस साल महिला एकल में BWF खिताब जीतने वाली चौथी भारतीय खिलाड़ी बन जाएगी। उनसे पहले ताइपे ओपन में तन्वी शर्मा, जापान में पीवी सिंधु और थाईलैंड मास्टर्स में देविका सिहाग ने खिताब जीते।
1: अमेरिका के यूजीन में जारी वर्ल्ड एथलेटिक्स U20 चैंपियनशिप अब अपने निर्णायक दौर में पहुंच रही है। 5 से 9 अगस्त तक चल रही इस चैंपियनशिप में 147 देशों के 1800 से अधिक युवा एथलीट्स हिस्सा ले रहे हैं। भारत के लिए प्रतियोगिता का अब तक का सबसे बड़ा आकर्षण रहा आशीष यादव का जैवलिन थ्रो में रजत पदक। आशीष ने फाइनल में अपने तीसरे प्रयास में 74.09

मीटर का थ्रो किया और रजत पदक अपने नाम किया। इस उपलब्धि के साथ वो वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में जैवलिन थ्रो का पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। उनसे पहले नीरज चोपड़ा ने 2016 में इसी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा था। जैवलिन थ्रो के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका के जॉन हेनरिक हियमास ने 80.50 मीटर के प्रयास के साथ स्वर्ण पदक जीता, जबकि कॉमनवेल्थ ऑफ डोमिनिका के एडिसन जेम्स ने 73.89 मीटर के साथ कांस्य पदक हासिल किया। भारत के दूसरे फाइनलिस्ट टी धरणीधरन 72.35 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ छठे स्थान पर रहे। आशीष यादव के रजत के साथ भारत के खाते में अब एक पदक है, एक रजत पदक। मेडल टैली में भारत संयुक्त रूप से 13वें स्थान पर है, अमेरिका पदक तालिका में शीर्ष पर है, जबकि कीनिया दूसरे और चीन तीसरे स्थान पर मौजूद है। अब भारतीय दल की नजरें बाकी स्पर्धाओं में से इस पदक संख्या को बढ़ाने पर हैं। अन्य स्पर्धाओं में भी भारतीय चुनौती मजबूत है। महिला की हाई जंप में पूजा ने फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने क्वालिफिकेशन में 1.79 मीटर की सर्वश्रेष्ठ छलांग लगाई। निर्धारित 1.84 मीटर का डायरेक्ट क्वालिफिकेशन मार्क कोई भी एथलीट हासिल नहीं कर सका, जिसके बाद शीर्ष 12 खिलाड़ियों ने फाइनल में जगह बना ली है। पूजा के लिए चैंपियनशिप इसलिए भी खास है क्योंकि इसी साल उन्होंने एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 1.93 मीटर की छलांग लगाकर स्वर्ण पदक जीता था और सुहानी कुमारी का 14 साल पुराना सीनियर नेशनल रिकॉर्ड भी तोड़ा था। पुरुषों की लॉन्ग जंप में भी भारत की दोहरी चुनौती बरकरार है। शाहनवाज खान और आरसी जितिन अर्जुनन दोनों ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। शाहनवाज ने 7.43 मीटर जबकि जितिन ने 7.57 मीटर की सर्वश्रेष्ठ छलांग लगाई। दोनों डायरेक्ट क्वालिफिकेशन मार्क 7.75 मीटर से थोड़ा पीछे रहे, लेकिन शीर्ष 12 में जगह बनाकर फाइनल में पहुंच गए। वहीं महिलाओं के जैवलिन थ्रो में पूनम 48.81 मीटर के प्रदर्शन के साथ 13वें स्थान पर रही और फाइनल में जगह बनाने से मामूली अंतर से चूक गई। अंतिम क्वालिफाइंग स्थान 49.08 मीटर पर रहा। अब नजरें चैंपियनशिप के चौथे दिन पर। चौथा दिन भारतीय दल के लिए काफी व्यस्त रहने वाला है। ट्रैक और फील्ड की कई अहम स्पर्धाओं में भारतीय एथलीट अपनी चुनौती पेश करेंगे। महिलाओं पुरुषों की 5000 मीटर रेस वॉक के फाइनल होंगे। इसके अलावा महिलाओं की ट्रिपल जंप के क्वालिफिकेशन मुकाबले भी होंगे। ट्रैक पर महिलाओं और पुरुषों की 4x400 मीटर रिले के राउंड 1 मुकाबले खेले जाएंगे। इसके साथ ही महिलाओं और पुरुषों की 4x100 मीटर रिले के मुकाबले भी होंगे। फील्ड इवेंट्स में डिस्क थ्रो के क्वालिफिकेशन मुकाबले होंगे, जबकि डीकैथलॉन में अलग अलग स्पर्धाओं के जरिए एथलीट अपने कुल स्कोर को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। शाम के सत्र में भारत की नजरें कई अहम फाइनल्स पर रहेंगी। पुरुषों के हाई जंप के फाइनल में बसंत भारत की चुनौती पेश करेंगे। वहीं महिलाओं की पोल वॉल्ट के फाइनल में भी भारतीय एथलीट पदक की उम्मीद के साथ उतरेंगे। 800 मीटर में भी भारतीय चुनौती देखने को मिलेगी, जहां मोंगली वेक्ट्रॉम पुरुषों की स्पर्धा में फाइनल के लिए अपनी दावेदारी पेश करेंगे। इसके बाद सबसे खास नजरें पुरुषों की लॉन्ग जंप फाइनल पर रहेंगी, जहां शाहनवाज खान और आरसी जितिन अर्जुनन भारत के लिए पदक जीतने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा महिलाओं की 100 मीटर हर्डल्स, पुरुषों की 110 मीटर हर्डल्स, महिलाओं की 3000 मीटर और महिला और पुरुष 200 मीटर के फाइनल भी होंगे। डीकैथलॉन का अंतिम चरण भी पूरा होगा, जिसमें 1500 मीटर रेस के बाद प्रतियोगिता का अंतिम स्कोर तय किया जाएगा। वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में भारत के खाते में आशीष यादव का रजत पदक आ चुका है और अब युवा एथलीटों के सामने इस पदक संख्या को बढ़ाने का मौका है। पूजा हाई जंप के फाइनल में पहुंच चुकी हैं, वहीं शाहनवाज खान और आरसी जितिन अर्जुनन लॉन्ग जंप के फाइनल में भारत की पदक उम्मीदों को आगे बढ़ाएंगे। यूजीन में मुकाबले जैसे जैसे निर्णायक दौर में पहुंच रहे हैं, भारतीय युवा एथलीटों से एक और शानदार प्रदर्शन की उम्मीद बढ़ती जा रही है। अब देखना होगा कि इनमें से कौन अपने प्रदर्शन से तिरंगे को एक बार फिर पोडियम तक पहुंचाता है।

0: तो श्रोताओं, अब आपको ले चलते हैं क्रिकेट की तरफ, जहां चल रहा है इंडिया और श्रीलंका 11 का वार्म अप मैच। और 303 पे 6 इस समय इंडिया है, इट इज ट्रेलिंग बाय 50 रन्स। प्रवीण, क्या कहेंगे इस मैच को लेकर, क्या श्रोताओं को बताएं थोड़ा क्या खास चल रहा है?
1: देखिए, ये एक जो है तैयारी मैच है, जो जिसके अंदर भारत श्रीलंका ने जो है जो 11 क्रिकेट है उनका

0: 363 पर अपनी पारी जो है घोषित की थी, और भारत जो है इस वक्त 313 पे 6 विकेट के नुकसान पर जो रन है वो बन चुके हैं। देवीदत्त पाटीकल 128 रन बनाकर खेल रहे हैं और उनके साथ गुरनूर बरार हैं जो 6 रन पर हैं, अभी अभी आए हैं। और ये एक तरीके से तैयारी मैच है प्रेरणा भारत के लिए, क्योंकि आने वाली जो सीरीज़ है उसके अंदर ये दिखाना है कि भारत उस परिस्थिति में कितना ढल चुका है, कौन सा टीम कॉम्बिनेशन काम करेगा और कौन कौन से खिलाड़ी जो हैं इस दौरान जो हैं वो टीम के अंदर फिट बैठेंगे। मैनेजमेंट इन सब को देख रहा है, और जो कि स्कोर कार्ड के हिसाब से देखा जाए ना कि अगर भारत की तरफ से जो है जिनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, यशस्वी जायसवाल जिनको जिन्होंने अपना खाता भी नहीं खोला, और केएल राहुल जिन्होंने एक शानदार पारी खेलने के बजाय खेल रहे थे और रुक गए बीच में आके, अच्छा था। लेकिन जो इस मैच के आकर्षण रहे हैं वो देवदत्त पाटीकल ही रहे हैं अभी तक। फिलहाल भारतीय बल्लेबाजी उस तरह का जो प्रदर्शन है नहीं कर सके जिस तरह का उनका होना चाहिए था मेरे हिसाब से, तो शायद आने वाले टाइम में भारत को और सोचना पड़ेगा इसके बारे में।
1: जी बिल्कुल, और आगे आने वाले मैचों के लिए ज़रूर एक ये सीख भी होगी कि कैसे इससे सीखकर हम आगे और बेहतर परफॉर्म करें। तो चलिए अब ले चलते हैं आपको डूरेंट कप की तरफ।
0: 135वें इंडियन ऑयल डूरेंट कप के ग्रुप सी के मुकाबले में एससी दिल्ली ने डिफेंडर एफसी को एक तरफा मुकाबले में 7-0 से करारी शिकस्त दी। बिरसा मुंडा स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में ब्राजील के स्ट्राइकर खिलाड़ी रोड्री गिनो ने शानदार प्रदर्शन करते हुए हैट्रिक समेत 5 गोल करते हुए मैच को यादगार बना दिया। एससी दिल्ली ने लगातार दूसरी जीत दर्ज करते हुए 2 मैचों में 6 अंक हासिल कर ग्रुप में शीर्ष स्थान पर कब्जा कर लिया और अपने क्वार्टर फाइनल की दावेदारी को भी मजबूत कर लिया। ब्राजील के खिलाड़ी रोहिड्री गिनो ने अपने पहले ही मुकाबले में 5 गोल दागकर धमाकेदार आगाज किया। उनकी शानदार फिनिशिंग की बदौलत एससी दिल्ली ने ग्रुप सी के मुकाबले में डिफेंडर एफसी को 7-0 से हराया। इस जीत के साथ एससी दिल्ली ने लगातार दूसरी जीत दर्ज करते हुए ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल किया। वहीं डिफेंडर एफसी लगातार तीसरी हार के साथ बिना किसी अंक के टूर्नामेंट से बाहर हो गई। बिरसा मुंडा स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में एससी दिल्ली ने शुरुआत से ही दबदबा बनाया। रोड्री गिनो ने 6वें, 8वें और 12वें मिनट में गोल दागकर महज 13 मिनट में अपनी हैट्रिक पूरी कर ली। इसके बाद 34वें मिनट में मोहम्मद एमएन ने गोल कर पहला हाफ 4-0 कर दिया। दूसरे हाफ में डिफेंडर एफसी ने कुछ हद तक बेहतरीन डिफेंस दिखाया, लेकिन दिल्ली ने अपना दबदबा कायम रखा। 89वें मिनट में रोड्री गिनो ने अपना चौथा गोल किया। इंजरी टाइम के दूसरे मिनट में ही सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी जुआन सेबिस्टियन पेना ने 6ठा गोल दागा, जबकि 5वें मिनट में रोहिड्री गिनो ने अपना 5वां और टीम का 7वां गोल कर जीत पर मोहर लगा दी। पूरे मैच में एससी दिल्ली ने गेंद पर नियंत्रण बनाए रखा और लगातार आक्रामक खेल दिखाया। रोहिड्री गिनो का 5 गोल का प्रदर्शन इस सत्र के डूरंट कप के सबसे यादगार व्यक्तिगत प्रदर्शनों में शामिल हो गया और भारतीय फुटबॉल में उनके आगमन को बेहद खास बना दिया। और अब बात करते हैं एक और मुकाबले की, जो कि ईस्ट बंगाल एफसी और साउथ इंडिया यूनाइटेड एफसी के बीच खेला गया, जिसके अंदर ईस्ट बंगाल एफसी ने साउथ यूनाइटेड एफसी को 5-0 से हराया और टूर्नामेंट के अंदर अपनी जो क्वार्टर फाइनल की उम्मीदों को जिंदा रखा है। डैनी रामिरेज, मोहम्मद राशिद, हार्दिक भट्ट, बिपिन सिंह और डेविड लहनसांगा ने शानदार गोल किए। ईस्ट बंगाल एफसी ने शुरुआत से ही मैच पर अपनी पकड़ बनाए रखी और एक के बाद एक शानदार गोल करते हुए मैच अपने नाम कर लिया और ग्रुप में भी अपनी स्थिति को काफ़ी मजबूत कर लिया। वहीं साउथ इंडिया यूनाइटेड एफसी का सफ़र जो है इस दौरान यहीं समाप्त हो गया है और ईस्ट बंगाल एफसी के 6 अंक होने के साथ साथ अब वो क्वार्टर फाइनल में बाकी टीमों के मुकाबले में अपनी स्थिति को काफ़ी बेहतर और मजबूत कर लिया है।
1: और अभी बात करें जो अभी मुकाबला खेला जा रहा है वो है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी और शिलोंग लजोंग एफसी और मुंबई एफसी के बीच, माफ कीजिएगा, और अभी 5 से वो लोग आगे हैं, 5 गोल कर दिए हैं और 0 मुंबई एफसी ने बनाया है, वो अपना खाता नहीं खोल पाए आज। और उसके बाद अगला मुकाबला जो खेला जाना है वो है ट्राउ एफसी और इंडियन नेवी एफटी, जो कल खेला जाएगा। और साथ ही शुरुआत करी थी हमने हॉकी से और ज़रूर अब आप जाते जाते आपको एक हॉकी की खबर और बता देते हैं। AAHF जूनियर एशिया कप 2026 के लिए भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का ऐलान हो गया है। भारतीय हॉकी की अगली पीढ़ी एक और बड़ी अंतर्राष्ट्रीय चुनौती के लिए तैयार है। हॉकी इंडिया ने कल यानी शुक्रवार को 30 अगस्त से 13 सितंबर तक चीन के मोकी में आयोजित होने वाले AAHF जूनियर एशिया कप 2026 के लिए भारतीय जूनियर पुरुष टीम की घोषणा कर दी है। और

0: इसी के साथ समय हो गया है आपसे विदा लेने का। मैं प्रेरणा शर्मा और मेरे सहयोगी प्रवीण यादव, प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ आपसे लेते हैं अनुमति। नमस्कार।
1: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी निभाती है।
1: आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्र उभर रहे हैं जो युवाओं को नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे क्षेत्रों का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कार्य कर रहा है। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने देश के सभी सहकारी बैंकों से राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम में शामिल होने का आग्रह किया है। ये निगम देश के सहकारी बैंकों का एक प्रमुख संगठन है। उन्होंने मुंबई फोर्ड क्षेत्र में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम के नए कार्यालय परिसर का उद्घाटन करने के बाद ये बात कही। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि समुद्री क्षेत्र में भारत की प्रगति में नाविकों की भूमिका सबसे प्रमुख है। मुंबई में नाविकों की सुरक्षा और कल्याण पर एक कार्यक्रम में श्री सोनोवाल ने कहा कि भारत दुनिया के प्रमुख समुद्री देशों में से एक बनकर उभरा है। इस अवसर पर व्यापक डिजिटल समुद्री गवर्नेंस प्लेटफॉर्म ई समुद्र का भी शुभारंभ किया गया। इसका उद्देश्य नाविकों, नौवहन कंपनियों, बंदरगाहों, सेवा प्रदाताओं और समुद्री क्षेत्र से जुड़े लोगों को पारदर्शी और नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करना है। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। देश ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि पिछले 12 वर्षों में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 400% की वृद्धि हुई है। श्री जोशी ने कहा कि ये आंकड़ा दर्शाता है कि भारत स्वच्छ ऊर्जा उपयोग की दिशा में वैश्विक प्रगति कर रहा है। सरकार ने उद्योग जगत के प्रमुख कारोबारियों और स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने वाली कैश फ्री पेमेंट्स, डार्विन डायनेमिक्स, वर्ल्ड इंडिया, कोर्स 24 और काउंसिल फॉर स्टार्टअप के साथ कई रणनीतिक समझौता ज्ञापनों की घोषणा की है। इन समझौता ज्ञापनों पर वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने हस्ताक्षर किए हैं। मंत्रालय ने बताया कि हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का उद्देश्य स्टार्टअप्स के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे के सहयोग को मजबूत करना है। झारखंड में आज जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध समाधान की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। राज्य सरकार और प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों के विभिन्न समूहों के बीच आज दूसरे दौर की उच्च स्तरीय वार्ता हुई।
2: सरकार की ओर से मंत्रियों ने स्पष्ट किया कि वे व्यापक परीक्षा सुधारों के लिए प्रतिबद्ध हैं। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एक आधिकारिक फीडबैक ईमेल आईडी भी जारी की है, जिस पर छात्र और सभी हितधारक अपने सुझाव भेज सकते हैं। सरकार इन सभी सुझावों के आधार पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में अंतिम निर्णय लेगी। हालांकि छात्र प्रतिनिधियों ने वार्ता पर संतोष जताया है, लेकिन कहा है कि मांगों पर ठोस और लिखित आदेश आने तक उनका शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रहेगा। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में आयोजित इंडिया मेडिकल डिवाइस कॉन्फ्रेंस 2026 में सीईओ गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सम्मेलन में नवाचार, नियामक उत्कृष्टता, घरेलू विनिर्माण, मूल्य श्रृंखला, बाजार पहुंच और निर्यात को मजबूत करने के दृष्टिकोण पर चर्चा हुई। यमन में हूती विद्रोहियों के खिलाफ सशस्त्र बलों ने सैन्य अभियान शुरू कर दिए हैं।

0: heritage was another key focus. The Intermeteorological Department, IMD, has issued an orange colour warning for heavy to very heavy rainfall over Rajasthan and Odisha today. According to the IMD, thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds are expected to prevail over Lakshadweep, North Interior, Karnataka, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal today. The IMD has also predicted heavy rainfall with thunderstorms and lightning in various parts of the country over the next 2 to 3 days. And with that, we end this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है. मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर. शाम के 6:10 हुए हैं. आइए सुनते हैं कार्यक्रम चहल पहल.
2: आकाशवाणी से प्रस्तुत है चहल पहल. आज के इस अंक में नशा मुक्त युवा फोर विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ, 12वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र द्वारा आयोजित संगीतमय कार्यक्रम स्वरांजलि. 2 अगस्त रविवार को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ किया. इस अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लगभग 28,000 से अधिक स्थानों पर जुड़े लोगों को संबोधित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा,
3: आज जब देश ने विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है तो इसके लिए आवश्यक है देश का युवा तन से स्वस्थ हो, मन से स्वस्थ हो, आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, दूर हो. यही इस अभियान का उद्देश्य है. इसलिए हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहे और उससे दूर रहे. और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है. साथियों, आज लिया गया ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा. हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी. नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा. आने वाले 100 रविवार नशा मुक्त भारत की दिशा में 100 मजबूत कदम होंगे, 100 मजबूत स्टेप्स. आने वाले 100 दिन में हर एक संगठन एक सप्ताह अपने जिम्मे ले सकता है. पूरा सप्ताह पूरे देश में वो संगठन नेतृत्व करे, बाकी सब शक्तियां उसके साथ जुड़े और रविवार को बहुत बड़ा कार्यक्रम करे. दूसरे सप्ताह दूसरा संगठन, दूसरी शक्ति सप्ताह भर प्रयोग करे, कार्यक्रम करे जगह और रविवार को बड़ा कार्यक्रम करे. अगर 100 सप्ताह हमारे देश के ऐसे आध्यात्मिक, सामाजिक संगठन, युवा संगठन एक एक सप्ताह अपने जिम्मे ले लें और बाकी सारी शक्तियां जुड़े और रविवार को सब मिल करके करें, आप कल्पना कर सकते हैं देश में कितना बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाएगा. मैं एक बार फिर आप सबने समय निकाला, इस पवित्र कार्य में हम सबको आशीर्वाद दिए, इसके लिए संतों का, आचार्यों का, संगठन के महारथियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ. मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबके सामूहिक प्रयत्नों से ये हमारी मूवमेंट घर घर पहुंचेगी, हर युवा के दिल में पहुंचेगी और ये ड्रग्स के कारोबारियों के लिए बहुत बड़ा खौफ भी बन जाएगी. आइए हम सब मिलकर के आगे चले. मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद.
2: 7 अगस्त शुक्रवार को वस्त्र मंत्रालय द्वारा राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में 12वें राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस समारोह का आयोजन किया गया. इस आयोजन में माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा हैंडलूम के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु चयनित लोगों को पुरस्कृत किया गया. इस अवसर पर अपने संबोधन में केंद्रीय वस्त्र मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने कहा,
4: मेरा उद्देश्य है मास्टर बीभर यानी बिचौलिया, मास्टर बीभर से बीभर का मुक्ति दिलाना. उसके लिए ई कॉमर्स रखा है, उसके लिए विदेशों में ईपीसीएच के साथ जोड़ करके

0: अभी शुरुआत की है 50 हैंडलूम 50 हैंडीक्राफ्ट, क्योंकि इस बार जो योजना हम बना रहे हैं वो हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट दोनों को मिला करके हैंडलूम की साड़ी बन गई, अगर उस पर पैच वर्क हुआ तो वो हैंडीक्राफ्ट हो जाता। तो हमने तय किया है दोनों को मिला करके नए तरह से हम बीभर भाइयों के जिंदगी में परिवर्तन करेंगे। अभी IIT दिल्ली से MOU किया, केवल MOU नहीं किया, अभी 100 बीभर से जस्ट शुरू किया है एक एप्लीकेशन मोबाइल के थ्रू, उसमें हम कार्बन फुटप्रिंट कितना कैप्चर कर रहे हैं वो उनको दिखाई देगा, बीभर को दिखाई देगा कि उनकी एफिशिएंसी कितना आज के काम का है, उनको दिखाई देगा। AI टूल्स भी लगा रहेगा, उनके सिस्टम में कोई गड़बड़ी होगा तो AI टूल उसको रोकेगा। इस तरह से टेक्नोलॉजी का सहारा हम इनके जो लूम है लूम को परिवर्तित करेंगे।
1: इस आयोजन में माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन में शुभकामनाएं देते हुए कहा,
2: राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे अत्यंत आनंदित महसूस हो रही है। मैं देश के प्रतिभाशाली बुनाकारों, डिजाइनरों, उद्यमियों, विद्यार्थियों और भारत के हथकरघा क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। हजारों वर्ष से हथकरघा भारत के प्रकृति पोषक सभ्यता की विकास यात्रा का अभिन्न हिस्सा रहा है। इसमें हमारे राष्ट्र की असाधारण विविधता दिखाई देती है। हथकरघा क्षेत्र से रोजगार, महिला सशक्तिकरण, कला संस्कृति और प्रकृति प्रेम को बढ़ावा मिलता है। हथकरघा भारत के स्वतंत्रता संग्राम और आत्मनिर्भरता से भी जुड़ा हुआ है। हमारे ग्रामीणों और जनजातियों समाज ने प्रकृति के साथ सामंजस्य से जीने की पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को सदियों तक संजोया है। हथकरघा उस परंपरा का एक सशक्त उदाहरण है। प्रकृति के अनुरूप जीने की पद्धति की उपयोगिता आज समूची विश्व में स्वीकृति जा रही है। हथकरघा क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। मुझे बताया गया है कि इस क्षेत्र में देश की 35 लाख से भी अधिक आबादी संलग्न है। विशेष बात यह है कि इसमें 25 लाख से अधिक महिलाएं हैं, 35 से 25 महिलाएं हैं। उनके सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसमें लगभग 2/3 कारीगर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित है। इस प्रकार ये क्षेत्र आजीविका सृजन के साथ साथ समावेशी विकास का भी एक सशक्त माध्यम बना है। मैं हथकरघा क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और सभी पुरस्कार विजेताओं को एक बार फिर बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
1: 6 अगस्त गुरुवार को भारत रत्न पंडित रविशंकर स्टूडियो में संगीतमय कार्यक्रम स्वरांजलि श्रृंखला के अंतर्गत उस्ताद फैयाज वसीफुद्दीन डागर को ध्रुपद गायन के लिए आमंत्रित किया गया था। प्रस्तुत है इस आयोजन में गायन की एक

0: इसी के साथ चहल पहल का आज का ये अंक यहीं संपन्न होता है।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना कथितं यत् सेमीकंडक्टर्स अंतरिक्ष ड्रोन्स इत्यादिषु उदयोन्मुखक्षेत्रेषु स्वावलम्बनं विकसित भारतस्य सुदृढाधारस्य रूपेण कार्यं करिष्यति। प्रधानमन्त्रिणा आईआईटी छात्राः स्वनिर्णयस्य केन्द्रस्थाने राष्ट्रियहितं स्थापयितुं प्रार्थितः। झारखंड सर्वकारः जेपीएससी तथा जेएसएससी परीक्षासु अभिकथितानां अनियमिततानां विषये छात्रैः सह द्वितीय चरणस्य वार्तालापम् अकरोत्। हिमाचल प्रदेशस्य चंबामंडले अद्य प्रातः बस दुर्घटनायां 7 जनाः मृताः 11 जनाः व्रणिताः च अभवन्। आईएमडी इत्यनेन अद्य राजस्थानस्य ओडिशा राज्यस्य च उपरि अत्यधिक वृष्टेः नारंगवर्णीया संचेतना प्रदत्ता अस्ति। प्रतिकूल ऋतोः कारणात् जम्मूतः बालटाल नगरं प्रति अमरनाथ यात्रा भी स्थगिता। अपि च पुरुषाणां जैवलिन थ्रो क्रीडायां आशीष यादवः संयुक्त राज्य अमेरिका देशे विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप क्रीडायां रजत पदकं प्राप्तवान्। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना अद्य आईआईटी दिल्ली इति भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानस्य विद्यार्थिनः समाकारिताः यत्ते स्वनिर्णयेषु राष्ट्रहितं सर्वोपरि स्थापयन्तु। आईआईटी दिल्ली इत्यस्य 75वें दीक्षांत समारोहं संबोधयन् श्रीमोदी अवदत् यत् प्रत्येकं संततिः तात्कालिकं विशिष्टं समाह्वानं सम्मुखीकरोति, स्वस्य राष्ट्रियदायित्वं च निर्वहति। श्रीमोदी अवोचत् यत् मित्राणि अद्यतनकाले अस्माकं आह्वानानि भिन्नानि सन्ति, अतः अस्माकं दायित्वमपि भिन्नमस्ति। जीवनस्य आगामिषु 30-35 वा वर्षेषु भवन्तः यत्किमपि करिष्यन्ति तत्सर्वम् अस्माकं विकसितभारतस्य यात्रायां प्रभावं जनयिष्यति। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् देशे नूतनानां क्षेत्राणां विकासेन युवभ्यः नूतनाः अवसराः सृज्यन्ते। सेमीकंडक्टर अंतरिक्ष ड्रोन इत्यादीनां क्षेत्राणाम् उदाहरणानि उद्धृत्य सः अवदत् यत् भारतं सर्वेषु क्षेत्रेषु आत्मनिर्भरता प्राप्तये कार्यं कुर्वन् अस्ति। श्रीमोदी अवदत् यत् आत्मनिर्भरतायाः अयम् उपक्रमः विकसित भारतस्य निर्माणार्थं दृढाधारस्य कार्यं करिष्यति।
2: आज भारत इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस, इंडस्ट्रियल सेल्फ रिलायंस, ऐसे हर सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने के लिए काम कर रहा है। यही विकसित भारत की मजबूत नींव का सबूत है। इस मजबूत नींव पर आपको एक भव्य सुंदर विकसित भारत का निर्माण करना है।
1: अर्धचालक क्षेत्रम् अपि उदाहरणम् अस्ति। यदा वयम् अस्मिन् दिशि पदानि स्वीकृतं तदा केचन जनाः तस्मिन् विषये प्रश्नं कृतवन्तः यत् भारतं तत् कर्तुं न शक्नुयादिति। परन्तु अद्य प्रथमे अर्धचालक एककेषु उत्पादनम् आरब्धमस्ति। अहं च दृढतया विश्वसिमि यत् चिप्सतः जहाजपर्यन्तं सर्वमपि अत्रैव विनिर्मितं भविष्यति।
2: सेमीकंडक्टर सेक्टर का उदाहरण भी हमारे सामने है। जब हमने इस दिशा में कदम बढ़ाया तो कुछ लोगों ने सवाल उठाए, कहा गया भारत ये नहीं कर पाएगा। लेकिन आज पहली सेमीकंडक्टर यूनिट्स में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और मैं साफ मानता हूं चिप से लेकर के शिप तक सब कुछ यहीं पर आप ही के हाथों से बनेगा। और कहीं कोई युवा पूरे आत्मविश्वास से कह रहा है फर्स्ट इन माई ब्लड।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम संसार।

0: ग्राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भाइयों को राम
1: राम
0: राम।
1: राम।
0: तो नीलम बहन, हम हाजिर हैं अपने बहन भाइयों का मनपसंद कार्यक्रम ग्राम संसार लेकर के। और बहन भाइयों, आज शनिवार है तो आपको सुनने को मिलेगा आप ही की पसंद पर लोक संगीत पर आधारित फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम संसार। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आज बड़ा ही ऐतिहासिक दिन है, यानी कि आज भारत छोड़ो आंदोलन, जिसको अगस्त क्रांति कहते हैं, उसकी वर्षगांठ है, जो कि हर साल आज ही के दिन यानी 8 अगस्त को मनाई जाती है। और आपको बता दें कि इसकी शुरुआत 8 अगस्त 1942 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में मुंबई के गवालिया टैंक मैदान से हुई थी, जहां उन्होंने करो या मरो का नारा दिया था।
1: बिल्कुल शशि भाई, और इस आंदोलन का उद्देश्य भारत से ब्रिटिश शासन को तुरंत समाप्त करना, ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक निर्णायक मोड़ था जिसने देशवासियों को आज़ादी के लिए एकजुट किया।
0: बिल्कुल, क्रिप्सन मिशन की विफलता के बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपना तीसरा बड़ा आंदोलन छेड़ने का फैसला लिया। आज ही के दिन 8 अगस्त 1942 की शाम को मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र में अंग्रेजों भारत छोड़ो का नाम दिया गया। हालांकि उस दौरान गांधी जी को फौरन गिरफ्तार कर लिया गया था।
1: लेकिन देश भर के युवा कार्यकर्ता हड़तालों और तोड़फोड़ की कार्यवाहियों के जरिए आंदोलन चलाते रहे। पश्चिम में सतारा और पूर्व में मेदिनीपुर जैसे कई जिलों में स्वतंत्र सरकार प्रति सरकार की स्थापना कर दी गई थी।
0: बहन भाइयों, आपको बता दें कि विश्व युद्ध में इंग्लैंड को बुरी तरह उलझता देख नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज को दिल्ली चलो का नारा दिया। गांधी जी ने मौके की नजाकत को भांपते हुए 8 अगस्त 1942 की रात में ही मुंबई से अंग्रेजों को भारत छोड़ो और भारतीयों को करो या मरो का आदेश जारी किया। और सरकारी सुरक्षा में यरवदा पुणे स्थित आगा खान पैलेस में चले गए और फिर इस आंदोलन को लाल बहादुर शास्त्री जी ने प्रचंड रूप दिया।
1: बिल्कुल शशि भाई, और जिससे ब्रिटिश सरकार डगमगा गई, इसलिए अंग्रेजों ने 9 अगस्त 1942 को दिन निकलने से पहले ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सभी सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया और कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया। गांधी जी के साथ भारत कोकिला सरोजनी नायडू को यरवदा पुणे के आगा खान पैलेस में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पटना जेल में और अन्य सभी सदस्यों को अहमदनगर के किले में नजरबंद कर दिया गया।
0: और सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस जन आंदोलन में 140 लोग मारे गए, 1630 लोग घायल हुए, हजारों लोग नजरबंद हुए और लाखों लोग गिरफ्तार किए गए।
1: बिल्कुल, और भारत छोड़ो आंदोलन दिवस भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि ये दर्शाता है कि कैसे पूरा देश स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए एकजुट हुआ और ब्रिटिश शासन के खिलाफ कभी हार नहीं मानी।
0: आज भारत छोड़ो आंदोलन दिवस एकजुट प्रतिरोध की शक्ति और अपने विश्वासों के लिए खड़े होने के महत्व की याद दिलाता है। ये दिन देशभक्ति, आत्मनिर्णय और सामूहिक कार्रवाई के मूल्यों को सुदृढ़ करता है।
1: बिल्कुल शशि भाई, भारत छोड़ो आंदोलन ने ब्रिटिश शासन की नींव को गहराई से हिला दिया, राष्ट्रव्यापी एकता को प्रेरित किया और भारत की स्वतंत्रता की यात्रा को गति प्रदान की।
0: और इस आंदोलन के 5 साल बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वाधीन हो गया। तो बड़ा ही महत्व है हमारे लिए भारत छोड़ो आंदोलन यानी अगस्त क्रांति का। तो बहन भाइयों, ये तो बात रही भारत छोड़ो आंदोलन की, और आइए अब शुरुआत करते हैं आज के फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम संसार की।

0: हेलो ग्राम संसार।
1: हेलो ग्राम संसार, नमस्कार जी।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
1: मैं शोराम बोले, अजय गांव मिट्टी के ढाणी, जिला भिवानी, हरियाणा से जी।
0: आज जी किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
1: आज जो जोगिंदर निंगसाना को सुना देना जी। कुछ
0: जरूर सुनवाएंगे।
1: नाम है जी, पोता है जी मोहित अंकित रक्षित जतिन नितिन दीपांशु रे दीक्षांत, और दो पोतिया जी पूजा और आरती।
0: कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो ग्राम संसार।
2: नमस्कार जी।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
2: सिंधारिया बोलो, धारा निशान जी।
0: आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
2: योगेंद्र को सुना देना जी।
0: जरूर सुनवाएंगे।
2: बच्चों के भी नाम है जी, राजवीर सिंधारिया, सतीश सिंधारिया, ऋतिक सिंधारिया, केड़ा देवी जी। नमस्कार जी।
0: नमस्ते जी। हेलो ग्राम संसार।
3: राम राम जी।
0: राम राम जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
3: मैं ब्रजपाल बोल रहा सर, गांव राम सावरा, जिला सहारनपुर जी।
0: ब्रजपाल जी, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
3: योगेंद्र निंचाना को सुना दो जी, देशभक्ति रागनी।
0: जरूर सुनवाएंगे।
3: हमारे बड़े भाई है रंडेड़ी से, बसे सर बटार। राम राम जी।
0: राम राम जी। हेलो ग्राम संसार।
4: नमस्कार सर।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
4: मैं मंटू शर्मा बोल रहा हूँ सर।
0: मंटू जी, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
4: योगेंद्र निमंद्रा सर।
0: योगेंद्र निमचाना।
4: हाँ जी,
0: जरूर सुनवाएंगे। हेलो ग्राम संसार।
5: हेलो ग्राम संसार, नमस्कार जी।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
5: अशोक कुमार शर्मा, गावड़े रोड बुलंदशहर।
0: अशोक भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
5: आज योगेंद्र निमचाना को सुनना है जी। अशोक कुमार शर्मा, नीरज शर्मा, ऋषि शर्मा, लव शर्मा, देव शर्मा।
0: हेलो ग्राम संसार।
6: सोनू गांव रोड, जिला महेंद्र, हरियाणा से बोल रहा हूँ जी।
0: सोनू भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
6: आज सुनना चाहेंगे योगेंद्र निमचाना को।
0: जरूर सुनवाएंगे।
6: देख नाम है।
0: हाँ बोल दीजिए।
6: मेरे पिताजी अमन वर्मा से, मेरी मम्मी फूलवती। नमस्ते जी।
0: नमस्ते जी। तो आइए सुनते हैं आप सभी भाइयों की पसंद पर योगेंद्र निमचाना से ये देशभक्ति रागनी।

0: हेलो ग्राम संसार,
1: सर जी नमस्कार।
0: नमस्ते जी। कौन भाई बोल रहे हैं?
1: सर दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा बोल रहा हूँ सर जी। रुस्तम
0: मेहरा जी, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
1: सागर को सुना देना सर।
0: जरूर सुनवाएंगे।
1: बच्चों के नाम है सर जी, कोमल
0: हाँ बोल दीजिए।
1: मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा और कुणाल मेहरा। नमस्ते जी।
0: नमस्ते जी। हेलो ग्राम संसार,
2: हेलो ग्राम संसार।
0: कौन भाई बोल रहे हैं?
2: इंदरवीर तेवतिया, गांव नत्थुगढ़ी, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ।
0: तेवतिया जी, कार्यक्रम में स्वागत है। आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
2: रुस्तम सागर की गाई हुई बढ़िया सी रागिनी सुनवा देना। कुछ नाम लेने चाहूंगा, सुमित तेवतिया, प्रत्यक्ष, निष्कर्ष, सिद्धार्थ छोटू, हमारी बुआ जी है राजवीरी, और गांव भतौना से मास्टर हरिंदर सिंह, गांव खुशियालपुर से शेर सिंह मोदी, पंडित रतनलाल, गुलावती से शीशपाल हेडी और पिंटू सैनी।
0: हेलो ग्राम संसार,
3: शशि भाई राम राम जी।
0: राम राम जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
3: मैं चंद्रपाल जाखड़ गांव नबीपुर मुरादनगर से बोल रहा जी।
0: चंद्रपाल जी, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
3: अजी रुस्तम को सुनवा दो।
0: जरूर सुनवाएंगे।
3: दो चार नाम है जी।
0: हाँ बोल दीजिए।
3: धर्मपाल है, नवीन है, अनिल है और पप्पू है। राम राम जी।
0: राम राम जी। हेलो ग्राम संसार।
4: हेलो नमस्ते जी, मैं खजानी जौहरीपुर से बोल रहा हूँ।
0: आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
4: रुस्तम सागर देशभक्ति रागिनी सुनवा दीजिए।
0: जरूर सुनवाएंगे।
4: और कुछ नाम है जी?
0: हाँ बोल दीजिए।
4: खजान सिंह, रामबक्ति, अजय कुमार, चंद्रकांत, मोहन, भाराव, ये जान।
0: हेलो ग्राम संसार।
5: नमस्कार सर जी।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
5: ग्राम ममना, जिला हमीरपुर, बुंदेलखंड यूपी से राम शरण विश्वकर्मा बात कर रहा हूँ सर जी।
0: विश्वकर्मा जी, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
5: आज सर रुस्तम सागर जी को सुनना चाहेंगे सर।
0: जरूर सुनवाएंगे। हेलो ग्राम संसार।
6: हेलो सचिव भाई को नमस्कार।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
6: महेंद्र सिंह बोल रहा हूँ, विकास गाँव बुराना, जिला बुलंदशहर।
0: महेंद्र भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
6: रुस्तम सागर को सुनवा देना।
0: जरूर सुनवाएंगे।
6: और मेरे साथ ही आरती भारती चौथी मैसेज करते देवी।
0: हेलो ग्राम संसार।
7: नमस्कार भैया।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
7: बसंत कुमार ठाकुर, ग्राम धीरे, नया पारा, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से।
0: बसंत भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
7: रुस्तम सागर जी के स्वर में।
0: जरूर सुनवाएंगे।

0: राम संसार।
1: भाई जी, राम राम। जी
0: राम राम जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
1: इलाहाबाद का रंगन नए वहां से घनश्याम बोल रहा हूँ सर।
0: घनश्याम भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
1: आज के कलाकार तुम सागर की
0: जरूर सुनवाएंगे।
1: नाम बोल दो तो है।
0: हाँ बोल दीजिए।
1: मेरी बहन है ज्ञानवती आनंदी है, प्रधान जी कहना गाँव के सुनने वालों सबको राम राम।
0: राम राम जी। तो आइए सुनते हैं आप सभी भाइयों की पसंद पर रुस्तम सागर से ये देशभक्ति रागनी।

0: हेलो ग्राम संसार।
1: राम राम जी, मोहल्ला
0: राम राम जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
1: दौजवाला शिकारपुर बुलंद शहर से बबली कुमार प्रजापति बात कर रहा हूँ।
0: बबली भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
1: आज हमें बिशन सिंह की आवाज में देशभक्ति की राग में सुनवा दीजिए।
0: जरूर सुनवाएंगे।
1: और हमारे परिवार का नाम नोट कर लो जी। पत्नी पुष्पा देवी, लड़की डॉली कुमार, लड़का मोनू कुमार, लड़की पूजा रानी, लड़का छोटा भीम और शीशपाल अकेला है। अनवर बिहारी जी और जयप्रकाश जी। राम राम जी।
0: राम राम जी। हेलो ग्राम संसार।
2: हेलो, नमस्कार जी।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
2: मैं गांव चौधरी वास से राजू अग्रवाल।
0: राजू भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
2: किशन सिंह की आवाज में देशभक्ति की रागनी सुना दो जी।
0: जरूर सुनवाएंगे।
2: बच्चे हैं जी, केशव चरण दास रेखा।
0: हेलो ग्राम संसार।
3: ग्राम साहब,
0: कौन भाई बोल रहे हैं?
3: खुजिया उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा।
0: अरोड़ा साहब, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
3: आज बिशन सिंह को सुनवा देना जी।
0: जरूर सुनवाएंगे।
3: प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा भी सुनेंगे मेरे साथ।
0: बिल्कुल, कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो ग्राम संसार।
2: हेलो ग्राम संसार, राम राम जी।
0: राम राम जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
2: विनोद कुमार प्रजापत बोल रहा हूँ जी, गांव जोजू कला से, तहसील डिस्ट्रिक्ट चरखी दादरी से।
0: विनोद भाई, कार्यक्रम में स्वागत है, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
2: आज विशन सिंह की आवाज में सुनवा दो अच्छा सा कोई
0: देशभक्ति गीत
2: जी।
0: जरूर सुनवाएंगे। हेलो ग्राम संसार।
4: हेलो ग्राम संसार, सती भाई नमस्कार।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
4: मैं भूकंत शरण बोल रहा हूँ, ग्राम तरारा, तहसील हसनपुर, जिला अमरोहा से।
0: आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
4: जी बिशन सिंह को सुनवा लेना।
0: जरूर सुनवाएंगे।
4: कुछ नाम एक दो, सचिन कुमार हैं जी और बीना कुमारी हैं।
0: हेलो ग्राम संसार।
5: राम राम साहब।
0: राम राम जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
5: हवलदार जयप्रकाश, ग्राम पाचाता बुलंद शहर से बोल रहे हैं साहब।
0: आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
5: बिशन सिंह को सुनवा दीजिए साहब, नाम नोट कर ले।
0: जी कराएं।
5: करण, खुशी, नंदनी, राधिका, प्रतिज्ञा, राम राम साहब।
0: राम राम जी। हेलो ग्राम संसार।
6: नमस्कार जी।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
6: मास्टर प्रवीण नागर, ग्राम दुचाना, जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश जी।
0: प्रवीण भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
6: आज बिशन सिंह जी से कोई देशभक्ति गीत सुनवाइए जी।
0: जरूर सुनवाएंगे।
6: कुछ नाम है जी, जयपाल सिंह अध्यक्ष, मास्टर ब्रह्म सिंह, जगदीश मोटा बादलपुर, मास्टर फुंदन सिंह, पवन कुमार, कृष्ण मुखिया, गर्व गुजर और आरव भाटी।
0: कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए सुनते हैं आप सभी भाइयों की पसंद पर विशन सिंह से ये देशभक्ति रागनी।

0: तो बहन भाइयों, ये था आज का फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम संसार। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप भी हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमें प्रत्येक मंगलवार को दोपहर 1 बजे से 1:30 बजे तक फोन कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, फोन करने के लिए नंबर है 01123467331 और दूसरा नंबर है 01123467332। इन दोनों नंबरों पर आप फोन करके अपने पसंद के कलाकार को सुनने के लिए फरमाइश रिकॉर्ड करवा सकते हैं।
0: और बहन भाइयों, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का। इसी के साथ कार्यक्रम ग्राम संसार के प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर और कार्यक्रम के संयोजक शिव नंदन लाल के साथ दीजिए अनुमति। सभी बहन भाइयों को राम
1: राम
0: राम।
1: राम।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। अभी आपने आनंद लिया कार्यक्रम ग्राम संसार का। अब से कुछ ही क्षण बाद आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली के विद्यार्थियों से अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने का आग्रह किया है। श्री मोदी ने आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी निभाती है।
1: आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में उभर रहे नए क्षेत्र युवाओं को नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे क्षेत्रों का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कार्य कर रहा है। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर बल दिया है। मुंबई में आज सहकार नवक्रांति कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि डिजिटल लेनदेन में धोखाधड़ी बढ़ रही है और बैंकिंग सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मजबूत फॉरेंसिक सहायता की आवश्यकता है। गृह मंत्री ने एक सुरक्षा संचालन केंद्र का भी शुभारंभ किया। ये सहकारी बैंकों को 24 घंटे साइबर निगरानी और सुरक्षा सहायता प्रदान करेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने देश में महिला आरक्षण विधेयक को तत्काल लागू करने की शिरोमणि अकाली दल की मांग का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि सभी को मिलकर महिलाओं को सशक्त बनाना होगा और निष्पक्ष तथा समान परिसीमन सुनिश्चित करना होगा। इससे सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व मिलेगा। शिरोमणि अकाली दल ने चंडीगढ़ में अपने वरिष्ठ नेताओं की बैठक में ये मांग रखी थी। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। देश ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि पिछले 12 वर्ष में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 400% की वृद्धि हुई है। श्री जोशी ने कहा कि आंकड़ा भारत की स्वच्छ ऊर्जा उपयोग की दिशा में वैश्विक प्रगति दर्शाता है। सरकार ने प्रमुख उद्योगपतियों और स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने वाली कैश फ्री पेमेंट्स, डार्विन डायनेमिक्स, वर्ल्ड इंडिया, कार्स 24 और काउंसिल फॉर स्टार्टअप्स के साथ कई महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों की घोषणा की है। इन समझौता ज्ञापनों पर वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने हस्ताक्षर किए। मंत्रालय ने बताया कि हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का उद्देश्य स्टार्टअप्स के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे के सहयोग को मजबूत करना है। झारखंड में आज जेपीएससी और जेएसएससी पर भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध समाधान की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। राज्य सरकार और प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों के विभिन्न समूहों के बीच आज दूसरे दौर की उच्च स्तरीय वार्ता हुई।
2: सरकार की ओर से मंत्रियों ने स्पष्ट किया कि वे व्यापक परीक्षा सुधारों के लिए प्रतिबद्ध हैं। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एक आधिकारिक फीडबैक ईमेल आईडी भी जारी की है, जिस पर छात्र और सभी हितधारक अपने सुझाव भेज सकते हैं। सरकार इन सभी सुझावों के आधार पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में अंतिम निर्णय लेगी। हालांकि छात्र प्रतिनिधियों ने वार्ता पर संतोष जताया है, लेकिन कहा है कि मांगों पर ठोस और लिखित आदेश आने तक उनका शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रहेगा। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि समुद्री क्षेत्र में भारत की प्रगति में नाविकों की भूमिका सबसे प्रमुख है। मुंबई में नाविकों की सुरक्षा और कल्याण पर एक कार्यक्रम में श्री सोनोवाल ने कहा कि भारत दुनिया के प्रमुख समुद्री देशों में से एक बनकर उभरा है। इस अवसर पर व्यापक डिजिटल समुद्री गवर्नेंस प्लेटफॉर्म ई समुद्र का भी शुभारंभ किया गया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में इंडिया मेडिकल डिवाइस कॉन्फ्रेंस में सीईओ गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सम्मेलन में नवाचार, नियामक उत्कृष्टता, घरेलू विनिर्माण, मूल्य श्रृंखला, बाजार पहुंच और निर्यात को मजबूत करने के दृष्टिकोण पर चर्चा की गई। यमन में हौसी विद्रोहियों के खिलाफ सशस्त्र बलों ने सैन्य अभियान शुरू कर दिए हैं। यमन सशस्त्र बलों के प्रवक्ता कर्नल माजिद अल नुजैली ने कहा कि हौसी विद्रोहियों के बार बार हमलों के बाद सरकारी बलों और नागरिकों की सुरक्षा के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। अश्मिता चलेहा कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में पहुंच गई हैं। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम किसान वाणी।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जनसेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को नमस्कार। मैं हूं अमित तेवतिया
4: और मैं हूं नीरा बख्शी।
3: मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, कार्यक्रम किसान वाणी में आपके लिए होती है विषय संबंधित जानकारी।
4: बिल्कुल, और जानकारी के साथ साथ होता है मनोरंजन भी,
3: और मनोरंजन के साथ साथ ऐसी योजनाएं जिसका लाभ सीधे सीधे हमारे किसान भाइयों तक पहुंचता है। मित्रों, ऐसी ही एक योजना है ई नाम, अर्थात राष्ट्रीय कृषि बाजार, और भारत सरकार का यह एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जिस पर देश की विभिन्न कृषि उपज बाजार समितियां और मंडियों को जोड़कर एकीकृत बाजार बनता है।
4: और इस पोर्टल के माध्यम से हमारे किसान भाई बहन घर बैठे अपनी उपज का सही भाव जान सकते हैं और पारदर्शी तरीके से सही कीमत पा सकते हैं।
3: ये भी आपको बता दें कि यह पोर्टल देश भर के किसानों को ऑनलाइन माध्यम से अपनी उपज बेचने की सुविधा देता है। और जब बात आती है सुविधा की, तो कार्यक्रम किसान वाणी में हम आमंत्रित करते हैं विशेषज्ञों को, डॉक्टर्स को या वैज्ञानिकों को, जो समसामयिक विषय पर प्रश्नों के जवाब देते हैं जिसका लाभ हमारे किसान भाई बहनों को मिलता है। आज का विषय है उत्पादन बढ़ाने में केंचुआ खाद का महत्व, और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर सीमा सांगवान को। आप वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, सूक्ष्म जीव विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली में। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन।
5: जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
4: डॉक्टर, सबसे पहला प्रश्न वो ये है कि केचुआ खाद क्या है और ये इतनी महत्वपूर्ण क्यों है?
5: जी हाँ, मैं किसान भाइयों को बताना चाहूंगी कि केचुआ खाद, जिसे हम बहुत कॉमनली वर्मी कंपोस्ट के नाम से भी जानते हैं, ये एक बहुत उच्च गुणवत्ता वाली जैविक खाद है जिसे केचुओं की सहायता से गोबर, फसल अवशेष, पत्तियां तथा अन्य जैविक पदार्थों को सड़ाकर तैयार किया जाता है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश के साथ साथ अनेक सूक्ष्म जीव भी होते हैं जो बहुत ही लाभकारी सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। यही कारण है कि इससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने वाली सबसे प्रभावशाली जैविक खादों में से एक माना जाता है।
3: बिल्कुल, जब बात आती है कि मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है, लेकिन वहीं डॉक्टर साहब, किसानों के मन में प्रश्न उठता है कि क्या फसल उत्पादन में यह सहायक होगी?
5: बिल्कुल सहायक होगी। केचुआ खाद पौधों को आवश्यक पोषक तत्व, जो हम बोलते हैं ना, उनको धीरे धीरे और लंबे समय तक प्रदान करती है। इसी वजह से इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है एक जब हम इसको अपनी फसलों में डालेंगे। इससे पौधों की जड़ों का विकास जो है वो बहुत बेहतर होता है, अंकुरण जो है वो भी अच्छा होता है और पौधा अधिक स्वस्थ और मजबूत बनता है। साथ ही साथ यह मिट्टी की जल धारण क्षमता को भी और उसकी संरचना में भी बहुत सुधार करती है, जिससे पौधा जो सूखे जैसी परिस्थिति अगर आ जाए तो उसको बहुत आसानी से वो सहन कर पाते हैं। इन्हीं सभी कारणों से फसल की गुणवत्ता और उत्पादन दोनों में ही वृद्धि होती है।
4: डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि उत्पादन में वृद्धि होती है, लेकिन क्या हम ये मान सकते हैं कि केचुआ खाद अकेली ही इतनी सक्षम है?
5: केचुआ खाद मिट्टी के लिए तो बेहतर है, वो एक बहुत महत्वपूर्ण साधन है, लेकिन अधिकतर फसलों में सर्वोत्तम परिणाम अगर आपको लेना है तो एक संतुलित उपयोग करना बहुत जरूरी है। इस संतुलित उपयोग में जो रासायनिक खादें हैं और उसके साथ साथ अगर हम इन जैविक खादों का इस्तेमाल करें, केचुआ खाद का इस्तेमाल करें,

0: तो पोषक तत्वों की उपलब्धता बहुत अच्छे से बढ़ाई जा सकती है और उर्वरकों का जो उपयोग है वो दक्षता के सुधार में होता है और उपयोग भी हमें अधिक मिलता है, जो उत्पादन शक्ति है वो बहुत बढ़ती है। इसीलिए एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन सबसे बेहतर विकल्प माना जाता है।
1: तो डॉक्टर साहब, ये तो बहुत अच्छी बात रही कि हम केचुआ खाद के प्रयोग से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, लेकिन वहीं जब बात आती है कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति के साथ साथ पर्यावरण के प्रभाव की,
0: जी
1: तो किस प्रकार से यह मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है और पर्यावरण के लिए क्या इसके प्रभाव होंगे?
0: जी हाँ, केचुआ खाद मिट्टी में जैविक कार्बन को बढ़ाती है। जब
1: जी
0: हम इसे डालेंगे तो जो ऑर्गेनिक कार्बन वो बढ़ेगा और उसके बढ़ने की वजह से जो लाभकारी और सूक्ष्म जीव हैं उनकी संख्या में बहुत वृद्धि होती है। इससे मिट्टी की संरचना, वायु संचार और जल धारण की क्षमता बहुत बेहतर होती है। इसके नियमित उपयोग के कारण रासायनिक उर्वरकों पर जो हमारी निर्भरता है वो कम हो जाती है, और जब वो कम होगी तो आप समझ सकते हैं कि वो डायरेक्टली लिंक करेगा कि हमारे पर्यावरण के स्वास्थ्य में बढ़ोतरी होगी, ताकि पर्यावरण का जो प्रदूषण होगा वो घटे और खेती की अधिक टिकाऊ एवं जलवायु अनुकूल बन जाएगी जब हम इसको इस्तेमाल करेंगे।
1: यानी कि मिट्टी की संरचना में सुधार होगा,
0: जी
1: पर्यावरण पर सीधा सीधा इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे किसान भाई बहन आज भी ऐसे हैं कि जो रासायनिक खाद का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन
0: जी
1: जब कार्यक्रम सुनेंगे तो निश्चित ही मन होगा कि क्यों ना हम भी केचुआ खाद का प्रयोग अपनी खेती में करें। तो केचुआ खाद हमारे किसान भाई बहन कैसे बना सकते हैं और इसे व्यवसाय के रूप में कैसे धारण किया जा सकता है?
0: अगर हमारे किसान भाई चाहते हैं कि इसको बनाना ये बहुत मुश्किल काम नहीं है,
1: जी
0: तो केचुआ खाद अगर वो बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले उनको एक छायादार जगह का चयन करना
2: चयन करना
0: चाहिए,
2: होगा।
0: जहाँ पे हवा आ रही हो और छायादार हो, जहाँ डायरेक्ट धूप ना लगे।
2: जी
0: इसके बाद उनको एक टैंक या गड्ढा कुछ बनाना चाहिए, जिसमें ये सबसे पहले भूसे की परत या सूखी पत्तियों की एक परत बनाई जाएगी। फिर उसमें अच्छी तरह से सड़ा हुआ गोबर, जितने भी अवशेष हमारे पास हैं, चाहे वो रसोई से निकलता है या फिर जो हमारे फसलों के अवशेष हैं या पेड़ों से जो पत्तियां गिरती हैं या फल फ्रूट जो भी खराब हो जाए, वो सब आप इसमें डाल सकते हैं, और उनको परतों में बिछाया जाता है सड़े हुए गोबर के साथ। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें उपयुक्त प्रजाति डाली जाएगी केचुआ की। तो केचुए की जो प्रजाति सबसे महत्वपूर्ण और बहुत लंबे समय से इस्तेमाल होती है खाद बनाने के लिए, तो वो है आयसेना फेटिडा। तो उसका भी एक प्रपोर्शन है, एक रेशो अनुपात कहूंगी मैं, कि अगर 100 क्विंटल आपको खाद बनानी है तो उसमें आपको 1%, उसका 1% आपको ये केचुआ लेना होगा। मतलब 1000 से 1500 आपको केचुए लेने होंगे और उनमें छोड़े जाते हैं। उसके बाद बेड में जो नमी है, अगर खाद को बहुत अच्छे से बनाना है ताकि जो केचुए हैं बहुत अच्छे से अपना काम करें, तो उसमें एक नमी बरकरार रखना बहुत जरूरी है, जो 60 से 70% के बीच में ये नमी बरकरार रखी जाती है। और इससे सीधी धूप और वर्षा से हमेशा बचाना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से अगर बहुत ज्यादा पानी इकट्ठा हो गया तो ये मर जाएंगे, क्योंकि ये नीचे दब जाएंगे और वो एनारोबिक कंडीशन क्रिएट होने की वजह से वो मर जाएंगे। तो लगभग जब हम ये क्रिया करते रहते हैं और बीच बीच में जब इसमें पलटवार करते हैं, इसको ऊपर से नीचे तक घुमाते हैं, तो 45 से 50 दिन के अंदर ये केचुए जो है इस जैविक खाद को भुरभुरी गहरे भूरे रंग की गंधहीन खाद में बदल देंगे, जो कि उसका साइन भी है कि हाँ ये अब तैयार हो गई है। फिर उसको छानकर अलग कर लिया जाता है और केचुओं को पुनः हम अगली खाद बनाने के लिए इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये तो हम कह सकते हैं कि मौखिक रूप से हमारे कार्यक्रम के माध्यम से हमारे किसान भाई बहन
0: बिल्कुल
1: इसकी जानकारी ले रहे हैं, लेकिन जब बात आती है कि क्या कृषि विज्ञान केंद्र हैं, कृषि विश्वविद्यालय हैं या कृषि अनुसंधान संस्थान है, कहीं से सीधे हमारे किसान भाई बहन इसका प्रशिक्षण ले सकते हैं, देख सकते हैं,
2: मतलब व्यवसाय के रूप में?
1: जी, उन्हें तो अच्छा अनुभव इस चीज का होगा, तो इसके विषय में आप क्या कहेंगे?
0: मतलब जिस तरह मैंने बताया कि उत्पादन शक्ति तो बढ़ेगी ही, लेकिन इससे किसान भाई पैसा भी कमा सकते हैं अगर वो इसको बनाना सीखें, क्योंकि आजकल कहीं पे भी देखेंगे तो वर्मी कंपोस्ट के पैकेट बिकते हैं, बहुत सारे हमारे पास प्लेटफॉर्म है। इसी तरह से जो सेल्फ हेल्प ग्रुप, सहायता समूह जो बनाते हैं, वो लोग भी इकट्ठा होकर इसको बना सकते हैं और इसको बेचा जा सकता है, क्योंकि इसको बनाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है और इसमें लागत भी बहुत ज्यादा कुछ ऐसी नहीं लगती है। आप सोचेंगे तो सिर्फ आपको केंचुए ही होंगे जो खरीदने पड़ेंगे, अदरवाइज और सारी चीजें आप बहुत आसानी से मैनेज कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ केंचुए वर्मी वॉश और वर्मी कंपोस्ट यूनिट की भी स्थापना, मतलब क्रिएट की जा सकती है। अगर कोई केवीकेस है, कृषि विज्ञान केंद्र हर जिले में है जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर काम करता है, अगर किसान भाई पूछे तो वो इनकी सहायता भी करेंगे और उनको समझाएंगे कि किस तरह से ये सब तैयार किया जाएगा और उनको वो प्रशिक्षण और वो ट्रेनिंग दी जा सकती है।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपसे लगातार कार्यक्रम में बातचीत जारी रहेगी, लेकिन एक छोटे से अंतराल के बाद।
3: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
4: पुतला बोल रहे?
3: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
4: मतलब?
3: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से।

0: कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ,
1: परम तो सभी डाले हैं।
0: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, पर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
1: सच है?
0: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
1: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
2: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
3: मित्रों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम किसान वाणी और हमारे साथ लगातार विषय पर बनी हुई हैं डॉक्टर सीमा सांगवान, जो कि वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं सूक्ष्म जीव विज्ञान संभाग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली से।
4: बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसे हम बात कर रहे थे केचुआ खाद की, तो सबसे पहले एक चीज और, जब हम इसको बना रहे हैं, जैसे आपने कहा कि गहरे भूरे रंग में हो जाए तो ये मान लेना चाहिए कि तैयार हो गई है, इसके अलावा और क्या पहचान है और क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए इसे बनाने वक्त?
5: पहचान तो इसकी यही है कि वो गहरे भूरे रंग की होगी और वो बहुत भुरभुरी रंग की तैयार हो जाएगी और गंधहीन होगी। मतलब शुरुआत में इसमें बहुत ज्यादा गंध आती है, लेकिन हाँ, जब वो खाद तैयार हो जाएगी तो वो गंधहीन हो जाएगी और वो पाउडर की तरह भूरे रंग की भुरभुरी हो जाएगी, तो इसका मतलब आप समझ सकते कि हाँ, ये तैयार हो गई है। और अप्रोक्सीमेट टाइम भी हम समझ सकते हैं कि 45 से 50 दिन लगेंगे, 55 दिन लगेंगे जिसमें ये तैयार हो जाएगा। सावधानियों की अगर बात करें तो सबसे पहली सावधानी आपको यही ध्यान रखनी है कि कोई ऐसी जगह ना हो जहाँ पे धूप डायरेक्टली लग रही है, क्योंकि आप समझेंगे कि केचुआ जो है बहुत ज्यादा तापमान अगर बढ़ गया तो वो मर जाएंगे। इसी तरह से जो सड़ी हुई हमने गोबर इस्तेमाल किया उसमें भी बहुत सारे सूक्ष्म जीव हैं जो काम करते हैं, जो इसको सड़ाने में हेल्प करते हैं, तो उनका सबका भी एक उचित तापमान ही है जहाँ पे वो काम कर पाएंगे। तो अगर वो ज्यादा बढ़ जाता है किसी वजह से तो इससे वो केंचुए भी मर जाते हैं और सूक्ष्म जीव भी मरेंगे, तो उससे हमें बचाना है। दूसरा है कि हमें इसको छायादार जगह पे रखना है जहाँ पे डायरेक्ट बारिश का पानी ना हो, ऐसा ना हो कि पानी से भर रहा है वो। हमें नमी तो बरकरार रखनी है लेकिन इससे ऊपर भी नहीं होना चाहिए, वो भी सही नहीं है क्योंकि उससे एनारोबिक कंडीशन क्रिएट हो जाता है और उसमें भी केंचुए मर सकते हैं। तो सबसे बड़ी सावधानियां तो ये दो ही हैं।
3: यदि हमारे किसान भाई व्यावसायिक रूप से केचुआ पालन बड़े स्तर पर करना चाहते हैं, तो क्या सरकार की कोई ऐसी योजनाएं हैं जिसमें किसान को सीधा सीधा कोई आर्थिक लाभ मिले?
5: देखिए, अगर किसान जो FPO और ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाते हैं, अगर उनकी मदद से वो करते हैं तो हाँ, बहुत सारी सरकार की योजनाएं हैं जो उनकी जरूर मदद करेंगी। और वो क्योंकि अब तो सरकार ही खुद ही बता रही है कि आपको संतुलित खादों का उपयोग करना है, रासायनिक खादों पे हमें अपनी निर्भरता है वो कम करनी है, तो उसका यही उपाय है कि इस तरह से ग्रुप बना के इन व्यवसाय में अपना हाथ आजमाएं और अपने साथ साथ और गांव वालों को भी समझाएं अपने साथ।
4: डॉक्टर साहब, जैसे यहाँ एक बात और आई थी कि प्रजाति चुनने की, तो जैसे हम प्रजाति जब चुनते हैं उस वक्त क्या बातें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है और किस प्रकार हम कहाँ कहाँ से इन्हें प्राप्त कर सकते हैं?
5: एसेना फोर्टेटा तो आपको कहीं पे भी मिलेगा, यही एक मेन प्रजाति है जो इसमें इस्तेमाल की जाती है बहुत कॉमन तरीके से। इसके अलावा यूडिलस यूजेनिए भी है, एक और केंचुए का प्रजाति जो इसमें इस्तेमाल होता है, लेकिन मैं यही कहूंगी कि एसेना फोर्टेटा ही है जो बहुत बड़े स्तर पे अगर आपको काम करना है तो बहुत सक्सेसफुल रिजल्ट इसी केंचुए से मिलते हैं। और ये आप कहीं पे भी ऑनलाइन देखेंगे तो आपको ये प्रजाति और कहीं पे भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, और आपको बस अपना अनुपात देखना है कि कितनी खाद तैयार करना चाहते हैं उस हिसाब से आप खरीदिए। और सबसे अच्छी इसकी लाभकारी बात यह है कि एक बार खरीदा हुआ वो आपका बार बार इस्तेमाल होगा, केंचुआ इसी खाद से निकलेगा। आप जब ये खाद तैयार हो जाए तो उस केंचुए को अलग कर लीजिए छान के और उसको अगली खाद में डालिए, तो वो इस तरह से चलता रहेगा।
3: बिल्कुल डॉक्टर साहब, यदि हम बात करते हैं कि केंचुआ का उत्पादन जो हम कर रहे हैं तो वहीं फसल का उत्पादन बढ़ रहा है, तो किसानों को किसान वाणी कार्यक्रम के माध्यम से आप इस विषय पर क्या संदेश देना चाहते हैं?
5: जी, मेरा सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि यदि हमें अधिक उत्पादन के साथ साथ मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी लंबे समय तक अगर बनाए रखना है तो जैविक खाद और रासायनिक पोषक तत्वों का एक बहुत संतुलित उपयोग है वो हमें अपनाना होगा। केचुआ खाद न केवल फसल की वृद्धि और उत्पादन में मदद करती है बल्कि मिट्टी को भी स्वस्थ बनाती है। इसलिए किसान भाई बहन जो भी इसे खेती में अपनाना चाहते हैं तो उसको अपना नियमित हिस्सा बनाएं, मतलब संतुलन के साथ आप ये जैविक खादों का भी इस्तेमाल करें, वर्मी कंपोस्ट बनाएं और वैज्ञानिक सलाह के अनुसार इसका उपयोग करें।
3: डॉक्टर साहब, अभी मानसून का समय चल रहा है तो ऐसे में कोशिश होती है कि हमारे किसान भाई बहनों के लिए वो कौन सा उचित समय रहेगा जहां से वो केचुआ पालन शुरू कर दें और उनका जो उत्पादन अच्छा रहेगा, चाहे वो केचुए का रहे या उनका खाद का रहे या फसल उत्पादन पर इसका कोई नकारात्मक प्रभाव ना पड़े?
5: जी हाँ, तो जैसे ये अभी तो बहुत बारिश का समय है तो अभी थोड़ा सा रुक सकते हैं वो, और जैसे ही बारिशें ये खत्म होंगी उसके बाद वो अपना उत्पादन इसी तरीके से शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद जब सर्दी का मौसम आ जाएगा तो भी आप समझ सकते हो कि जो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस है जिसमें ये घटन होता है, सारी प्रक्रिया होती है, वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है।

0: जी टेम्परेचर जो है थोड़ा नीचे गिर जाता है, तो उस वजह से मैं ये कहूंगी जो बारिश से पहले का समय था वो भी बहुत उचित था, जिसमें सही गर्मी थी, तो उसमें भी बहुत अच्छे से बनाई जा सकती है। और जो जस्ट इसके बाद का होगा सितंबर अक्टूबर नवंबर, ये बहुत अच्छा समय होगा जिसमें आप ये केचुआ खाद बना सकते हैं अपने घरों में और बहुत अच्छे से उसका इस्तेमाल कर सकते
1: जी,
0: हैं।
1: यानी हम उचित समय की अगर बात करते हैं
0: जी
1: तो वर्षा से पहले और
0: हाँ,
1: वर्षा
0: और
1: के
0: वर्षा
1: बाद
0: के
1: का।
0: बाद बिल्कुल,
1: जी
0: क्योंकि वर्षा की डायरेक्ट उससे तो हमें बचाना होगा इसको कि पानी वो डायरेक्ट ना गिरे कहीं पे भी, तो उसी के लिए अगर आपके पास बहुत अच्छा यूनिट नहीं है और वो घर पे ही ये सब करना चाहते हैं, तो उनको थोड़ा वर्षा का ये टाइम अपना वो अवॉइड करना होगा उससे पहले और उसके बाद।
1: जी डॉक्टर साहब, अगर हम तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो केचुआ खाद या फिर दूसरी खाद जो इस्तेमाल की जाती है फसलों में, उसका क्या प्रभाव रहता है?
0: देखिए जैविक खाद की जब हम बात करेंगे तो हमारे पास बहुत सारी तरह की जैविक खादें हैं, तो ये तो एक पर्टिकुलर हम कह देंगे कि जो केचुआ खाद है ये एक तरह की खाद है, और जो कि बहुत ज्यादा ऐसे नहीं है कि इस खेत में ही ये पड़ेगा या इस फसल में ही ये पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ये किसी भी तरह की फसल में डालोगे तो ये अपना नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाश के साथ साथ जो और अन्य पोषक तत्वों की भी जो फसल को जरूरत होती है तो वो इसको देंगे। लेकिन हाँ, इसके अलावा हमारे पास बहुत सारी और जैविक खादें हैं, जैसे कि अपने पूसा संस्थान में ही हमने बनाई हैं, जैसे कि नाइट्रोजन फिक्सिंग जो खाद है जिसमें हम एजोटोबैक्टर का इस्तेमाल करते हैं, एजोस्पायरलम का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे ही राइजोबियम जो है हमारी फसल के अनुसार राइजोबियम बनता है, जैसे कि मूंग की फसल है तो मूंग के लिए अलग राइजोबियम है, उड़द की फसल है तो उसके लिए अलग राइजोबियम है। इसी तरह से अगर फसल में पोटाश की कमी है तो पोटाश सोल्युबलाइजर डाले जाते हैं, फॉस्फोरस की कमी है तो फॉस्फोरस का सोल्युबलाइजर डाला जाता है। लेकिन इसकी खास बात यह है वो है जो पोषक तत्वों के हिसाब से है, जहां किसान अपनी मिट्टी की जाँच कराएगा और तब वो समझेगा कि हाँ इस पोषक तत्व की कमी है और ये डाल दें, तो वहां पे उसको अलग अलग लेना पड़ेगा, उसको नाइट्रोजन के लिए अलग लेना पड़ेगा, फॉस्फोरस की कमी है तो उसके लिए अलग जैविक खाद लेना पड़ेगा, और इसी तरह से पोटाश की कमी है तो अलग लेना पड़ेगा, जिंक की कमी है तो अलग लेना पड़ेगा। इस तरह के सारे विकल्प हमारे पास हैं, लेकिन केचुआ खाद इस वजह से बेहतर मानी जाती है कि एक ही तरह की खाद जो कि बहुत आसानी से हम अपने घरों में बना सकते हैं, हमारी महिलाएं भी अपने ही रसोई से जो कचरा हमारा बनता है तो उस हरे कचरे को जिसमें बहुत सारे जो फल हैं उनका छिलका होता है वो होता है, सब्जियां होती हैं, कुछ सड़ी गली चीजें भी होती हैं, ये सब इस्तेमाल करके वो महिला भी घरों में ये खादों को तैयार कर सकती हैं। मतलब इसका महत्वपूर्ण इसीलिए मैं कह रही थी कि बेहतर क्यों है और खादों से, क्योंकि एक ही तरह की खाद डाल के आपको वो सभी पोषक तत्व मिल जाएंगे जो हमें अगर दूसरी जैविक खादें यूज करनी पड़े तो शायद अलग अलग
1: अलग
0: डालना
1: अलग
0: पड़े,
1: जी
0: तो ये एक ही तरह की खाद से वो हर पोषक तत्व खाद डालने की वजह से जमीन में आ जाएगा, हमारी मिट्टी में आ जाएगा। और दूसरा कि जब ये कार्बन शक्ति जब मिट्टी की बढ़ाता है तो जो सूक्ष्म जीव जो मैं आपको बात कर रही थी ना कि हमें अलग से डालना पड़ता है, राइजोबियम हुआ, एजोटोबैक्टर हुआ, पोटास सोल्युबलाइजर हुआ, तो ये सूक्ष्म जीव कार्बन कंटेंट बढ़ने की वजह से जो वर्मी कंपोस्ट हम डालेंगे, केचुआ खाद हम डालेंगे, उसकी वजह से वो अपने आप ही पनपने लगते हैं। तो वही काम जो हम बाहर से डाल के करते हैं वही काम वो सूक्ष्म जीव अपने आप वो पनपेंगे, और अपने आप ही वो होता है ना कि एक इकोसिस्टम इस तरह से तैयार होता है जिसमें सभी मिलजुल कर काम करें, और वो मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ाएंगे, फसल की शक्ति भी बढ़ाएंगे, और फसल की जो उत्पादन होगा वो भी बढ़ेगा, लागत बहुत कम होगी।
2: बिल्कुल, यानी कि जब केचुआ पालन की बात आती है तो हमारे जो पशुपालक भाई हैं उनके लिए तो कहीं ना कहीं यह वरदान सिद्ध होता है, ऐसा क्यों?
0: क्योंकि इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो हम समझेंगे ना कि क्या जरूरी क्या था केचुआ खाद बनाने में, तो वो गोबर जरूरी है, वो गोबर उन्हीं के पास होगा जिनके पास पशु होंगे,
2: बिल्कुल
0: उसी गोबर को वो इस्तेमाल कर सकते हैं खाद बनाने के लिए, अपनी ही मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए और पैसा कमाने के लिए, क्योंकि यही वर्मी कंपोस्ट के इससे वो पैसा भी कमा सकते हैं।
2: बिल्कुल। डॉक्टर सीमा सांगवान, आप कार्यक्रम में उपस्थित हुई, इतनी अच्छी जानकारी आपने हमारे श्रोताओं तक पहुंचाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।
1: कार्यक्रम में अब समय है मनोरंजन का, तो क्यों ना एक लोकगीत सुनवा दे।
2: बिल्कुल, आइए सुनते हैं ये लोकगीत।

0: पर तैयार करने की सलाह दी जाती है और जल निकास का उचित प्रबंध करें इसकी भी सलाह दी जाती है। और अगर हम फलों की बात करते हैं तो फलों के नए बाग लगाने के लिए अच्छी गुणवत्ता के पौधों का प्रबंध करके इनकी रोपाई अति शीघ्र करने की सलाह दी जाती है।
1: बिल्कुल, तो ये है वैज्ञानिकों की ओर से कृषि संबंधी सलाह। मित्रों, आजादपुर मंडी से कुछ फल एवं सब्जियों के भाव प्राप्त हुए हैं, तो आपको बताते चलें। आलू का भाव 18 रुपया प्रति किलोग्राम है, प्याज 30 रुपया प्रति किलोग्राम, टमाटर 40 रुपये प्रति किलोग्राम रहा।
0: और इसी के साथ अगर हम फलों की बात करते हैं तो सेब का भाव रहा 200 रुपये प्रति किलोग्राम, केला 25 रुपये प्रति किलोग्राम, अमरूद 80 रुपये प्रति किलोग्राम। वहीं पपीते की बात करें तो पपीते का भाव रहा 30 रुपये प्रति किलोग्राम।
1: जी हाँ मित्रों, अभी आप सुन रहे थे आजादपुर मंडी से प्राप्त मंडी भाव। अब कार्यक्रम में समय हो रहा है आपसे अनुमति लेने का। कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा,
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी,
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच।
6: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
7: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। अभी आपने सुना कार्यक्रम किसान वाणी। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। समय हो चला है 7:35 और ये वक्त है कार्यक्रम गजल और कव्वाली का। इस कार्यक्रम में मैं हूँ आज आपके साथ तलत। किसी ने क्या खूब कहा है कि तेरे जमाल की तस्वीर खींच दूं, लेकिन तेरे जमाल की तस्वीर खींच दूं लेकिन जबान में आंख नहीं होती और आंख में जबान नहीं होती। कई बार आप जो देख पाते

बयान नहीं कर पाते, और जो आप बयान कर पाते हैं कभी कभी ऐसा होता है कि वो आप देख नहीं पाते। ऐसा ही कुछ अगली गज़ल में आप सुनेंगे।

महफूज रखे उसे हर एक बुरी नज़र से, और अगर ऐसी ही एक बात है तो फिर ये अगली कव्वाली आपके साथ है।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अभी आपने कार्यक्रम सुना गज़ल और कव्वाली का। उससे कुछ ही देर बाद यानी 7:45 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे उभरते क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता विकसित भारत की मजबूत नींव रखेगी। उन्होंने आईआईटी के विद्यार्थियों से राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने का आग्रह किया। दिल्ली कैबिनेट ने निजी विश्वविद्यालय विधेयक के मसौदे को मंजूरी देकर उच्च शिक्षा क्षेत्र में बड़ा नीतिगत बदलाव किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली नगर निगम में 187 नवनियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। दिल्ली पुलिस ने वीजा अवधि समाप्त होने के बाद भी अवैध रूप से रह रहे 7 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया और स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष में कल से हर घर तिरंगा अभियान शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली के विद्यार्थियों से अपने निर्णयों में राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखने का आग्रह किया है। श्री मोदी ने आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करते हुए अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी निभाती है।
1: आप सब जानते हैं, हर पीढ़ी के सामने उस टाइम पीरियड की अपनी चुनौतियां होती है और हर पीढ़ी का अपना एक राष्ट्रीय दायित्व भी होता है। साथियों, आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्रों के विकास से युवाओं के लिए नए अवसर सृजित हो रहे हैं। उन्होंने सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे क्षेत्रों का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कार्य कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भरता की ये पहल विकसित भारत के निर्माण के लिए मजबूत आधार का काम करेगी।
1: सेमीकंडक्टर सेक्टर का उदाहरण भी हमारे सामने है। जब हमने इस दिशा में कदम बढ़ाया तो कुछ लोगों ने सवाल उठाए, कहा गया भारत ये नहीं कर पाएगा, लेकिन आज पहली सेमीकंडक्टर यूनिट्स में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और मैं साफ मानता हूं चिप से लेकर के शिप तक सब कुछ यहीं पर आप ही के हाथों से बनेगा। और कहीं कोई युवा पूरे आत्मविश्वास से कह रहा है, फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन तो मेक अ चिप इन इंडिया।
0: श्री मोदी ने सोशल मीडिया के युग में उत्पन्न होने वाली चुनौतियों के बारे में कहा कि विद्यार्थियों को वेतन, नौकरी या कार्य क्षेत्र के आधार पर दूसरों से अपनी तुलना करने से बचना चाहिए।
1: जब हम बड़े गोल्स को अचीव करने के लिए प्रारंभ करते हैं तो एक बड़ा डिस्ट्रक्शन भी हमारे सामने आता है। ये डिस्ट्रक्शन होता है एक दूसरे से कंपेरिजन का। लेकिन याद रखिए, जिंदगी कोई लीडर बोर्ड नहीं है, आपकी असली दौड़ किसी और से नहीं, खुद अपने आप से है। हर दिन कल से बेहतर बनने की कोशिश करते रहिएगा।
0: इस अवसर पर शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश के संस्थानों में नया आत्मविश्वास जगाया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने आईआईटी दिल्ली में उच्च दक्षता के कंप्यूटिंग केंद्र परम प्रज्ञा का उद्घाटन भी किया। दिल्ली सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए राष्ट्रीय राजधानी में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना और कानूनी मान्यता देने से जुड़े मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य दिल्ली में विश्व स्तरीय निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए आधुनिक, पारदर्शी और प्रभावी कानूनी ढांचा तैयार करना है। उन्होंने कहा कि विधेयक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध शिक्षण संस्थानों और उनके ऑफ कैंपस सेंटर्स के लिए दिल्ली में स्थापित होने का रास्ता भी साफ करेगा। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि विधेयक में छात्रों के हितों की सुरक्षा को सबसे अधिक प्राथमिकता दी गई है। लागू आरक्षण नीति के अनुसार प्रत्येक पाठ्यक्रम में 25% सीट दिल्ली के विद्यार्थियों के लिए आरक्षित होंगी। दिल्ली मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद इस विधेयक को मॉनसून सत्र के दौरान विचार और पारित करने के लिए दिल्ली विधानसभा में पेश किया जाएगा। दिल्ली नगर निगम ने आज सिविक सेंटर में 187 नवनियुक्त अभ्यर्थियों के लिए नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया। इसमें 17 स्पेशल एजुकेटर भी शामिल हैं। साथ ही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली नगर निगम के विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों की चिकित्सा जांच और स्वास्थ्य निगरानी के लिए मेडिकल स्क्रीनिंग पोर्टल का भी शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्रीमती गुप्ता ने नवनियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किया।

0: और उनके परिवारों को बधाई देते हुए कहा कि लंबे समय से लंबित नियुक्तियों को गति देना दिल्ली नगर निगम को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
1: डॉक्टर नहीं है, पैरा मेडिकल स्टाफ नहीं है तो काम कैसे होगा, नर्सिंग स्टाफ नहीं है तो काम कैसे होगा। इसलिए जरूरत है जिस रेशो में पेशेंट बढ़ रहे हैं उसी रेशो में फैसिलिटीज भी बढ़नी चाहिए। मुझे खुशी है आज यहाँ पे नियुक्ति दी जा रही है। ये एक मानवीय सोच इस नगर निगम की दिखाता है कि साधारण बच्चे नहीं, स्पेशल बच्चों के लिए भी सरकार काम कर रही है।
0: दिल्ली नगर निगम के महापौर प्रवेश वाही ने इस अवसर पर कहा कि आज परिवारों में खुशी की लहर दौड़ गई है। इसमें नए नियुक्त कर्मचारी और अनुकंपा के आधार पर नियुक्त लोग शामिल हैं। महापौर ने कहा कि दिल्ली नगर निगम उनके कर्मचारियों के कल्याण, सम्मान और अधिकारों के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
2: दिल्ली नगर निगम के हेल्थ सेंटर्स, हमारे स्कूल्स, सुरक्षित माहौल, एक बहुत ही खूबसूरत एटमॉस्फेयर के साथ साथ बेस्ट टीचर्स के द्वारा शिक्षा प्रदान की जा रही है। दिल्ली नगर निगम बिल्कुल मॉडल और ये जो पब्लिक स्कूल है उनके समकक्ष आकर खड़ा हो गया है। निश्चित रूप से जो हमारे बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनमें नई योजनाएं लाकर नई बिल्डिंग्स खड़ी करेंगे।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली उत्तर प्रदेश बॉर्डर दिलशाद गार्डन के समीप स्थित कांवड़ सेवा शिविर का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर उनका अभिनंदन किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: कांवड़ सेवा शिविर में निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने कांवड़ियों से संवाद कर उनकी यात्रा व व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी ली और सभी के मंगलमय, सुरक्षित और सफल कांवड़ यात्रा की कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार का प्रयास है कि किसी भी शिव भक्त व कांवड़ सेवा शिविर को किसी प्रकार की असुविधा न हो। सरकार की ओर से कांवड़ समितियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है, जिसके तहत 20,000 वर्ग फुट से अधिक क्षेत्र में 6 से 12 दिन तक संचालित होने वाले बड़े कांवड़ शिविरों को अधिकतम 15 लाख रुपए तक की सहायता दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रावण मास में हजारों शिव भक्त हरिद्वार से गंगा जल लेकर पैदल अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं और भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक कांवड़िया भगवान भोलेनाथ के स्वरूप में पूजनीय और सम्मानीय है तथा इस वर्ष बड़ी संख्या में महिलाएं भी कांवड़ यात्रा में शामिल हो रही है।
4: जो है समय शिवमय हुई हुई है और सैकड़ों कांवड़ कैंप लगे हैं, हजारों कांवड़िए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। दिल्ली राज्य पूरी मुस्तैदी के साथ में सभी कांवड़ लेके आने वाले शिव भक्तों का स्वागत कर रहा है, अभिनंदन कर रहा है।
3: दिल्ली सरकार द्वारा कांवड़ सेवा समितियों को वित्तीय सहायता, स्वच्छता, स्वास्थ्य सेवाएं, यातायात प्रबंधन, शौचालय और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से नीतिका गुप्ता।
0: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि सरकार दिल्ली के सभी 13 जिलों में बाल भिक्षुक मुक्त दिल्ली, चाइल्ड बेगर फ्री अभियान शुरू करने जा रही है। उन्होंने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य भीख मांगते पाए जाने वाले बच्चों की सुरक्षा करना और उनके भविष्य को सुरक्षित करना है। मुख्यमंत्री ने वीडियो के माध्यम से ये भी बताया कि बच्चों को जबरदस्ती नहीं हटाया जाएगा। उन्होंने बताया कि दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग और गैर सरकारी संगठन के साथ मिलकर परिवारों की काउंसलिंग की जाएगी, उनकी मुश्किलों को समझा जाएगा और बेहतर विकल्प उपलब्ध कराए जाएंगे। दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने आज दिल्ली की विधि विज्ञान प्रयोगशाला का दौरा किया। श्री सूद ने प्रयोगशाला के कामकाज, वैज्ञानिक आधारभूत संरचना, फॉरेंसिक जांच सुविधाओं और समग्र कार्यप्रणाली की समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सूद ने बताया कि निरीक्षण के बाद आधुनिक तकनीक, बेहतर संसाधनों और अधिक दक्षता के जरिए जांच प्रक्रियाओं को मजबूत करने के बारे में अधिकारियों के साथ चर्चा की गई। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज गुरुग्राम के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में विश्व बंधुत्व रक्तदान महाअभियान का शुभारंभ किया। ये कार्यक्रम प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय ने आयोजित किया। इस अवसर पर श्री नवीन ने कहा कि रक्तदान के माध्यम से जीवन बचाने और युवाओं को नशे से दूर रखने हुए राष्ट्र निर्माण के प्रति समर्पित बनाने का ये संकल्प मानवता की सच्ची सेवा का संदेश देता है।
5: कई बार थैलेसीमिया के कैंप में जाने का मौका मिला। मैं जब उन बच्चों को देखता था तो मुझे लगता था कि आखिर उनका दोष क्या है, पर कहीं ना कहीं प्रकृति ने उनसे उस दोष को उसके जीवन में डाल दिया। और जब रक्त की बात आती है और थैलेसीमिया

0: के बच्चों को जो सहयोग रक्तदान के रूप में मिलता है, निश्चित रूप से एक आत्मसंतुष्टि मिलती है।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली पुलिस ने वीजा की अवधि समाप्त होने के बाद भी देश में अवैध रूप से रह रहे 7 विदेशी नागरिकों की पहचान कर गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार खुफिया जानकारी और रिकॉर्ड्स की पड़ताल के जरिए पुलिस की टीमों ने 7 अफ्रीकी नागरिकों की पहचान कर उनका पता लगाया है। इनमें 5 नाइजीरियाई के और 2 घाना के नागरिक शामिल हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के लोगों से आगामी स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में कल से 17 अगस्त तक चलने वाले हर घर तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़ कर भाग लेने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी लोग अपने घरों पर तिरंगा फहराकर तिरंगे के साथ अपनी तस्वीर साझा करें। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपने बच्चों को देश की स्वतंत्रता में किए गए लोगों के तप, त्याग और बलिदान के बारे में बताने की अपील भी की। स्वतंत्रता दिवस समारोह के अंतर्गत प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय आज से 12 अगस्त तक वंदे मातरम अ टाइमलेस ट्रिब्यूट टू द मदरलैंड कार्यक्रम आयोजित करेगा। आज वंदे मातरम पर विशेष प्रदर्शनी शुरू हुई। इसमें दुर्लभ दस्तावेज और तस्वीरें प्रदर्शित की जा रही हैं। कल बहुभाषी सुलेख प्रदर्शन और 11 अगस्त को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के करीब 20 विद्यालयों के बीच समूह गायन प्रतियोगिता होगी। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में वायुसेना बैंड कल नई दिल्ली के राष्ट्रीय समर स्मारक पर प्रस्तुति देगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देशभक्ति के एक संगीतमय कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है। मंत्रालय ने बताया कि 32 वायु सैनिकों और 8 अग्निवीर वायु की एक टीम ये प्रस्तुति देगी। इनमें 3 महिलाएं भी शामिल हैं। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू को आज अमृतसर के अजनाला में स्थित गुरुद्वारा गुरु का बाग में SGPC ने सम्मानित किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराज्यपाल ने बताया कि अजनाला का ये गुरुद्वारा ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ वर्ष 1922 में सरदार तेजा सिंह समुद्री के नेतृत्व में गुरु का बाग मोर्चा हुआ था। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ ये संघर्ष अनुशासित और अहिंसक प्रतिरोध का सशक्त उदाहरण है। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रहे उन दावों का खंडन किया है जिसमें कहा गया है कि भारतीय डाक विभाग डाक सेवा उपहार के अंतर्गत उपहार और पुरस्कार दे रहा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि भारतीय डाक का किसी भी डाक सेवा उपहार ऑफर पुरस्कार योजना या लकी ड्रॉ से कोई संबंध नहीं है। राजधानी दिल्ली में आज दिन के समय कई जगह पर हल्की से तेज वर्षा हुई। आज का अधिकतम तापमान 32.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग ने बताया कि कल बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा हो सकती है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 33 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे उभरते क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता विकसित भारत की मजबूत नींव रखेगी। उन्होंने IIT के विद्यार्थियों से राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने का आग्रह किया। दिल्ली मंत्रिमंडल ने निजी विश्वविद्यालय विधेयक के मसौदे को मंजूरी देकर उच्च शिक्षा क्षेत्र में एक बड़ा नीतिगत बदलाव किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली नगर निगम में 187 नवनियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। दिल्ली पुलिस ने वीजा अवधि समाप्त होने के बाद भी अवैध रूप से रह रहे 7 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। और स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में कल से हर घर तिरंगा अभियान शुरू। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: سامعین کی خدمت میں شاہ نواز ہاشمی کا پرخلوص آداب۔ سامعین اکرام، ہم لے کر حاضر ہیں آپ کا پسندیدہ پروگرام مشاعرہ۔ آپ کو شاعر حضرات سے روبرو کرائیں۔ اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اگست کا مہینہ ہمارے لیے بہت ہی اہم ہے۔ آئیے آپ کو تاریخ کے اوراق میں لیے چلتے ہیں جب غلامی کی زنجیریں ٹوٹی اور آزادی کی روشنی نے ہمارے وطن کو منور کیا۔ یہ وہ مہینہ تھا جب قربانیوں کی داستانیں حقیقت میں ڈھلی، जब शहीदों के लहू ने आज़ादी का चराग

0: रोशन किया, और जब ख्वाब हकीकत बनकर हमारे दिलों में उम्मीद की किरण बनकर जगमगाने लगा। हम उन अजीम रहनुमाओं को आज खराज अकीदत पेश करते हैं जिन्होंने इस आज़ादी के ख्वाब को पूरा करने के लिए अपने जान माल की कुर्बानी पेश की, जिसकी वजह से आज हम आज़ाद हवाओं में आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी के साथ अपने ख्वाब को खुद बुन रहे हैं और जी रहे हैं। तो सामईन कराम, आज़ादी का नाम सिर्फ खुशी नहीं बल्कि आज़ादी की यादों, कुर्बानियों और ख्वाबों के सफ़र का नाम है। ये सफ़र हमें याद दिलाता है कि आज़ादी सिर्फ एक दिन का जश्न नहीं बल्कि एक अहद है, अहद वफा, अहद खिदमत और अहद कुर्बानी। आइए हम भी ये अहद करें कि अपने मुल्क अजीज़ की बेहतरी के लिए हम पाबंद अहद रहेंगे। आइए अब सुनते हैं ये खूबसूरत मुशायरा। तो सामईन, आज हमने मुशायरे की महफिल आपके लिए और सिर्फ आपके लिए आरास्ता की है। आज इस महफिल की जो रौनक हैं उनमें तस्लीम दानिश, सैफुद्दीन सैफ, जावेद नियाजी और अहमद नदीम मौजूद हैं, तो लीजिए समाप्त कीजिए।
1: सामईन आदाब, आकाशवाणी के इस मुशायरे में आपका इस्तकबाल और खैर मकदम है। आज के हमारे जो मेहमान शोरा हैं उनमें जावेद नियाजी साहब, पाकिस्तान अहमद नदीम, तस्लीम दानिश साहब और सैफुद्दीन सैफ साहब। आइए बाकायदा इस मुशायरे का आगाज़ करते हैं और फ़ायर को दावत देते हैं जावेद नियाजी साहब को कि वो आएँ और अपना कलाम पेश करें।
2: मौजूद सामईन इकराम, गज़ल का मतलब बतौर खास पेश करता हूँ। उस

0: गया। पेश करता हूँ, लौट आओ जहाँ हो खुदा के लिए,
1: लौट आओ जहाँ हो खुदा।

0: ये भी शेर पेश करता हूँ। है हर एक फूल सहमा हुआ आजकल,
1: है हर एक फूल सहमा हुआ।
0: है

کہ یہ بھی شعر بطور خاص پیش کرتا ہوں، مجھ کو رسوا کر کے تم

0: वाह वाह,
1: बहुत
0: बहुत
1: शुक्रिया।
0: शुक्रिया। तो ये थे जावेद नियाज़ी साहब, जो अपने सहरंगेज तरन्नुम से आप महसूस कर रहे थे। आइए अब खाकसार अहमद नदीम भी कुछ कलाम पढ़ना चाहता है।
1: अच्छा जी,
0: तो
1: अच्छा
0: गजल का
1: जी,
0: मतला हाजिर करता हूँ, एक मतला और एक
1: जी
0: शेर
1: जी
0: सुन ले
1: जी
0: उसके बाद।
1: जी आता।
0: तीरा शबी में काकुले कातिल से जा मिले, तीरा
1: तेरा शबी में
0: शबी में
1: काकुले
0: काकुले कातिल से जा
1: क्या
0: मिले, नागाह कैदो बंदो सलासिल से जा मिले।
1: कहने
0: जरा
1: वाह।
0: गहने वाह और शेर सुने कि हम अपने इख्तियार में कब थे कि अब रहें, हम अपने
1: अपने
0: इख्तियार
1: इख्तियार
0: में कब थे कि अब रहें, लहरों से जा मिले कभी साहिल से जा मिले।
1: क्या
0: वाह
1: कहने
0: वाह
1: वाह
0: वाह।
1: वाह,
0: और एक मतला दो शेर और मुलाहजा कीजिए कि
1: जी
0: अब इसमें तशनगी है न दरिया न ख्वाब है, अब इसमें तशनगी
1: तशनगी
0: है न
1: तशनगी
0: दरिया
1: नदरिया
0: न
1: है।
0: ख्वाब है, सहरा नवर्द चश्म को बस इस्तेराब है।
1: अरे वाह
0: क्या
1: वाह वाह
0: कहने वाह।
1: वाह
0: अब इसमें
1: वाह वाह
0: तशनगी
1: वाह
0: है न दरिया न ख्वाब है,
1: वाह वाह
0: सहरा
1: वाह,
0: नवर्द चश्म को बस इस्तेराब
1: इस्तेराब
0: है,
1: है।
0: यानी मेरी शिकस्त पे गम कर रहे हैं लोग,
1: हाँ वाह,
0: यानी
1: यानी
0: मेरी शिकस्त पे गम कर रहे हैं लोग, मैं तो समझ रहा था जमाना खराब
1: अरे
0: है।
1: वाह
0: क्या
1: वाह वाह
0: कहने
1: वाह
0: यानी
1: वाह
0: मेरी
1: वाह वाह
0: शिकस्त पे गम कर रहे हैं लोग,
1: वाह वाह वाह,
0: मैं
1: क्या
0: तो
1: बात,
0: समझ रहा था जमाना खराब
1: बहुत
0: है,
1: अच्छा,
0: वहशत फिराक
1: बहुत
0: आहो
1: अच्छा,
0: फगां बेबसी अलम, जो कुछ है इख्तियार में वो बेहिसाब है।
1: वाह वाह
0: क्या
1: वाह,
0: बात।
1: कहने वाह,
0: और ये गजल से चंद शेर
1: जी
0: और
1: जी
0: मुलाहजा
1: अच्छा
0: कीजिए कि
1: अच्छा जी आता।
0: दिल पैहम फरियादी है,
1: दिल पैहम
0: दिल
1: फरियादी है।
0: पैहम
1: वाह
0: फरियादी है, थोड़ी वहशत बाकी है।
1: वाह,
0: दिल पैहम
1: थोड़ी
0: फरियादी है,
1: थोड़ी
0: थोड़ी
1: वहशत
0: वहशत
1: बाकी,
0: बाकी है, अब जाएं तो जाएं कहाँ,
1: अब जाएं तो
0: अब
1: जाएं
0: जाएं तो
1: कहाँ,
0: जाएं
1: जाएं
0: कहाँ,
1: कहाँ,
0: चारों ओर उदास।

0: है,
1: वाह
0: क्या
1: वाह वाह
0: कहने,
1: वाह,
2: अब जाएं तो जाएं कहाँ,
1: चारों
2: ओर उदासी है। और शेर देखें कि वीरानी पर जोर नहीं,
1: वीरानी
0: वीरानी
1: पर
0: पर
1: जोर
0: जोर,
1: नहीं,
2: वीरानी पर जोर नहीं, अपने तौर से आती है।
0: क्या
1: वाह
0: कहने, वाह
1: वाह,
2: वीरानी पर जोर नहीं,
0: अपने तौर से
2: अपने
0: आती है,
2: तौर से आती है एक ऐसा शहर जहाँ,
0: सही है
2: है
0: तो
2: एक ऐसा शहर जहाँ हर लहजा इनकारी है।
1: क्या
0: क्या
1: कहने,
0: कहने,
2: है एक ऐसा
1: वाह वाह
2: शहर
1: वाह
2: जहाँ
1: वाह वाह वाह,
2: हर लहजा इनकारी
0: इनकारी
2: है
0: बहुत,
2: मुझको देख के तन्हाई,
1: हाँ, मुझको देख के
2: मुझको देख
0: तन्हाई,
2: के तन्हाई दूर खड़ी शर्माती है।
1: वाह
0: वाह
1: वाह वाह
0: वाह
2: वाह, मुझको देख के
0: वाह,
2: तन्हाई
0: दूर खड़ी
2: दूर
0: शर्माती,
2: खड़ी शर्माती है। शेर सुने कि
1: क्या
2: अब
1: बताओ, दिन
2: दिन भर तो मसरूफ रहे,
1: भर तो मसरूफ
2: दिन भर
1: रहा,
2: तो मसरूफ रहे, रात की क्या तैयारी है।
0: वाह
2: क्या
0: क्या,
2: कहने,
1: वाह
2: वाह दिन
1: वाह,
2: भर तो मसरूफ रहे,
1: रात की क्या
2: रात की
1: तैयारी
2: क्या
1: है।
2: तैयारी है। और शेर सुने कि शोर ज्यादा करते हैं,
1: शोर
2: शोर
1: ज्यादा
2: ज्यादा करते
1: करते
2: हैं,
1: हैं,
2: लफ्जों की मनमानी है।
1: वाह वाह
0: क्या
1: वाह वाह,
0: कहने, वाह
2: शोर
0: वाह,
2: ज्यादा करते हैं,
0: अच्छा है, वाह वाह,
2: लफ्जों
1: लफ्जों
2: की
1: की
2: मनमानी
1: मनमानी
2: है,
1: है, वाह वाह
2: कौन
1: वाह,
2: इलाज करे अहमर,
1: हाँ,
2: कौन
1: कौन
2: इलाज
1: इलाज
2: करे
1: करे,
2: अहमर, जिस्त बड़ी बीमारी है।
1: वाह वाह
0: वाह
1: वाह
0: वाह,
1: वाह,
2: कौन इलाज करे अहमर,
0: बहुत अच्छी,
2: जिस्त बड़ी बीमारी है। और एक गजल
0: जी
2: से चंद शेर और मुलाहजा कीजिए
1: जी
2: कि
1: जी
2: अब तो मिलते भी
1: इरशादे
2: नहीं
1: अली,
2: शोर मचाने वाले, अब तो मिलते भी नहीं शोर मचाने वाले, इतना थक हार के बैठे हैं जमाने वाले।
1: वाह
2: वाह
1: वाह
2: वाह
1: वाह
2: वाह,
1: वाह,
2: अब तो मिलते भी नहीं शोर
1: शोर
2: मचाने
1: मचाने
2: वाले,
1: वाले, वाह वाह वाह वाह,
2: इतना
1: क्या
2: थक
1: क्या
2: हार के बैठे हैं जमाने
1: जमाने
2: वाले,
1: वाले,
2: भूल जाने में सहूलत तो बहुत है लेकिन। शेर सुने कि
1: जी
2: भूल जाने में सहूलत तो बहुत है लेकिन, याद आते हैं कभी याद ना आने वाले।
1: वाह वाह वाह वाह,
2: भूल जाने में
1: बहुत
2: सहूलत
1: बहुत
2: तो
1: अच्छा,
2: बहुत है लेकिन,
1: वाह,
2: याद
1: याद आते
2: आते
1: हैं
2: हैं
1: कभी
2: कभी याद
1: याद
2: ना
1: ना आने
2: आने
1: वाले,
2: वाले, फिर ये ताबीर की राहों में बिखर जाते हैं,
1: फिर ये
2: फिर ये
1: ताबीर,
2: ताबीर की राहों में बिखर जाते हैं, कुछ खबर भी है तुझे ख्वाब दिखाने वाले।
1: वाह वाह
0: वाह
1: वाह
0: वाह
1: वाह,
2: फिर ये ताबीर
0: वाह
2: की
1: बहुत
2: राहों
0: खूब,
2: में बिखर जाते हैं,
1: बहुत
0: बहुत
1: खूब,
0: अच्छा है,
1: कुछ
0: मतलब
1: खबर
0: ये,
2: भी है तुझे ख्वाब दिखाने वाले,
1: वाह वाह वाह,
2: इस तकल्लुफ पे लरसता हूँ कि दीवाने को, इस
1: तकल्लुफ
2: तकल्लुफ पे
1: पे
2: लरसता
1: लरसता
2: हूँ
1: हूँ,
2: कि दीवाने को, आंख दिखलाने लगे आंख चुराने
1: वाह
2: वाले।
1: वाह वाह वाह, जी
2: बतौर खास ये शेर मुलाहजा कीजिए कि
1: अच्छा,
2: ताकि तखलीक के पर्दे से बशारत हो आया, ताकि
1: ताकि तो,
2: तखलीक के पर्दे से बशारत हो आया, रक्स मिट्टी का दिखा चाक घुमाने
1: वाह
2: वाले,
1: वाह
2: वाह
1: वाह
2: वाह
1: वाह
2: वाह,
1: वाह
2: ताकि
1: वाह वाह वाह,
2: तखलीक के पर्दे से बशारत हो
1: वाह
2: आया,
1: वाह वाह वाह,
2: रक्स मिट्टी का दिखा चाक घुमाने वाले,
1: वाह
2: वो
1: वाह
2: जो
1: वाह,
2: आते नहीं जल्दी तो शिकायत कैसी,
1: हाँ, वो जो
2: वो जो
1: आते
2: आते
1: नहीं,
2: नहीं जल्दी तो शिकायत कैसी, देर से आते हैं कुछ देर से जाने
1: वाह
2: वाले।
1: वाह
2: क्या
1: वाह
2: कहने, वाह
1: वाह
2: वाह,
1: वाह वाह,
2: ये कहानी भी कहीं तूल पकड़ लेती मगर, फिर
1: ये
2: सुने साहब,
1: कहानी भी
2: ये कहानी भी कहीं
1: कहीं
2: तूल
1: तूल
2: पकड़
1: पकड़
2: लेती
1: लेती
2: मगर,
1: मगर,
2: खुद ही बेजार थे किरदार निभाने
1: वाह
2: वाले।
1: वाह
2: क्या
1: वाह वाह
2: कहने,
1: वाह,
2: वाह वाह,
0: बहुत
2: ये
0: अच्छा, तूल
2: कहानी भी कहीं तूल
1: पकड़
2: पकड़ लेती
0: लेती मगर,
2: मगर, खुद ही बेजार थे
1: बहुत
2: किरदार
1: अच्छा,
2: निभाने वाले,
1: वाह वाह वाह,
2: उसकी जानिब तो किसी का भी नहीं ध्यान गया,
0: क्या कहने,
2: उसकी जानिब तो किसी
1: किसी
2: का
1: का
2: भी
1: भी
2: नहीं
1: नहीं
2: ध्यान
1: ध्यान गया,
2: गया, शेर कहते ही रहे शेर सुनाने
1: वाह
2: वाले,
1: वाह
2: वाह
1: वाह
2: वाह,
1: वाह, क्या
2: उसकी जानिब तो किसी का भी नहीं ध्यान गया,
1: कहने
2: शेर
1: हैं,
2: कहते ही रहे शेर सुनाने वाले। और मक्ता है कि शहर की गोद में बेजान पड़े थे अहमर, शहर
1: शहर की
2: की गोद
1: गोद
2: में
1: में बेजान
2: बेजान
1: पड़े
2: पड़े थे
1: थे
2: अहमर,
1: अहमर,
2: अपनी आगोश में एक उम्र बिताने वाले।
1: वाह
0: वाह
1: वाह
0: वाह
1: वाह,
2: शहर की गोद में बेजान पड़े थे अहमर, अपनी आगोश में एक उम्र बिताने वाले।
1: वाह वाह वाह,
2: अभी आप खाकसार अहमद नदीम का कलाम सुन रहे थे। अब आइए अगले शायर की तरफ मैं चलता हूँ, और हमारी फहरिस्त में जो अगला नाम है वो तस्लीम दानिश साहब का है। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि अपने कलाम से हमें
0: बहुत
2: नवाजें।
0: शुक्रिया। मौजूद सामईन की खिदमत में तस्लीम दानिश का प्यार भरा आदाब, और ये गज़ल का मतलब पेश खिदमत है। अर्ज करता हूँ कि गरचे अब दूसरे मकान में हूँ,
1: हाँ, गरचे अब दूसरे
0: गरचे अब
1: मकान में
0: दूसरे
1: हूँ,
0: मकान में हूँ, शेर कहता उसी जबान में हूँ।
1: वाह
0: वाह वाह,
1: वाह
0: क्या बात, शेर कहता उसी जबान में
1: वाह वाह
0: हूँ।
1: वाह
0: और ये
1: वाह,
0: शेर देखें कि जिसकी गीबत से जोर पैदा हो, जिसकी गीबत से जोर पैदा हो, बात कहता उसी के कान में हूँ।
1: क्या
2: क्या
1: कहने,
2: बात,
1: वाह
2: क्या बात,
0: जिसकी
1: वाह,
0: गीबत से जोर
1: बहुत
0: पैदा
1: अच्छा,
0: हो,
1: वाह वाह वाह,
0: बात कहता उसी के कान में हूँ।
1: बहुत
0: ये शेर
1: उम्दा,
0: देखें कि हाथ से कब के जान ले लेते, हाथ से कप के जान ले लेते।

0: खैर गुजरी तेरी अमान में हूँ।
1: वाह
2: क्या बात,
1: वाह
0: हाथ से कब के जान ले लेते। खैर गुजरी तेरी अमान में हूँ, और था कभी दोस्तों अजीजों में, था कभी दोस्तों अजीजों में, इन दिनों दूसरी कमान में हूँ।
1: वाह
2: क्या बात,
1: वाह वाह वाह।
0: था कभी दोस्तों अजीजों में,
3: इन दिनों
0: दूसरी कमान में हूँ।
1: वाह वाह वाह।
0: और दूबदू शेर देखे बतौर खास के, दूबदू इस तरह हुई दुनिया, दूबदू इस तरह हुई दुनिया, होश आया कि किस गुमान में हूँ।
1: वाह
2: वाह
1: वाह।
0: होश आया कि किस गुमान में हूँ,
1: क्या कहने। वाह वाह।
0: ये शेर देखें कि फोन पर पूछने लगे अहबाब,
1: फोन पर
0: पूछने लगे अहबाब, धूप में हूँ कि साहिबान में हूँ।
1: वाह वाह वाह।
0: धूप में हूँ कि साहिबान में हूँ,
2: क्या कहने।
0: और ये एक और गजल का मतलब है, ये खिदमत है आप लोगों की खिदमत
1: जी, जी आता
0: के अर्ज करता हूँ कि अगरचे ऐसा नहीं तुम पे एतबार ना हो,
1: अगरचे ऐसा नहीं,
0: अगरचे ऐसा नहीं तुम पे एतबार ना हो, मैं चाहता हूँ मुझे इश्क बार बार ना हो।
1: वाह वाह वाह।
0: मैं चाहता हूँ मुझे इश्क बार बार ना हो। ये शेर देखें कि तलब अगरचे नहीं थी मुझे सितारों की, तलब अगरचे नहीं थी मुझे सितारों की, ये जिद नहीं थी कि मौसम भी खुशगवार ना हो।
1: वाह वाह वाह।
0: ये जिद नहीं थी कि मौसम भी खुशगवार ना हो।
1: वाह वाह वाह।
0: ये देखें बतौर खास के, जो चाहता हूँ वो होता हुआ नहीं लगता, जो चाहता हूँ वो होता हुआ नहीं लगता, जो हो रहा है कम से कम वो बार बार ना हो।
1: वाह वाह वाह।
0: जो हो रहा है कम से कम वो बार बार ना हो। ये कैसे ख्वाब दिखाता है आसमां वाले, ये कैसे ख्वाब दिखाता है आसमां वाले, कहूँ किसी से तो जालिम को एतबार ना हो।
1: वाह वाह वाह।
0: ये कैसे ख्वाब दिखाता है आसमां वाले। और ये शेर देखें कि ये गजल का मकता है कि ये बात सच है अकेला सा हो गया दानिश,
1: ये बात सच है
0: ये बात सच है
1: दानिश,
0: अकेला सा हो गया दानिश, ये सच नहीं है किसी का भी इंतजार ना हो।
1: वाह।
0: ये बात सच है अकेला सा हो गया दानिश,
1: वाह वाह,
0: ये सच नहीं है किसी का भी इंतजार ना हो।
1: वाह।
0: अगरचे ऐसा नहीं तुम पे एतबार ना हो, मैं चाहता हूँ मुझे इश्क बार बार ना हो।
1: वाह वाह वाह।
0: खिदमत में एक और गजल का मतलब पीछे खिदमत है कि मेला तो नहीं शहर में बाजार लगा है,
1: मेला तो नहीं शहर में बाजार लगा है,
0: तरतीब से हर दर्जे का फनकार लगा है।
2: क्या बात,
0: मेला तो नहीं शहर में बाजार लगा है,
1: क्या कहने,
0: से तरतीब से हर दर्जे का फनकार लगा है। और ये शेर देखें कि अब होती है तामीर मेरे खाने दिल की, अब होती है तामीर मेरे खाने दिल की, दीवार की तकमील में मैमार लगा है।
1: वाह वाह वाह।
0: दीवार की तकमील में मैमार लगा है। और ये शेर और देखें बतौर खास के,
1: क्या कहने,
0: जिस राह से गुजरा हूँ यही देख सका हूँ,
1: जिस राह से गुजरा,
0: जिस राह से गुजरा हूँ यही देख सका हूँ, नादा को गिराने में समझदार लगा है।
1: वाह।
0: नादा को गिराने में समझदार लगा है। और ये शेर और देखें कि बहते हुए इस खून पे क्या आहो बुका हो, बहते हुए इस खून पे क्या आहो बुका हो, इस शहर में पत्थर तो कई बार लगा है।
1: वाह वाह वाह।
0: बहते हुए इस खून पे क्या आहो बुका हो,
1: वाह वाह वाह,
0: इस शहर में पत्थर तो कई बार लगा है।
1: वाह वाह वाह।
0: और ये तय है कि बाजार में हर शय नहीं मिलती, ये तय है कि बाजार में हर शय नहीं मिलती, कोशिश में बाहर हाल खरीदार लगा है।
1: वाह वाह वाह।
0: कोशिश में बाहर हाल खरीदार लगा है। और माँ ये मकता पेश खिदमत है कि मालूम है, मालूम है गठरी में तेरी कुछ नहीं दानिश, ये चोर तेरी गठरी में बेकार लगा है। ये चोर तेरी गठरी में बेकार लगा है। और ये एक और गजल का मतलब पेश खिदमत है कि वो लोग और हैं जीने के ढब बदलते हैं, वो लोग और हैं जीने के ढब बदलते हैं, फकत लिबास तो हर रोज सब बदलते हैं।
2: वाह वाह वाह।
0: फकत लिबास तो हर रोज सब बदलते हैं,
2: क्या कहें।
0: और निगाह सबकी नहीं आसमां के।

0: राह सकती नहीं आसमां के रंगों पर, किसी किसी के लिए रोजो शब बदलते हैं। निगाह सबकी नहीं आसमां के रंगों पर, किसी किसी के लिए रोजो शब बदलते हैं। और ये शेर देखें कि निगाह फेर भी लीजिए तो किस तरफ कीजिए, निगाह फेर भी लीजिए
1: तो किस तरफ,
0: तो किस तरफ कीजिए, जब आंख बंद हो मंजर भी तब बदलते हैं।
1: वाह,
0: आंख बंद हो मंजर भी तब बदलते हैं। और ये देखें कि जो जानते हैं,
1: जो जानते हैं
0: कि दीवानगी नहीं जाती,
1: क्या कहने,
0: जो जानते हैं कि दीवानगी नहीं जाती, समा बदलने से पहले मतलब बदलते हैं। जो जानते हैं कि दीवानगी नहीं जाती, समा बदलने से पहले मतलब बदलते हैं। और ये गजल का मकता है कि अभी अभी में ही दुनिया बदल गई दानिश, अभी अभी में ही दुनिया बदल गई दानिश, ये इंतजार है देखें वो कब बदलते हैं।
1: वाह वाह वाह,
0: ये इंतजार है देखें वो कब बदलते हैं।
1: वाह वाह, बहुत खूब।
2: सामईन, ये तस्लीम दानिश साहब थे जिनके आप खूबसूरत कलाम से लुफानंदोज हो रहे थे। हमारी फहरिस्त में एक आखिरी नाम जो बचा है वो मोहतरम सैफुद्दीन सैफ साहब का है। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो अपने कलाम से हमें नवाजें।
3: सामईन आदाब, और मैं गज़ल का मतलब पढ़ता हूँ। समाज फरमाएं कि रेशा रेशा
1: रेशा रेशा
3: पारा पारा खूब है,
2: क्या रेशा रेशा पारा पारा खूब है,
3: रेशा रेशा पारा पारा खूब है, राख के अंदर शरारा खूब है।
1: वाह वाह,
3: रेशा रेशा पारा पारा खूब है, राख के अंदर शरारा खूब है, जागती आंखों से जो दिखता नहीं, जागती आंखों से जो दिखता नहीं, ख्वाब में उसका नजारा खूब है।
1: वाह
0: वाह
1: वाह,
3: जागती आंखों से जो दिखता नहीं,
0: ख्वाब में उसका नजारा,
3: ख्वाब में उसका नजारा खूब है। और हिजर की दौलत से माला माल हूँ,
0: हिजर की दौलत से माला,
3: हिजर की दौलत से माला माल हूँ, आशिकी में ये खसारा खूब है,
0: क्या कहने। वाह
1: वाह,
3: शेर बतौर खास के दोस्तों की दोस्ती तो दरगुजर,
1: दोस्तों की
3: दोस्ती तो दरगुजर, दुश्मनी का एक सहारा खूब है,
0: क्या कहने। वाह,
3: दोस्तों की दोस्ती तो दरगुजर, दुश्मनी का एक सहारा खूब है। और ये शेर भी समाज फरमाए कि जुल्म सहकर मैं रहा जालिम मगर, जुल्म सहकर मैं रहा जालिम मगर, जुल्म करके वो बेचारा खूब, जुल्म सहकर मैं रहा जालिम मगर, जुल्म करके वो बेचारा खूब है। और ये आखिरी शेर कि लश्करे बातिल से लड़ने के लिए, लश्करे बातिल से लड़ने के लिए दो खजूरों पर गुजारा, लश्करे बातिल से लड़ने के लिए दो खजूरों पर गुजारा खूब है। और ये दूसरी गजल का मतलब पढ़ता हूँ। समाज फरमाएं कि हमारे पास कैसा फलसफा है,
1: हमारे पास
3: कैसा, हमारे पास कैसा फलसफा है, बदन कायम मगर दिल मर चुका है।
0: वाह वाह वाह,
3: हमारे पास
1: कैसा
3: फलसफा है, बदन कायम मगर दिल मर चुका है। और शेर खास तौर से समाज फरमाए कि मुझे खतरे के बारे में बताओ, मुझे खतरे के बारे में बताओ, समंदर तो मेरा समझा हुआ।
1: बहुत
3: शुक्रिया। मुझे खतरे के बारे में बताओ,
1: समंदर तो मेरा समझा हुआ,
3: समंदर तो मेरा समझा हुआ है। और अभी ना धूल आंखों से हटाना,
0: क्या कहने,
3: अभी ना धूल आंखों से हटाना, मेरी आंखों में कोई डूबता है।
0: और
3: ये शेर समाज फरमाए कि मुझे हासिल हुई है रेगजारी,
1: मुझे हासिल हुई है,
3: मुझे हासिल हुई है रेगजारी, मगर सहरा से कोई झांकता है। मुझे हासिल हुई है रेगजारी,
0: मगर सहरा से
3: कोई झांकता है। और ये शेर समाज फरमाए कि तेरे सुनने में शायद कुछ कमी है,
1: तेरे सुनने में शायद कुछ कमी है,
3: तेरे सुनने में शायद कुछ कमी है, मेरी आंखों से कोई बोलता है।
0: वाह वाह वाह,
3: तेरे सुनने में शायद कुछ कमी है,
0: मेरी आंखों से कोई,
3: मेरी आंखों से कोई बोलता है। और ये मक्ते का शेर कि तुझे ऐसे

17 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।

0: 17 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: और अब इस कार्यक्रम का ये अंतिम गीत।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है और अब से कुछ ही देर बाद यानी 7:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर बल दिया। सरकार ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख उद्योगपतियों के साथ महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने कहा, उनका देश कूटनीति के लिए प्रतिबद्ध लेकिन दबाव में आत्मसमर्पण नहीं करेगा। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में

0: कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। नदियों का जलस्तर बढ़ने से ओडिशा में एक बार फिर बाढ़ का खतरा। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में कल अश्मिता चालिहा का सामना चीन की क्यू हान से होगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया है। श्री मोदी ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी निभाती है।
1: आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्र उभर रहे हैं जो युवाओं को नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। श्री मोदी ने सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे क्षेत्रों का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कार्य कर रहा है।
1: सेमीकंडक्टर सेक्टर का उदाहरण भी हमारे सामने है। जब हमने इस दिशा में कदम बढ़ाया तो कुछ लोगों ने सवाल उठाए, कहा गया भारत ये नहीं कर पाएगा, लेकिन आज पहली सेमीकंडक्टर यूनिट्स में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और मैं साफ मानता हूं चिप से लेकर के शिप तक सब कुछ यहीं पर आप ही के हाथों से बनेगा। और कहीं कोई युवा पूरे आत्मविश्वास से कह रहा है फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन तो मेक अ चिप इन इंडिया।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भरता की ये पहल विकसित भारत के निर्माण के लिए एक मजबूत आधार का काम करेगी।
1: आज भारत इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस, इंडस्ट्रियल सेल्फ रिलायंस, ऐसे हर सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने के लिए काम कर रहा है। यही विकसित भारत की मजबूत नींव का सबूत है। इस मजबूत नींव पर आपको एक भव्य सुंदर विकसित भारत का निर्माण करना है।
0: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने IIT दिल्ली में उच्च दक्षता के कंप्यूटिंग केंद्र परम प्रज्ञा का उद्घाटन भी किया। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर बल दिया है। मुंबई में आज सहकार नव क्रांति कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि डिजिटल लेनदेन में धोखाधड़ी बढ़ रही है और बैंकिंग सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मजबूत फॉरेंसिक सहायता की आवश्यकता है। श्री शाह ने बताया कि राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम तथा राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
2: आज हमारे अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन और NFSU फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के साथ जो समझौता हुआ इससे हमारी छोटी सी छोटी बैंक की हर ब्रांच में भी ये सारी सुविधाएं बहुत कम लागत में देने का काम अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन करेगा। इससे साइबर सुरक्षा, डिजिटल फॉरेंसिक कर्मचारियों का इस दोनों क्षेत्र में प्रशिक्षण और अनुसंधान, ये सभी व्यवस्था एक साथ बैंक इन बॉक्स से हो जाएगी।
0: केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने एक सुरक्षा संचालन केंद्र का भी शुभारंभ किया। ये शहरी सहकारी बैंकों को 24 घंटे साइबर निगरानी और सुरक्षा सहायता प्रदान करेगा। श्री शाह ने देश के सभी सहकारी बैंकों से राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम में शामिल होने का भी आग्रह किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख उद्योगपतियों के साथ महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने वाली कैश फ्री पेमेंट्स, डार्विन डायनेमिक्स, वर्ल्ट इंडिया, कोर्स 24 और काउंसिल फॉर स्टार्टअप के साथ भी समझौता किया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। मंत्रालय ने बताया कि हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का उद्देश्य स्टार्टअप्स के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं के लिए UPI निःशुल्क रहेगा और सभी व्यक्तिगत लेनदेन निःशुल्क बने रहेंगे। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि यूपीआई के माध्यम से भुगतान करते समय उपभोक्ता

0: को किसी भी प्रकार का लेन देन शुल्क नहीं देना होगा, जबकि अधिकांश व्यापारी लेन देन भी निःशुल्क रहेंगे। मंत्रालय ने कहा कि यदि व्यापारी छूट दर शुल्क लागू किया जाता है तो ये केवल एक निश्चित सीमा से अधिक के सीमित व्यापारी लेन देन पर नाममात्र दर से लागू होगा। मंत्रालय ने कहा है कि भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम में संशोधन एक सक्षम प्रावधान है जिसका उद्देश्य यूपीआई की दीर्घकालिक स्थिरता, तकनीकी उन्नति और उभरते जोखिमों के प्रति लचीलापन सुनिश्चित करना है। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। देश ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि पिछले 12 वर्षों में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 400% की वृद्धि हुई है। श्री जोशी ने कहा कि यह आंकड़ा भारत की स्वच्छ ऊर्जा उपयोग की दिशा में वैश्विक प्रगति को दर्शाता है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने देश में महिला आरक्षण विधेयक को तत्काल लागू करने की शिरोमणि अकाली दल की मांग का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि सभी को मिलकर महिलाओं को सशक्त बनाना होगा और निष्पक्ष तथा समान परिसीमन सुनिश्चित करना होगा जिससे सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व मिले। शिरोमणि अकाली दल ने चंडीगढ़ में अपने वरिष्ठ नेताओं की बैठक में ये मांग रखी थी। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी और राज्य में अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं का मामला अब सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस बीच राज्य सरकार और विभिन्न छात्र संगठनों के बीच बातचीत जारी है।
1: 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर परीक्षा रद्द करने और नए सिरे से परीक्षा कराने की मांग की गई है। जयपाल सिंह हुड्डा स्टेडियम में पिछले कई दिनों से आंदोलनरत छात्र अपनी मांगों पर कायम है। आंदोलनकारियों का कहना है कि केवल मौखिक आश्वासन से संतुष्ट नहीं होंगे और जब तक ठोस परिणाम सामने नहीं आता आंदोलन जारी रहेगा। इस बीच राज्य सरकार ने विभिन्न छात्र संगठनों से बातचीत का सिलसिला तेज कर दिया है। कई संगठनों के प्रतिनिधियों से वार्ता के बाद सरकार ने उनकी मांगों और सुझावों पर आगे निर्णय लेने की बात कही है। प्रशासन ने आंदोलन के मद्देनजर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: रेलवे ने मध्य प्रदेश में रेल कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए रोजाना चलने वाली इटारसी मदन महल पैसेंजर रेलगाड़ी को मंजूरी दी है। ये रेलगाड़ी 5 घंटे से अधिक समय में 242 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। ये बगरा तवा, सुहागपुर और दूसरे स्टेशनों पर रुकेगी। ये आकाशवाणी है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में भोपाल में 5 अगस्त से चल रही 11वीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक में आज भोपाल घोषणा पत्र स्वीकार किया गया। इसका उद्देश्य ब्रिक्स सदस्य और सहयोगी देशों के बीच सांस्कृतिक सहयोग मजबूत करना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में 10 ब्रिक्स सदस्य और 4 सहयोगी देशों सहित कुल 14 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए।
2: बैठक की शुरुआत केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के संबोधन से हुई। इसके बाद ब्रिक्स सदस्य देशों के मंत्रियों और प्रतिनिधियों ने अपने विचार रखे। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बैठक और भोपाल डिक्लेरेशन के प्रमुख बिंदुओं की जानकारी दी। इसके साथ ही भोपाल में आयोजित ब्रिक्स कल्चरल ट्रैक के प्रमुख कार्यक्रम भी संपन्न हो गए हैं। अब ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधि सांची के लिए रवाना हो गए हैं, जहां वे विश्व धरोहर और बौद्ध सांस्कृतिक विरासत से परिचित होंगे। कल यानी 9 अगस्त को प्रतिनिधिमंडल भीम बैठका का दौरा करेगा, जहां वे भारत की प्राग ऐतिहासिक और प्राचीन सांस्कृतिक विरासत को करीब से देखेगा। आकाशवाणी समाचार के लिए भोपाल से विपिन मिश्रा।
0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में आयोजित इंडिया मेडिकल डिवाइस कॉन्फ्रेंस 2026 में सीईओ गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सम्मेलन में नवाचार, नियामक उत्कृष्टता, घरेलू विनिर्माण, मूल्य श्रृंखला, बाजार पहुंच और निर्यात को मजबूत करने के दृष्टिकोण पर चर्चा हुई, ताकि भारत को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा उपकरणों के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित किया जा सके। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए कहा है कि ईरान कूटनीति के लिए प्रतिबद्ध है लेकिन आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य नहीं होगा। एक रिपोर्ट।
3: राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने युद्ध समाप्त करने के उद्देश्य से अमेरिका के साथ वार्ता करने और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के अपनी सरकार के निर्णय का बचाव किया। उन्होंने कहा कि जब तक अमेरिका समझौते के अंतर्गत अपने दायित्वों को

0: पूरा करता है, ईरान भी अपनी प्रतिबद्धताओं का सम्मान करेगा। लेकिन अगर अमेरिका अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में विफल रहता है तो ईरान इसे जारी रखने के लिए बाध्य नहीं होगा। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विश्वास व्यक्त किया था कि ईरान के साथ संघर्ष जल्द ही समाप्त हो सकता है। श्री ट्रंप ने दोहराया कि अमेरिका ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बातचीत में राष्ट्रपति ट्रंप ने होर्मुज जलडमरू मध्य से संबंधित चल रही वार्ताओं पर भी सकारात्मक परिणाम की आशा व्यक्त की है। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: इस बीच संयुक्त अरब अमीरात ने सरकारी कंपनी अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी से जुड़ी एक जहाज पर होर्मुज जलडमरू मध्य के पास हुए ईरान के हमले की निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह घटना समुद्री आवाजाही की आज़ादी की गारंटी देने वाले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का उल्लंघन है। अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी तेज बारिश की संभावना है। जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, केरल, माहे, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कल बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान आने की आशंका है। आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तेज बारिश हुई। राजधानी में कल सुबह भी बारिश की संभावना है। उधर ओडिशा में बाढ़ का खतरा एक बार फिर मंडरा रहा है। बैतरनी और सालंदी नदियों का जलस्तर बढ़ने से भद्रक और अन्य निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका व्यक्त की गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कई जिलों में अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं।
2: उड़ीसा में एक बार फिर भारी बारिश हो रही है। आईएमडी ने सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़ और संबलपुर के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की है, जबकि कई अन्य जिलों के लिए येलो वार्निंग लागू है। भद्रक में सालंदी और बैतरणी नदियों का जल स्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा फिर से पैदा हो गया है। भद्रक और तिहिड़ी ब्लॉक के कई निचले इलाकों और गाँव में पानी भरा हुआ है। कटक में सापुआ और कंटिया नदियों के उफान पर होने से पुराने कटक संबलपुर रोड के कुछ हिस्सों पर आवाजाही प्रभावित हुए है और खेतों में पानी भर गया है। भारी बारिश ने राज्य के कई हिस्सों में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: और अब कुछ खेल खबरें। अश्मिता चालिहा कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में पहुंच गई हैं। अश्मिता ने आज सेमीफाइनल में भारत की ही रक्षिता रामराज को हराया। अश्मिता का मुकाबला कल फाइनल में चीन की क्यू हान से होगा। उधर उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारतीय भारोत्तोलकों ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में एक स्वर्ण और एक रजत पदक जीता है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर बल दिया। सरकार ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख उद्योगपतियों के साथ महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजशकियन ने कहा उनका देश कूटनीति के लिए प्रतिबद्ध है लेकिन दबाव में आत्मसमर्पण नहीं करेगा। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। नदियों का जलस्तर बढ़ने से ओडिशा में एक बार फिर बाढ़ का खतरा। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में कल अश्मिता चालिहा का सामना चीन की क्यू हान से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
0: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वर्षा विलियम्स विद न्यूज एट 9। हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi emphasizes importance of innovation, research and emerging technologies in shaping India's growth trajectory. Union Minister Amit Shah stresses need for stronger cyber security and digital safeguards for urban cooperative banks. Government signs strategic MOUs with key industry leaders to strengthen support to startups. Iranian President says his country is committed to diplomacy but will not surrender under pressure. Orange alert issued for heavy to very heavy rainfall over Uttarakhand and Chhattisgarh tomorrow. Flood threat again looms over Odisha with rising river levels. And in badminton, Ashmita Chaliha to face China's Che Han in women's singles final, a Korea Masters tournament. Prime Minister Narendra Modi has emphasized the importance of innovation.

0: स्मिता चलिहा का मुकाबला चीन की केहान से होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भारत के तरक्की के सफ़र को आगे बढ़ाने में इख्तिरा, तहकीक और उभरती हुई टेक्नोलॉजियों की अहमियत पर जोर दिया है। आज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT दिल्ली के 57वें तकसीम असनाद के जलसे से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने तलबा पर जोर दिया कि वो अपने फ़ैसलों में मुल्क के मफाद को मुकद्दम रखें और अपने आप से सवाल करें कि किस तरह उनके काम से मुल्क को फ़ायदा हो सकता है और उसकी ज़रूरियात पर तवज्जो दी जा सकती है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क में नए शोबे उभर रहे हैं और नौजवानों के लिए नए मौक़े पैदा हो रहे हैं। जनाब मोदी ने सेमीकंडक्टर, खला और ड्रोन जैसे शोबों का हवाला दिया और कहा कि भारत सभी शोबों में खुद कफील बनने की सिमत काम कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि खुद किफालत की सिमत यह मुहिम एक विकसित भारत की तामीर के लिए एक मजबूत बुनियाद फराहम करेगी।
1: आज भारत इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस, इंडस्ट्रियल सेल्फ रिलायंस, ऐसे हर सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने के लिए काम कर रहा है। यही विकसित भारत की मजबूत नींव का सबूत है। इस मजबूत नींव पर आपको एक भव्य, सुंदर, विकसित भारत का निर्माण करना है।
0: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सेमीकंडक्टर शोबे में भारत की कोशिशों का तस्करा करते हुए कहा कि भारत के पहले सेमीकंडक्टर यूनिट में प्रोडक्शन का काम शुरू हो गया है।
1: सेमीकंडक्टर सेक्टर का उदाहरण भी हमारे सामने है। जब हमने इस दिशा में कदम बढ़ाया तो कुछ लोगों ने सवाल उठाए, कहा गया भारत ये नहीं कर पाएगा, लेकिन आज पहली सेमीकंडक्टर यूनिट्स में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। और मैं साफ मानता हूं, चिप से लेकर के शिप तक सब कुछ यहीं पर आप ही के हाथों से बनेगा। और कहीं कोई युवा पूरे आत्मविश्वास से कह रहा है, फर्स्ट इन माई ब्लड लाइन मेक अ चिप इन इंडिया।
0: उधर तालीम के मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी IIT दिल्ली के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चेयरपर्सन हरीश सालवे और IIT दिल्ली के डायरेक्टर प्रोफेसर रंगन बनर्जी भी इस तकरीब में मौजूद थे। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने IIT दिल्ली में आला कारकर्दगी वाले कंप्यूटिंग मरकज परम प्रज्ञा का इफ्तिताह भी किया। उम्र दाखिला और इमदाद बाहमी महकमे के मरकजी वजीर अमित शाह ने शहरी इलाकों के इमदाद बाहमी बैंकों के लिए और ज्यादा मजबूत साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल तहफ़ुज़ात की ज़रूरत पर जोर दिया है। वह आज मुंबई में सहकार नव क्रांति प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे। जनाब अमित शाह ने कहा कि डिजिटल लेन देन के फ्रॉड के मामलात में इजाफा हो रहा है। उन्होंने बैंककारी सेफ्टी को यकीनी बनाने की खातिर और ज्यादा मजबूत फॉरेंसिक मदद पर जोर दिया। उन्होंने साइबर जराइम और माली उमूर से मुतअल्लिक जराइम से निमटने के लिए नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के साथ इश्तराक की अहमियत को उजागर किया। वज़ीर दाखिला ने एक सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर का आगाज भी किया जो शहरी इलाकों के इमदाद बाहमी बैंकों के लिए दिन रात साइबर निगरानी और सिक्योरिटी फराहम करेगा।
2: आज हमारे अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन और NFSU फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के साथ जो समझौता हुआ, इससे हमारी छोटी सी छोटी बैंक की हर ब्रांच में भी ये सारी सुविधाएं बहुत कम लागत में देने का काम अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन करेगा। इससे साइबर सुरक्षा, डिजिटल फॉरेंसिक कर्मचारियों का इस दोनों क्षेत्र में प्रशिक्षण और अनुसंधान, ये सभी व्यवस्था एक साथ बैंक इन बॉक्स से हो जाएगी।
0: हुकूमत ने आज अहम सनअतकारों और इको निज़ाम तैयार करने वालों के साथ सिलसिलेवार कलीदी मफाहमतनामों का ऐलान किया, जिनमें कैश फ्री पेमेंट्स, डार्विन डायनामिक्स, वाल्टर इंडिया, CAS 24 और स्टार्टअप्स इंडिया काउंसिल शामिल हैं। इन मफाहमतनामों पर तिजारत और सनत के सनती और दाखिली तजारत के फरोग के महकमे ने दस्तखत किए हैं। कॉमर्स और सनत की वजारत ने मुतला किया है कि कैश फ्री पेमेंट्स के साथ दस्तखत किए गए मफाहमतनामे का मकसद स्टार्टअप्स के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम करना है। डार्विन डायनामिक्स के साथ दस्तखत किया गया मफाहमतनामा इंटरप्रेन्योरशिप की तरक्की और स्टार्टअप्स इको निज़ाम को मजबूत करेगा। वजारत ने मजीद

0: कारकुनों से 10 अगस्त को मुजवजा असेंबली घेराव में बड़ी तादाद में शिरकत करने की अपील की, ताहम इंतजामिया ने एहतजाज के मकाम के आसपास सिक्योरिटी सख्त कर दी है। रांची से महवेश रहमान की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
1: बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों के मरकजी वजीर सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि भारत के बहरी तरक्की के सफर में मल्लाहों का अहम रोल रहा है। उन्होंने इस बात को यकीनी बनाने के सरकार के अहद को दोहराया कि हर मल्लाह महफूज रहे, उसका ख्याल रखा जाए और मदद की जाए। जनाब सोनोवाल ने आज मुंबई में मल्लाहों की सिक्योरिटी तहफ़ और बहबूद के मौजू पर एक कौमी मुबाहसे में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि भारत मल्लाहों के ताल्लुक से दुनिया के एक सरकर्दा मुल्क के तौर पर उभरा है। ईरान के सदर मसूद पजिशकियान ने मुल्क के कौमी मफादात का तहफ़ करने के लिए सफारतकारी के तई अपने मुल्क के अहद का इदा किया है और जोर देकर कहा है कि ईरान को सरेंडर करने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। जनाब पजिशकियान ने अपनी सरकारी वेबसाइट पर एक इंटरव्यू में अमरीका के साथ बातचीत और एक मुफाहमतनामे पर दस्तखत करने के सरकार के फैसले को सही ठहराया है, जिसका मकसद जंग खत्म करना है। उन्होंने कहा कि जब तक अमरीका मस्कूरा समझौते के तहत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करता है, ईरान भी अपने वादों पर अमल करता रहेगा। ईरान के सदर ने कहा कि अगर अमरीका अपने अहद की तकमील में नाकाम रहता है तो इस अमल को जारी रखने के लिए ईरान पर कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। भारतीय मौसमियाती महकमे IMD ने कल उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में शदीद से बहुत शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश और शुमाल मशरक के हिस्सों में भी शदीद बारिश का इम्कान है। मौसमियात के महकमे ने कल जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, केरलम, माहे, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार जजायर में भी गरज चमक के साथ छींटे पड़ने और तेज हवाएं चलने की पेशगोई की है। आज दिल्ली के हिस्सों में शदीद बारिश हुई। IMD ने कल सुबह कौमी राजधानी के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश के साथ आमतौर पर मतला, अब्र, आलूद रहने की पेशगोई की है। आसान में कल कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के खवातीन सिंगल्स के फाइनल में भारत की अश्मिता चलिहा का मुकाबला चीन की क्विहान से होगा। अश्मिता सेमीफाइनल में अपनी हमवतन रक्षिता रामराज को 21-13, 16-21 और 21-13 से हराकर फाइनल में पहुंची हैं, जबकि क्विहान ने दूसरे सेमीफाइनल में जनूबी कोरिया की जिकिम को शिकस्त दी थी। आखिर में खास खबरें एक मरतबा फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भारत के तरक्की के सफर को आगे बढ़ाने में इख्तिरा, तहकीक और उभरती हुई टेक्नोलॉजियों की अहमियत पर जोर दिया है। मरकजी वजीर अमित शाह ने शहरी इलाकों में इमदाद बाहमी बैंकों के लिए और ज्यादा मजबूत साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल तहफुजात की जरूरत उजागर की है। सरकार ने स्टार्टअप इदारों को मजीद तकवीत पहुंचाने की खातिर बड़े सनअती इदारों के साथ कलीदी मफाहमतनामों पर दस्तखत किए हैं। ईरान के सदर ने कहा है कि उनका मुल्क सिफारतकारी के तई अहदबंद है, लेकिन वो दबाव में आकर नहीं झुकेगा। उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में कल शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश के इम्कान के मद्देनजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उड़ीसा में दरियाओं में पानी की सतह बढ़ने के तनाजुर में फिर से सैलाब का खतरा पैदा हो गया है। और बैडमिंटन में आसान में कोरिया मास्टर्स टूर्नामेंट के खवातीन सिंगल्स के फाइनल में अश्मिता चलिहा का मुकाबला चीन की क्विहान से होगा। इसी के साथ खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।

संस्कृति केवल हमारी स्मृतियों में सुरक्षित अतीत का नाम नहीं, वो उन विचारों, मूल्यों, कलाओं और अनुभवों की एक निरंतर यात्रा है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते हुए हमारे वर्तमान को अर्थ देती है और भविष्य की दिशा तय करती है। भारत की सांस्कृतिक चेतना और समृद्ध ज्ञान परंपरा में स्वतंत्रता का विचार भी कुछ ऐसा ही है। केवल राजनीतिक मुक्ति नहीं, बल्कि विचारों की स्वतंत्रता, ज्ञान की स्वतंत्रता, अपनी पहचान और अपनी परंपराओं को समझने की स्वतंत्रता। इसी विषय पर आज की

आधुनिक युग में जब हम स्वतंत्रता की बात करते हैं, तो हमारा ध्यान राजनीतिक अधिकारों, अभिव्यक्ति की आजादी, नागरिक स्वतंत्रताओं और व्यक्तिगत स्वायत्तता की ओर ही अधिक जाता है। लेकिन हमें यह समझना होगा कि भारतीय चिंतन में स्वतंत्रता केवल अधिकारों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानव अस्तित्व के चरम लक्ष्य और उसके लोक परलोक के कल्याण से भी जुड़ी हुई है। स्वतंत्रता शब्द दो पदों से मिलकर बना है, स्व और तंत्र, जिसका अर्थ है अपने तंत्र या अपने नियम के अधीन होना। यहाँ स्व का अर्थ व्यक्ति की वह अंतर्निहित चेतना है जो समूचे ब्रह्मांड से जुड़ी हुई है, जिसका लक्ष्य है वासनाओं, विकारों, अज्ञान और इंद्रियों की अधीनता से मुक्ति। इस स्वतंत्रता की सिद्धि तब होती है जब मनुष्य अपने विवेक और धर्म के अनुशासन में रहकर आचरण करता है। इसीलिए भारतीय चिंतन धारा में स्वतंत्रता का लक्ष्य मोक्ष या मुक्ति है, जिसे सभी आस्तिक दर्शनों में जीवन का अंतिम लक्ष्य स्वीकारा गया है। स्वतंत्रता का यह बोध भारतीय ज्ञान परंपरा की पहचान है। भारतीय ज्ञान परंपरा में जहाँ वेदों को परम प्रमाण मानने वाली आस्तिक परंपराएं जैसे न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत दर्शन है, तो वहीं वेदों की सत्ता को खारिज करने वाली नास्तिक परंपराएं जैसे जैन, बौद्ध और चार्वाक दर्शन भी समानांतर रूप से हैं। विचार और अभिव्यक्ति की इसी स्वतंत्रता का एक उत्कृष्ट उदाहरण हमें उपनिषदों के संवादों में भी मिलता है, जहाँ गुरु और शिष्य के बीच अत्यंत लोकतांत्रिक और स्वतंत्र माहौल में संवाद मिलता है। इसी प्रकार श्रीमद् भगवद गीता में भी जब अर्जुन विषाद से घिर जाते हैं और किं कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं, तब भगवान कृष्ण उन्हें जीवन, प्रकृति, कर्म और आत्मा का गहनतम ज्ञान देते हैं और पूरे 18 अध्यायों के बृहत उपदेश के बाद अंत में अर्जुन से कहते हैं, मैंने तुम्हें यह परम गोपनीय ज्ञान दिया है, अब तुम इस पर पूरी तरह से विचार करो, इसका विश्लेषण करो और फिर जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। निर्णय लेने की यह स्वायत्तता और स्वतंत्रता ही भारतीय ज्ञान परंपरा का वास्तविक गुण है, जो भारतीय सामाजिक और राजनीतिक चिंतन में भी धर्म के माध्यम से प्रतिध्वनित होता है। यहाँ यह ध्यातव्य है कि यहाँ धर्म का तात्पर्य किसी विशेष कर्मकांड या संप्रदाय से नहीं है, बल्कि उन सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों, कर्तव्यों और नियमों से है जो समाज के विनियमन के लिए आवश्यक हैं। इसी धर्म का प्रभाव है कि भारतवर्ष में कभी भी राजा की सत्ता को निरंकुश और असीमित नहीं माना गया है। ऋग्वेद का संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम का उद्घोष सामाजिक स्वतंत्रता और समता का एक ऐसा ही प्रमाण है जो सभी को अपने साथ चलने, साथ बोलने और सभी के मनों को समान रूप से समझने के भाव पर केंद्रित है। यह इस बात का भी प्रमाण है कि सामूहिक चेतना के विकास के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता और परस्पर संवाद को कितना अनिवार्य माना गया है। इसी प्रकार भारत ही नहीं, विश्व में समादृत रामचरितमानस के उत्तर कांड से एक उदाहरण द्रष्टव्य है, जहाँ राज्याभिषेक के बाद राम प्रजा को संबोधित करते हुए कहते हैं, सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई, जौ अनीति कछु भाखौ भाई, तौ मोहि बर जहु भय बिसराई, जिसका अर्थ है कि वही मेरा सच्चा सेवक है और वही मुझे सबसे अधिक प्रिय है जो मेरी आज्ञा का पालन करता है। हे भाई, यदि मैं कभी कोई अनुचित या अनीति बात कह दूं तो तुम सारा भय भुलाकर मुझे टोक देना। अपने शुद्ध विचार को निर्भीक भाव से रखना ही भारतीय चिंतन धारा का स्वतंत्रता चिंतन या स्वातंत्र्य बोध है, क्योंकि भारतीय मनीषा एकम सत् विप्रा बहुधा वदन्ति की विश्वासी है। आज जब दुनिया में अपने विचार को ही एकमात्र सत्य मानकर दूसरों पर थोपने की हिंसक प्रवृत्ति

0: पड़ रही है, तब भारतीय ज्ञान परंपरा का यह मूल्य हमें सह अस्तित्व, सहिष्णुता और लोकतांत्रिक विमर्श की वास्तविक राह दिखाता है। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो इस स्वातंत्र्य बोध की प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है, क्योंकि आज का व्यक्ति राजनीतिक रूप से स्वतंत्र है, उसे मतदान का अधिकार है। बाजारवादी संस्कृति ने उसे अपनी पसंद की वस्तुएं खरीदने की असीमित आजादी भी दी है। वह समाज, प्रकृति और परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों को भूलता जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप आज पर्यावरण संकट, जलवायु परिवर्तन और सामाजिक बिखराव जैसी परिस्थितियां बनी हुई हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ स्वार्थ सिद्धि प्रमुख है, स्व का बोध या स्वातंत्र्य बोध का विचार यहाँ दूर दूर तक नहीं है। भारतीय ज्ञान परंपरा इस एकांगी स्वतंत्रता के स्थान पर एक पूरक और समग्र स्वतंत्रता मॉडल प्रस्तुत करती है। यहाँ व्यक्ति की स्वतंत्रता समाज और प्रकृति की स्वतंत्रता के साथ जुड़ी हुई है। आधुनिक पर्यावरण चेतना और सतत विकास का मूल मंत्र भी यही कहता है कि हमारी उपभोग की स्वतंत्रता तब तक ही न्याय संगत है जब तक वह दूसरों के अस्तित्व और प्रकृति के संतुलन को खतरे में न डाले। इस प्रकार हम पाते हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा में निहित स्वतंत्रता का मूल्य अत्यंत व्यापक, गहन और शाश्वत है। यह काल और भूगोल की सीमाओं से परे जाकर संपूर्ण मानवता के कल्याण की बात करता है। विश्व को यह समझने की आवश्यकता है कि आज के आधुनिक लोकतांत्रिक समाजों को यदि अधिक मानवीय, संवेदनशील, न्यायपूर्ण और टिकाऊ बनाना है, तो उन्हें स्वतंत्रता की केवल बाहरी व कानूनी अवधारणाओं तक ही सीमित रहने के बजाय भारतीय चिंतन धारा के चेतना और कर्तव्य आधारित स्वतंत्रता मूल्य को आत्मसात करना होगा।
1: भारतीय ज्ञान परंपरा में निहित स्वतंत्रता के मूल्य, इसी विषय पर आज के संपादकीय में अभी आपने सुना दिल्ली विश्वविद्यालय की प्राध्यापक डॉक्टर विभा नाइक को। भारतीय ज्ञान परंपरा की यही विशेषता है कि वो हमें केवल उत्तर नहीं देती, वो प्रश्न करने का साहस भी देती है, और शायद यही किसी भी जीवंत संस्कृति की सबसे बड़ी ताकत है। साहस अज्ञानता के विरुद्ध प्रश्न करने का हो या किसी अन्याय के विरुद्ध। हमारे देश में ऐसी प्रबुद्ध और साहसी आवाजों की कमी कभी नहीं रही।
2: बोलिए सब मिल महाशय मंत्र वंदे मातरम, बोलिए सब मिल महाशय मंत्र वंदे मातरम, तीनों भुवन में गूंज जाए शब्द वंदे मातरम।
1: आज जब हम भारत की आजादी की कहानी याद करते हैं तो हमारे सामने कुछ बड़े नाम, कुछ बड़े आंदोलन और कुछ ऐतिहासिक घटनाएं उभरती हैं। लेकिन आजादी की ये कहानी सिर्फ उन्हीं नामों की नहीं थी, ये उन अनगिनत स्त्री पुरुषों की भी कहानी थी जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के देश के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। ऐसी ही एक आवाज को समर्पित है हमारी अगली प्रस्तुति, हिमालय की बेटी, आजादी की आवाज।
3: चौदह जनवरी 1902, दक्षिण सिक्किम के संगमू गांव में एक बच्ची ने जन्म लिया। लेप्चा समुदाय के एक परिवार में जन्मी हेलेन उनके माता पिता की 7 संतानों में तीसरी थी। बाद में उनका परिवार कर्सियांग आ गया, वो पहाड़ी इलाका जहां चाय के बागान और शिक्षा के नए अवसर उनके जीवन को एक नई दिशा देने वाले थे। लेकिन हेलेन की राह आसान नहीं थी। कम उम्र में ही उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, मगर पढ़ाई छूटने का अर्थ ये नहीं था कि सीखने और आगे बढ़ने का सिलसिला भी रुक गया। सन 1917, पहाड़ियों में चरखे और खादी का आंदोलन चल रहा था। कलकत्ता से आए एक वक्ता के भाषण ने युवा हेलेन के मन को गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने तय कर लिया उनका जीवन अब देश की सेवा के लिए होगा। अगले ही वर्ष 1918 में वो कलकत्ता पहुंची, चरखा प्रशिक्षण केंद्र में सूत काटना सीखा। उनकी प्रतिभा और लगन ने उन्हें मुजफ्फरपुर बिहार में आयोजित

0: खादी और चरखा प्रदर्शनी में कलकत्ता का प्रतिनिधित्व करने का अवसर भी दिया। फिर आया वर्ष 1920। बिहार भयंकर बाढ़ की चपेट में था, हजारों लोग प्रभावित हुए थे। ऐसे समय में हेलेन लेपचा राहत कार्यों में जुट गई निस्वार्थ भाव से लगातार, और इसी दौरान उनकी मुलाकात हुई महात्मा गांधी से। हेलेन की सेवा और समर्पण से प्रभावित होकर गांधी जी ने उन्हें साबरमती आश्रम में आने का निमंत्रण दिया। साबरमती आश्रम में गांधी जी ने उनके व्यक्तित्व और देशभक्ति को करीब से देखा। यहीं गांधी जी ने उन्हें नया नाम दिया, सावित्री देवी। लेकिन जिस आवाज में इतनी दृढ़ता हो, वो सत्ता को भला कैसे सुहाती? ब्रिटिश सरकार की निगाहें अब उन पर थीं। उनके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ। गिरफ्तारी से बचते हुए वो इलाहाबाद पहुंची और कुछ समय आनंद भवन में रही। वहां उनका संपर्क कांग्रेस के कई नेताओं से हुआ, लेकिन पहाड़ उन्हें पुकार रहे थे। वो वापस करसियांग लौटी और दार्जिलिंग की पहाड़ियों में स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूत करने में जुट गई। घर घर जाकर विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का अभियान, ब्रिटिश प्रशासन की पाबंदियां और उनके सामने एक दृढ़ निश्चय, वो पीछे नहीं हटी। 29 जनवरी 1922, हेलेन लेपचा गिरफ्तार कर ली गई। दार्जिलिंग सदर जेल में 3 महीने, फिर करसियांग में नजरबंदी। समय आगे बढ़ा। सन 1939 और 40, नेताजी सुभाष चंद्र बोस करसियांग में नजरबंद थे। हेलेन लगातार उनके संपर्क में रही। कहा जाता है कि वो संदेश पत्रों के माध्यम से पहुंचाती थी।
1: मैं दिलीराम दुलाल, एक पत्रकार और इतिहास के विद्यार्थी।
2: कोलकाता में मोहम्मद अली पार्क में आयोजित सभा में हेलेन लेपचा महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से जुड़ गई थी। उन्होंने झारिया कोयला क्षेत्र के 10,000 से अधिक मजदूरों का नेतृत्व करते हुए आदिवासी श्रमिकों को शोषण के खिलाफ ऐतिहासिक प्रदर्शन भी किया था। उनको इसी आंदोलन में शामिल होने के कारण गिरफ्तार भी किया गया था, और बाद में जब उन्होंने दार्जिलिंग में अपने साथियों के साथ सदर जेल में 3 महीने तक, बाद में 3 वर्षों तक फार्सियंग में जब उनको नजरबंद रखा गया था, उस समय में भी उन्होंने स्वतंत्र संग्राम में योगदान दिया था। जैसे कि 1939-40 में जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस खारसंग में नजरबंद थे, तब उन्हें उनके साहसिक पलायन में महत्वपूर्ण सहायता की थी। बताया जाता है कि पठान की भेष तैयार करने में हेलेन लेपचा ने महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह किया था। उनके योगदान के कारण सिक्किम सरकार ने हाल ही में सरकारी मेडिकल कॉलेज को उनके नाम पर रखने के लिए हेलेन लेपचा मेडिकल कॉलेज निर्णय किया है।
3: मैं सोमनाथ पांडे, सिक्किम से। मैं एक सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी हूँ। हेलेन लेपचा के खोज में हम लोग ने सक्रियता से काम किया। उनका सभी इष्टजन थे, उनका जो मित्रों था, उनका परिवारजन था, उनसे मिलके उनका जो पेपर्स वगैरह ताम्र पत्र सब हम लोग ने निकाल के अभी पूरा ऑडियो विजुअल्स पूरा इतिहास हम लोग ने समेट लिया है। सिक्किम में 1973 से पहले उस समय में भी सिक्किम के लोग भारत के आंदोलन में, स्वाधीनता आंदोलन में किस तरह से भाग लिया करते थे, इस प्रश्न में हम लोग पूछ करते हैं। इसी दौरान में सावित्री देवी जो हेलेन लेपचा है उनका संदर्भ में हम लोग ने काम किया है। वो विशेष करके मजदूरों को इकट्ठा करना, मजदूरों को स्वावलंबी कैसे बनाना, इस क्षेत्र में उन्होंने काम किया। सबसे पहले तो बीमारियों को देखा, दवाई औषधियां किया, उसके बाद में उन्होंने स्वावलंबी बनाने का काम किया। तब ये वो बड़ा स्वाभिमानी, वो तो निडर माता के रूप में परिचित है। उनका 3 नाम है। एक तो सबसे पहले नाम उनका हेलेन लेपचा था। बाद में जाके ये नाम थोड़ा सा अंग्रेज का जैसा लगा, अंग्रेजी स्कूल से ये शिक्षित हुई थी, तो अंग्रेज का जैसा नाम होने के बाद में महात्मा गांधी ने उनको सावित्री देवी नाम दे दिया। तब उनका गांव में जो खरसांग और सिक्किम में उनका नाम साइली दीदी करके परिचित था। साइली मतलब होता है नेपाली भाषा में थर्ड, तीसरा होता है। तब साइली करके थर्ड करके साइली दीदी करके ऐसा नाम उस प्रसिद्ध हुई। तो उनको ताम्र पत्र भी मिला उस समय में स्वाधीनता संग्राम के, लेकिन वो थोड़ा सा

0: समाज में वो ओझल हो गई, क्योंकि हमारा ऐसा है कि जो आगे निकल गए उनका इतिहासकारों ने समेट दिया, लेकिन जो ट्राइबल उन्होंने विशेष करके दुर्गम क्षेत्र में ही काम किया तो उनका नाम थोड़ा इतिहास में थोड़ा सा पीछे रह गया था। तो अभी बहुत अच्छा से उनका नाम आगे आ रहा है। सिक्किम में तो उनका नाम से मेडिकल कॉलेज भी बन रहा है, तो और उनका कहीं रास्ता का नाम हेलेन लेप्चा का नाम से अभी बन रहा है।
1: वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी उन्होंने सक्रिय भाग लिया। स्वतंत्रता के बाद भी उन्होंने समाज सेवा का काम जारी रखा। 15 अगस्त 1972 को भारत सरकार ने उनके स्वतंत्रता संग्राम में योगदान को सम्मानित करते हुए उन्हें ताम्रपत्र प्रदान किया। 18 अगस्त 1980 को हेलेन लेप्चा ने अंतिम सांस ली, लेकिन उनका जीवन आज भी हमें प्रेरणा देता है।
2: हेलेन लेप्चा, हिमालय की बेटी, आजादी की आवाज। अभी आपने ये लघु रूपक सुना। आलेख अंकुश रोनियार का था, वाचन स्वर प्रांजल।

0: स्वतंत्रता संग्राम केवल रणभूमि में लड़ी गई लड़ाई नहीं थी, ये घरों में लड़ी गई, विद्यालयों में लड़ी गई, लेखन और पत्रकारिता में लड़ी गई, गीतों और कविताओं में लड़ी गई। और इस संघर्ष में भारतीय महिलाओं ने अपनी विशिष्ट भूमिका निभाई। किसी ने आंदोलन का नेतृत्व किया, किसी ने जेल की यातनाएं सही, किसी ने भूमिगत रहकर क्रांतिकारियों की सहायता की, तो किसी ने अपने लेखन और विचारों से राष्ट्र की चेतना को जगाया। ऐसी ही कुछ साहसी महिलाओं की स्मृति को समर्पित है हमारी अगली प्रस्तुति, राष्ट्र जागरण की दीपरेखाएं, स्वतंत्रता संग्राम की अग्रणी महिला सेनानियां। आलेख और स्वर है प्रसारण कर्मी और प्राध्यापक बिंदु पांडे का।
1: बोलिए सब मिल महाशय मंत्र।

0: जब हम स्वतंत्रता संग्राम की बात करते हैं तो सबसे पहले स्मरण होती है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जिस अदम्य साहस का परिचय दिया वह भारतीय इतिहास की अमर गाथा बन चुका है। अंग्रेजी सत्ता के सामने उनका यह संकल्प, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, आज भी राष्ट्रीय स्वाभिमान का उद्घोष प्रतीत होता है। इसी संघर्ष की एक और तेजस्वी कड़ी बेगम हजरत महल। अवध की इस वीरांगना ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया और लखनऊ में विदेशी सत्ता को खुली चुनौती दी। स्वतंत्रता आंदोलन को जन जन तक पहुंचाने वाली एक सशक्त आवाज थी सरोजनी नायडू। अपनी वोजस्वी वाणी और राष्ट्रवादी विचारों के माध्यम से उन्होंने हजारों महिलाओं को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा। वे मानती थी स्वतंत्र भारत का निर्माण तभी संभव है जब महिलाओं को समान अवसर और सम्मान प्राप्त हो।
1: आई बिलीव दैट आई मस्ट प्रूव द एज ओल्ड प्रोवर्ब दैट द वुमन हैज द लास्ट वर्ड एंड द लॉन्गेस्ट वर्ड। आई हैव द लास्ट वर्ड नो डाउट नॉट बिकॉज आई एम अ वुमन but because I'm acting today as the hostess of the Indian National Congress।
0: महात्मा गांधी के संघर्ष में एक मौन किंतु अत्यंत सशक्त शक्ति थी, कस्तूरबा गांधी। उन्होंने सत्य, अहिंसा और सेवा के आदर्शों को जीवन में उतारते हुए अनेक आंदोलनों में भाग लिया और जेल यात्राएं भी की। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि हर बड़े परिवर्तन के पीछे त्याग, धैर्य, समर्पण की एक शांत धारा भी बहती है। सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में जब अधिकांश राष्ट्रीय नेता गिरफ्तार कर लिए गए, तब अरुणा आसफ अली ने ग्वालियर टैंक मैदान में तिरंगा फहराकर अंग्रेजी शासन को सीधी चुनौती दी। उनका साहस

0: उस दौर के युवाओं के लिए प्रेरणा बना। स्वतंत्रता संग्राम की चेतना को जन जन तक पहुंचाने में साहित्य की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही और इस क्षेत्र में सुभद्रा कुमारी चौहान का योगदान अविस्मरणीय है। वो केवल एक कवित्री ही नहीं बल्कि सक्रिय स्वतंत्रता सेनानी भी थी। असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्होंने जेल यात्रा की और राष्ट्रीय आंदोलनों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उनकी अमर कविता खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी ने भारतीय जनमानस में देशभक्ति और स्वाभिमान की ऐसी लौ प्रज्वलित की जिसने स्वतंत्रता आंदोलन को नई ऊर्जा प्रदान की। इसी आंदोलन के दौरान एक युवा महिला ने अपनी आवाज को स्वतंत्रता का हथियार बना लिया। यह थी उषा मेहता। उन्होंने गुप्त कांग्रेस रेडियो की स्थापना कर पूरे देश में स्वतंत्रता का संदेश पहुंचाया। जब अंग्रेजी सरकार समाचारों और सूचनाओं पर नियंत्रण स्थापित कर चुकी थी तब उनके साहसिक प्रयासों ने स्वतंत्रता आंदोलन को नई ऊर्जा प्रदान की।
1: This is the Congress radio calling on 42.34 meter. Today, we shall read to you a stupid reasoning of the CNC.
0: सुचेता कृपलानी ने भी स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने संगठनात्मक क्षमता और नेतृत्व कौशल का परिचय देते हुए भूमिगत आंदोलनों को सशक्त बनाया। बाद में वे स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी और यह सिद्ध किया कि संघर्ष से निकला नेतृत्व राष्ट्र के भविष्य का निर्माण करता है। बंगाल की वीरांगना मातंगिनी हाजरा का बलिदान भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। 73 वर्ष की आयु में भी वे आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी। अंग्रेजों की गोलियां लगने के बाद भी उनके हाथों में तिरंगा नहीं छूटा और उनके मुख से वंदे मातरम का उद्घोष निरंतर निकलता रहा। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन किया तब कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने रानी झांसी रेजिमेंट का नेतृत्व संभाला। उन्होंने महिलाओं को सैन्य प्रशिक्षण देकर यह स्थापित किया कि राष्ट्र रक्षा और बलिदान के क्षेत्र में स्त्रियां किसी से कम नहीं है।
2: नेताजी हमसे 5 घंटे बात किया, हमारे देश का और दुनिया का आधा हिस्सा को कैसे नजरअंदाज करे, यानी महिलाओं को। अगर महिलाओं को भी देश का प्रेम है, उन लोगों को आजादी का जरूरत है, इसलिए आप महिलाओं को भी हम लेने के लिए तैयार है, उनका भी एक फौज बनाएंगे।

अभी आपने सुनी लघु प्रस्तुति राष्ट्र जागरण की दीपशिखाएं। आलेख और स्वर था प्रसारण कर्मी और प्राध्यापक बिंदु पांडे का। इन दीपशिखाओं ने अपने समय को तो रोशन किया ही, आज भी उनका जीवन हमें ये याद दिलाता है कि परिवर्तन की शुरुआत अक्सर एक अकेले साहस भरे कदम से होती है। संस्कृति का संसार बहुत विस्तृत है। कभी वो करघे पर आकार लेता है, कभी किसी पुस्तक के पन्नों में, और कभी उन समुदायों की स्मृतियों में जीवित रहता है जिन्होंने प्रकृति और परंपरा के साथ सह अस्तित्व की अनूठी संस्कृति रची है। हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। ये दिवस भारतीय हथकरघा परंपरा और देश के बुनकरों के योगदान को सम्मान देने के साथ साथ स्वदेशी आंदोलन की उस ऐतिहासिक भावना की स्मृति से भी जुड़ा है, जब 7 अगस्त 1905 को कोलकाता में स्वदेशी आंदोलन का औपचारिक आरंभ हुआ था।

किताबें हमारी स्मृति हैं और पुस्तकालय उस स्मृति का सार्वजनिक घर। हर वर्ष 12 अगस्त को राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस मनाया जाता है। ये दिन भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक डॉक्टर एस आर रंगनाथन की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। पुस्तकालय केवल पुस्तकों का संग्रह नहीं बल्कि ज्ञान के संरक्षण और उसके प्रसार के महत्वपूर्ण केंद्र हैं, और डिजिटल युग में भी वो पढ़ने, शोध और विश्वसनीय ज्ञान तक पहुंचने की संस्कृति को जीवित रखे हुए हैं। भारत की आदिवासी परंपराएं अपनी भाषाओं, लोक कथाओं, संगीत, नृत्य, कला और प्रकृति केंद्रित जीवन दृष्टि से बेहद समृद्ध हैं। हर वर्ष 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य विश्व के आदिवासी समुदायों के अधिकारों, उनकी सांस्कृतिक पहचान और उनके योगदान के लिए जागरूकता बढ़ाना है। करघे के धागों में बुनी हमारी हस्तशिल्प परंपरा, पुस्तकालयों में संरक्षित ज्ञान की दुनिया और आदिवासी समुदायों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ये तीनों मिलकर भारत की सांस्कृतिक विविधता का एक बेहद सुंदर और समृद्ध चित्र रचते हैं। और अब समय है उन विभूतियों के स्मरण का जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में भारत के सार्वजनिक और सांस्कृतिक जीवन को गहराई से प्रभावित किया। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे, उस्ताद अमीर खां, उस्ताद बिस्मिल्ला खां, राम किंकर बैज, वी एस गायतोंडे, जहांगीर सभावाला, फिरोज शाह मेहता, प्रफुल्ल चंद्र रे, पंडित रविशंकर शुक्ल और अभी हाल ही में दिवंगत हुए पंडित जगन्नाथ बेहरा। इन विभूतियों का स्मरण उन विचारों, कर्मों और सृजनात्मक ऊर्जा को याद करना है जिनसे हमारा सांस्कृतिक वर्तमान निर्मित हुआ। इन महान विभूतियों के अवदान को नमन करते हुए संपन्न होता है संस्कृति भारती का ये अंक। नवोदिता मिश्रा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी है संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं श्री गिरिमल्लप्पा भजंत्री का शहनाई वादन। श्री गिरिमल्लप्पा भजंत्री शहनाई की प्रारंभिक शिक्षा श्री रंगाचारी काकंडिकी से प्राप्त की। उसके बाद श्री चन्वीर बन्नूर के मार्गदर्शन में लगातार 9 वर्ष तक शहनाई वादन की उच्च शिक्षा प्राप्त की। श्री चन्वीर बन्नूर डॉक्टर पंडित पुटराज गवाई के प्रमुख शिष्य थे। श्री गिरिमल्लप्पा भजंत्री कई पुरस्कारों से सम्मानित किए जा चुके हैं, जैसे कि कलाश्री पुरस्कार, कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार इत्यादि। श्री गिरिमल्लप्पा भजंत्री देश विदेश के कई प्रमुख संगीत सम्मेलन में अपना शहनाई वादन प्रस्तुत कर चुके हैं। आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ तबले पर श्री मले मलेश हुगार देसाई कल्लूर साथ दे रहे हैं।
1: This is Akashvani. In tonight's national program of music, we bring you a Shahnai recital by Shri Girimallappa Bhajantri. Shri Girimallappa Bhajantri started his initial training in Shahnai from Shri Rangachari Kakandaki. Later, for 9 years, he was under the able guidance of Shri Channavira Bannur, a prominent disciple of Pandit Puttaraja Gavayi of Gadag. Shri Girimallappa Bhajantri is a recipient of many awards like Kalashri Award, Karnataka Rajyotsava Award, etc. He has performed in many important music festivals of India and abroad. In tonight's program, he is accompanied on the tabla by Shri Male Mallesh Hugar Desai Kallur.
0: Shri Girimallappa Bhajantri apne karyakram ka prarambh rag Rageshri se kar rahe hain. Isme do bandishen japtal aur drut tintal mein nibadh hai. Suniye rag Rageshri.
1: Shri Girimallappa Bhajantri begins his Shahnai recital with Rag Rageshri, in which he is presenting two compositions set to Japtal and Drut Tintal.

0: अब तक आप सुन रहे थे राग रागेश्री। आइए अब सुनते हैं राग जोग।
1: That was राग रागेश्री। श्री गिरिमल्लप्पा भजंत्री विल नाउ प्रेजेंट राग जोग।

0: अब तक आप सुन रहे थे राग योग। इसी के साथ आज का संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम अब संपन्न होता है, जिसमें आप सुन रहे थे श्री गिरिमल्लप्पा भजंत्री का शहनाई वादन। आपके साथ तबले पर श्री मले मलेश हुगार देसाई कल्लूर साथ दे रहे थे।
1: That was Raag Jog. With that, we come to the end of tonight's national program of music, in which you were listening to Shahnai recital by Shri Girimallappa Bhajantri, and he was accompanied on the tabla by Shri Male Malesh Hugar Desai Kallur.
0: यह कार्यक्रम आकाशवाणी के धारवाड़ केंद्र में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: This program was recorded earlier in the studios of Akashvani Dharwad and relayed from Akashvani Delhi.

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, BRM 810 किलोहर्ट्स पर। अभी कुछ ही देर बाद आप ठीक 11 बजे सुनेंगे हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया है। श्री मोदी ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी निभाती है।
2: आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्र उभर रहे हैं जो युवाओं को नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भरता की पहल विकसित भारत के निर्माण के लिए एक मजबूत आधार का काम करेगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने IIT दिल्ली में उच्च दक्षता के कंप्यूटिंग केंद्र परम प्रज्ञा का उद्घाटन भी किया। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर बल दिया है। मुंबई में आज सहकार नव क्रांति कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि डिजिटल लेन देन में धोखाधड़ी बढ़ रही है और बैंकिंग सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मजबूत फॉरेंसिक सहायता की आवश्यकता है। श्री शाह ने बताया कि राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम तथा राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
3: आज हमारे अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन और NFSU फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के साथ जो समझौता हुआ, इससे हमारी छोटी सी छोटी बैंक की हर ब्रांच में भी ये सारी सुविधाएं बहुत कम लागत में देने का काम अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन करेगा। इससे साइबर सुरक्षा, डिजिटल फॉरेंसिक,

0: कर्मचारियों का इस दोनों क्षेत्र में प्रशिक्षण और अनुसंधान, ये सभी व्यवस्था एक साथ बैंक इन बॉक्स से हो जाएगी।
1: सहकारिता मंत्री ने एक सुरक्षा संचालन केंद्र का भी शुभारंभ किया। सरकार ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख उद्योगपतियों के साथ महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने वाली कैश फ्री पेमेंट्स डार्विन डायनेमिक्स, वॉल्ट इंडिया, कार्स 24 और काउंसिल फॉर स्टार्टअप के साथ भी समझौता किया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। मंत्रालय ने बताया कि हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का उद्देश्य स्टार्टअप के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं के लिए UPI निःशुल्क रहेगा और सभी व्यक्तिगत लेन देन निःशुल्क बने रहेंगे। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि UPI के माध्यम से भुगतान करते समय उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार का लेन देन शुल्क नहीं देना होगा, जबकि अधिकांश व्यापारी लेन देन भी निःशुल्क रहेंगे। मंत्रालय ने कहा कि यदि व्यापारी छूट दर शुल्क लागू किया जाता है तो ये केवल एक निश्चित सीमा से अधिक के सीमित व्यापारी लेन देन पर नाम मात्र दर से लागू होगा। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए कहा कि ईरान कूटनीति के लिए प्रतिबद्ध है लेकिन आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य नहीं होगा। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारतीय भारोत्तोलकों ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में एक स्वर्ण और एक रजत पदक जीते। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी तेज बारिश की संभावना है। आज राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में तेज बारिश हुई, राजधानी में कल सुबह भी बारिश की संभावना है। इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Amrit Bhushan. Prime Minister Narendra Modi has emphasized importance of innovation, research and emerging technologies in shaping India's growth trajectory. Addressing the 57th convocation of Indian Institute of Technology, IIT Delhi, today, Mr. Modi urged the students to keep the national interest at the center of their decisions and ask themselves how their actions can benefit the country and address its needs. The Prime Minister said that new sectors are emerging in the country, offering fresh opportunities for the youth. He cited sectors such as semiconductors, space and drones and said India is working towards becoming self-reliant across all sectors. Mr. Modi said this drive towards self-reliance will serve as a strong foundation for building a Vikasit Bharat.
3: Aaj Bharat, economic self-reliance, technological self-reliance, industrial self-reliance, aise har sector mein aatmanirbhar banne ke liye kaam kar raha hai. Yahi Vikasit Bharat ki majboot neev ka saboot hai. Is majboot neev par आपको एक भव्य सुंदर विकसित भारत का निर्माण करना है।
2: Further elaborating on India's efforts in the semiconductor sector, Prime Minister Modi said that production has begun at India's first semiconductor unit. Union Education Minister Prahlad Joshi, Chairperson Board of Governors of IIT Delhi Harish Salve and Director IIT Delhi Professor Rangan Ra Banerjee were also present in the ceremony. On the occasion, the Prime Minister also inaugurated a high-performance computing facility, Paramprajna, at IIT Delhi. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah has stressed the need for stronger cybersecurity and digital safeguards for urban cooperative banks. Addressing the Sahakar Navkranti program in Mumbai today, Mr. Shah said digital transaction frauds are on the rise and called for stronger forensic support to ensure banking safety. The National Urban Cooperative Finance and Development Corporation, NUCFDC, and the National Forensic Sciences University signed a memorandum of understanding in the presence of Mr. Shah. The Home Minister highlighted the importance of collaboration with the National Forensic Science University in tackling cyber and financial crimes. The Home Minister also launched a security operations center, which will provide a round-the-clock cyber surveillance and security support to urban cooperative banks. Government today announced a series of strategic memoranda of understanding, MOUs, with key industry leaders and ecosystem enablers, which are Cash-Free Payments, Darwin Dynamics, Vulture India, Cars 24, and the Council for Startup India, CSI. The MOUs have been signed by Ministry of Commerce and Industries Department for Promotion of Industry and Internal Trade, DPIIT. The Ministry of Commerce and Industry informed that the MOU signed with Cash-Free Payments aims to strengthen digital infrastructure support for startups. The MOU signed with Vulture India Private Limited focuses on strengthening the technology infrastructure available to DPIIT-recognized startups. Union Minister of Parliamentary Affairs Kiran Rijiju has welcomed the demand of Shiromani Akali Dal for immediate implementation of the Women's Reservation Bill in the country. In a social media post, Mr. Rijiju said that everyone must come together to empower women with a fair and equitable delimitation that ensures equal representation. Iranian President Masoud Pezeshkian has reaffirmed Tehran's commitment to diplomacy to safeguard the country's national interests, while asserting that Iran will not be forced to surrender. In an interview published on his official website, Mr. Pezeshkian defended his government's decision to negotiate with the United States and sign a Memorandum of Understanding, MOU, aimed at ending the war. He said Iran would honor its commitments as long as Washington fulfills its obligations under the agreement. He added that Tehran would have no obligation to continue the process if the United States fails to meet its commitments. Earlier, U.S. President Donald Trump had expressed confidence that the conflict with Iran could end soon. Indian shuttler Ashmita Chaliha will take on China's Qiu Han in the women's singles final of the Korea Masters Badminton Tournament in Asan tomorrow morning. Ashmita reached the final after defeating fellow Indian Rakshita Ramraj 21-13, 16-21, 21-13 in the semifinal today. And that is the end of this news bulletin.
4: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। 11:10 और तकरीबन 20 सेकंड हो चुके हैं और वो वक्त आ गया है कि जब आप और हम बकायदा एक दूसरे से रूबरू होते हैं। रूबरू होने का ये तरीका बहुत ही खूबसूरत है कि यहाँ से गीत बजते हैं और वहाँ से आपकी फरमाइश आती है, और वो फरमाइश किस रास्ते आती है, वो फरमाइश आती है आपके ईमेल के ज़रिए। तो फटाफट आप हमारा ईमेल एड्रेस ज़रूर नोट कर लीजिए। हमारा ईमेल आईडी है ip radio delhi@gmail.com। और अब इस प्रोग्राम का ये पहला गीत।

जी, ये जो बरसात है ना, ये बरसात की ही बात आज मैंने सोची है। और एक अजीब सा इत्तेफाक है कि ये बात मैंने सोची और हमारे एक लिसनर ने उस बात को न जाने कैसे जान लिया और उन्होंने एक मैसेज कर डाला। खैर, मैसेज भी पढ़ूंगी, ज़रूर पढ़ूंगी और उनकी फरमाइश भी पूरी की जाएगी। मैंने बस कुछ यूँ सोचा कि बारिश जो है वो कुदरत का एक बेशकीमती तोहफा है, मुझे ऐसा लगता है, जिसे कुदरत अपने पास उधार नहीं रखती, बल्कि पानी के उन कतरों को एक एक करके संभाल कर रखती है। फिर मौका आने पर बेहिसाब बूंदों के जरिए उन कतरों का उधार चुका देती है, उनका हिसाब बेहिसाब कर देती है, जिन्हें उसने कुछ वक्त पहले इस ज़मीन के तन से चुरा लिया था। और जब वो इस ज़मीन के तन से उन बूंदों को चुरा लेती है तो अपने पास सहेज लेती है। और ऐसी ही कुछ यादें हमारे जहन में सहेजी जाती हैं हर एक मौसम में। ऐसा ही एक मौसम है बरसात का मौसम भी। हर एक किसी के कुछ खट्टे मीठे, कुछ अतरंगे से एक्सपीरियंसेस होते हैं, कुछ अलग अलग ऐसी यादें होती हैं हर एक मौसम की, जो हमेशा याद रहती हैं। और जैसे ही वो मौसम दस्तक देता है, हमें वो यादें आके बताती हैं कि देखो, ये बात तुम्हारे साथ उस वक्त इस मौसम में ऐसे हुई थी, क्या तुम्हें याद है? फिर या तो आप खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं या फिर अफसरदा हो जाते हैं, अफसोस में डूब जाते हैं कि हाँ, इस मौसम में ये बात तो ज़रूर हुई थी। तो सबसे पहले मैंने बात की थी हमारे एक लिसनर की, और न जाने कैसे उन तक ये बात, उनके जहन में ये बात आ गई कि आज बात बरसात की होगी। और उन्होंने गीत भी इसी तरह का एक हमें भेजा है। आप हमें रघुवीर नगर दिल्ली से मैसेज कर रहे हैं और लिखने वाले हैं दिलावर खान, हसीना बानो, अलीज़ा नायाब और लड्डू। तो जी, इत्तेफाक से वाकई मैं बहुत हैरान हूँ दिलावर जी, कि आपको ये कैसे पता चला कि आज मैं बात बरसात की करूँ।

वाकई एक तपन जो है वो बुझ जाती है और एक आस जो है वो जाग जाती है हर एक उस शख्स के जो ज़मीन में सोना बिखेरने की कोशिश करता है, चाहता है कि उस पर कुदरत ऐसी मेहरबान हो जाए, ऐसी मेहरबान हो जाए कि जो बीज उसने बिछा दिए हैं उन्हें वो सोने की तरह, कुंदन की तरह एकदम ज़मीन का सीना चीर कर पहाड़ ले आए और उन्हें वो महफूज कर दे। ये ख्वाहिश होती है उस किसान की जिसे हम सभी को बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहिए। आज ये मौका मुझे मिला है और मैं चाहती हूँ कि अपने सभी सुनने वालों की तरफ से, अपनी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से हम उन सभी किसान भाइयों का, बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करें जो इतनी मेहनत करते हैं और हमारे लिए अनाज उगाते हैं। आपका तहे दिल से शुक्रिया, और ये समझ लीजिए कि ये गीत आप ही के लिए था। और वाकई में ये सब कुदरत का ही निज़ाम होता है कि वो इंसान को बिना परेशान किए अपने हिसाब से ज़मीन से पानी को अपने पास बहुत ऊंचाई पर जमा कर लेती है। और देखिए हमें अंदाज़ा तो है और कभी कभी पता भी चल जाता है, लेकिन ये पता नहीं होता कि ये ज़खीरा कहाँ किया जा रहा है और वो एक एक बूंद का हिसाब रखती है। जब मौका मिलता है तो इसे वो इस तपती ज़मीन पर भेज देती है। सूखे तालाब, तलैया, चोखर और पोखर और सब कुछ लबालब हो जाता है, लेकिन इन सब में इंसान का पसीना भी शामिल होता है। तपती धूप में जब वो बूंदे आसमान की तरफ रुख कर रही होती हैं उस वक्त इंसान का वाकई में पसीना निकल जाता है। तो कुदरत इंसान को इस तरह तो परेशान नहीं करती, लेकिन हाँ हैरान ज़रूर कर देती है कि जब ज़बरदस्त रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो जाती है

17 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।

0: साथ 17 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। और इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ तलत। आपकी फरमाइशें हमारे पास लगातार आती चली जा रही हैं, और जो अभी तक इस इंतज़ार में हैं या ये सोच रहे हैं कि प्रोग्राम में मैसेज करें या ना करें, तो उनकी दुविधा को ज़रा आसान करने की कोशिश कर रही हूँ। कुछ ऐसे गीत आपकी ही फरमाइश के मैं प्ले कर रही हूँ जो आपके दिल को छू जाएंगे। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैसेज तो करना है लेकिन हमें ईमेल एड्रेस तो पता नहीं है, तो आप हमारा फटाफट ईमेल एड्रेस नोट कर दीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है iprediodelhi@gmail.com। iprediodelhi@gmail.com हमारा ईमेल एड्रेस है। और बहुत सारे मैसेजेस जो मैं देख पा रही हूँ मेरी आंखों के सामने है। गंगनदीप थाणी जी ने हमें मैसेज किया है और आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतने प्यार के लिए और इतने स्नेह के लिए। इसके साथ हमारे पास मैसेज आया है मेहर अरोड़ा का, श्री गंगानगर राजस्थान से आपके साथ है ममता अरोड़ा। नंदकिशोर घाटे ने हमें मैसेज किया है बीड़ महाराष्ट्र से। इसके साथ ही सुरेश खुराना ने हमें मैसेज किया है और मैसेज हमारे पास आया है प्रकाश TTS का, और आपने गीत की फरमाइश चाही है सुननी। और अनिल कुमार गौहानकर जी ने हमें मैसेज किया है। सतीश अनेजा जी ने हमें मैसेज किया है और वो बता रहे हैं कि उनके इलाके में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। इसके साथ साथ हमारे पास मैसेज आया है मल्होत्रा TD जी का, और आप हमें मोहाली चंडीगढ़ से मैसेज कर रहे हैं। बोधराज खोरवाल जी ने हमें मैसेज किया है, और साथ ही मैसेज हमारे पास आया है कैथल हरियाणा से जयवीर सिंह का, और अनिल वर्मा का भी हमारे पास मैसेज आया है। साथ ही मैसेज हमारे पास आया है बिट्टू गगनेजा का, आप हमें जलालाबाद वेस्ट से मैसेज कर रहे हैं। आपके साथ हैं सुरेश गगनेजा और पूनम गगनेजा, विशाल और प्रिया। नरेन नेतम जी ने हमें भी मैसेज कर दिया है और आपकी फरमाइश हम तक पहुँच चुकी है। नबी हसन ने हमें मैसेज किया है, और मैसेज हमारे पास आया है किशन सपकल जी का। अकरम हुसैन प्रिंस ने भी हमें मैसेज किया है सीतामढ़ी बिहार से, और माजिद अली मुफ्ती ने हमें मैसेज किया है जम्मू कश्मीर से, और आपके साथ हैं बुरहान और रुतबा। और हिमकेश्वर साहू जी ने भी हमें मैसेज किया है। आप सभी की फरमाइश हम तक पहुंच चुकी है। उम्मीद है कि आप कार्यक्रम सुन रहे होंगे, अपने नाम भी सुन रहे होंगे। सुनते ही बहुत खूबसूरत

रेखा बहार कहीं अंखियों में प्यार लाती है, और कभी कभी अंखियों में सावन हजार लाती है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आप बारिश में भीग रहे हैं और उस भीगने का आप फायदा उठाते हैं। और वो फायदा कैसे उठाते हैं कि आप भी उस बारिश में भीगते हुए रो रहे हैं, और आपको ये लगता है कि किसी को क्या पता चलेगा कि ये बारिश की बूंद है या आंसू की बूंद है कि नहीं। ऐसी बहुत सारे हमारे ज़िंदगी में एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो आपका बारिश से कैसा एक्सपीरियंस है? आपकी कुछ ऐसी खूबसूरत या खट्टी मीठी या जैसी भी यादें हैं, कोई यादें हैं अगर हैं तो आप हमें ज़रूर बताइए। बढ़ते हैं हम मैसेजेस की तरफ। सुदर्शन शाह का हमारे पास मैसेज आया है, आपकी फरमाइश हम तक पहुँच चुकी है सुदर्शन जी। कमल ने हमें मैसेज किया है और मैसेज हमारे पास आया है राजकुमार डूडी का हिसार से, और आपके साथ हैं पुष्पेंद्र डूडी और प्रमोद कुमार डूडी। कमल बालूजा ने हमें मैसेज किया है। दिग्दर्शन गौड़ का हमारे पास मैसेज आया है मेरठ कैंट से, आपके साथ हैं कविता गौड़। नासिर शेख ने हमें मैसेज किया है बहुत सारे पेड़ पौधे लगाकर, और यासीन अनजान ने हमें मैसेज किया है गिरडी झारखंड से। साथ ही हमारे पास मैसेज आया है नरेंद्र सुथर जी का, और आप शायद पहली बार हमारे इस कार्यक्रम में मैसेज कर रहे हैं, आपका बहुत स्वागत है। आप सभी का बहुत स्वागत है जो भी हमको सुन रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं और पसंद भी कर रहे हैं कार्यक्रम का, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भूषण खेड़ा जी ने हमें मैसेज किया है फजिल का पंजाब खेड़ा से, आपके साथ हैं विशु खेड़ा, विशाल खेड़ा और लाडली खेड़ा। मसरूर हसन का हमारे पास सहारनपुर से मैसेज आया है, और साथ ही मैसेज हमारे पास आया है ताज मोहम्मद का। मोहम्मद कमर ने हमें मैसेज किया है गुरनूर से, आपके साथ हैं आदिल कमर। मुकेश भट्टा जी का हमारे पास मैसेज आया है कनेरा मोहल्ला से, और पटियाला से आप हमें मैसेज कर रहे हैं। जसबीर सिंह ने हमें मैसेज किया है निमनानाबाद जिंद से, और आपके साथ हैं जतिंदर कौर। आर कुमार का हमारे पास मैसेज आया है पंजाब से, आपके साथ हैं मिंटू टॉमस और पिंकी। राजू तुतेजा जी ने भी हमें मैसेज किया है, और अहमद फूल वाले कह रहे हैं स्टार्टिंग में कि आप हमारे मैसेज को नज़रअंदाज मत कीजिएगा। देखिए आपका नाम हमने ले लिया, आपका मैसेज भी शामिल हो गया। हाजी मजहर का भी हमारे पास मैसेज आया है, और मैसेज आया है दारा सिंह जी का चौटाला हरियाणा से, आपके साथ हैं संजय शर्मा और प्रियंका शर्मा।

कुछ चीज़ें भुलाए नहीं भूलती हैं, और एक अब जो आप आवश्यक सूचना सुनेंगे उसे भी न भुलाइए, और वक्त पर अपना काम जरूर

17 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।

और इस बीच हमारे पास और भी मैसेजेस आ चुके हैं। हमारे पास मैसेज आया है फारूक अली खान का, और रमेश कुमार हमें पटेल नगर मलोट से मैसेज कर रहे हैं। आपके साथ है रमेश कुमार जजौरिया और गीता रानी जजौरिया। मैसेज हमारे पास रजी शर्मा का आया है, और आपने कहा है कि कोई भी गीत प्ले कर दें आपके लिए, तो गीत जो पसंद आए वो आप ही के लिए हैं। भारती नागनपुरा ने हमें मैसेज करा है खंडवा मध्य प्रदेश से, आपके साथ हैं दुर्गेश नागनपुरे और राधेश्याम। इसके साथ ही रियासत हुसैन साहब के हर बार की तरह इस बार भी लगातार बहुत सारे मैसेजेस हैं। आप जसपुर उत्तराखंड से हमें मैसेजेस कर रहे हैं। साथ ही मैसेज हमारे पास आया है सुरेश जाधव जी का, आप ने हमें मैसेज किया है और आपकी फरमाइश हम तक पहुंच गई है। सुनील पाठक ने हमें मैसेज किया है अनार कली बाज़ार जगराऊं पंजाब से। इसके साथ ही मैसेज हमारे पास, देखिए यही मसला हो जाता है जब एक ही शख्स इतने सारे मैसेज करे तो वो लोगों के नाम कहीं रह जाते हैं जो पहली बार मैसेज कर रहे हैं। इंद्रभान सिंह ने हमें मैसेज किया है, और इसके साथ हमारे पास मुल्तानी ढांडा से मैसेज आया है अनिल मोहन का। हमारे पास जगदीश जी का मैसेज आया है दिल्ली से, और इसके साथ ही हाजी मज़हर ने हमें मैसेज किया है, आपने कहा है कि अपनी पसंद का कोई भी गीत सुनवा दें। स्वीटी जौड़ा ने हमें मैसेज किया है कृष्ण पार्क दिल्ली से, आपके साथ है सुखविंदर सिंह जौड़ा। और प्रवीण ने हमें मैसेज किया है, और आपको के साथ साथ हमारे पास मैसेज आया है प्रकाश वर्मा का, और आपने भी कहा है कि अपनी पसंद का कोई भी गीत प्ले कर दें। मोहम्मद कमर ने हमें मैसेज किया है, और आप गुन्नूर से मैसेज कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि खुदा जो भी करता है सही करता है, अच्छा या बुरा हमारा वहम करता है। तो ये आपका एक ख्याल है, और बहुत अच्छी बात है कि अगर आप ऐसा सोचते हैं, बहुत अच्छी बात है। इसके साथ ही हमारे पास मैसेज आया है मीरा सिंह का, आप हमें एक गीत की फरमाइश भेज रहे हैं, तो भाई ज़रूर आपकी फरमाइश

अभी एक गीत प्ले हुआ और उसमें एक लाइन थी जो मुझे बहुत पसंद आई और मैंने एक जगह नोट कर ली, और वो ये थी कि कोई कहे रात में मोती गिरे, कोई कहे रात में मोती कहे गिरे, और कोई कहे कि रात रोती फिरे। तो सबके अपने अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं, सबके अलग अलग अपने तजुर्बे होते हैं। हर एक चीज़ का तजुर्बा आपका अलग होगा, मेरा अलग, किसी और का अलग होगा, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इत्तफाक ऐसा होता है कि आपका, मेरा और उसका, हम सभी का तजुर्बा, तजुर्बे का जो नतीजा है वो एक ही निकलता है। और वो ये हो सकता है कि बारिश पसंद तो बहुत है, अच्छी भी लगती है, लेकिन भीगने के बाद जो सर्दी लगती है उसका फिर हल अदरक वाली चाय ही है। तो जी, हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और हमारे पास मैसेज आया है प्रकाश वर्मा का, और नासिर शेख ने हमें मैसेज किया है, एस एम जावेद हमें मैसेज कर रहे हैं, और साथ ही इंद्रभान सिंह ने हमें मैसेज किया है, सोनू विश्वकर्मा का हमारे पास मैसेज आया है, ग्राम सालिया खेड़ी, ज़िला आगरा मालवा से, और नंद किशोर घाटे जी ने हमें मैसेज किया है बीड़ शहर से, और आपने भी एक ही फरमाइश की है। तो अब कार्यक्रम में जो वक्त है वो कह रहा है कि जल्दी जल्दी बाकी के जो फरमाइशें हैं वो पूरी कर दी जाएं। तो सुनते हैं एक और बहुत खूबसूरत से गीत।

और अब इस कार्यक्रम को ख़त्म करने का वक्त आ गया है, और अब मुझे दीजिए इजाज़त। खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखें। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। अब 12 बजने को है, इन मीटरों पर हमारे प्रसारण संपन्न होते हैं। सुबह 4:50 पर आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। AIR लाइव न्यूज़ 24x7 पर हमारे प्रसारण जारी हैं और अब से कुछ ही देर बाद समाचार होंगे। ठीक 12 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 12:05 पर अंग्रेजी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे। 12:10 पर समय होगा कार्यक्रम सुरों का सफरनामा का। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया है। श्री मोदी ने कल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी निभाती है।
2: आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्र उभर रहे हैं जो युवाओं को नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भरता की पहल विकसित भारत के निर्माण के लिए एक मजबूत आधार का काम करेगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने IIT दिल्ली में उच्च दक्षता के कंप्यूटिंग केंद्र परम प्रज्ञा का उद्घाटन भी किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर कल पुदुचेरी पहुंचेंगे। वे तिरुवन्नामलाई से सड़क मार्ग के जरिए पुदुचेरी पहुंचे और लोक निवास गए, जहां उन्होंने उपराज्यपाल के कैलाश नाथन से मुलाकात कर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उनका स्वागत पुदुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी, उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों और विधायकों, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष VP रामलिंगम तथा पूर्व विधानसभा अध्यक्ष R. सिल्वम ने किया। श्री शाह आज सुबह गोरीमेडू स्थित पुलिस प्रशिक्षण स्कूल मैदान में पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर प्रदान करेंगे। यह पुरस्कार पुदुचेरी पुलिस की उत्कृष्ट सेवा, अनुशासन और कर्तव्य के प्रति समर्पण के लिए दिया जा रहा है। दोपहर में केंद्रीय गृह मंत्री मुर्गा थिएटर सिग्नल से हर घर तिरंगा रैली को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। सरकार ने स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख उद्योगपतियों के साथ महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने वाली कैश फ्री पेमेंट्स, डाविन डायनेमिक्स, वर्ल्ट इंडिया, Cars24 और काउंसिल फॉर स्टार्टअप के साथ भी समझौता किया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। मंत्रालय ने बताया कि हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का उद्देश्य स्टार्टअप के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन

0: सिंह ने आज आबिद जान में कोटे डी आइवर के राष्ट्रपति अलासाने ओतारा से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने भारत और कोटे डी आइवर के बीच बढ़ती साझेदारी पर चर्चा की और अफ्रीका के साथ मजबूत एवं गहरे संबंधों को आगे बढ़ाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के प्रति भारत की साझा प्रतिबद्धता दोहराई। श्री सिंह ने कहा कि वे भारत और कोटे डी आइवर के बीच विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग का विस्तार करने के लिए उत्सुक हैं। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारतीय भारोत्तोलकों ने शानदार प्रदर्शन जारी करते हुए पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में एक स्वर्ण और एक रजत पदक जीते। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। एक आधिकारिक बुलेटिन के अनुसार राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 99 हो गई है, जबकि 1.47 लाख से अधिक लोग अब भी प्रभावित हैं। बताया गया है कि सोनितपुर, नगांव, गोलाघाट, शिवसागर, होजाई, दरांग, जोरहाट, धेमाजी, चराईदेव, कार्बी आंगलोंग, लखीमपुर और विश्वनाथ समेत 12 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। प्रशासन की ओर से 53 राहत शिविर संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें 8,568 विस्थापित लोगों ने शरण ली है। इसके अलावा 41 राहत वितरण केंद्र भी कार्यरत हैं। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज सुबह भी तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Amrit Bhushan. Prime Minister Narendra Modi has emphasized the importance of innovation, research and emerging technologies in shaping India's growth trajectory. Addressing the 57th convocation of Indian Institute of Technology, IIT Delhi, yesterday, Mr. Modi urged the students to keep the national interest at the center of their decisions and ask themselves how their actions can benefit the country and address its needs. The Prime Minister said that new sectors are emerging in the country, offering fresh opportunities for the youth. He cited sectors such as semiconductors, space and drones, and said India is working towards becoming self-reliant across all sectors. Mr. Modi said this drive towards self-reliance will serve as a strong foundation for building a Vikasit Bharat.
2: Aaj Bharat, economic self-reliance, technological self-reliance, industrial self-reliance, aise har sector mein aatmanirbhar banne ke liye kaam kar raha hai. Yahi Vikasit Bharat ki majboot neev ka saboot hai. Is majboot neev par आपको एक भव्य सुंदर विकसित भारत का निर्माण करना है।
1: Prime Minister Narendra Modi received a phone call from US Vice President JD Vance a short while ago. In a social media post, Mr. Modi said they discussed ways to further deepen India-US comprehensive global strategic partnership across key areas. They noted that sustained momentum in the high-level engagements and reaffirmed their commitment to further strengthening cooperation in trade, defense, critical and emerging technologies, energy security and critical minerals. Both leaders also exchanged views on regional and global developments of mutual interest. Mr. Modi congratulated Mr. Vance and the Second Lady Usha on the birth of their son and conveyed best wishes to the entire family. Flood situation in Assam remained grim, with the toll reaching 99 as one more death was reported and over 1.47 lakh people still affected, an official bulletin said yesterday. The Assam Disaster Management Authority, ASDMA, bulletin said the latest fatality was reported from Golaghat district. The bulletin said 12 districts of Sonitpur, Nagaon, Golaghat, Shivsagar, Hojai, Darang, Jorhat, Dhemaji, Charaideo, Karbi Anglong, Lakhimpur and Vishwanath remained affected by the deluge. The number of affected population was at 147,376, with Golaghat being the worst hit as 61,730

जी हाँ दोस्तों, आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज़ 24/7 चैनल शुरू का सफरनामा कार्यक्रम शुरू हो चुका है। मैं हूँ आपके साथ संजय सावंत, और आप सभी ने अंदाज़ा तो काफ़ी हद तक लगा ही लिया होगा कि आज हम किस कलाकार के बारे में बात करने वाले हैं। इतनी मधुर आवाज़, जी हाँ, अनुराधा पौडवाल। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं अनुराधा पौडवाल जी की, जिन्होंने अपनी मधुर आवाज़ से भारतीय फिल्म जगत में वो पहचान बनाई है जो बहुत कम लोगों को हासिल होता है। अनुराधा पौडवाल बॉलीवुड की सबसे सफल पार्श्व गायिकाओं में से एक हैं, और यही नहीं, उन्होंने कई सारे लोकप्रिय भजन भी गाए हैं। अब भारतीय भक्ति संगीत और बॉलीवुड इंडस्ट्री में उनके योगदान की वजह से उन्हें कभी भजन क्वीन, कभी मेलोडी क्वीन, तो कभी भक्ति की अमर आवाज जैसे सम्मानजनक खिताब से नवाजा गया। चलिए सुनते हैं उनके द्वारा गाया हुआ ये गीत, और फिर बातें करेंगे ढेर सारी अनुराधा पौडवाल के बारे में।

श्रोताओं, तो अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल। कार्यक्रम चल रहा है सुरों का सफरनामा और हम बात कर रहे हैं आज के कलाकार की, जिसमें शामिल है अनुराधा पौडवाल। जी हाँ, 27 अक्टूबर 1954 को अनुराधा पौडवाल का जन्म कारवार मैसूर में हुआ था और उन्होंने अपने 5 दशक से ज्यादा लंबे करियर में 550 से ज्यादा फिल्मों के लिए 9000 से भी ज्यादा गाने गाए। उन्होंने न सिर्फ हिंदी बल्कि गुजराती, कन्नड़, मराठी, संस्कृत, बंगाली, तमिल, तेलुगु, ओडिया, असमिया,

पंजाबी, भोजपुरी, ब्रज भाषा, नेपाली और मैथिली जैसी कई भाषाओं में 1500 से ज्यादा भजन भी गाए हैं। उनकी इस उपलब्धि के लिए उन्हें डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी से संगीत में डॉक्टरेट की मानद डिग्री से सम्मानित किया गया था। कमाल की बात यह है कि लता मंगेशकर के बाद वो इस डिग्री को पाने वाली दूसरी भारतीय महिला गायिका है। चलिए कार्यक्रम के कारवा को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं उनके द्वारा गाया हुआ ये गीत, और उसके बाद बातें करेंगे अनुराधा पौडवाल के जीवन से और उनके करियर की शुरुआत किस तरह से हुई उसके बारे में।

आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल कार्यक्रम चल रहा है सुरों का सफरनामा, और इस वक्त मैं हूं जुड़ा हुआ आप सबके साथ आपका दोस्त संजय सावन। और जो श्रोता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें बता दें कि आज हम बातें कर रहे हैं अनुराधा पौडवाल के बारे में। जी हाँ, अनुराधा पौडवाल की मखमली आवाज का जादू हम सबके दिल पर छाया हुआ है और ये दशकों से हम इनके गीत सुनते चले आ रहे हैं। ये आज भी उतने ही कर्णप्रिय हैं जितने पहले थे और भविष्य में भी इनकी ये मधुर आवाज हम सबके कानों में मिठास घोलने का काम करती रहेगी। अब बात करें अनुराधा पौडवाल के करियर की शुरुआत कब हुई, तो जी हाँ, उन्होंने 1973 में फिल्म अभिमान से अपने म्यूजिक सफर की शुरुआत की थी, जिसमें उन्होंने जया भादुरी के लिए एक संस्कृत श्लोक गाया। हालांकि 1970 के दशक में उन्होंने कुछ लोकप्रिय गीत जरूर गाए और आम लोगों ने इसकी तारीफ भी की। इसके अलावा कुछ म्यूजिक कंपोजर भी थे जिन्होंने भी इनकी तारीफ की, लेकिन उन्हें वो लोकप्रियता हासिल नहीं हो पाई जिनकी अनुराधा को तलाश थी। इस वक्त उन्होंने डबिंग आर्टिस्ट के तौर पर भी बहुत सारा काम किया, लेकिन सही सफलता की तलाश उनकी जो थी, उनके सफ़र की जो शुरुआत हुई थी संगीत में, उसमें वो जो तलाश कर रही थी कि एक ऐसा गीत जो उन्हें नाम दे, उन्हें प्रसिद्धि दे और सबके दिलों पर वो राज करने लग जाए, इसका इंतज़ार ख़त्म हुआ था। लेकिन वो कौन सा गीत था, हम इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं उनके द्वारा गाया हुआ ये एक बेहद खूबसूरत खूबसूरत बेहद खूबसूरत गीत। सुनते हैं और फिर बातें और राधा और वाल्मीकि।

0: जी हाँ दोस्तों, अनुराधा पौडवाल को
1: जिस सफलता की तलाश थी वो उन्हें मिली हीरो फिल्म एक गीत से, जो जिसके बोल थे तू मेरा जानू है। ये गीत उन्होंने मनहर उदास के साथ गाया था और इसके पीछे की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। दरअसल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इस गाने को रिकॉर्ड करवाया था अनुराधा पौडवाल से। हालांकि उन्होंने सिर्फ इस गाने की डबिंग की थी, इस गाने को एक्चुअली गाना था लता मंगेशकर को। लेकिन जब अनुराधा पौडवाल ने इस गीत को गाया तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को ये गीत इतना पसंद आया कि उन्होंने रिक्वेस्ट की इस फिल्म के जो निर्माता और निर्देशक थे, कि चूँकि मीनाक्षी शेषाद्री इस फिल्म के जरिए डेब्यू कर रही थी तो वो नई हैं और उनके लिए एक नई आवाज़ जो सबसे सूटेबल रहेगी वो अनुराधा पौडवाल की आवाज़ हो सकती है। यानी ये गीत गाना तो था लता मंगेशकर को, लेकिन जब अनुराधा पौडवाल ने इस गीत को डब किया तो उन्हीं की आवाज़ को इस फिल्म में रखा गया और इस गीत को लता मंगेशकर ने नहीं गाया। और बाद में ये गीत इतना ज़्यादा हिट हुआ कि यहाँ से अनुराधा पौडवाल को सभी जानने लगे, पूरे देश में उन्हें प्रसिद्धि मिली और उसके बाद उन्हें एक से बढ़कर एक संगीतकारों के साथ काम करने का

श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल पर अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरों का सफरनामा, और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त संजय सावन। बातें हो रही है अनुराधा पौडवाल के बारे में। जी हाँ, अनुराधा पौडवाल ने हीरो फिल्म का जो गीत गाया था, जिसे अभी आपने सुना, इस गीत की वजह से उन्हें बेहद प्रसिद्धि मिली। और इसके बाद 1980 के दशक में उन्होंने मोहम्मद अजीज के साथ एक से बढ़कर एक गीत गाए और लोगों ने इनकी जोड़ी को खूब पसंद भी किया। इस समय अनुराधा पौडवाल ने सफलता की सीढ़ियां चढ़ना शुरू की थी और इसके बाद उन्होंने उस समय के जाने माने कई गायकों के साथ गीत गाए, जाने माने कई संगीतकारों के साथ गीत गाए, और इसके बाद उनकी मुलाकात नदीम श्रवण से हुई, जो उस वक्त संघर्ष कर रहे थे। नदीम श्रवण ने उस वक्त कुछ गीत तैयार किए थे जिसे उन्होंने अनुराधा पौडवाल के साथ कुमार शानू, उदित नारायण, अभिजीत भट्टाचार्य, बाबला मेहता जैसे गायकों के साथ गवाया, और इसमें से 10 गाने चाहत एल्बम के तौर पर रिलीज होने वाले थे, लेकिन बाद में 1990 में फिल्म आशिकी के गानों के तौर पर इसे रिलीज किया गया। और आशिकी फिल्म के गानों ने किस कदर उस वक्त धूम मचाई थी, ये सबको पता है, और ये गाने आज भी खूब सुने गाए और हम सबके दिलों पर राज करते हैं। बहरहाल, सुनते हैं अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज की आवाज में ये बेहद खूबसूरत गीत, और उसके बाद बात करेंगे अनुराधा पौडवाल के जीवन से जुड़ी अन्य कई सारी बातों।

जी हाँ दोस्तों, आशिकी फिल्म का म्यूजिक जब रिलीज हुआ था तो वो बहुत ही मशहूर हो गया और इस फिल्म ने अनुराधा पौडवाल को एक सफल प्लेबैक सिंगर के तौर पर स्थापित कर दिया। इसके बाद 1991 में उनकी कुछ फिल्में आई जिसमें दिल है कि मानता नहीं और सड़क जब रिलीज हुई तो ये दोनों फिल्में भी बहुत सफल रहीं और इसके संगीत को भी काफी पसंद किया गया। अब लता मंगेशकर इस वक्त अपने चरम पर थी और उस वक्त उन्होंने सिर्फ फैसला किया कि वो सिर्फ एक कंपनी, जी हाँ टी सीरीज के लिए ही सिर्फ गाना गाएंगी और उनका ये फैसला उनके हक में नहीं रहा और धीरे धीरे उनका करियर ढलान की तरफ चला गया। और उसी वक्त अलका याग्निक, कविता कृष्णमूर्ति, साधना सरगम जैसी दूसरी महिला प्लेबैक सिंगर मशहूर होने लगी।

यहाँ श्रोताओं, 1997 में जब गुलशन कुमार की हत्या हो गई थी, उसके बाद अनुराधा पौडवाल ने फिर से दूसरे म्यूज़िक कंपनीज के लिए गाना शुरू किया और उन्होंने कुछ बेहतरीन गीत भी गाए, लोकप्रियता भी उन्हें मिली। लेकिन उस वक्त इंडस्ट्री पर अलका याग्निक का दबदबा था और अनुराधा पौडवाल को उस तरह की सफलता नहीं मिली जैसी उन्हें पहले मिली थी। और उन्होंने 2006 तक गाना गाना जारी रखा और उसके बाद उन्होंने बॉलीवुड को छोड़ दिया। अनुराधा पौडवाल इस वक्त 71 साल की हैं और अब वो गीत तो नहीं गाती, लेकिन वो कई सारे टीवी शोज वगैरह पे नज़र आती हैं और उनकी मखमली आवाज़ में जो गाए गीत हैं वो आज भी हम सबके दिलों में रचे बसे हैं। और आप जब भी उन गीतों को सुन लीजिए, आप खुद को रिफ्रेश महसूस करेंगे, इतनी ताजगी आज भी उन गीतों में है। बहरहाल, इस गीत के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं और ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है।

0: श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल पर अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुरों का सफरनामा। अब एक बजने को है, आइए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया है। श्री मोदी ने कल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी निभाती है।
2: आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्र उभर रहे हैं जो युवाओं को नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने IIT दिल्ली में उच्च दक्षता के कंप्यूटिंग केंद्र परम प्रज्ञा का उद्घाटन भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमरीकी उपराष्ट्रपति JD Vance के बीच कल फोन पर बातचीत हुई। श्री मोदी ने कहा कि हमने भारत अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने के विभिन्न उपायों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने उच्च स्तरीय संवाद की लगातार बनी हुई गति पर संतोष व्यक्त किया और व्यापार, रक्षा, महत्वपूर्ण एवं उभरती प्रौद्योगिकियों, ऊर्जा सुरक्षा तथा महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया जो दोनों देशों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर कल पुद्दीचेरी पहुंचे, जहां उन्होंने उपराज्यपाल K Kailashnathan से मुलाकात कर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उनका स्वागत पुद्दीचेरी के मुख्यमंत्री N Rangaswamy, उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों और विधायकों, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष VP Ramalingam तथा पूर्व विधानसभा अध्यक्ष R Silvam ने किया। श्री शाह आज सुबह गोरी मेडू स्थित पुलिस प्रशिक्षण स्कूल मैदान में पुद्दीचेरी पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस करल प्रदान करेंगे। यह पुरस्कार पुद्दीचेरी पुलिस की उत्कृष्ट सेवा, अनुशासन और कर्तव्य के प्रति समर्पण के लिए दिया जा रहा है। दोपहर में केंद्रीय गृह मंत्री मुर्गा थिएटर सिग्नल से हर घर तिरंगा रैली को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने आज आबिद जान में कोटे डी आइवर के राष्ट्रपति अलासाने ओतारा से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने भारत और कोटे डी आइवर के बीच बढ़ती साझेदारी पर चर्चा की और अफ्रीका के साथ मजबूत एवं गहरे संबंधों को और बढ़ाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के प्रति भारत की साझा प्रतिबद्धता दोहराई। श्री सिंह ने कहा कि वे भारत और कोटे डी आइवर के बीच विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग का विस्तार करने के लिए उत्सुक हैं। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। एक आधिकारिक बुलेटिन के अनुसार राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 99 हो गई है, जबकि 1.47 लाख से अधिक लोग अभी भी प्रभावित हैं। बताया गया कि 12 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। प्रशासन की ओर से 53 राहत शिविर संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें 8,568 विस्थापित लोगों ने शरण ली है। इसके अलावा 41 राहत वितरण केंद्र भी कार्यरत हैं। आधिकारिक बुलेटिन के अनुसार लगभग 10,600 हेक्टेयर कृषि भूमि अभी भी जलमग्न है। इसके अलावा 41 राहत वितरण केंद्र भी कार्यरत हैं। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारतीय भारोत्तोलकों ने शानदार प्रदर्शन जारी करते हुए पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में 1 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीते। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी तेज बारिश की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज सुबह भी तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त।

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। वक्त हो चला 1:10 और 6 सेकंड और श्रोताओं, ये वक्त है कार्यक्रम गीत सुनहरे का।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया है। श्री मोदी ने कल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी निभाती है।
1: आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्र उभर रहे हैं जो युवाओं को नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने IIT दिल्ली में उच्च दक्षता के कंप्यूटिंग केंद्र परम प्रज्ञा का उद्घाटन भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमरीकी उपराष्ट्रपति जीडी वैंस के बीच कल फोन पर बातचीत हुई। श्री मोदी ने कहा, हमने भारत अमरीका के बीच व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने के विभिन्न उपायों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने उच्च स्तरीय संवाद की लगातार बनी हुई गति पर संतोष व्यक्त किया और व्यापार, रक्षा, महत्वपूर्ण एवं उभरती प्रौद्योगिकियों, ऊर्जा सुरक्षा तथा महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर कल पुदुचेरी पहुंचे, जहां उन्होंने उपराज्यपाल के कैलाशनाथन से मुलाकात कर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उनका स्वागत पुदुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी, उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों और विधायकों, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष VP रामलिंगम तथा पूर्व विधानसभा अध्यक्ष R सिल्वम ने किया। श्री शाह आज सुबह गोरीमेडू स्थित पुलिस प्रशिक्षण स्कूल मैदान में पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर प्रदान करेंगे। दोपहर में केंद्रीय गृह मंत्री मुर्गा थिएटर सिग्नल से हर घर तिरंगा रैली को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने आज आबिदजान में कोटे डी आइवर के राष्ट्रपति अलासानी ओत्तारा से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने भारत और कोटे डी आइवर के बीच बढ़ती साझेदारी पर चर्चा की और अफ्रीका के साथ मजबूत एवं गहरे संबंधों को आगे बढ़ाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के प्रति भारत की साझा प्रतिबद्धता दोहराई। श्री सिंह ने कहा कि वे भारत और कोटे डी आइवर के बीच विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग का विस्तार करने के लिए उत्सुक हैं। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। एक आधिकारिक बुलेटिन के अनुसार राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 99 हो गई है, जबकि 1,47,000 से अधिक लोग अब भी प्रभावित हैं। बताया गया है कि 12 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। प्रशासन की ओर से 53 राहत शिविर संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें 8,568 विस्थापित लोगों ने शरण ली है। लगभग 10,600 हेक्टेयर कृषि भूमि अभी भी जलमग्न है। इसके अलावा 41 राहत वितरण केंद्र भी कार्यरत हैं। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। देश ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि पिछले 12 वर्षों में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 400% की वृद्धि हुई है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी तेज बारिश की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी आज सुबह तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया है। श्री मोदी ने कल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी निभाती है।
1: आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्र उभर रहे हैं जो युवाओं को नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने IIT दिल्ली में उच्च दक्षता के कंप्यूटिंग केंद्र परम प्रज्ञा का उद्घाटन भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमरीकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस के बीच कल फोन पर बातचीत हुई। श्री मोदी ने कहा, हमने भारत अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने के विभिन्न उपायों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने उच्च स्तरीय संवाद की लगातार बनी हुई गति पर संतोष व्यक्त किया और व्यापार, रक्षा, महत्वपूर्ण एवं उभरती प्रौद्योगिकियों, ऊर्जा सुरक्षा तथा महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर कल पुदुचेरी पहुंचे, जहां उन्होंने उपराज्यपाल के कैलाश नाथन से मुलाकात कर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उनका स्वागत पुदुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी, उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों और विधायकों, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष VP रामलिंगम तथा पूर्व विधानसभा अध्यक्ष R. सेल्वम ने किया। श्री शाह आज सुबह गोरीमेडू स्थित पुलिस प्रशिक्षण स्कूल मैदान में पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर प्रदान करेंगे। दोपहर में केंद्रीय गृह मंत्री मुर्गा थिएटर सिग्नल से हर घर तिरंगा रैली को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। एक आधिकारिक बुलेटिन के अनुसार राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 99 हो गई है, जबकि 1,47,000 से अधिक लोग अब भी प्रभावित हैं। बताया गया है कि 12 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। प्रशासन की ओर से 53 राहत शिविर संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें 8,568 विस्थापित लोगों ने शरण ली है। लगभग 10,600 हेक्टेयर कृषि भूमि अभी भी जलमग्न है। इसके अलावा 41 राहत वितरण केंद्र भी कार्यरत हैं। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। देश ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि पिछले 12 वर्षों में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 400% की वृद्धि हुई है। श्री जोशी ने कहा कि आंकड़ा भारत की स्वच्छ ऊर्जा उपयोग की दिशा में वैश्विक प्रगति दर्शाता है। स्वतंत्रता दिवस समारोह के अंतर्गत प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय 12 अगस्त तक वंदे मातरम अ टाइमलेस ट्रिब्यूट टू द मदरलैंड कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। कल वंदे मातरम पर विशेष प्रदर्शनी शुरू हुई, जिसमें दुर्लभ दस्तावेज और तस्वीरें प्रदर्शित की गईं। आज बहुभाषी सुलेख प्रदर्शन और 11 अगस्त को दिल्ली NCR के करीब 20 विद्यालयों के बीच समूह गायन प्रतियोगिता होगी। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारतीय भारोत्तोलकों ने शानदार प्रदर्शन जारी करते हुए पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में 1 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीते। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी तेज बारिश की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी आज सुबह तेज बारिश की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय महवश फातिमा। Prime Minister Narendra Modi has emphasized importance of innovation, research and emerging technologies in shaping India's growth trajectory. Addressing the 57th convocation of Indian Institute of Technology, IIT Delhi yesterday, Mr. Modi urged the students to keep the national interest at the center of their decisions and ask themselves how their actions can benefit the country and address its needs. The Prime Minister said that new sectors are emerging in the country, offering fresh opportunities for the youth. He cited sectors such as semiconductors, space and drones, and said India is working towards becoming self-reliant across all sectors. Mr. Modi said the strive towards self-reliance will serve as a strong foundation for building a Viksit Bharat. Prime Minister Narendra Modi received a phone call from US Vice President J.D. Vance late last night. In a social media post, Mr. Modi said they discussed ways to further deepen India-US comprehensive global strategic partnership across key areas. They noted the sustained momentum in the high-level engagements and reaffirmed their commitment to further strengthening cooperation in trade, defense, critical and emerging technologies, energy security, and critical minerals. Both leaders also exchanged views on regional and global developments of mutual interest. Mr. Modi congratulated Mr. Vance and the Second Lady Usha on the birth of their son and conveyed best wishes to the entire family. Union Home Minister Amit Shah will today participate in the presentation ceremony of the President's Police Colour. At the ceremony organised by the Puducherry Police, the Home Minister will hand over the ceremonial flag to the force, marking the conferment of the prestigious award. In the afternoon, Union Home Minister will also flag off a Har Ghar Tiranga rally at Muruga Theatre Signal in Puducherry. Mr. Shah arrived in Puducherry on a two-day official visit yesterday. He reached Puducherry by road from Thiruvannamalai and proceeded to Lok Nivas, where he met and held discussions with Lieutenant Governor K. Kailashnathan. He was received by Puducherry Chief Minister N. Rangasamy and his cabinet ministers and legislators, BJP State President V. P. Ramalingam and former Speaker R. Selvam. The deadlock over the alleged irregularities in the JPSC and JSSC recruitment examinations in Jharkhand now appears to be moving towards a resolution. The Jharkhand government will hold next round of talks with students protesting the alleged exam irregularities in the state today. The talks will be held around 12 p.m., a member of the government panel said, after the panel held meeting with Chief Minister Hemant Soren, apprising him about the progress achieved during the dialogue with the protesters. The high-level talks between the state government and different groups of protesting students was held yesterday at the state guest house in Ranchi in a positive atmosphere. To ensure greater transparency, the government has also issued an official feedback email ID through which students and all its stakeholders can submit their suggestions. In Jammu and Kashmir, Shri Amarnath Ji Yatra will remain suspended from both Baltal and Pehelgam routes from August 9 in view of track restoration works and adverse weather conditions. Divisional Commissioner Kashmir Anshul Garg said in a statement that the recent rains have necessitated repair and maintenance of vulnerable stretches across along the Yatra tracks, with the restoration work being undertaken by the Border Roads Organization. He said adverse weather conditions have also been forecast by the India Meteorological Department over the next few days. The Divisional Commissioner said the Chhadi Mubarak will proceed through the traditional Pehelgam route and mark the culmination of this year's Yatra on August 28. So far, more than 480,000 Yatris have performed darshan at the Holy Cave Shrine. The United States is reviewing a proposal to eliminate the 60-day grace period that allows certain foreign workers on non-immigrant visas to find new employment after losing their jobs. If implemented, the move could require affected workers to leave the country immediately after their employment ends. The proposal from the Department of Homeland Security is currently under review at the Federal Office of Management and Budget. And that is the end of this news bulletin.
3: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24 सेल चैनल है। रात के 3:10 और पूरे 10 सेकंड हो चुके हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम गीत और गजल।
4: हाल ही में लता जी ने सजदा के नाम से एक एल्बम जगजीत सिंह की म्यूजिक डायरेक्शन में पेश की।
5: सजदा, सजदा एक ऐसा कैसेट है जो कि सजदा है गजल को, सजदा है शायरों को, सजदा है गजल के चाहने वालों को। सजदा एक ऐसा प्रोजेक्ट जो मेरी बरसों की तमन्ना थी, और मैं अपने आप को बहुत लकी समझता हूं कि मेरे इस सजदे में लता जी भी शरीक थी।

0: जिस चलो अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत और गजल, ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। रात के 4 बजने को है, अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें। अगला कार्यक्रम होगा अर्चना।
1: प्रस्तुत है भक्ति संगीत।
2: नमस्कार, आकाशवाणी
1: अर्चना।

0: इसके साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना अब समाप्त होता है।
1: आप सुन रहे थे खास कार्यक्रम अर्चना, भक्ति में संगीत का एक कार्यक्रम आप सुन रहे थे AIR लाइव न्यूज 24/7 पर। हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। सुबह के 4:20 और पूरे 10 सेकंड हो चुके हैं। आइए सुनते हैं खास कार्यक्रम नाद ब्रह्म कर्नाटक म्यूजिक के। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे बांसुरी वादन जी रघु रमन का रागम मध्यवती।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीनावेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आज रविवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 18वीं तिथि, तदनुसार 9 अगस्त 2026। सुबह के 4:53 और पूरे 40 सेकेंड हो चुके हैं। आइए सुनते हैं हमारे कार्यक्रम जो अब आरंभ होते हैं।

आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आइए आपको बता दें आज आप कौन कौन से कार्यक्रम इंद्रप्रस्थ पर सुनेंगे। अब से थोड़ी देर में यानी 5:10 पर आप सुनेंगे आओ योग करें, जिसमें आज आप सुनेंगे बद्ध पद्मासन, योगा फॉर वेलनेस। 5:20 पर देशभक्ति संगीत होगा और सुबह 5:30 पर कार्यक्रम स्वर रंजनी में आज आप सुनेंगे निपा चौधरी का राग बैरागी में गायन। सुबह 6:10 पर कार्यक्रम वंदना में आज आप सुनेंगे भजन शब्द और नट। 6:40 पर कार्यक्रम चिंतन में आज भगवान महावीर के उपदेश। हर रोज की तरह आज भी 6:45 पर सुबह आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस से संगीत। सुबह 6:55 पर संस्कृत में समाचार। संगीतिका का कार्यक्रम होगा सुबह 7:10 पर और 7:30 पर गीतों भरी गुड मॉर्निंग।

0: श्री ओंकार त्रिपाठी वरिष्ठ कवि 8:45 बजे कार्यक्रम आप सुनिए। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मेरे वे 366.3 मीटर अर्थात 8:19 किलोहर्ट्ज। 5 बज चुके हैं, अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर बल दिया है। श्री मोदी ने कल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वो अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी निभाती है।
2: आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्र उभर रहे हैं और जो युवाओं को नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने IIT दिल्ली में उच्च दक्षता के कम्प्यूटिंग केंद्र परम प्रज्ञा का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी विन से कल फोन पर बातचीत की। श्री मोदी ने कहा कि हमने भारत अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने के विभिन्न उपायों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने उच्च स्तरीय संवाद की लगातार बनी हुई गति पर संतोष व्यक्त किया और व्यापार, रक्षा, महत्वपूर्ण तथा उभरती प्रौद्योगिकियों, ऊर्जा सुरक्षा, महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कल आबिदजान में कोटे दी आइवर के राष्ट्रपति अलासानी ओटारा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और कोटे दी आइवर के बीच बढ़ती साझेदारी पर चर्चा की। श्री सिंह ने अफ्रीका के साथ मजबूत और व्यापक संबंधों को आगे बढ़ाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त की। श्री सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे भारत और कोटे दी आइवर की लंबे समय से चली आ रही दोस्ती को और मजबूत करने तथा विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए उत्सुक हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर कल पुदुचेरी पहुंचे, जहां उन्होंने उपराज्यपाल के कैलाशनाथन से मुलाकात कर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उनका स्वागत पुदुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी, उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों और विधायकों, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष VP रामलिंगम तथा पूर्व विधानसभा अध्यक्ष R. Selvam ने किया। श्री शाह आज सुबह गोरीमेडू स्थित पुलिस प्रशिक्षण स्कूल मैदान में पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर प्रदान करेंगे। दोपहर में केंद्रीय गृहमंत्री मुरुगा थिएटर सिग्नल से हर घर तिरंगा रैली को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। देश ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि पिछले 12 वर्षों में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 400% की वृद्धि हुई है। श्री जोशी ने कहा कि यह आंकड़ा भारत की स्वच्छ ऊर्जा उपयोग की दिशा में वैश्विक प्रगति दर्शाता है। झारखंड में JPSC और JSSC की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध अब समाधान की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। राज्य सरकार प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ आज अगले दौर की वार्ता करेगी। इससे पहले सरकार की ओर से वार्ता में शामिल मंत्रियों ने कहा कि वो परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। झारखंड सरकार ने परीक्षा प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक आधिकारिक फीडबैक ईमेल ID भी जारी किया है। इसके माध्यम से छात्र और सभी संबंधित पक्ष अपने सुझाव भेज सकते हैं। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 99 हो गई है, जबकि 1,47,000 से अधिक लोग अब भी प्रभावित हैं। सरकार ने बताया है कि राज्य के 12 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। प्रशासन की ओर से 53 राहत शिविर संचालित किए गए हैं, जिनमें 8,568 विस्थापित लोगों ने शरण ली है। लगभग 10,600 हेक्टेयर कृषि भूमि अभी भी जलमग्न है। इसके अलावा 41 राहत वितरण केंद्र भी कार्यरत हैं। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा से जुड़े मार्गों की मरम्मत और प्रतिकूल मौसम को देखते हुए इस यात्रा को आज से बालतल और पहलगाम दोनों मार्गों से स्थगित कर दिया गया है। कश्मीर के संभागीय आयुक्त अंशुल गर्ग ने बताया कि बारिश के कारण यात्रा मार्गों के संवेदनशील हिस्सों की मरम्मत और रखरखाव आवश्यक हो गया है, जिसका काम सीमा सड़क संगठन द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए खराब मौसम की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय महवश फातिमा। Prime Minister Narendra Modi has emphasized importance of innovation, research and emerging technologies in shaping India's growth trajectory. Addressing the 57th convocation of Indian Institute of Technology, IIT Delhi yesterday, Mr. Modi urged the students to keep the national interest at the center of their decisions and ask themselves how their actions can benefit the country and address its needs. The Prime Minister said that new sectors are emerging in the country, offering fresh opportunities for the youth. He cited sectors such as semiconductors, space and drones, and said India is working towards becoming self-reliant across all sectors. Mr. Modi said this drive towards self-reliance will serve as a strong foundation for building a Viksit Bharat. Prime Minister Narendra Modi received a phone call from US Vice President J.D. Vance yesterday. In a social media post, Mr. Modi said they discussed ways to further deepen India-US comprehensive global strategic partnership across key areas. They noted the sustained momentum in the high-level engagements and reaffirmed their commitment to further strengthening cooperation in trade, defense, critical and emerging technologies, energy security and critical minerals. Both leaders also exchanged views on regional and global developments of mutual interest. Mr. Modi congratulated Mr. Vance and the Second Lady Usha on the birth of their son and conveyed best wishes to the entire family. The Har Ghar Tiranga campaign will begin today and will run through 17th of this month. The initiative is aimed at encouraging citizens to hoist the national flag and participate in activities celebrating patriotism, national unity and India's cultural heritage. The campaign, which began in 2022 as part of the Azadi Ka Amrit Mahotsav celebrations, has since evolved into one of the country's largest public participation movements. Over the years, it has emerged as a true people's movement that inspires citizens across regions and communities to celebrate the tricolor as a symbol of India's unity, honor, and collective national identity. This year's campaign holds special significance as it coincides with the 150th anniversary of India's national song, Vande Mataram, bringing together the national flag and the national song in a unique celebration of patriotism. Vice President C.P. Radhakrishnan will participate in the Har Ghar Tiranga campaign and hoist the national flag at Flag Point in Sri Vijayapuram today. The Vice President yesterday arrived at Sri Vijayapuram on a two-day visit to the Andaman and Nicobar Islands. Union Home Minister Amit Shah will today participate in the presentation ceremony of the President's Police Colour. At the ceremony organized by the Puducherry Police, the Home Minister will hand over the ceremonial flag to the force, marking the conferment of the prestigious award. In the afternoon, Union Home Minister will also flag off a Har Ghar Tiranga rally at Muruga Theatre Signal in Puducherry. Minister of State for External Affairs Kirti Vardhan Singh called on President of Cote d'Ivoire Alassane Ouattara in Abidjan yesterday. He discussed the growing India-Cote d'Ivoire partnership and reaffirmed India's shared commitment to advancing Prime Minister Narendra Modi's vision of stronger and deeper engagement with Africa. In Jammu and Kashmir, Shri Amarnath Ji Yatra will remain suspended from both Baltal and Pehalgam routes from today, in view of track restoration works and adverse weather conditions. Divisional Commissioner Kashmir Anshul Garg said in a statement that the recent rains have necessitated repair and maintenance of vulnerable stretches along the Yatra tracks, with the restoration work being undertaken by the Border Roads Organization. He said adverse weather conditions have also been forecast by the India Meteorological Department over the next few days. Indian shuttler Ashmita Chaliha will take on China's Qiu Han in the women's singles final of the Korea Masters Badminton Tournament in Asan this morning. Ashmita reached the final after defeating fellow Indian Rakshitha Ramraj 21-13, 16-21, 21-13 in the semi-final yesterday, while Han outplayed South Korea's Ji Kim 22-20, 18-21, 21-14 in the other semi-final. And that is the end of this news bulletin.

जी आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, सुबह के 5:10 और पूरे 20 सेकेंड हो चुके हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आओ योग करें। योग सिर्फ एक शारीरिक अभ्यास नहीं है, यह गुणतापूर्ण भावनात्मक एकीकरण एवं आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है, जिससे हमें सभी कल्पनाओं से परे स्थित आयाम की एक झलक मिलती है। योग एक पूर्ण विज्ञान है।

यह शरीर मन आत्मा और ब्रह्मांड को एकजुट करता है। यह व्यक्ति को शांति और आनंद प्रदान करता है। व्यक्ति के व्यवहार विचारों और रवैये में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन लाता है। योग के दैनिक अभ्यास से हमारी अंतः शांति, संवेदनशीलता, अंतर्ज्ञान और जागरूकता बढ़ती है। योगासन करते समय कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। योगासन खुली एवं ताजा हवा में करना सबसे अच्छा माना गया है। फिर भी अगर ऐसा करना संभव ना हो तो किसी भी खाली जगह पर आसन किया जा सकता है। योग सीधे जमीन या फर्श पर बैठकर न करें। इसके लिए दरी या कालीन जमीन पर बिछाकर योगासन करें। किसी भी योगासन को झटके से न करें। योग उतना ही करें जितना आप आसानी से कर पाएं। योगासन करने के तुरंत बाद स्नान न करें, क्योंकि व्यायाम करने के बाद शरीर गर्म हो जाता है, और अगर आप गर्म शरीर में ही स्नान करेंगे तो सर्दी, जुकाम, बदन दर्द जैसी तकलीफ हो सकती है। इसलिए योग करने के एक घंटे बाद ही स्नान करना चाहिए। योग का महत्व योगाचार्य महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में सूत्रों के रूप में प्रस्तुत किया है। आज वही योग दुनिया भर में प्रसिद्धि पा रहा है। योग का अर्थ है जोड़ना, जीवात्मा का परमात्मा से पूरी तरह से एक हो जाना ही योग है। योगाचार्य महर्षि पतंजलि के अनुसार अपने चित्त को एक ही जगह स्थापित करना योग है। आज के कार्यक्रम में बद्ध पद्मासन। बद्ध पद्मासन को अंग्रेजी भाषा में लॉक्ड लोटस पोज या फिर क्लोज्ड लोटस पोज भी कहा जाता है। बद्ध पद्मासन दो शब्दों से मिलकर बना है, बद्ध और पद्म, जिसमें बद्ध का अर्थ होता है बांधा हुआ और पद्म का अर्थ होता है कमल का फूल। इस आसन को करने का तरीका मेरे साथ कीजिए। सबसे पहले दंडासन में बैठ जाएं। हल्का सा हाथों से जमीन को दबाते हुए और सांस अंदर लेते हुए रीढ़ की हड्डी को सीधा करें। श्वास अंदर लें और अपनी दाईं टांग को उठाकर दाएं पैर को बाईं जांघ पर ले आएं और फिर दूसरे पैर के साथ भी ऐसा ही करें। अब आप पद्मासन में हैं। इस मुद्रा में आपके दाएं कूल्हे और घुटने पर खिंचाव आएगा। अब अपना बायां हाथ पीठ के पीछे से आगे की ओर ले आएं और बाएं हाथ से बाएं पैर का अंगूठा पकड़ दें। यह करने के बाद इस मुद्रा में एक से दो बार सांस अंदर और बाहर लें। और अब यही क्रिया दाएं हाथ से भी दोहराएं। बहुत से लोग ये आसन उतनी आसानी से नहीं कर पा रहे होंगे, इसलिए जहां तक आपके हाथ जाते हैं पद्मासन में बैठे हुए, पीठ के पीछे से क्रॉस करते हुए जितनी दूरी तक आपके हाथ जाते हैं वहां तक ले जाएं। नियमित अभ्यास से धीरे धीरे आपका लचीलापन बढ़ेगा और आप इस आसन को

0: अच्छी तरह से कर पाएंगे। जिन लोगों का बद्ध पद्मासन लग चुका है, अब आप उस मुद्रा में थोड़ी देर बैठें और कुल मिलाकर 5 बार सांस अंदर लें और बाहर छोड़ें, ताकि आप आसन में 30 से लेकर 60 सेकेंड यानी 1 मिनट तक रह सकें। धीरे धीरे जैसे आपके शरीर में ताकत और लचीलापन बढ़ने लगे, आप इस समय को बढ़ा भी सकते हैं, परंतु कभी भी इस आसन को 1.5 मिनट यानी 90 सेकंड से ज्यादा ना करें। 5 बार सांस लेने के बाद आप इस मुद्रा से बाहर आ सकते हैं। अब बद्ध पद्मासन करने के लाभ के बारे में बात करें। बद्ध पद्मासन घुटनों और कूल्हों के जोड़ों का लचीलापन बढ़ाता है। कंधों, कलाइयों, पीठ, कोहनियों, घुटनों और टखनों में खिंचाव लाता है और उन्हें मजबूत बनाता है। यह पीठ की मांसपेशियों में खिंचाव लाता है और रीढ़ की नसों में रक्त परिसंचरण बढ़ाता है। पद्मासन पाचन अंगों को उत्तेजित करता है और कब्ज आदि से राहत दिलाता है। पद्मासन का दैनिक अभ्यास गठिया में भी आपको फायदा देता है, लेकिन इस आसन को करने के लिए कुछ सावधानियां जरूरी हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें ये आसन निषेध है। जिनके घुटनों में तीव्र दर्द हो, उन्हें बद्ध पद्मासन नहीं करना चाहिए। अगर आपको हैमस्ट्रिंग में चोट हो तो बद्ध पद्मासन ना करें। कंधों में चोट या दर्द हो तो ये आसन आपके लिए वर्जित है। और हमेशा की तरह एक सुझाव, अपनी शारीरिक क्षमता से अधिक जोर न लगाएं। आज के कार्यक्रम में इतना ही। कल आपसे पुनः भेंट होगी एक नए आसन के साथ, इसी समय इसी चैनल पर। नमस्कार।
1: महीने का आखिरी रविवार जब बजते हैं सुबह के 11, एक साथ होता है पूरा देश सुनने मन की बात।
2: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में आप सबका स्वागत है।
1: यह होती है मैं नहीं हम की बात, सामूहिकता की शक्ति के साथ, मोदी जी के साथ देश का संवाद और जन जन से सीधा जुड़ाव। साथ आते हैं करोड़ों दिल और होती है देश के छोटे कस्बों गांव में उभरते इनोवेटिव आइडियाज की बात। अपनी सेवा से समाज बदलने में जुटे साइलेंट हीरोज की बात। भाषा और परंपरा, विज्ञान और विरासत की बात। विदेश में भारतीय संस्कृति की बात। अन्नदाता की मेहनत, नारी शक्ति की लगन, खेल का जज्बा, युवाओं की आकांक्षा, भारतीय श्वान से लेकर पेड़ और प्रकृति की बात, योग और आयुर्वेद से आरोग्य की बात, स्वच्छता से लेकर हर घर तिरंगा की बात। आत्मनिर्भर बनते, विकसित होते विश्व बंधु भारत की बात, मन की बात, जिसमें है एक भाव, नेशन फर्स्ट, जहां हर कहानी बनती है किसी और के लिए हौसला। बात देश की, सबके मन की।
2: मेरे लिए मन की बात

0: आस्था पूजा व्रत है,
1: तभी तो रहता है इंतजार आए महीने का आखिरी रविवार और देश कहे चलो सुने मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के नेटवर्क पर।

आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मेरी वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, सुबह के 5:30 बज चुके हैं। ये वक्त होता है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के कार्यक्रम सर रंजनी का, जिसमें आज आप सुनेंगे निपा चौधरी का राग बैरागी में गायन।